0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में

सिंचाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं, उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है, उन्हें बता दे अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है, उन्हें बता दे भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 ml मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं, उन्हें बता दे आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर लैम्डा साहिलेथ्रिन की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल ले और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रिन की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं, उन्हें बता दें गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. हेलो नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 और ये है FM ग्रीन. उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. और आज एक हर रोज की तरह एक और आज खास विषय हमारे बीच है. जी हाँ, आज का विषय है खरीफ मक्का की उन्नत खेती. और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं SS मंडल. मैं आपको बता दूं, ये प्रोफेसर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में और पौधा प्रजनन विभाग में कार्यरत हैं ये. और मैं आपको बता दूं कि मक्का विशेषज्ञ हैं, इसलिए आज मक्का के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी सर से. तो सर, सबसे पहले मक्के की अच्छी खेती के लिए हमें भूमि कैसी चयन करनी चाहिए?
1: कि मक्का इस तरह डाइवर्सिफाइड है, मतलब इसकी इतनी विविधता है कि हर एक तरह की मिट्टियों में उपज जाता है. लेकिन इसके लिए विशेष तरह की मिट्टी है जो अभी के लिए होना चाहिए, जो खास करके ये मौसम है, खरीफ है. इस मौसम में जल जमाव की समस्या होती है, तो ऐसी भूमि का चुनाव करें कि जहाँ पर कि जल में, भूमि में जमाव नहीं, पानी का जमाव नहीं हो. और पानी का जमाव होने से पौधे में वृद्धि नहीं होती है. और ख़ास करके उस समय जिस समय ये परागण की अवस्था में होते हैं और मोचा निकलने की अवस्था होती है, उस समय पौधों में जल का जमाव हो जाता है. तो उस समय परागण और मोचा निकलने का जो अंतराल है यह बढ़ जाता है, और जिससे उपज क्षमता बहुत ही प्रभावित हो जाती है. इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए कि भूमि और मिट्टी का ऐसा चुनाव करें जहाँ की पानी का जमाव नहीं हो.
0: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि भूमि का चयन आपको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ की पानी का जमाव ना हो. और इसके बाद सर, मक्के की खरीफ फसल के लिए खेत की तैयारी हमें कब और कैसे करनी चाहिए?
1: देखिए, खेत की तैयारी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है हम गर्मी के दिनों में इसकी निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दें. और गर्मी में करने से ये फ़ायदा होता है कि जब मिट्टी को जोता जाता है तो उसकी नीचे वाली परत ऊपर चली आती है, जिससे जो खरपतवार के जड़ें हैं उसमें बीमारी के जर्म हैं या कीट पतंग हैं वो ऊपर चले आते हैं और उसका नाश हो जाता है. और ये सब पौधे के वृद्धि में लाभदायक होते हैं
0: जी.
1: और मिट्टी जुताई के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई मिट्टी के लिए अच्छी मानी जाती है.
0: तो इस तरीके से आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए, गर्मी से ही आपको निकाई गुड़ाई कर लेनी चाहिए. सर, अब बुआई की बात करते हैं, तो बुआई हमें किस समय और कैसे करनी चाहिए?
1: कि हमारा प्रदेश मक्के के लिए इस तरह मतलब सुटेबल है, अनुकूलित है कि हम यदि प्रतिदिन मक्का बोएं तो प्रतिदिन हम मक्का काट सकते हैं. लेकिन इस मौसम के लिए खास है, खरीफ के लिए, कि इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक करने से उपज अच्छी आती है.
0: 15 जून से 15 जुलाई तक अगर आप करते हैं तो अच्छी उपज आपको मिलेगी इस समय. और सर, मकई फसल उपजाने के लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी इस समय कितनी हो, और बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ कितनी हो?
1: बीज की मात्रा तो हम लोग बोलते हैं कि 8 से 10 किलोग्राम होना चाहिए. यह 8 से 10 किलोग्राम इसलिए होता है कि हम लोग जो ज़्यादातर मक्का बुआई करते हैं वो हाइब्रिड होता है. और हाइब्रिड चूँकि वो मादा जो पौधा है उस पर उत्पन्न होता है, तो उसकी जो साइज है उसका आकार छोटा होता है. यदि छोटे आकार का है मक्का तो उसकी मात्रा कम लगेगी. यदि बड़े आकार की मक्का है तो उसकी बीज ज़्यादा लगेगी. इसीलिए बोलते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये प्रति एकड़ इसकी मात्रा है और इसको बोते हैं हम लोग 60 से 60 पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर, और अभी के सीजन में पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इससे उपज अधिक आती है।
0: इसके साथ ही मकई के बेबी कॉर्न की बात करते हैं, तो इसके लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होगी, और साथ ही सर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए?
1: हाँ, यहाँ पे हम लोग ये समझ लें कि बेबी कॉर्न कोई अलग से मक्का नहीं होता है। बेबी कॉर्न ये सामान्य मक्का है, बट इसके साथ खासियत है कि इसकी तुड़ाई हम लोग उस समय करते हैं जिस समय कि भुट्टे से मोचा निकलने को ही होता है, और इसमें ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं कि जिसमें कि एक पौधे में 3 से 4 भुट्टे तक आते हों। तो इसमें होता है कि पहले भुट्टे को तोड़ लेते हैं तो दूसरा भुट्टा आता है, दूसरे को तोड़ लेते हैं तो तीसरा आता है, और तीसरे को तोड़ लेते हैं तो चौथा आता है। क्योंकि इसमें हम लोग इसको घना लगाते हैं, तो घना लगाते हैं तो इसकी बीज दर जो नॉर्मल मक्का है, साधारण मक्का है, उससे ज़्यादा होती है, और इसकी मात्रा होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है, और इसकी पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी हम लोग 50 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। इसमें होता है कि जो अभी के सीजन में हम मक्के को जो बेबी कॉर्न के रूप में लगाएंगे, ये मात्र 45 से 55 दिन के अंदर हमारा ये कट जाएगा। क्योंकि ये बहुत जल्दी कटता है, तो इसमें यदि हम लोग प्रति एकड़ पौधे की मात्रा अधिक बढ़ा देते हैं तो ये सीधा उपज को प्रभावित करता है।
0: तो सर साथ ही साथ स्वीट कॉर्न के बारे में भी जानकारी दे दें।
1: हाँ, स्वीट कॉर्न मक्के में भुट्टे का उपयोग हम लोग ग्रीन कॉब, उसको बॉईल करके उबाल करके खाने के लिए करते हैं। तो इसमें बीज की मात्रा 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ रखते हैं, और इसकी बुआई 75 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच, कतार से कतार के बीच करते हैं, और पौधे से पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। इसको भी हम लोग हार्वेस्टिंग, कटाई, भुट्टे की तुड़ाई कर लेते हैं जिस समय दाना भर जाता है, पकने के पहले कर लेते हैं, और उसी समय इसकी मार्केटिंग होती है या उसको हम लोग खाने के काम में लाते हैं।
0: तो ये तो बातें हो गई हैं स्वीट कॉर्न की, और साथ ही साथ पॉपकॉर्न के लिए बुआई की कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए?
1: कि पॉपकॉर्न किसान भाई आप लोग समझ रहे होंगे कि जो कि एकदम पूरा लावा हो जाता है, मक्के को भूजते हैं तो पूरा का पूरा लावा होता है, उसको पॉपकॉर्न बोलते हैं। तो आपको अनुभव होगा कि इसके दाने बहुत छोटे होते हैं, तो जिस तरह दाना का साइज होगा उसी हिसाब से बीज दर का निर्धारण होता है। क्योंकि इसका दाना छोटा होता है इसलिए इसकी बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है, और इसको लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर पे बोते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं।
0: तो सर अगर मकई के चारे की बात करें, तो मकई के चारे के लिए बुआई के लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए इसमें?
1: कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि मक्का को हम चारे के रूप में लें, तो चारा का रूप में लेने का मतलब है कि हमको जो बायोमास है मक्के का, यहाँ दाना का प्रोडक्शन नहीं है, मक्के का पौधे का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो उस पर निर्भर करता है कि हमें चारा कितना मिलेगा। तो चारे को हम लोग घना बोते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधा मिल पाए। और चूँकि मक्के में कल्ले नहीं निकलते हैं तो इसीलिए हम लोग जितना बीज डालेंगे उतने ही पौधे बनेंगे। और यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पौधा मिले, तो हम लोग यहाँ पर बीज दर ही बढ़ा देते हैं। और चारे के लिए मक्के का बीज दर हम लोग लगाते हैं 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लगाते हैं, और 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की रखते हैं।
0: तो इस प्रकार से मकई के चारे के लिए बीज की मात्रा सर ने आपको बताई, और सर मकई की बुआई कैसे करें ये भी बता दें किसान भाइयों को।
1: कि मकई की बुआई पंक्ति में करने से एक पौधे को दूसरे पौधे के बीच की दूरी पर्याप्त होती है, जिससे पौधे को उचित मात्रा में नमी, पोषक तत्व, हवा मिल पाता है। तो हम लोग पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं 60 सेंटीमीटर, जो दाने के लिए मक्का उगाते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 25 सेंटीमीटर, और इसकी बुआई करते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम मक्का वैसी जगह बोएंगे जहाँ पानी नहीं लगे, और बुआई के तुरंत बाद हम लोग ये व्यवस्था करते हैं कि कहीं पे हमारे खेत में तो पानी लगने की गुंजाइश तो नहीं है, यदि वैसी है तो हम लोग वहाँ पे जल निकासी का व्यवस्था करते हैं।
0: तो सर जीरो टिलेज के बारे में हमने सुना है कि इसे खेती की जाती है, तो मक्के की खेती में जीरो टिलेज तकनीक क्या है उसके बारे में बताएं सर।
1: जीरो का साधारण अर्थ ही है कि जीरो मीन्स कुछ नहीं, और टिलेज मीन्स जुताई। यदि हम खेत में कुछ भी जुताई ना करें, हम बुआई के लिए खेत की बिल्कुल जुताई ना करें और उसमें लगाएं, तो उसको हम बोलते हैं जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज में होता है, जीरो टिलेज मशीन आती है, उसमें हम लोग खाद और बीज डाल देते हैं, और दोनों अलग अलग गहराई पर गिरता है बीज और खाद, और उसी मशीन से हम लोग बुआई कर देते हैं, तो इसको जीरो टिलेज बोलते हैं
0: जी।
1: लेकिन यहाँ जीरो टिलेज में है कि लगाने के पहले खरपतवार का नियंत्रण जरूरी होता है, उसको कर लेते हैं।
0: तो सर इस मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे हम, जीरो टिलेज मशीन के बारे में।
1: जीरो टिलेज मशीन साधारण ड्रिल की तरह होता है, इसमें टाइन चाकू की तरह होता है, और इसमें खाद और बीज अलग अलग गिरते हैं, और ये ट्रैक्टर चालित होता है।
0: तो इस तरीके से आपने जाना जीरो टिलेज मशीन के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात होता है कि लाभ क्या मिलेगा अगर हम जीरो टिलेज से मकई की खेती कर रहे हैं। तो
1: देखिए, जीरो टिलेज मशीन से बुआई करने से जो हम ईंधन लगाते हैं जुताई करने में, वो ईंधन का बचत हमारा होता है 60 से 70% बच जाता है।

0: और ये आप जानते हैं कि ईंधन जलेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और यदि हम 60-70% ईंधन कम करते हैं तो ये तय है कि हम लोग 60-70% वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कम कम करते हैं, इससे प्रदूषण कम होता है। और जब हम जीरो टिलेज से खेती करते हैं तो इसमें खरपतवार कम उगता है, यदि हम शुरू में नियंत्रित करके लगाते हैं पौधे को, और इसमें नमी की मात्रा बनी रहती है और हमको इसमें पानी की मात्रा भी कम पड़ता देना पड़ता है। और इस विधि से हम 10 से 15 दिन में पहले फसल लगा सकते हैं, जो कि हमारा 10 से 15 दिन खेत की तैयारी में लगता है, वो हमारा यहाँ पे तैयारी में समय नहीं लगता है, उसकी हमें बचत हो जाती है। और साथ साथ ही जो हमारा आर्थिक लाभ है, इसे 2,000 से 2,500 प्रति हेक्टेयर बच जाता है, हमारा लागत कॉस्ट बच जाता है।
1: रीस तकनीक के बारे में सर हम जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती में रीस तकनीक क्या है और इसे बुआई कैसे कर सकते हैं?
0: कि रीज मेड़ हुआ, और मेड़ पर बुआई इस मौसम में खास तौर से बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मेड़ पर यदि हम बुआई करते हैं तो हमारा पौधा जल जमाव, उसके जड़ क्षेत्र में जल का जमाव नहीं होता है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। और इसमें ये फायदा होता है कि यदि हमको पानी भी देना पड़े तो हम एक मेड़ को छोड़ करके दूसरे मेड़ में ही भी पानी दे दें तो हमारा काम चल जाता है, जिससे हमारा पानी की मात्रा, सिंचाई की मात्रा आधी लगती है।
1: तो इस तरीके से सर मक्का की बुआई के बारे में जानना चाहिए, किस दिशा में मक्का की बुआई करें?
0: कि मक्का की बुआई पूरब से पश्चिम की पंक्ति में करना चाहिए, इससे सूर्य का प्रकाश हर एक पौधे को अच्छी तरह मिलता है। और हम जानते हैं कि जो भी पौधे उत्पन्न करते हैं वो जमीन से लेते हैं और सूर्य की गर्मी से लेते हैं, वही उनका उस उत्पाद है। यदि सूर्य की गर्मी पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो उसकी उपज क्षमता अधिक होती है।
1: ज़रूरी होता है कि हम प्रजातियों के बारे में जानें। अगर हम मक्का की बुआई कर रहे हैं सर, तो कौन कौन सी अच्छी प्रजातियाँ होंगी उसकी जानकारी दें।
0: वो मक्का खरीफ के मक्का के लिए हम लोग की एक प्रभेद है जिसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ही विकसित किया है, सबौर शंकर मक्का 1। इसकी उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह 80 से 85 दिन में हो जाता है, क्योंकि इसकी उपज की अवधि बहुत कम लेता है, इसलिए यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए भी अति उपयुक्त है, क्योंकि यह बाढ़ आने के पहले ही कट जाता है। और किसान भाई यदि इसको हम भुट्टे के रूप में लें तो यह 60 दिन में ही इसका भुट्टा तैयार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है।
1: जी सर, मक्का की बुआई, पॉपकॉर्न की अच्छी उपज के लिए इसके लिए कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: पॉपकॉर्न के लिए है VL पॉपकॉर्न, अंबर, पर्ल, जवाहर, ये सब पॉपकॉर्न की उन्नत प्रभेद हैं।
1: और बेबी कॉर्न के लिए?
0: बेबी कॉर्न के लिए जो अच्छी फसल है, अच्छी फसल लेने के लिए HM4, VL, बेबी कॉर्न 1, ये सब उन्नत प्रभेद हैं। इसमें तोड़न की क्षमता 3 से 4 तक होती है, और इसमें जो हरे चारे का जो बेबी कॉर्न का दूसरा उपयोग है कि बेबी कॉर्न को तोड़ने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो फसल बच जाता है तो उसको हरे चारे के रूप में उपयोग करते हैं, इसकी भी उपज क्षमता इसमें अधिक होती है।
1: मीठी मक्का की अगर हम उपज करना चाहते हैं तो इसकी अच्छी उपज के लिए कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: तो मीठी मक्का स्वीट कॉर्न है जिसको हम लोग उबाल कर खाते हैं, तो इसके लिए इसकी उन्नत प्रभेद हैं माधुरी, प्रिया, HSC 1, ये सब इसकी उन्नत प्रभेद हैं।
1: और वहीं अगर चारे की बात करें तो उसके लिए कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
0: देखिए, चारे में हमारा उद्देश्य रहता है कि हमको बायोमास, पौधे की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब बड़े पौधे हों जिससे हमको चारे की मात्रा अधिक हो, तो इसके लिए वैसी प्रभेद चुनी जाती है कि जो कि बहुत लंबी हो और पौधे की मोटाई भी ज़्यादा हो, तो उनमें से आता है, इस कैटेगरी में आता है अफ्रीकन टॉल J1006, प्रताप चेरी 6, ये सब इसकी उन्नत प्रभेद हैं।
1: और अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई कब करनी चाहिए?
0: सिंचाई का सीधा संबंध है वो पौधे, आप लोग देख के किसान भाई खुद जानते होंगे कि पौधा कब पानी मांग रहा है, और आपको लगे कि पौधे को पानी देना है तो सिर्फ खेत को भिगाने का कोशिश करिए, खेत को डुबाने का कोशिश नहीं करिए। होता क्या है, जितनी ज़रूरत पौधे को होगी उतना ही पानी लेगा, और आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो आपका पानी का नुकसान होगा। और यदि आपने मक्के को मेड़ पर बोई हुई है तो एक मेड़ छोड़कर दूसरे मेड़ में पानी दें तो पानी की मात्रा आपको आधी लगेगी। यदि आपने जीरो टिलेज से की हुई है तो वहाँ तो कम मात्रा पानी की लगती है, और इसके अलावा उसमें पानी का संरक्षण भी होता है, तो जिस समय ज़रूरत हो उसी समय डालें। और ख़ास करके जो क्रिटिकल स्टेज है, जो पौधे जिस समय इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मक्के की घुटने की अवस्था होती है, उस समय पानी ज़रूर डालें यदि ज़रूरत हो तो। यदि देखें कि पत्तियां उसकी रोल कर रही हैं, मुड़ रही हैं, सूख रही हैं, तो ये उसको पौधा को पानी मांगने का एक तरीका है, उस समय हम डालें। और दूसरा, जिस समय धनवाली निकलता है, मोचा निकलता है, वो बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है वो पानी का, उस समय यदि हम पानी नहीं डालेंगे तो नर मंजरी है और मोचे का बीच का जो दूरी है, मतलब समय है, वो बढ़ जाएगा
1: जी।
0: नर मंजरी में पराग बनता है और जो भुट्टा निकलता है उसमें सिल्क निकलता है जिससे परागण होता है, तो हम उस समय पानी नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि उस समय पराग ही नहीं बने और परागण नहीं हो तो दाना बनने की जो क्रिया है ये बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।
1: तो सर, अगर कीट पतंगों की हम बात करें तो मक्का पौधे में जो ये कीट पतंगे हैं वो पत्तियों पर धब्बेपन बनाते हैं और साथ ही पत्तियों के साथ साथ पौधे के तने को भी नष्ट कर देते हैं और पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं, तो इसका उपाय क्या है?
0: देखिए, मक्के में जो मुख्यतः कीट लगता है वो तना छेदक कीट है, और ये पत्तियों में ही अंडे देते हैं और जो उसका गाभा है उसी में घुस कर रहता है और उसको खाता है। तना छेदक कीट को, कीट के नियंत्रण के लिए हम लोग फ्यूराडान का 8 से 10 दाने, दानेदार दवा है, इसको किसी बोतल में छेद करके इस दानेदार दवा को रख लेते हैं और प्रति पौधे 8 से 10 दाने डाल देते हैं। और चूंकि ये दवा सिस्टेमिक है, पूरे सिस्टम को जहरीला बना देता है मक्के को, तो उसमें कहीं भी कीट छुपा हुआ हो तो उसकी मौत हो जाती है और हमारा फसल बच जाता है।
1: जी सर, फॉल आर्मी वॉर्म का नियंत्रण कैसे करें?
0: हाँ, ये फॉल आर्मी वॉर्म अभी के समय में बहुतायत पाए जाने वाला कीट है, और जो इसे जो नुकसान है बहुत ज़्यादा नुकसान है। यदि किसान भाई इसको छोड़ दें, 2-3 दिन में ही आपके पूरे खेत में फैल जाएगा। और इसमें जो वयस्क पौधे हैं, इसके उड़ने की क्षमता है, एक रात में 105 किलोमीटर तक भी चला जा सकता है। इतने मतलब ज़्यादा ये खतरनाक हैं। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। कुछ दवा हैं ऐसी जिससे पूरी तरह ये नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए है इमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में हम घोल करके इसको छिड़काव कर दें, तो ये पूरी तरह से कीड़े नष्ट हो जाते हैं और हमारा फसल बच जाता है।
1: तो श्रोताओं, यहाँ पर आपने खरीफ में मक्का की उन्नत खेती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, तो आशा करते हैं कि इसे ज़रूर लाभ मिलेगा आपको मक्का की अगर आप खेती कर रहे हैं। तो अगले दिन एक नए विषय के साथ फिर हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखिएगा 90.8 FM ग्रीन पर। नमस्कार। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच

0: ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
1: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग 6 इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा।
0: और तुमने वीडियो देखा?
1: देखा। सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
2: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
1: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है।
0: तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
1: पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
0: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
2: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
0: देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
1: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
0: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसर

0: क्षेत्रों में है जिनकी रोकथाम संभव है। एचपीवी संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूँ टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
0: श्रोताओं जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
1: लो फिर मैसेज आया, पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने? कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
1: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
1: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
0: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
1: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए। यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
0: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
3: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
1: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
3: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं तथ्य देखो।
1: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
0: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
3: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
1: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
3: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
1: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
0: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
3: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
1: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
0: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
3: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूँ?
1: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूँ, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
0: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
1: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई हैं। अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
3: बस यही चाहिए। सवाल रहे, जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
0: शुक्रिया टीकन भाभी आपका, और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
1: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
2: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
0: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें, और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
2: हेलो नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे अनु और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, वैसे मार्च के बाद यूँ कहें तो आम के जो मंज़र हैं वो या फिर फरवरी के बाद भी आप कह सकते हैं, फरवरी में भी कह सकते हैं कि आम के मंज़र हमें दिखने लगते हैं। और इसी समय खास देखभाल जो हमारे आम के बागों की है वो हमारे किसान भाई शुरू कर देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा उन्हें ध्यान रखना होता है कि आम के इन कीटों से उन्हें कैसे बचाया जाए, तभी जो फल है वो हमें प्राप्त हो पाएंगे। तो इस विषय को लेकर जी हाँ आज हम बात करेंगे आम में लगने वाले कीटों के बारे में और उनका नियंत्रण हम कैसे करें, इसके बारे में सारी जानकारी आज हमें मिलेगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कलमेश, और मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट DKAC किशनगंज से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को उन कीटों के बारे में बता दें जो प्रायः देखे जाते हैं आम के जो बागवान है उसमें देखे जाते हैं, आम के फलों पर देखे जाते हैं, जिसकी वजह से आम जो है बर्बाद हो जाते हैं, तो उनके बारे में बताएं।
3: सारे किसानों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आजकल जो है आम का सीजन शुरू हो गया है, और जैसे कि हम जान रहे भागलपुर के आसपास के अंदर भी और इवन भागलपुर पुणे इस हर जगह पे जो है आम का बगान बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, और इसके अंदर जो है आप देखेंगे 4-5 कीट जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे पहले आप यदि देखेंगे तो एक मंजर के ऊपर जो एक कीट लगता है उसको कहते हैं हम हॉपर।
2: हॉपर
3: जी। और उसके बाद एक आता है हमारा फल मक्की, जो देर से अभी जो मंजर स्टेज में आता है वो हॉपर है। लेटर स्टेज में जब आपका फल लगने लगते हैं उस समय आपका एक फल मक्की भी आता है, और उसी समय जो है या उसकी बीच में मतलब जब छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं आम के जो फल होते हैं उस समय जो एक आता है
2: मिलीबग, जिसे कहते हैं जी
3: दहिया कीट भी कहते हैं, मिलीबग कहते हैं उसको, वो भी एक बड़ा इस रीजन में आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक और कीट जो है आपका स्टेम बोरर है, थोड़ा सा पुराने जो पेड़ जहाँ पे है जिसके अंदर ये कीट जो है आपको देखने को ज़्यादा मिल गया, क्योंकि पूरा पेड़ को ही नुकसान पहुँचाता है।
2: अच्छा,
3: तो इनके अंदर जो हम देखेंगे पहले सबसे पहले जो अभी आम का जो मंजर के ऊपर जो है आप देखेंगे
2: मंजर के समय में जो कीट लगते हैं,
3: मंजर के समय में जो कीट लगते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है एक हॉपर है। ये क्या करता है जी, मैंगो मिली मिल,
2: तो मैंगो हॉपर ये दिखने में कैसा होता है उसके बारे में
3: दिखने में आप देखिए ये कीट जो है आपको बहुत ही छोटे छोटे कीट है, जैसे कि मच्छर टाइप का लगता है, छोटा छोटा मच्छर से भी छोटा लगता है, कभी कभी देखने को दूर से आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, नजदीक में आपको देखना पड़ेगा। और ये पूरा मंजर के ऊपर बैठ के क्या करते हैं, रस को चूसते हैं, रस को चूसने वाले कीट है। चूस चूस के क्या करेंगे उसके अंदर से आधा अपना खुद यूटिलाइज कर लेंगे, फी लेंगे, और उसके बाद आधा जो है थोड़ा सा ये अपना एज ए यूरिनेज कर मतलब पेशाब करके निकाल देते हैं, जिसके चलते आप देखेंगे आम के पेड़ के मंजर के आसपास देखेंगे तो बहुत सारा चींटी भी आपको देखने को मिलता है। चींटी मिलती है इसका मतलब है कि ये कीट जो है आपका इधर
2: इसका प्रकोप
3: इस पेड़ के ऊपर आसपास है। तो उस समय क्या होगा, चींटी क्या करती है, चींटी इसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ले जाने के लिए मदद करती है, और इंटर्न ये कीट क्या करता है, ये कीट जो उसको शुगरी सिक्रेशन को यूरिनेट मतलब पेशाब करके जो है वो देने से उसके अंदर क्या है शुगर रहता है, शक्कर रहता है, तो वो चींटी को भी काम आ जाती है, इसलिए चींटी जो है इसके आगे पीछे घूमती रही, दोनों के अंदर जो मित्रता है एक तरीके से,
2: मतलब एक तरीके से देखा जाए कि हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं अगर चींटी किसी पेड़ के पास आसपास दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये कीट आपके बागों में है अभी और आपके फल पर लग सकते हैं।
3: इधर मैं थोड़ा सा ये बताऊं मंजर के आसपास यदि आपको ज्यादा दिखेंगे जी तो उस समय के आपको आसानी से इसको पहचान सकते हैं, बहुत ही छोटा सा कीट है, ब्लैक कलर का होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे तो इवन काला काला होने लगता है, पत्ती भी काला काला जब ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो उस समय पत्ती भी थोड़ा सा काले रंग के होने शुरू हो जाते हैं।
2: तो ये तो बात हुई हॉपर की, और उसके बाद आपने एक बताया था डॉक्टर साहब
3: तो इसके नियंत्रण भी मैं इसी समय
2: नियंत्रण
3: ताकि जो इसको पूरा कर लेते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में इमिडाक्लोप्रिड करके एक दवा मिलता है,
2: अच्छा,
3: जिसको आपको मंजर आने से 15 दिन पहले और मंजर आने के बाद 15 दिन, मतलब 15 एक बार फर्स्ट आज मान लीजिए आज के बाद 15 दिन के बाद फिर से एक दो स्प्रे यदि करते हैं, वो भी 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के इसको देते हैं, तो इसको बहुत हद तक जो है हम लोग कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है और ये जो है आप कर सकते हैं, दो बार करना पड़ेगा आपको,
2: 15 दिन पहले मंजर के, 15 दिन पहले आने के और 15 दिन बाद
3: जी, उस समय वो इसको आसानी से आप बहुत हद तक कर सकते हैं, ताकि जो है यदि इसको उस समय नहीं कर पाते तो बहुत सारा फल जो है छोटा छोटा लगने से पहले ही पूरा जो है नीचे जड़ जाएगा
2: जी। उसके बाद एक और कीट आप
3: जी, उसके बाद जो है आप दूसरा कीट आप देखेंगे, एक तो स्टेम बोरर की बात मैं कह रहा था, स्टेम बोरर का एक स्टेम बोरर मतलब जो पूरा जो ट्रंक होता है उसका जो पेड़
2: का
3: जो, हाँ, तो उसको जो है उसके अंदर जो बार्क जो कहते हैं हम, बाहर से जो बार्क कहते हैं, बार्क के अंदर बैठ के खाता रहता है, आपको बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत बार, तो ये बाहर अंदर बैठ के खाता रहता है और पूरा छेद करते हुए एक गुफा बना लेता है अंदर,
2: खोखला
3: जी, खोखला बनाते चलेगा और उसी के अंदर जो है, और एक खास करके जो पुराना जितना पेड़ होता है बागान के अंदर जो आप देखेंगे जितना भी पुराना पेड़ होता है उसके अंदर इसका प्रकोप जो ज्यादातर देखने को मिलता है, नए पेड़ के अंदर ये उतना ज्यादा
2: नहीं
3: करता है, बट आप उस तरीके से दिखता है तो आपको उस समय क्या करना है, उसको बार को हटा के आप पर्टिकुलरली वो कीट जो है आपको दिखाई पड़ता है हटाने के बाद, तो उसको किल करना पड़ेगा मैनुअली।
2: अच्छा
3: जी, तो उस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो कुछ क्योंकि ये अंदर रहता है तो आप बाहर से स्प्रे करेंगे तो भी काम नहीं होगा,
2: नहीं करेगा जब तक वो अंदर तक ना जाए।
3: और वैसे ज्यादा पुराना है तो मेन है कि जो है हम लोग बहुत बार रेकमेंड करते हैं कि ये वाला पेड़ को आप हटा दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है उससे दूसरे पेड़ को भी ज्यादा नुकसान होता है, हो जाता है, उसी को रिप्लेस करके आप नया पेड़ लगाएंगे तो वहाँ पे तो वो अच्छा तरह ग्रो हो पाएगा
2: जी।
3: जो तीसरा हमारा मेन इसके अंदर कीट आता है उसको कहते हैं हम लोग पल मक्खी,
2: फल मक्खी जी,
3: पल मक्खी जो है आपको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, तो ये जो है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है जो कि बहुत सारा सब्जियों के अंदर भी आता है और ये फल के अंदर भी आते हैं।
2: अच्छा,
3: तो ये कीट क्या करते हैं, ये भी एक तरीके से इसके अंदर जो है जैसे ये अंडा जो इसका स्टेज होता है, ये जहाँ पे सड़ने वाले आम होते हैं या सड़ते हुए जो जहाँ पे मान लीजिए पेड़ के ऊपर से आम नीचे गिर गया, गिरने के बाद हम लोग उसको उठा के मतलब ये नहीं करते हैं, वहीं पे पड़ा रहता है,
2: हाँ।
3: तो जैसे ही वो उसके अंदर क्या होता है, ये इसके लिए बहुत अच्छा फूड है जो फल मक्खी के लिए, ये सबसे ज्यादा और जो है उसके अंदर जो क्या होता है सड़ते हुए और इसको जो है ज्यादा अच्छा लगता है,
2: सड़े हुए फल
3: जो और ज्यादा अच्छा लगता है इस कीट को, जैसे ये इस तरीके से का मिलता है तो उसके अंदर जाके अंडा दे देते हैं, जैसे अंडा
2: मल्टीप्लाई होते जाते
3: हैं, हाँ जी, उसके अंदर एक और इवन ये अच्छा फ्रेश फ्रूट्स को भी ये अंडा दे देते हैं, उसके अंदर भी डैमेज करते हैं, और इनको थोड़ा सा सड़ते हुए मिल गया तो और ज्यादा इनको फेवरेबल है एक तरीके से, ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, तो उस तरीके से क्या होगा, ये इनका थोड़ा सा वो भी पोस्टर जो है ना बहुत ज्यादा शार्प रहता है, ये बहुत ज्यादा तेज जो है डैमेज करके फल के अंदर ये करते हैं, उसके अंदर क्या होगा तुरंत जो है बाहर का इन्फेक्शन जो आ जाता है, इन्फेक्शन आने से क्या होगा वो जल्दी जल्दी सड़ना शुरू करेगा, सड़ना शुरू हो गया तो इसके अंदर जो एक छोटा सा पिल्लू रहता है आपने देखा होगा बहुत बार जो है, जब भी आप आम काट के देखते हैं काते हुए तो उसके अंदर एक छोटा सा पिल्लू टाइप का आपको दिखाई पड़ता है ऊपर नीचे करता रहता है, तो ये इसी फल मक्खी का ही कीट है जो लार्वल स्टेज कहते हैं हम लोग उसको, तो ये इसके अंदर रहता है, तो उसको जो है आप कुछ दिन इसके अंदर 5 stages होते हैं, 5 जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप जो है फल से नीचे गिर जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, इसका प्यूपल स्टेज जो है मिट्टी के अंदर रहता है, तो इसीलिए हम लोग बहुत बार रेकमेंड करते हैं इसको नियंत्रण के अंदर, तो पेड़ के नीचे थोड़ा सा बीच बीच में आपको हल्का सा मिट्टी को खोदना पड़ेगा, ताकि जो है जितने भी ये प्यूपा नीचे गिरा हुआ है या मिट्टी के अंदर है तो वो जो है एक्सपोज हो जाए सनलाइट को या कोई बर्ड्स को, ताकि वो उसी समय डैमेज को मतलब उसको डैमेज कर सके
2: खाली या फिर
3: जी। उसके बाद जैसे ही बड़ा होके जब मक्की आ जाती है फल मक्की, ये जो है फिर अलग अलग फ्रूट के ऊपर ये जो है डैमेज करते करते करते पूरा बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है सारे फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसे भी कीट है, इस कीट के चलते हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट भी जो है निर्भर है, मतलब इस फ्रूट फल मक्खी चलते हमारा बहुत सारा आम जो है दूसरे देश में जाने से भी रोका जाता है,
2: मतलब ये बर्बाद कर देते हैं जिस वजह से
3: इतना बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये जो है कीट दूसरे देश में कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब उनके यहाँ है नहीं तो इसको आने से रोक देते हैं, हमको ये आपका ये आम नहीं चाहिए, बहुत बार ऐसे केसेस हुआ है हमारे आम गया है वहाँ से वापस भी आया है या नॉन कम्प्लायंस के जरिए, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही कीट एक कीट आपको देखने को मिलता है वो वहाँ से इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो है ये कीट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको रोकना जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसको नियंत्रण के लिए भी मैं एक दो चीज़, जैसे एक पता है वो मिट्टी को थोड़ा सा नीचे खोदना एक तो मेथड है, दूसरा मेथड जो जितने भी आपका आम गिर जाते हैं नीचे उनको हम कोशिश करें कि जो है जितना भी उनको है तो निकाल निकाल के एक जगह पे इकट्ठा करके उसको एक गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर उसको बंद कर दे, ताकि जो है इसको
2: सड़े हुए आम सड़े, ना ऊपर
3: जितने भी नीचे मान लीजिए ऊपर से नीचे गिर गया तो एक दो दिन के बाद तो सड़ना
2: तय है।
3: तो मेन है कि आप जितने भी नीचे गिरा हुआ है वो सारे आम को जो है निकाल के एक जगह पे मिट्टी के अंदर उसको गड्ढा खोद के गाड़ दें, तो उससे क्या होगा आपका बहुत हद तक भी ये कीट जो है इसको आहार नहीं तुरंत आहार मतलब फूड वाला नहीं मिलेगा, जिससे भी थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। और आजकल बहुत सारा फेरोमोन ट्रैप्स भी है, अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं इसको नियंत्रण के लिए
2: जी।
3: और इसके अलावा कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स है जैसे कि डाइमिथोएट है और आपका इमिडाक्लोप्रिड भी इसके अंदर काम करता है, डाइमिथोएट है, इसको भी आप लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी के अंदर डाल के छिड़काव करने से बहुत हद तक इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं
2: जी। सर एक और चौथे किस्म के कीट के बारे में आपने बताया था,
3: एक जो है मीली बग एक करके आता है, दहिया कीट भी कहते हैं इसको। ये कीट जो है अभी आपका मान लीजिए जैसे कि मंजर आने के स्टेज और अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में ही ये कीट क्या करता है, मिट्टी के अंदर से रहता है बाजू में वीड मतलब खरपतवार के अंदर ये रहता है जगह जगह पे। तो जैसे ही आम के अंदर थोड़ा सा फल लगने लगते हैं
2: अच्छा,
3: तो ये कीट क्या करता है धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है अभी जैसे तापमान बढ़ेगा
2: हाँ।
3: तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे टहलते टहलते जमीन के ऊपर टहलते टहलते टहलते पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। ये नीचे से ही आता है, ऊपर कहीं नहीं रहता है, ना ही ये उड़ पाता है।
2: अच्छा।
3: ये नीचे जमीन से चढ़ते चढ़ते चढ़ते पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा,
2: चींटियों की तरह।
3: जी चींटियों की तरह चढ़ते चढ़ते और ये ऊपर जाके पूरा जहाँ पे जो नरम पत्ती है नरम ये होता है जो पौधा का पोर्शन होता है उस जगह पे जाके ये भी रस को चूसने लग जाते हैं। ये रस को चूसने जैसे लग जाते हैं बहुत सारा पल जो लग रहे होते हैं या अभी भी लगे हुए हैं वो सब जो अपने आप गिरने लग जाते हैं, पूरा आपका नीचे गिरने लगते हैं। ये इस तरीके से आपको कीट जो नुकसान पहुंचाता है
2: जी।
3: तो इसको जो आपको देखेंगे तो आपको बहुत दूर दूर से पता चल जाएगा कि सफेद कलर का पूरा जो इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग कहते हैं हम लोग इसको, पूरा एक तरीके से सफेद कलर का कपड़ा पहना दिया इस कीट के ऊपर, तो उस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। और ये पूरा ग्रुप में ही रहता है, बहुत ज्यादा जो है आपको झुंड में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कीट जो इस तरीके से रस चूस के बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। ये कीट जो है हमारे यहाँ इस जगह पे भी बहुत ज्यादा हम लोग पाए गए हैं बहुत बार। इसको रोकने के लिए हम लोग बहुत बार कहते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने के लिए, डाइमिथोएट जैसे बताया वो भी इसके ऊपर काम करता है। इसके ऊपर बेस्ट एक तरीका हम लोग एक और देखे हैं, ट्रंक के ऊपर जो है स्टेम के ऊपर जो है हम लोग एल्यूमिनियम फाइल को एक गोल करके लगा देते हैं ताकि जितने भी नीचे से इसके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हो कीट वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे, ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी होने से क्या होगा वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा
2: जी।
3: तो इसको इस तरीके से आपको सारे पेड़ के अंदर जहाँ जहाँ आपको ये देखने को मिलता है इस तरीके का कीट, तो आप उस पेड़ का जो ट्रंक होता है ट्रंक के ऊपर पूरा गोल करके एक एल्यूमिनियम फाइल आता है तो एल्यूमिनियम फाइल को आप थोड़ा सा उस पेड़ के ऊपर लगा देंगे, या नहीं तो आपको बहुत बार ये भी हो सकता है ग्रीस जो मिलता है जो गाड़ियों में लगती है तो उस ग्रीस को भी आप लगा सकते हैं, एक पूरा 3 या 4 cm का एक जो है बड़ा पूरा गोल करके लगा देंगे, तो जब भी ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करेगा उस ग्रीस के अंदर वो फंस जाएगा, उसका पाँव जो है उस ग्रीस के अंदर फंस जाएगा तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। इस तरीके से इस कीट को हम लोग आसानी से रोक सकते हैं
2: जी। तो श्रोताओं हमारे किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने आपको चार तरह के इन कीटों के बारे में जो प्रमुख कीट जो लगते हैं आम के फलों पर मंजर पर, तो अलग अलग स्टेज है इन कीटों का लगने का और उनके बारे में कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं वो भी बताया इन्होंने, साथ ही आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उनकी भी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दिया। और आशा करते हैं कि अभी इस मौसम में इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन
1: FM ग्रीन
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई कटाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करे जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती हैं तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ जरूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज्यादा जरूरी हैं और कौन से काम कम जरूरी हैं, जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगी, आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये जरूरी है, तो कुछ जो जरूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, इससे आपका वक्त जाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकाले। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना जरूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटें। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत है कि घर के लोग समझें, खास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए, किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सके। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, सास ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें, और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझें और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए जरूरी है। क्रेच सुविधा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र, या फिर जिसे कि आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहाँ की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को, जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं, उन्हें रख सकती हैं। वहाँ उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं। और जब आप जिस संस्था में काम कर रही हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं, तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गई होंगी कि बिल्कुल परेशान होंगी, तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज़ का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दें। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कर आती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं, तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ अनु। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान की बात करते हैं हम। जी हाँ, धान में हम बहुत सारी बातें आपको बताते हैं कि कैसे बुआई करनी चाहिए, कौन सा मेथड आपके लिए सही होगा, DSR के बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन आज कुछ उर्वरक की बात करेंगे हम। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान में जैविक उर्वरक का महत्व। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर AK झा, मृदा वैज्ञानिक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप जैव उर्वरक के बारे में बता दें कि ये क्या है।
1: देखिए, जैसे नाम बताता है, जैव उर्वरक यानी जीवित पदार्थ जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सके उसको आप जैव उर्वरक कहते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं या एजोटोबैक्टर की बात करते हैं या एजोस्पर्म की बात करते हैं या अजोला की बात करते हैं या BGA की बात करते हैं, ये सब के सब जितने हैं सब के सब जीवित पदार्थ हैं और उर्वरक की तरह पोषक तत्व इनको देने का काम करते हैं, इसीलिए इसको जैव उर्वरक कहा जाता है।
0: जी जी जी, मतलब पोषक तत्व देते हैं। और साथ ही साथ ये जो जैव उर्वरक हैं, क्या धान में इसका प्रयोग किया जाता है या फिर किया जाता है तो किन किन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है?
1: अभी जैसे मैंने नाम बताया कि धान के केस में यदि आप देखें तो धान के केस में आप जो प्रयोग करते हैं एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके नाइट्रोजन प्रदायक की बात करें जो नाइट्रोजन देता है तो उसमें आप एजोस्पर्म प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ जगहों पर एजोटोबैक्टर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन एजोटोबैक्टर से बढ़िया आपको एजोस्पर्म होगा तो एजोस्पर्म का प्रयोग कर सकते हैं। फॉस्फोरस यदि आपको प्रदान करना है तो आप PSB का प्रयोग कर सकते हैं। ये बीज में जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे तो सीडलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके अतिरिक्त नील हरित शैवाल ये भी 30-40 kg नाइट्रोजन की बचत करता है, तो नील हरित शैवाल का भी प्रयोग धान के केस में किया जाता है। और एक जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिस पर करता है, अजोला बड़ा ही फायदे की चीज है, तो ये अजोला का भी प्रयोग आप इस खेती में कर सकते हैं।
0: जी, अजोला का प्रयोग इस खेती में किया जाता है तो क्या इससे क्या फायदा मिलेगा धान की खेती में सर?
1: देखिए, अभी तक लोग ये कहते थे कि अजोला के प्रयोग से नाइट्रोजन की बचत होती है 30-40 kg, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शोध करके देखा कि नाइट्रोजन ही नहीं, फॉस्फोरस भी, पोटास भी, ये सब की बचत करता है। क्योंकि इसमें देखिए तो नाइट्रोजन इसमें 4.5-5% के बीच में नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास भी इसमें 2.5% से लेकर 4.5% तक इसमें पोटास भी पाया जाता है, 1% के आसपास इसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो इसका यदि आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या डुअल क्रॉपिंग के रूप में करते हैं तो जो कुछ भी आपने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास धान को दिया उसकी मात्रा आधी कर दीजिए, और आधी मात्रा कर देने के बावजूद भी आपके उपज में कोई कमी नहीं होगी। यदि मान लीजिए 5-6 हजार रुपये का खर्चा करते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर, यानी 2-3 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर आपको बचत हो जाता है यदि आप अजोला का प्रयोग करते हैं तो ये फायदा है।
0: ठीक है, मतलब जो है आय जो है उसमें बचत हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उसमें बचत हो जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और अजोला का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये बहुत ज़रूरी बात है जानना।
1: अभी आपने कहा कि हमें बचत हो जाता है, बचत ही नहीं होता है, आज ज़रूरत है टिकाऊ खेती की।
0: बिल्कुल,
1: टिकाऊ खेती के लिए उसमें कार्बन को देने के काम की ज़रूरत है। और यह जो पौधा है ये हरा पौधा है, और हरा पौधा है तो ये वातावरण से कार्बन को लेकर के आपकी मिट्टी में डालता है, क्योंकि कार्बन बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है, या आपकी मिट्टी में होना चाहिए 0.75% के ऊपर, लेकिन बहुत सारी मिट्टियों में देखेंगे तो कहीं 2%, 0.2%, 0.3%, 0.4% ऐसे ऐसे है। जबकि 0.5% के नीचे यदि जैविक कार्बन है आपकी मिट्टी में तो उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि यह निम्न है, लो है। 0.5 से 0.75% के बीच में है तो इसको कहते हैं कि मध्यम है, और 0.75% के ऊपर है तो कहते हैं उच्च है। और ये कार्बन जो है आपके सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि भौतिक गुण का क्या मतलब, यानी कि जल धारण क्षमता कितनी बढ़िया है, वायु संचार कितना बढ़िया हो रहा है, तो ये सारे आते हैं आपके भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में जो हमारा पोषक तत्व लॉस कर जा रहा है तो वह पोषक तत्व तो हमारा लॉस कैसे नहीं करे, वह कैसे हमारे मिट्टी में बचा हुआ रहे। जैसे आप जिंक ही यूज करते हैं, वह आप देखते हैं कि बह के चला जाता है, वो लीच हो जाता है या परकुलेट हो जाता है, वह कैसे नहीं हो, उसका कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे हो, तो ये सारी चीज़ें कार्बन के ऊपर निर्भर करता है। और तीसरी बात हमने कहा जैविक गुण। तो जैविक गुण का मतलब होता है कि उसमें जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या कितनी अच्छी है। अब आज आपके मिट्टी में बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिस सबकी संख्या घटती जा रही है। यदि उसमें कार्बन है तो उसकी संख्या ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता बढ़ाए, और साथ ही साथ जो उस जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके लिए खाने का भी काम वो देगा, तो इसीलिए उसकी संख्या अच्छी होगी। तो ऐसी स्थिति में वह आपको ज्यादा बढ़िया होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन को बढ़ाइए यदि टिकाऊ खेती चाहते हैं, क्योंकि हमको इसी पीढ़ी की नहीं सोचना, आने वाली पीढ़ी को भी भोजन मुहैया कर सके, हमारी खेती टिकाऊ बनी रहे, यह ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए कार्बन बढ़ाना है, और कार्बन बढ़ाने में आपको ये जो हमने अजोला का नाम लिया ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, और जितना भी हरा पदार्थ है ये वायुमंडल से कार्बन को लेकर के ट्रैप करके ये सॉइल में डालने का काम करता है, तो इसीलिए ये काफी फायदेमंद चीज है। तो इसका प्रयोग तो किसान भाई जरूर करें। दूसरा आपका क्या प्रश्न था कि इसका प्रयोग हम कैसे करें?
0: कैसे करें?
1: तो इसका प्रयोग करने की बात ऐसा है कि अजोला का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो दो ढंग से धान के खेत में कर सकते हैं। एक तो हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा डुअल क्रॉपिंग के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के रूप में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना लीजिए, और 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना करके, खास करके जहां पर पानी आपका रुकता है, बरसात के दिनों में तो वैसे भी खेत में पानी रहता है, कोई समस्या नहीं है। तो जब भी 3-4 हफ्ते के बाद आपको धान की रुपाई करनी है तो उसके पहले ही आप इसको क्यारी बना लीजिए, और क्यारी बना करके आप पानी है ही खेत में या बोर्डिंग के पास कीजिए, जहां पर पानी यदि घटने लगे तो आप बोर्डिंग से पानी दे सकें। वो क्यारी बना करके उसमें आप 5 से 8 किलो गोबर को 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए। घोल करके उस गोबर के घोल को आप पूरे क्यारी में छिड़क दीजिए, और छिड़क करके उसमें आप कुछ अजोला डाल दीजिए, 4-5 किलो आप अजोला डाल दीजिए। वह अजोला जो छोटे क्यारी में हम बनाए हैं, पैदा किए हैं, वो ले जा करके वहां पर डाल देंगे। अब क्या है कि 3 हफ्ते तक आपको पानी का स्तर 2-4 इंची बरकरार रखना पड़ेगा। वह 2-4 इंच पानी उसमें यदि बरकरार है, और SSP ये हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 से 2.5 ग्राम SSP प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से यह छिड़कते रहिए, जिसे बढ़वार और तेजी से हो, ये आप कर देंगे तो क्या होगा कि 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि पूरा आपका भर जाएगा, और अजोला कम से कम एक क्यारी से लगभग 1 क्विंटल तो आपको अजोला मिल ही जाएगा, जो आपने 4-5 किलो डाला था, क्योंकि अजोला बढ़ता बड़ा तेजी से है, 2 से 5 दिन में ये अपने बायोमास को दूना कर लेता है, तो आपको तेजी से बढ़ जाएगा। अब उस अजोला को आप जैसे हरी खाद ढेंचा पलटते हैं उसी ढंग से आप खेत की जुताई के समय मिला दीजिए, तो यह तो एक तरीका है, लेकिन इसमें मात्रा ज्यादा चाहिए, इसमें 10 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा होती है। और दूसरी जो बात हमने कहा डुअल क्रॉपिंग, मान लीजिए उतना अजोला आपके पास नहीं है तो धान को रोप दीजिए, रोप देने के बाद जब वो 1 हफ्ते का हो गया उसी समय आप सिर्फ 1 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो अजोला को डाल दीजिए, और धान में पानी वैसे भी चाहिए, धान में पानी आप 2-4 इंच पानी आप मेंटेन रखिए, और जो आप फास्फोरस डालते हैं, जो भी उस फसल के लिए डालते हैं, उसमें कम से कम 10-15-20 किलो ज्यादा SSP पर हेक्टेयर के हिसाब से आप बढ़ा करके डाल दीजिए। अब क्या होगा कि ये 3 हफ्ते में पूरा आपके खेत में कवर कर लेगा, उसके बाद पानी को थोड़ा कम कर दीजिए, या अपने आप यह जो है क्या कहते हैं आपको मिट्टी पकड़ लेगा और मिट्टी में चला जाएगा। और इसकी खासियत क्या है अजोला का कि यह मिनरलाइजेशन बड़ा तेजी से होता है, इसका खनिजन बहुत तेजी से होगा, तो उसमें जो कुछ उस अजोला में पोषक तत्व है वह पौधे को मिलने लगेगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास आप डालते हैं किसी फसल में,

0: 2,500 रुपया प्रति हेक्टेयर की बचत भी होगी और मृदा का सेहत भी ठीक ठाक होगा, तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका फायदा ये
1: जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना जैव उर्वरक के बारे में, साथ ही अजोला कैसे फायदा दिलाता है धान की खेती में, ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आप जैव उर्वरक जितना ज्यादा हो सके आप उपयोग करें, और अजोला भी बिल्कुल फायदेमंद है आपकी खेती के लिए।
0: एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी बात दिमाग में आ गई। हमने कहा था कि यदि आप जो स्पाइरलम यूज करना चाहते हैं या पीएसबी यूज करना चाहते हैं, तो किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूं कि ये यदि प्रयोग करना चाहे तो वो कैसे प्रयोग करें। तो उसमें देखिए सीधी सी बात है, जो स्पाइरलम आप सॉइल में भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं, लेकिन उसमें यदि मिलाते हैं तो आपकी ज्यादा मात्रा उसमें डालनी पड़ती है। तो आपको सीधा करना क्या है कि आप ये जो मान लीजिए आपका कोई, क्योंकि उसमें भाई बिचड़ा बहुत वो करते हैं, बिहन लगाते हैं ना आप, तो उसमें जो है आप एक केजी मान लीजिए आपने लिया ये जो स्पाइरलम या पीएसबी ही, अब उसको आप डुबा दीजिए और डुबा करके उसके जड़ को डुबा रहने दीजिए 10-15 मिनट, और 10-15 मिनट के बाद प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि कोई किसान भाई पीएसबी प्रयोग करना चाह रहे हैं या जो स्पाइरलम भी प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसमें सीक्वेंस ये होगा कि पहले आप पीएसबी से उपचारित करें, बाद में आप जो स्पाइरलम से करें, ये चीज उसका तरीका होगा। और यदि आप बीजीए का प्रयोग करते हैं तो आपको 10 केजी के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीजीए का जो पपड़ी टाइप का वो आता है वह आपको प्रयोग करना पड़ता है। तो ये मैं इसकी भी मात्रा की बात थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता था
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: CIET NCERT presents ऑडियो बुक कौशल बोध, टेक्स्ट बुक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर ग्रेड 7,
4: पेज नंबर 25, प्रोजेक्ट 2, स्कूल हैबिटेट गार्डन। There's a QR code given on the top right hand side of the page for additional resources related to this chapter. This project will help you learn about providing suitable conditions for groups of animals to live and thrive. You will create a habitat garden in your school to attract different groups of animals, birds, mammals, insects, reptiles, etc., by providing them with shelter, water, food, and space. As part of the project, you will be able to identify needs of animals, design and develop the habitat garden, make provisions for the needs of animals, maintain the habitat garden, observe the animals in the habitat garden. Figure 2.1 is given, creating a habitat for animals in the school. Some children are creating a habitat garden in this picture. Some of them are taking notes. Some of them are planting trees. Some are looking at birds and insects. Page 26. Many animals coexist peacefully with humans. Figure 2.1, 2.2, and 2.3. Beyond domestic and farm animals, several other animals share our surroundings, including crows, sparrows, pigeons, owls, kites, bats, monkeys, langurs, squirrels, mice, rats, butterflies, and moths. They lead their busy lives alongside us, adapting to the human-dominated environment. Have you ever wondered where these animals lived before towns and cities replaced farmlands and forests? How many of them have managed to adapt to the changes brought about by you?

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके

से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम ग्रीन और मैं हूं ईश्वर चंद्र। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिससे कि सभी किसान भाइयों का सरोकार जरूर रहता है। जी हां, विषय है खेती की मशीनों का सही इस्तेमाल एवं देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि महाविद्यालय कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा एफएम ग्रीन में।
1: थैंक यू।
0: तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इनको हर सीजन में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, खेती की मशीनों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं एवं इस्तेमाल के उपरांत तो उनका देखभाल कैसे कर रहे हैं। तो इस विषय पर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि मशीनों का उपयोग करने के बाद उसे जैसे तैसे किसान बंधु छोड़ देते हैं। खेती में उपयोग होने वाले मशीनों को जबकि ज़्यादा देखभाल की जगह पानी से लगा ही रहता है। चूँकि इनमें अधिकतर पुर्जे घूमने वाले होते हैं, अतः इनका थोड़े थोड़े दिनों में साफ सफाई करते रहना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई मशीनों को किराए पर भी चलाते हैं, अतः थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल और ध्यान देने पर इन मशीनों को उम्र भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए ज़रूरी है कि उनके पास जो भी मशीन है या जो भी वो मशीन किराए पर लेके आए हैं उसका सही इस्तेमाल करें, उसको ज़रूरत के हिसाब से उसका देखभाल करें। कुछ प्रमुख मशीनों जिसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देना चाहूँगा, उनमें हैं जैसे कल्टीवेटर है, हैरो है, रोटावेटर है, जीरो टिल फर्डी, सीड ड्रिल है, नैपसैक स्प्रेयर है और रीपर है। इन सभी मशीनों के बारे में मैं आज जानकारी देना चाहूँगा।
0: जी, तो किसान भाइयों, आपको इन मशीनों के बारे में जानकारी तो दी ही जाएगी, साथ ही इसके इस्तेमाल के उपरांत इनके रख रखाव और इसमें जो मेंटेनेंस का जो एक पार्ट है वो आपको बताया जाएगा ताकि आप खुद से इसको मेंटेन कर पाएं। तो सबसे पहला जो हम मशीन की बात कर रहे हैं वो कल्टीवेटर है। डॉक्टर साहब, इस कल्टीवेटर का रख रखाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इनमें किन किन सावधानियों की ज़रूरत होती है, ये ज़रूर हमारे किसान भाई को बताएँ।
1: किसान भाइयों, कल्टीवेटर में आमतौर से सभी नट और बोल्ट को जांच करना चाहिए जिससे कि वे हमेशा टाइट रहें। जब भी आप काम करने जाएं तो उस मशीन की सभी नट और बोल्ट को जांच कर लें। सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हर एक दिन कार्य प्रारंभ करने से पहले ही इसकी जांच कर लें। दूसरा है, फाल होते हैं जैसे कि कल्टीवेटर में, तो उनके घिस जाने पर उसको पलट देना चाहिए, या अगर पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं तो उनको हम नए फाल से बदल लेने चाहिए। फिर एक दिन जैसे आपका काम खत्म हो गया तो प्रतिदिन कार्य समाप्त करने के बाद तथा यंत्र के उचित भंडारण हेतु यंत्र की पॉलिश की जानी चाहिए और जहाँ जहाँ सतह है उन पर ग्रीस लगाना चाहिए जिससे कि यंत्र में जंग न लगे। जहाँ जहाँ पर भी चांस है कि जंग लगने का है, इसको बनता है वहाँ पे आप ग्रीस लगा दें। फिर ऑपरेटर को मशीन के विवरण के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। जो भी मशीन उसको चला रहा है उसको उस मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो टूटे हुए भागों या कुछ घिसे हुए भागों को पुनः कार्य प्रारंभ करने से पहले ही ठीक कर ले। अन्यथा होगा क्या कि जैसे ही वो खेत में लेके कल्टीवेटर को जाएगा तो 50 तरीके के प्रॉब्लम उसको आने लगेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि काम करने से पहले इन सभी बातों पर ध्यान दें। साथ ही साथ
0: जी, तो ये तो हो गई बात कि इनका रख रखाव कैसे करें। अब हम सावधानियों की तरफ आते हैं कि कल्टीवेटर के इस्तेमाल में, इनके प्रयोग के समय इनमें क्या क्या सावधानियां रखें।
1: किसान भाइयों को चाहिए कि बुआई करते समय फालों के बीच की दूरी निश्चित रखें। अदरवाइज क्या होगा कि दो रो जो बनेगा वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग यानी कि दूरी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और फालों की गहराई भी बराबर होनी चाहिए। मतलब फालों के बीच, दो फालों के बीच की दूरी और फालों की जो गहराई है वो बराबर होनी चाहिए हर जगह। खेती के जो लिए जो ज़रूरी है, आपको खेत का तैयारी तो करना ही होगा, तो वो करते समय लाइनों के बीच की दूरी इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि खेत बिना जुता हुआ रहे। मतलब लाइन जो बना रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा दूरी ना रहे, नहीं तो होगा क्या कि बीच का बहुत सारा इलाका जो है बिना जुता हुआ ही छूट जाएगा। फिर है खाद हुआ या उर्वरक, जब हम डालेंगे तो उस समय हमको क्या करना है कि यह ध्यान रखना है कि उर्वरक जो है सूखा हो और भुरभुरा हो, है ना, यदि गीला होगा तो बेकार हो जाएगा, यदि भुरभुरा ना हो तो उसको आपको सुखा लेना होगा पहले। उर्वरक डालने के लिए यंत्र में लगने वाले भाग में प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ यंत्र से अगर आप कोई निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि लाइनों में बोए हुए पौधे हम नष्ट ना करें। तो जब भी आप किसान बंधु कल्टीवेटर को यूज करें तो जो मैंने अभी आपको बताया है क्या क्या रखरखाव पे ध्यान देना चाहिए मशीन से संबंधित, और जब भी कल्टीवेटर को यूज करें तो क्या क्या सावधानी, उसके अलावा भी कोई दूसरा मशीन को यूज कर रहे हो कल्टीवेटर से करने के बाद, तो हमको उस पर भी सावधानियों पे ध्यान देना चाहिए।
0: जी, तो ये तो बात हो गई कल्टीवेटर के रखरखाव और सावधानियों की। अब हम आते हैं अगला जो मशीन है वो हैरो। तो डॉक्टर साहब, ये हैरो जो है उसका रखरखाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या इनमें सावधानियों की भी जरूरत है?
1: हैरो में दिए गए ग्रीस निपल द्वारा अच्छी तरह ग्रीस भर देना चाहिए, जिससे कि हैरो बिना किसी आवाज के चल सके, सुगमता के साथ चल सके। और ऐसा अगर होता है तो हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा की भी कम जरूरत पड़ती है हैरो जब चलाते हैं उस समय। फिर पर्याप्त लुब्रिकेंट के लिए ग्रीस की इतनी मात्रा डालनी चाहिए कि बेयरिंग के दोनों तरफ से ग्रीस निकलने लगे, इससे भी हमको सुगमता से चलाने में हैरो को सुविधा होती है। हैरो के सभी नट बोल्ट को कसे हुए होने चाहिए तथा इस यंत्र के सभी टूटे हुए भागों की या तो आप मरम्मत कर लें या तो अगर किसी यूज के लायक न बच गए हों तो आप उसे बदल दें। जब यंत्र को प्रयोग न करना हो तो जंग लगने वाले भागों को पॉलिश करके ही सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो आप रखरखाव के लिए कर सकते हैं। जहाँ तक सावधानियों की बात है हैरो चलाने के बाद, तो हैरो के तहों के घिस जाने पर सभी भागों को ठीक प्रकार से समायोजित करके कस देना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। फिर हैरो चलाते समय ये ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई भी वर्कर ट्रैक्टर और हैरो के बीच नहीं हो, अन्यथा इसलिए खेती में जब भी अगर आप हैरो चला रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ जुड़ा हुआ आपका हैरो है, तो बीच में किसी को भी जाने की अनुमति ना दें, किसी को जाना नहीं चाहिए ट्रैक्टर और हैरो के बीच में।
0: जी, तो ट्रैक्टर और हैरो जब भी आप चला रहे हो तो उसके बीच में ना जाएं। हम ये कल्टीवेटर और हैरो के बारे में हम जान चुके हैं, इनके रखरखाव और सावधानियों के बारे में। अब हम अगले मशीन की तरफ आते हैं और ये मशीन है रोटावेटर, काफ़ी महत्वपूर्ण मशीन। तो इसके बारे में डॉक्टर बताएं हमारे किसान भाइयों को कि इनके रखरखाव पर या फिर सावधानियों पर किन किन तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: यदि रोटावेटर के ब्लेड घिस गए हों तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। रोटावेटर को हमेशा ट्रैक्टर से के कम स्पीड पर चलाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी ठीक से भुरभुरी हो जाए। ट्रैक्टर के ज़्यादा आरपीएम पर रोटावेटर को नहीं चलाना चाहिए। रोटावेटर के बगल में लगे हुए गहराई नियंत्रक पार्ट होता है, उसको ठीक तरीके से एडजस्ट करके ही चलाना चाहिए, मतलब ठीक तरीके से समायोजित कर लेना चाहिए, ताकि वो जो डेप्थ है वो एक तरीके का मेंटेन रहे, नहीं तो अलग अलग डेप्थ पर रोटावेटर चला जाएगा। फिर है कि घिसे हुए रोटावेटर ब्लेड का हमेशा पूरा सेट बदलना चाहिए, नहीं कि सिर्फ एक ब्लेड बदल दिए, एक ही घिसा हुआ था, वैसा नहीं करना चाहिए। उसके ब्लेड का पूरा सेट, हमेशा पूरा सेट ही बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर रोटावेटर ब्लेड पर लगने वाले विभिन्न बलों का संतुलन बिगड़ सकता है। होगा क्या कि एक आप नया ब्लेड लगाएंगे और शेष पुराना, तीन चार जो भी है पुराना, वो पुराना ही रह जाएगा, तो विभिन्न बलों का संतुलन उसमें बिगड़ सकता है, और जिसके कारण ट्रैक्टर को अधिक क्षमता से कार्य करना पड़ता है, जिस कारण आपके जो ट्रैक्टर का है उसका तेल का खपत जो है बढ़ जाएगा। गियर बॉक्स के तेल के स्तर की जांच समय समय पर किया जाता रहना चाहिए, और रोटावेटर के शक्ति संचरण में प्रयुक्त चेन गियर को भी समय समय पर उचित लुब्रिकेंट का उपयोग करके रखना चाहिए, जिससे कि रोटावेटर पुर्जों की एज या आयु जो है उसके कार्य क्षमता जो है बढ़ सके और मशीन में आवाज़ ना आए। ठीक है, इसके अलावा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ट्रैक्टर को पीटीओ से जब हम रोटावेटर को जोड़ते हैं तो उसमें एक सैफ्ट होता है। ठीक है, उस सैफ्ट में एक सियर बोल्ट लगा रहता है जो अधिक लोड आने पर टूट जाएगा, इसीलिए यह सियर बोल्ट ट्रैक्टर के पीटीओ सैफ्ट की सुरक्षा के लिए जो कि लगा हुआ है उसको पे आप लगातार ध्यान रखे रहें। और यदि यह सियर बोल्ट अधिक लोड पर भी नहीं टूटता है तो ट्रैक्टर की पीटीओ सैफ्ट के टूटने की संभावना हो जाती है। अतः कृषक भाइयों को चाहिए कि खेत में रोटावेटर को ले जाते समय ही एक अथवा एक से अधिक सियर बोल्ट अपने पास रखें, अपने पास, खुद किसान के पास रहना चाहिए या जो ट्रैक्टर ड्राइवर चला रहा है उसके पास ही होना चाहिए, जिससे कि अगर खेत में काम करने के समय में अगर सीयर बोल्ट टूट भी जाए तो भी उसे आसानी से बदला जा सके। अब बात करते हैं रोटावेटर में जब हम चलाएंगे तो हमको कौन कौन सी और सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो खेत में रोटावेटर को चलाने से पहले इसके ब्लेड्स को ठीक से पहले आप देख लें टाइट है या नहीं। रोटावेटर को सील्ड को लगभग नीचे की तरफ झुका लेना चाहिए जिससे कि कंकड़ पत्थर या तेजी के साथ जो भी हो बाहर ना आ सकें, ठीक है, अन्यथा इन पत्थरों के द्वारा दूसरों को चोट लगने की भी संभावना रहती है। अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी बनाने के लिए खेत में नमी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मिट्टी जो है हम कितना भी रोटावेटर चला लें कभी भी भुरभुरी नहीं होगी। जहाँ तक संभव हो नमी खेत में काम करने लायक होनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा रोटावेटर क्या करेगा, मिट्टी तो काटेगा लेकिन भुरभुरा नहीं कर पाएगा। एक बात और है कि रोटावेटर के गियर बॉक्स और साइड के जो पावर सिस्टम में लुब्रिकेंट के लिए एक चिन्ह दिया रहता है वो वहाँ तक लुब्रिकेंट भरा रहना चाहिए गियर बॉक्स में, अन्यथा आपका रोटावेटर को ट्रैक्टर के साथ जब आप चलाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है खेत में जुताई के समय।
0: जी, तो ये रोटावेटर की बात हुई और इस रोटावेटर का प्रयोग आप अपनी खेती में मिट्टी को भुरभुरी करने में आप लाते हैं तो इसमें कई तरह की समस्याएं बिना रख रखाव के हो सकती है। इसलिए डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई, डॉक्टर सनोज जी ने जो बातें बताई उसको आप गंभीरता से लें और उसमें ग्रीसिंग और उसमें जो प्रॉपर जो तेल वगैरह डालने की जो प्रक्रिया है वो आप बार बार करते रहें और जांच करते रहें कि ये पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है। तो अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक मशीन जो आज के दिन में काफ़ी प्रयोग में है और इसको लेकर काफ़ी प्रमोशन भी किया जा रहा है कि आप इसको लाएं। जी, ये है जीरो टिल फर्टिसीड ड्रिल। जी हाँ, ये जीरो टिल जो मशीन है इससे आप अवगत हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके रख रखाव में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं?
1: किसान भाइयों, जीरो टिलेज मशीन सभी जानते हैं, वैसे जीरो टिल फर्टिसीड ड्रिल है जिसमें कि हम जीरो टिलेज के साथ साथ फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस मशीन को जो भी किसान इस्तेमाल करें तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण रख रखाव बिंदुओं पर मैं अभी बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है कि बक्से में खाद भरते समय खाद कम या अधिक करने वाली पत्ती के नीचे वाली पत्ती जो होती है, एक दूसरी पत्ती होती है, वो बंद होना चाहिए तथा चलते समय केवल इस पत्ती को ही खोलना चाहिए। अधिक समय तक बक्से में खाद नहीं रहना चाहिए तथा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रखी हुई खाद में नमी ना आए और खाद का छिड़काव ठीक ढंग से हो सके। उर्वरक को बक्से में भरते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि खाद में ढेले ना हो, अन्यथा आपका जो फर्टिलाइजर जो डालना है खेत में वो कभी नहीं जा पाएगा। चलाते समय खाद बक्स का ढक्कन बंद ही रखना चाहिए तथा साधारण गति से ही चलाना चाहिए। आपको अपने ट्रैक्टर को जो कि लगभग 3 से 4.5 या 4 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, हैंडल को जनरल गति से घुमाना चाहिए जैसे कि 30 से 40 चक्कर प्रति मिनट, क्योंकि हैंडल के चक्कर कम या अधिक होने से खाद के एक साथ छिड़काव पर असर पड़ता है। एक सा छिड़काव जो है आप नहीं कर पाएंगे अगर आप ज़्यादा तेज़ी से चलाते हैं। खाद छिड़कने के पश्चात यंत्र को अच्छी प्रकार से साफ करके रखना चाहिए और बक्से में खाद नहीं होना चाहिए जब भी आप स्टोर करने जाएंगे, क्योंकि खाद क्या है, केमिकल है, वो आपके जो लोहे का बना होता है उसके साथ रिएक्शन करेगा और आपका डब्बा को जो आपका खाद का बक्सा है उसको ख़राब करेगा। खाद के बक्से में घूमने वाले पट पर आने वाले फर्टिलाइजर का रेट जो होता है का नियंत्रण फिट पट अथवा पट्टी की सहायता से किया जाता है, इसलिए उचित दर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मशीन में इसका कम या अधिक करने का प्रावधान हो और ये प्रावधान रहता है किसान भाइयों को इसको चलाने का एक बार प्रैक्टिकल में फील्ड एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। ट्रैक्टर आगे चलने की गति जो है, मशीन को आगे चलने की गति भी खाद के छिड़काव की दर को प्रभावित करती है। अगर आप ट्रैक्टर को बहुत तेज़ी से चलाएंगे तो ऑब्वियस है कि उतना फर्टिलाइजर जो आप डालना चाहेंगे वो नहीं डाल पाएंगे और ये ट्रैक्टर की गति अधिक होगी तो एक सेटिंग पर मशीन द्वारा प्रति हेक्टेयर ऑब्वियस है कि कम खाद पड़ेगा। इसके विपरीत यदि आप ट्रैक्टर की गति कम कर लेंगे तो क्या होगा, पट की पूर्व गति और बक्से से आने वाले खाद की दर वही रहने पर भी खेत में अधिक उर्वरक छिड़का जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैक्टर का स्पीड हमको 3 से 4 या बहुत से बहुत 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे। अब जीरो टिलेज जो मशीन है इसका रख रखाव के बारे में मैंने अभी बात किया, कुछ सावधानियों पर भी किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बीज भर खाद के बक्से हुए, खाद वाली सैफ्ट हुआ, खाद मापने वाली पत्ती है, इन सभी को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए जब भी आप खेत में किसी खेत में जा रहे हैं ये फर्टिसाइड ड्रिल का यूज करने। बीज व खाद वाले सैफ्टों को फ्री घुमाओ देख लेना चाहिए, मतलब एक बार बिना बीज या खाद डाले वो आप देख लें कि वो फ्री में घूमता है कि नहीं, हाथ से चला करके। सभी चलने वाले भागों में ग्रीस तेल डाल देना चाहिए। प्लास्टिक की नलियां जब हम लगाते हैं जिससे कि बीज गिरता है या फर्टिलाइजर गिरता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि नली में जो भी आपने यूज किया उसमें अधिक मोड़ ना आए। अगर ज़्यादा मोड़ होगा तो आपका पता चलेगा कि वो खेत में ना गिर करके बीज कहाँ रह गया, पाइप में ही रह गया, या फर्टिलाइजर आपका खेत में ना जाके वो पाइप में ही रह जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, जितना हो सके वो सीधा रखना है पाइप को। मशीन के फाल हैं फसल के अनुसार उचित दूरी पर लगाने चाहिए। इसके लिए फालों में लोहे के क्लैंप लगे होते हैं जिनको आप अपने हाथों से खिसका सकते हैं और इससे दो फालों के बीच की दूरी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बक्से में बीज व खाद डालकर एक बार समायोजन कर लेना चाहिए। समायोजन मतलब अगर खेत में हमको 100 kg प्रति हेक्टेयर के दर से कोई चीज़ डालना है तो हमको उस मशीन को अपने खेत से बाहर ही उसको समायोजित कर लेना है कि वो खेत में जब चलेगा एक पार्टिकुलर स्पीड पे तो 100 kg ही गिरेगा, ठीक है। अच्छे अंकुरण के लिए बीज एवं खाद को उचित नमी में ठीक अंतर व गहराई पर डालना अति आवश्यक है। अतः फालों की गहराई फसल के अनुसार कम या अधिक करने के बीच जो उसमें प्रोविजन है उसको भी आपको ध्यान में रखना है और फसल के अनुसार आप जो गहराई है उसको मेंटेन करें। खाद और बीज की मात्रा कम या अधिक करने वाले लीवर को आसानी से चलना चाहिए। उचित खाद और बीज की मात्रा पर समायोजन करने के बाद इसके नट को एक बार कस लेना चाहिए ताकि बुवाई के समय बीज और खाद जो है सारे खेत में एक तरीके से एक रेट पर पड़े, पूरा यूनिफॉर्मली बिजाई हो सके।
0: तो किसान भाइयों, जीरो टिल के बाद हम बात करते हैं नैपसेक स्प्रेयर के बारे में। ये नैपसेक स्प्रेयर जो है वो कई किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं छिड़काव के लिए, तो इसमें डॉक्टर साहब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई से लेकर इसका जो रख रखाव है और सावधानियां जो है वो जरूर हमारे किसान भाइयों को बताएं।
1: किसान भाइयों, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर होता है, आजकल पावर चालित नैपसेक स्प्रेयर मार्केट में मिलता है। कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चला लेना चाहिए ताकि इसके अंदर जितने भी केमिकल हैं वो सब बाहर आ जाएं और ये अच्छे तरीके से साफ हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है किसी भी नैपसेक स्प्रेयर के रखरखाव के लिए। फिर छिड़काव यंत्र को बाहर से भी साफ रखना चाहिए। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल इत्यादि ये सब को नहीं जाने देना चाहिए, नहीं तो कल को क्या होगा, अगर गलती से कोई भी धूल का पार्टिकल आपके मशीन के अंदर चला गया तो आप जब कल को स्प्रेयर यूज करेंगे तो वो धूल का पार्टिकल आपके उसी नोजल से निकलना चाहेगा और आपके नोजल को ख़राब कर देगा। दवा का घोल हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, कभी भी ऐसा ना करें कि बिना छाने ही दवा का घोल आपने स्प्रेयर में डाल दिया हो। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस जैसा ज़रूरत हो आप लगा कर रखें। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका होता है तो उसका स्पार्क प्लग को आप देखें, कार्बोरेटर को देखें और सभी पाइपलाइनों को एक बार साफ कर लें। इंजन के सिलेंडर को साफ रखना चाहिए और उसमें अगर पेट्रोल इंजन ही बेसिकली यूज होता है तो उसमें आप फिन्स देखेंगे तो उनको भी आप साफ रखें ताकि आपका जो इंजन जब चले तो उसे भी उसे हम लोग चूँकि एयर कूलिंग सिस्टम यूज होता है वो ठंडा होता रहे। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो उसे कपड़े अथवा रैक्सिन के बने कवर से ढक कर रखना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम नैपसेक स्प्रेयर के चलाने में सावधानियों पर बात करें तो इनमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि रसायनों का छिड़काव प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, यानी कि सुबह में करें या तो शाम में करें, जब आप देखिए कि हवा मंद गति से चलती है उस समय करना है, अन्यथा रसायन अपने स्थान पर न गिरकर दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा और आपका पूरा पैसा भी बर्बाद होगा और जिसके लिए आप यूज कर रहे थे पौधे पर गिराने के लिए दवा वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही यदि छिड़काव बहती हवा में ही करना पड़े तो काम करने वाला व्यक्ति क्या करे, हवा की उस दिशा में चलना चाहिए जिसपे दवा जो है हवा के साथ फसल पर गिरे, न कि उस व्यक्ति के ऊपर, यानी कि हवा के विरुद्ध दिशा में आपको नहीं चलना है, ठीक है। और जो भी आदमी छिड़काव कर रहा है तो अपने नाक मुंह आदि ये सब ढक के कपड़े से ढक कर ही छिड़काव करे। उचित ये होगा कि रसायनों से सुरक्षा हेतु उपलब्ध उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि दस्ताने हैं, मास्क है, चश्मा है, इन सबों का यूज करें। जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधित सुझावों को ध्यान में रखकर उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। फिर है, छिड़काव समाप्ति के पश्चात अपने हाथ और चेहरे को पहले साफ पानी से और उसके बाद साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि कुछ रसायनों की साबुन से प्रतिक्रिया होने से शरीर में जलने की संभावना रहती है। इसलिए किसान बंधु ध्यान रखें कि पहले साफ पानी से अपना चेहरा, हाथ वगैरह धोएं, उसके बाद ही साबुन को यूज करें। विभिन्न प्रकार के रबर या फाइबर के वाशर सदैव अपने पास रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम खेत में अभी छिड़काव करने गए और वाशर खराब हो गया तो अब मार्केट जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अलग अलग साइज के रबर के या फाइबर के वाशर आपके पास होने चाहिए। जिस भाग से रसायन निकलता हुआ दिखे वहाँ का वाशर को तुरंत ही बदल देना चाहिए। तो और एक है कि कहीं भी आप मुंह से ढककर इन यंत्रों की जो बंद नलियों को खोलने का कोशिश करें तो ये बहुत ही गलत होगा, कभी भी ऐसा ना करें। इन सभी बिंदुओं को अगर आप ध्यान रखें तो हमें आशा है कि किसान बंधु अपना जो पावर चालित नैपसैक स्प्रेयर है इसे आसानी से अपने खेती के समय यूज कर सकेंगे।
0: जी, तो किसान भाई नैपसैक स्प्रेयर के बारे में आप जाना कि कैसे आप सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करें और इनका रख रखाव करें। अब हम आते हैं जो मशीन है रीपर, तो ये रीपर जिससे आप कटनी करते हैं, कटनी यंत्र है, तो इसको आपको कैसे रख रखाव करना है, कैसे सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में हम आइए जानते हैं।
1: किसान बंधुओं को चाहिए कि यदि रीपर से कटाई एक जैसी ना हो रही हो तो ये उनको देखना है कि लेजर प्लेट कहीं से टूटा तो नहीं है, और यदि ऐसा हो तो उसको बदल देना चाहिए। लेवल प्लेट एक होता है। यंत्र को चलाते समय सभी नट बोल्ट अच्छी तरीके से कसे होने चाहिए और दोनों जो कन्वेयर बेल्ट लगे रहते हैं और स्टार व्हील आसानी के साथ बिना रिकॉर्ड के चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपको रीपर को मेंटेनेंस करना होगा, रिपेयर मेंटेनेंस कराना होगा, कहीं जाकर बनवाना होगा अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो, और ये खेती में उपयोग होने लायक नहीं रहेगा मशीन तो। और अगर आपने रीपर को यूज किया है तो आपको कुछ कुछ सावधानियों पे भी ध्यान देना होगा, जैसे कि यंत्र के सभी घूमने वाले भागों में अच्छी प्रकार से ग्रीस अथवा तेल डालते रहना चाहिए। ये मैंने अभी आपको जो भी मशीनों के बारे में बताया उन सभी में बताया, जो भी घूमने वाले भाग हैं वहाँ पे आपको ग्रीसिंग या ऑयलिंग जरूरत के हिसाब से करते रहना है, ठीक है। फिर छुरों के धार को समय समय पर तेज करते रहना चाहिए, नहीं तो ये काटाई नहीं कर पाएगा। खेत में कार्य समाप्ति के पश्चात कटर बार की सफाई करना बहुत ही जरूरी है, और ऐसा अगर आप करते हैं तो जंग लगने से भी बचा पाएंगे। रीपर का प्रयोग उन्हीं फसलों की कटाई के लिए किया जाना है जिनके बीच की कोई दूसरी फसल ना बोई गई हो। अगर आप कोई फसल काटना चाहते हैं और बीच में एक दूसरा फसल भी लगाए हैं तो वैसे केस में आप रीपर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर है कि यंत्र को काम करते समय इसके नज़दीक किसी भी मनुष्य को नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा मनुष्य के कपड़ों के ढीले होने के कारण अथवा नशा होने के कारण वह मशीन के साथ फंस सकता है और दुर्घटना हो सकती है। इन प्रमुख बातों को अगर किसान बंधु ध्यान में रखें तो हमें आशा है कि उनके पास जो खेती की मशीनें हैं उनका वो सही इस्तेमाल कर सकेंगे और ज़रूरत के हिसाब से उस मशीन की देखभाल भी कर सकेंगे, ताकि जब भी उनको खेत में ले जाने की ज़रूरत पड़े उनकी मशीनें कभी भी उन्हें धोखा न दे, वो अच्छे से काम कर सकें। धन्यवाद
0: जी। तो ये आज जानकारी आप किसान भाइयों को डॉक्टर सनोज कुमार जी दे रहे थे कि खेती की जो खेती में प्रयोग होने वाले जो मशीन है उनका आप सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें और किन किन बातों का आप सावधानियों का ख्याल रखें। तो इसमें कुछ और बातें हैं मैं जोड़ देता हूँ किसान भाइयों, कि कृषि यंत्रों का जब आप प्रयोग कर रहे हों तो ऐसे में आप कभी भी ढीले यंत्रों का या फिर ऐसे जो कि पूरी अच्छी तरीके से मरम्मत नहीं है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आप जरूर इसको चेक करते रहें समय समय पर। साथ ही एक अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि किसी भी हालत में नशे की स्थिति में, जब कोई नशे की स्थिति में इसका संचालन न करे, हालांकि नशा ऐसे ही बुरी चीज है लेकिन किन्हीं ही परिस्थितियों में किसी भी कृषि यंत्रों का प्रयोग नशे की स्थिति में न करें, इससे आपको जानलेवा हो सकता है और इसमें कई दुर्घटनाएं सामने देखने को मिली है। डॉक्टर साहब, एक चलते चलते हम और इसमें जोड़ देना चाहेंगे कि ऐसे कृषि यंत्र जिनका प्रयोग साल में एक ही बार थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद जब किसान भाई उसे प्रयोग के लिए जाते हैं तो उसमें कई परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो आपने उनका मेंटेनेंस के लिए तो आपने बताया, इनकी जो रख रखाव करते हैं, घर में रखते हैं या फिर खलिहान में रखते हैं, तो उचित स्थान भी बताएं कि इन मशीनों को अगर स्टोर करना हो तो क्या खुले में रखना उचित है या कहीं ऐसे शेड वाले जगह पे रखें, इनको किस परिस्थितियों में रखना चाहिए ताकि अगले साल जो है वो इसका संचालन में दिक्कत ना हो।
1: किसान भाइयों को चाहिए कि एक मशीन का जैसे इस्तेमाल हो गया, उसको अभी आपको स्टोर करना है तो अपने शेड में रखें और कुछ ऊंचे जगह पे रखें
0: जी।
1: जो कि जहाँ पे अगर कुछ बारिश आता हो तो बारिश का पानी वहाँ पे ना आ सके, ऐसा। उसके बाद उसको ऊपर ढक के रखें और ढकने से पहले उसका अच्छे तरीके से ग्रीसिंग, वार्निशिंग ये सब कर लें, अच्छे तरीके से साफ़ सफाई कर लें, कोई केमिकल है तो उस मशीन से निकाल लें। अगर कहीं कोई जंग लगने की समस्या दिखती है तो ऐसा ना सोचे कि वहाँ पे हम ग्रीजिंग ना करें, उसको करके रखें, अच्छे तरीके से ढक लें कि उसमें पानी बेसिकली ना आ पाए, ठीक है। अगर वैसा हो, किसान रख पाएंगे और कुछ ऊंचे जगह पर, तो ऑब्वियस है कि अगले साल भी वो मशीन पूरी तरीके से उनको काम करने लायक मिलेगी
0: जी। तो आपका मशीन अगले साल बिल्कुल उसी अवस्था में काम करता हुआ मिले तो उनको आप सही तरीके से रखें, सही उचित स्थान पर रखें और जो बातें बताई गई उनके रख रखाव में आप उसका प्रयोग करते रहें, क्योंकि मशीनों के ऊपर आप काफ़ी मात्रा में निवेश करते हैं और ऐसे में कोई किसान नहीं चाहते हैं कि उनका मशीन खराब हो जाए। तो किसान भाइयों, इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एफएम ग्रीन से जुड़ने के लिए। तो किसान भाई, हमारा एफएम ग्रीन जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, आपका अपना रेडियो स्टेशन है और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से संचालित किया जाता है, तो आप यूं ही सुनते रहें। और आज का जो उन्नत कृषि कार्यक्रम है ये हम खत्म करना चाहेंगे। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन,
0: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
0: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
0: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
0: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
0: एफएम ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से भाराणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
3: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
2: जी,
3: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
2: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
3: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश, और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीआरटी को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना। ओके।
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के

0: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
1: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
1: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि जो हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम है और आज इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं बेसिलस एक बहुउपयोगी जैव नियंत्रण कारक के बारे में. जी हाँ, आज हम बेसिलस के बारे में बहुत सारी बातें जानने वाले हैं और इन बातों को हमें अच्छे से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रद्धा सावंत. आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. आप हैं पौधा रोग विज्ञान विभाग से. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा जी. मैं भी मेरा सभी किसान भाई बहनों को प्रणाम.
0: मैम आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि बेसिलस क्या है और ये कहाँ पाया जाता है?
1: जी, तो जैसे मैं पहले बताना चाहूँगी कि बैसिलस किसी को पता नहीं है. जैसे हम ट्राइकोडर्मा जानते हैं, बहुत सारे किसान बिहार के हो या पूरे भारत के हो, सबको ट्राइकोडर्मा के बारे में पता है. तो जिस तरह से ट्राइकोडर्मा एक बहुउपयोगी माइक्रोब है, जीवाणु है, बट वो एक फफूंद के कैटेगरी में आता है और बैसिलस जो है वो उसी की तरह एक जैविक कारक है, जैव नियंत्रक कारक है और वो एक बैक्टीरिया है. तो जैसे जिस तरह से ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है, उसी तरह से बैसिलस जो है वो भी आपको मिट्टी में मिलता है, आपको पौधों के पत्तियों के ऊपर मिल सकता है, तने पे मिल सकता है या जड़ों में भी मिल जाता है. तो बैसिलस जो है वो आपको सर्वत्र पाया जाता है. और जिस तरह से फफूंद, ट्राइकोडर्मा का जो उपयोग है हम फफूंद को मारने के लिए करते हैं, बहुत सारे जो रोग के कारक होते हैं मिट्टी से जो आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल करते हैं, उसी के तरह बैसिलस हो गया या सिडोमोना जो बैक्टीरिया के कैटेगरी में आते हैं उनको भी इस्तेमाल हम ये रोग का जो नियंत्रण है, प्रबंधन है, उसको करने के लिए कर सकते हैं.
0: तो मैम जैसे कि आपने बताया कि रोग के प्रबंधन के लिए हम बेसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ कि बेसिलस आखिर फसल को कैसे बचाता है और ये काम कैसे करता है?
1: जी, यानी हम मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि बैसिलस किस तरह से प्रबंधन करता है. तो इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एंड दूसरा होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये जाके सीधा फफूंद का जो माइसेलिया होता है या फफूंद की जो ग्रोथ होती है उसको रोक देता है. या ये बैक्टीरिया जो है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स या वोलाटाइल्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से भी जो फफूंद की ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है. तो ये हुआ कि डायरेक्ट. इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसी के साथ और एक डायरेक्ट में है कि ये जो बैक्टीरिया, फफूंद है, रोग के कारक है, वो सभी एक ही जगह पे रह रहे हैं. तो बैक्टीरिया क्या करता है, फफूंद के या रोग के जो कारक होते हैं, पैथोजन है, उनके साथ न्यूट्रिएंट के लिए या जगह के लिए उनके साथ कंपटीशन करता है. तो कंपटीशन में क्या होता है कि जस्ट बिकॉज बैक्टीरिया में बहुत सारे उपयोगी वोलाटाइल्स होते हैं, वो ये फफूंद की वृद्धि या ग्रोथ जो है उसको रोक देता है और उसकी जो जगह है उसको भी कम कर देता है. तो इस तरह से डायरेक्ट मैकेनिज्म होता है. और इनडायरेक्ट में क्या करता है, बैसिलस बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पौधे में सिक्रेट करता है या इंड्यूस करता है. यानी हम ऑक्सिन की बात करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन जो है उसकी वजह से पौधों की वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ प्रमोशन होता है. तो इस तरह से हम इनडायरेक्टली भी पौधों की वृद्धि में बैसिलस काम करता है. तो एक साइड से वो रोग को भी थामता है, प्रतिबंध करता है और दूसरे ओर से वो पौधों की वृद्धि भी करता है, ग्रोथ प्रमोशन भी करता है. तो इसीलिए ये बहुउपयोगी है.
0: तो मैम अभी तो हमने जान लिया कि किस तरीके से बेसिलस बहुत अलग अलग तरीके से पौधों को फायदा पहुंचाता है.
1: जी,
0: बढ़वार में भी मदद करता है और साथ ही रोगों से भी बचाता है.
1: जी,
0: तो मैम किन किन रोगों से और कीटों से बचाता है बेसिलस?
1: तो जैसे मैंने बताया पहले से कि बैसिलस जो है वो मिट्टी में रहता है. तो मिट्टी से, मृदा से आने वाले जितने भी रोग के कारक है, जैसे हम जानते कि उकठा रोग जो चिकपी में लगता है, चने में लगता है, तो उकठा रोग हो गया, जड़ गलन हो गया, जड़ सड़न हो गया, तो इस तरह से जो मिट्टी से आने वाले रोग है जिसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता है, तो वो सभी रोगों के लिए जो मिट्टी से आ रहे हैं उन रोगों के लिए भी आप बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हो. इसी के साथ साथ जो धान में आते हैं, हमने देखा है कि धान में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे ब्लास्ट हो गया या ब्राउन स्पॉट हो गया, शीट ब्लाइट जिसको कहते हैं, उन रोगों के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं.
0: तो मैम अभी रोगों के बारे में भी हमने जान लिया, लेकिन अब बेसिलस के इस्तेमाल पर आते हैं. बेसिलस को खेतों में डालने का क्या प्रोसेस है, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई बहन?
1: तो जैसे बैसिलस को हम जिस तरह से ट्राइकोडर्मा का खाद यूज करते हैं, या ट्राइकोडर्मा हम जानते हैं कि दो तरीके से उपलब्ध है अभी मार्केट में, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक आता है लिक्विड फॉर्म में आता है, तो बैसिलस भी उसी तरह से एक पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम टाल्क फॉर्मुलेशन कहते हैं, और एक आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में। तो अगर आपको इसको खेत में डालना है तो बहुत सारी विधि है। पहले तो हम बीजोपचार करना चाहेंगे, तो बीजोपचार के लिए आपको क्या करना है, उसका जो डोज है, तो आपके पास अगर एक किलो बीज है तो एक किलो बीज के लिए आपको 10 ग्राम बैसिलस का टाल्क फॉर्मुलेशन आप यूज कर सकते हैं। उसको आपको बीज लेना है, उसमें पाउडर आप डाल दीजिए, उसी के साथ आप थोड़ा सा बेसन या गुड़ डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए बीज के ऊपर। फिर उसको 2-3 घंटे तक आप छाव में सुखाओ और उसके बाद आप उसका बुआई करो। इस तरह से बीजोपचार किया जाता है। और बीजोपचार में आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास फफूंदनाशी है, कीटनाशी है, और आपके पास ये जैविक वाला कोई खाद है या बैसिलस है, तो आपको पहले जो है फफूंदनाशी का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आप कीटनाशी डालो, उसके बाद आपको कोई भी आपके पास बैसिलस है, सुडोमोनास है, मतलब बैक्टीरिया का जो है उसको करना है। अगर आपने पहले ही उसको डाल दिया तो ये जो फफूंदनाशी है या जो एंटीबायोटिक है या बाकी के जो है वो इस पे इसको मार डालेंगे, आपके जो जैविक का कारक है उसको मार डालेंगे, तो उसका फिर कुछ आगे जाके आपको उपयोग नहीं होगा। तो इसलिए ये क्रम हमेशा याद रखना है। फिर दूसरा तरीका होता है कि जैसे हमारे पास सब्जियां होती है, तो सब्जियों का जब हम रोपाई करते हैं तो हमारे पास छोटे पौधे होते हैं, उनको हम रोपाई करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनको आप 10 ml 1 लीटर पानी लेना है और 10 ml बैसिलस का जो फॉर्मुलेशन होगा लिक्विड या 10 ग्राम टाल्क का पाउडर होगा उसको आपको उसमें मिलाना है। फिर उसका घोल बना के आपको ये जो पौधे हैं छोटे उसको उसमें डाल दो और आप आधे घंटे तक उसमें रखो, और आधे घंटे के बाद आपको उस पौधों को निकाल के सीधा आपको रोपाई करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि जो जड़ का पार्ट होता है वहां पे आप सीधा बॉटल का जो ढक्कन होता है उसमें वो फॉर्मुलेशन लेके आप डाल सकते हो, तो उसको हम ड्रेंचिंग कहते हैं। और चौथा होता है कि हम जुताई जब करते हैं तब हम खेत में खाद डालते हैं, FIM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो उस कंपोस्ट में भी आप ये जो पाउडर का फॉर्मुलेशन है बैक्टीरिया का उसको आप मिला के आप उसको खेत में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम बैसिलस का एप्लीकेशन कर सकते हैं।
2: मैम अब एक और सवाल कि बैसिलस के इस्तेमाल से क्या पौधों पर या फिर इंसानों पर भी कोई बुरा असर पड़ता है?
1: जी ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे हम बैसिलस या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आया ही क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम रेसिड्यू से बहुत डरने लगे हैं, क्योंकि जब फफूंद का कोई भी फफूंदनाशी का पेस्टिसाइड का रेसिड्यू खाने में आता है तो वो इट लीड्स टू मतलब कैंसरियस बीमारियां होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है उससे वो मतलब वो कॉज करती है। तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा है उनका कोई भी रेसिड्यू प्रॉब्लम आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अगर खेत में 10 से 20 ml भी हो गया या 20 ग्राम भी हो गया तो भी इसका रेसिड्यू कभी आपके आपके पौधे में भी नहीं आएगा और आपके खाने में भी नहीं आएगा। और कोई भी ये जो प्रोडक्ट है बैसिलस या सुडोमोना जब मार्केट में बेचा जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट उस पर किए जाते हैं जिसको हम टॉक्सिसिटी टेस्ट कहते हैं, जो CIBRC के अंडर आते हैं। तो टॉक्सिसिटी टेस्ट में देखा जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ह्यूमंस में मतलब इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया या कोई कैंसर वगैरह बीमारी कॉज नहीं कर रहा है ना, इसका हमें प्रमाण देना होता है। दूसरा हो गया कि जैसे मधुमक्खी होती है तो बहुत सारे जो फंगिसाइड्स है वो मधुमक्खी मारते हैं, तो ये जो बैसिलस सुडोमोनास है उसका उस पे कोई असर नहीं होता। तीसरा ये है कि जैसे लेडीबर्ड बीटल जिसको हम नेचुरल एनिमीज कहते हैं तो उनको उनके ऊपर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो इसीलिए जो बैसिलस है ये सभी टेस्ट करके ही मार्केट में ये प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं, तो इसलिए ना ये इंसानों के लिए हानिकारक है ना ये अदर जो नेचुरल एनिमीज वगैरह है मधुमक्खी है उनके लिए भी ये हानिकारक नहीं है।
2: जी मैम, इसका मतलब कोई भी नुकसान नहीं है ना पौधों पे ना जानवर पे। तो मैम अगर अब किसान भाई बहन बैसिलस को खरीदना चाहें तो किस तरीके से ये खरीद सकते हैं और कौन कौन से बैसिलस के उत्पाद बाजार में मौजूद हैं?
1: जैसे आप किसी भी मतलब एग्रीकल्चर या मतलब मार्केट में जाओगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई भी शॉप होगी वहाँ पे आप जस्ट उनको जाके बोलोगे कि हमें कोई जैविक कारक जैव नियंत्रक कारक दीजिए, तो उनके पास यही सब प्रोडक्ट्स रहते हैं बैसिलस सुडोमोनास या ट्राइकोडर्मा। तो जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का सबूर ट्राइकोडर्मा तो सबको पता ही है, उसी के साथ साथ बैसिलस का एक डैगर जी करके प्रोडक्ट आता है, सॉरी सुडोमोनास का डैगर जी आता है, बैसिलस का एक्टीगार्ड आता है, बायोगार्ड आता है, बायोसेव आते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम से वो जाने जाते हैं प्रोडक्ट, बट आप अगर आपको नाम याद भी नहीं होंगे तो आप जस्ट जाके आप उनको बोल देंगे कोई बैसिलस का प्रोडक्ट दीजिए, तो ज़रूर वो आपको कोई बायो फर्टिलाइज़र दे देंगे या कोई बायो पेस्टिसाइड भी आपको हाथ में दे देंगे। तो इस तरह से जो बैसिलस है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, टाल्क लिक्विड दोनों भी आप कोई भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं और वो सभी जगह पर अवेलेबल भी है।
2: जी मैम, यानी कि किसान भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए बैसिलस का इस्तेमाल करना और बाजार में वो आसानी से मिले।
1: जी बिल्कुल।
2: तो मैम आपने बहुत उपयोगी बात बताई, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन को बैसिलस के बारे में जो बातें हैं वो समझ आई होगी और उनके उपयोग के बारे में भी वो समझेंगे और उनके महत्व के बारे में भी उनको इस वार्ता से समझ आई होगी बातें।
1: मुझे और एक बस जाते जाते बताना हाँ। था कि बिहार कंडीशन में बैसिलस का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो है, ट्राइकोडर्मा हम कर रहे हैं, सुडोमोनास कर रहे हैं, बैसिलस करने का उपयोग ये है कि जैसे मैंने बताया बैसिलस एक एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और एंडोस्पोर एक ऐसी चीज़ है बैसिलस की जिसको हम रेस्टिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या होता है जो बाकी के जैव कारक है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मृदा में नहीं टिक पाते। बट बैसिलस ही एक ऐसा जीवाणु है जो कितना भी टेम्परेचर बढ़े, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, वो वहां पे थ्राइव कर लेता है। तो जो फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बैसिलस के फॉर्मुलेशन ज्यादातर इफेक्टिव रहते हैं मिट्टी में। इसीलिए जो हमारे किसान भाई बहनों हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आप जरूर बैसिलस का इस्तेमाल करें और वो आपको बहुत दिन तक आपको उसका जो प्रभाव है वो आपके खेत में, आपके फसल में देखने मिलेगा। और बस मुझे और एक है कि जैसे हम देखते हैं कि हम बस रोग के कारक की बात की, बट ये कीट के लिए भी उपयोगी है। जैसे धान में हमने देखा कि तना भेदक स्टेम बोरर एक आता हुआ है या पत्ती लपेटने वाला लीफ फोल्डर, तो ऐसे कीट के का जो प्रतिबंध के लिए भी हम बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैसिलस एक ऐसे बहुपयोगी इसलिए कहा गया है कि आपको रोग के लिए भी आपको एक ही दवा छिड़कनी है, आपको कीट का प्रबंधन के लिए भी एक ही दवा छिड़कनी है, तो इसीलिए आप ये उपयोगी बैसिलस का इस्तेमाल कर सकते।
2: तो मैम इस हिसाब से तो जो बिहार के परिस्थिति को देखा जाए तो बहुत उपयोगी है बैसिलस और बहुत ही कारगर भी है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बैसिलस के बारे में इतनी सारी उपयोगी बातें बताई। किसान भाई बहनों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप अपना और अपने फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, सेहत सही लाभकारी में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं मन में एक गांठ अब भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूं लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बच्चियां आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है। क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
1: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है। पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद ही बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान

0: यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
1: ये फर्क समझना जरूरी है। किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
2: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि एचपीवी वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा, आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
2: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
0: समझ में आता है, लेकिन सोचो, अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान ले, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
2: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
0: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजार घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
2: हाँ, घर में भी यही होता है, पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
0: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
1: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण

0: साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है। और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत? यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
1: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी। हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा। अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया। यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
1: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, एचपीवी वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
0: जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा। अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूं? कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर मां नहीं बन पाऊंगी, तो कहो ये झूठी अफवाह है।
1: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
2: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है। ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
1: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
2: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी ले

0: लेकर चलूंगी। वो बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
1: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
0: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौं चढ़ा लेते हैं।
1: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुनकर होगी अफवाह उतनी कम चलेगी।
2: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
0: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
1: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
0: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
2: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
0: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है।
1: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
2: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
0: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
2: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
1: इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुंचेगा।
2: अब एक छोटा अभ्यास, मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है एचपीवी टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी, आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
0: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले बस घबरा जाती थी। यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार

0: क्या करे, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहां जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती है।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए, पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के लिए नहीं।
0: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, सब आसान नहीं।
2: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तब तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
0: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली। पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
0: और यही एक बड़ी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
0: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
0: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर। ऐसे में क्या करें?
1: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का अधिकार नहीं है।
1: और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
0: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगी। किसी ने UN कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
1: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प हैं। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
0: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की

0: बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
1: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, एएनएम या डॉक्टर से पूछें कि एचपीवी वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यूविन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवां, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से न हिचकें।
0: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज साथ रहती है।
1: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
2: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
0: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है। पहले जो डर था, अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
1: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
0: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
1: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
2: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
1: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एचपीवी वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। दो, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है, जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा एएनएम से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चार, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। पांच, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छह, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सात, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत है। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
1: और जवाबदेही दो तरफ की होती है, व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
3: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
2: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा। नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
3: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्यों है, कहां मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
1: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
2: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले, या भीड़ हो, या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
3: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिककर करना पड़ता है।
2: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है। सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आजकल जब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में या फिर होटलों में, तो वहां पर हम सूप या सब्जियों में अक्सर देखते हैं बेबी कॉर्न का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे उत्पाद बेबी कॉर्न के आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, और घर पर भी हम बेबी कॉर्न को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बेबी कॉर्न की मांग काफी ज्यादा है, और जब मांग है तो यानी कि रोजगार का मौका भी है। तो बेबी कॉर्न की खेती किस प्रकार से की जा सकती है और क्या क्या संभावना है, क्या चुनौतियां आती है, इन सभी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमारी रश्मि। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: नमस्कार।
4: आप है एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट DKAC किशनगंज से। मैम, आप सबसे पहले तो बताइए कि बेबी कॉर्न की खेती किस तरीके से की जा सकती है, और बेबी कॉर्न की खेती का महत्व क्या है?
5: बेबी कॉर्न का काफ़ी महत्व है, आज हम इस पे काफ़ी डिस्कस करेंगे कि बेबी कॉर्न की खेती से कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। और बेबी कॉर्न एक तरह की अपरिपक्व मक्के के भुट्टे की सब्जी है, इसे सब्जी, सलाद, सूप, इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। इसके काफ़ी तरह के व्यंजन बनते हैं और इसे बड़े बड़े शहरों के होटलों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और इसका उपयोग होता है। बेबी कॉर्न एक स्वादिष्ट, पौष्टिक तथा बिना कोलेस्ट्रॉल वाला खाद्य आहार है, एवं इसमें फाइबर की मात्रा भी प्रचुर होती है। इसमें खनिज की मात्रा, एक अंडे में जो जितनी खनिज होती है उतनी मात्रा में होती है खनिज। बेबी कॉर्न के भुट्टे चूंकि पत्तों में लिपटे होने के कारण इसमें कीटनाशक रसायनों से भी काफ़ी ज़्यादा मुक्त होती है। यह स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है, इसलिए इसे हम उपयोग में करते हैं। और इसकी जो सिल्क होती है, जो इसके रेशे होते हैं, इसको मोचा बोलते हैं, इसका चाय भी बनता है, और ये हर्बल टी, और ये काफ़ी सुपाच्य होता है, और इसको हम लोग हर तरीके से उपयोग में कर सकते हैं। और इसका छिलका जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होता है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बेबी कॉर्न का कोई भी भाग वेस्ट नहीं होता है। बेबी कॉर्न हम खाने में उपयोग में लाते हैं, बेबी कॉर्न के छिलके को आप चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के सिल्क का आप चाय बना सकते हैं, और बेबी कॉर्न का जो बच जाता है प्लांट फील्ड में हार्वेस्टिंग के बाद, उसको हम फॉडर में यूज करते हैं। तो ये काफ़ी लाभदायक है, और इसकी फसल हम साल में 3 से 4 बार ले सकते हैं, तो सालों भर इसकी खेती होती है और लोग इसमें काम में लगे रह सकते हैं।
6: जी मैम, यानी कि जिस तरीके से आपने बताया कि बेबी कॉर्न की अगर खेती करते हैं तो उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाई किसान भाई बहन कर सकते हैं।
5: जी जी जी।
6: और बेबी कॉर्न की फसल से कमाई कितनी आमदनी हो सकती है?
5: 1 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न की फसल 15,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि कमाई 1,00,000 रुपये तक हो सकती है, और साल में 4 बार फसल लेकर किसान 4,00,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर आगे हम बात करें कि इसकी कहाँ कहाँ खेती होती है, कहाँ कहाँ इसको किसान भाई लगा रहे हैं, तो विदेशों की बात करें तो ये थाईलैंड, चाइना, इन सभी देशों में काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ ये विकासशील देश जैसे भारत और काफ़ी ताइवान है, इन सभी देशों में इसकी खेती हो रही है। और भारत में बेबी कॉर्न की खेती उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रही है। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए इसकी खेती काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। आमतौर पर धान और गेहूं कृषि प्रणाली में जब हम जाते हैं तो इसमें किसान काफ़ी कम कमा पाते हैं, 30,000 से 40,000 रुपए ही कमा पाते हैं, जबकि बेबी कॉर्न की खेती से मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी कमाई हो सकती है। और जब किसान भाई जैद की फसल के रूप में गर्मा मूंग लेते हैं, जिसका आर्थिक लाभ किसान नहीं उठा पाते, गर्मा मूंग की खेती अगर किसान 15 मार्च के बाद करते हैं तो उन्हें कम लाभ मिलता है, लेकिन अगर उस परिस्थिति में किसान बेबी कॉर्न लगाएंगे तो काफ़ी लाभप्रद होगा।
6: जी मैम, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि बेबी कॉर्न के भुट्टे का बहुत सारा उपयोग किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके और क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर बेबी कॉर्न की अगर कोई खेती करना चाहे तो श्रेष्ठ प्रभेद या प्रजाति का चयन कैसे कर सकते हैं वो?
5: जी, बेबी कॉर्न का पूरा भुट्टा खाया जाता है, इसे पका के भी खा सकते हैं और इसे कच्चे सलाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और इसके विभिन्न व्यंजन जैसे चटनी, कटलेट, कोफ्ता, कड़ी, मंचूरियन, रायता, सलाद, सूप, अचार, बिरयानी, जैम, मुरब्बा, बर्फी, हलवा, खीर इत्यादि व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा पौधे का उपयोग चारे में मैंने पहले ही बताया कि किया जाता है, और ये जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। जब हम जानवरों को चारा जिस दिन चारे में बेबी कॉर्न खिलाते हैं, बेबी कॉर्न का छिलका, उसके तीसरे ही दिन 2 लीटर दूध ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए ये काफ़ी लाभप्रद है चारे के रूप में। इसके सूखे पत्ते एवं भुट्टे हम फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं अगर ये सूख जाता है तो। और जहाँ तक प्रजाति की बात है, इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं, जैसे अगात प्रजाति को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, और इसमें एक खास बात यह है कि जिन जिन प्रभेद में भुट्टे की संख्या ज़्यादा होती है उसको भी हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे 3 से 4 भुट्टे एक पौधे में आए तो हम लोग उसको लेते हैं, प्रजाति के रूप में चयन करते हैं। कई प्रजातियाँ ऐसी हैं नॉर्थ ईस्ट में जिसमें 6 से 7 भुट्टे भी एक पौधे में आते हैं। तो मैं विभिन्न प्रजातियों के नाम बताती हूँ, VL78, HM4 और VL42, HM129, गोल्डन बेबी, G5414, ये सभी बेबी कॉर्न की विभिन्न प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा बेबी कॉर्न की उत्पादन तकनीक के बारे में मैं आगे जानकारी विस्तृत।
6: जी बिल्कुल बिल्कुल।
5: इसमें जैसे कि मृदा की तैयारी कैसे करते हैं, तो जैसे सामान्य मक्के के लिए खेत की तैयारी करते हैं, फसल प्रबंधन करते हैं, उसी तरह से हम इसकी खेती के लिए जो अवधि हम अगात प्रजाति को चुनेंगे 60 से 65 दिनों के अंदर जिसकी हार्वेस्टिंग हो जाए, वैसी प्रजातियों का हम चयन करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जब हम बीज के लिए मक्का को लगाते हैं तो 110 से 120 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग होती है अगात प्रजाति की, जबकि बेबी कॉर्न की हार्वेस्टिंग हम लोग 60 से 65 दिनों के अंदर ही कर लेते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि जो झंडे होते हैं मतलब नर फूल, उनको हम तोड़कर हटा देते हैं, इस प्रक्रिया को डिटैसलिंग बोलते हैं। भुट्टों में मोचा आने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो परागण की क्रिया होने के बाद बीज बन जाता है और बेबी कॉर्न की गुणवत्ता नहीं वैसी बरकरार रहती है। जब हम बुआई का सही तरीका ये है कि बेबी कॉर्न की खेती के लिए खेत की 3-4 जुताई करें एवं मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तो इस में 20-25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर है एवं बेबी कॉर्न की खेती से पौधे से पौधे की दूरी 15-20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ ही बीज को 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, मेड़ों के बीच में बुआई करनी चाहिए और मेड़ों को पूरब से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए ताकि जो हवा का जब दबाव पड़े तो बाधित ना हो।
6: किसान भाई बहनों को ये भी सलाह दी जाती है कि बीजोपचार जरूरी होता है, तो बेबी कॉर्न में बीजोपचार कैसे किया जा सकता है और ये रोगों से बचाव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है?
5: बेबी कॉर्न में बीजोपचार के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना होगा एवं एहतियात के तौर पे जब हम बीजोपचार जब करेंगे फफूंद नाशकों या कीटनाशकों से उपचारित करने के लिए तो इसमें बेबिस्टीन 2 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से हम बीजोपचार करते हैं इस अंगमारी से बचाने के लिए। के बाद थीरम है, थीरम 2 ग्राम प्रति केजी बीज दर से हम डाउनी मिल्ड्यू से बचाने के लिए उपचार करते हैं एवं इसके बाद आप कार्बेंडाजीम 3 ग्राम प्रति केजी बीज दर से ये भी अंगमारी की बीमारी से बचाने के लिए हम उपचारित करते हैं। इसकी बुआई के समय के बारे में बता दूं कि बेबी कॉर्न की खेती वैसे तो पूरे साल की जा सकती है लेकिन हम खेत में नमी बरकरार रखनी चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न का उत्पादन कर सके एवं सिंचित अवस्था में करते हैं खेती तो जनवरी से अक्टूबर तक इसको बोया जा सकता है एवं मार्च के दूसरे सप्ताह में अगर बुआई के बाद अप्रैल के तीसरे सप्ताह से अधिक अगर आपको सबसे अधिक उपज प्राप्त करनी है तो इस कंडीशन में आपको बुआई करना चाहिए। बेबी कॉर्न की खेती में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन के बारे में अगर हम बताएं तो बेबी कॉर्न की खेती में भूमि की तैयारी के समय 15 टन कंपोस्ट एवं गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। बेसल ड्रेसिंग उर्वरकों के रूप में एनपीके का जो रेशियो है 75-60-20 है प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की बुआई के 3 सप्ताह बाद टॉप ड्रेसिंग हम करेंगे, ये इसमें 80 केजी नाइट्रोजन एवं 20 केजी पोटास देना चाहिए। सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो बेबी कॉर्न की फसल जल जमाव एवं जल ठहराव को सहन नहीं कर पाती है इसलिए खेत में आंतरिक जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर पौधे में जब फल आने की अवस्था में बेहतर उपज के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और नमी हमेशा हमें बरकरार रखना है लेकिन पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और खरपतवार नियंत्रण को जब हम देखते हैं तो बेबी कॉर्न की खेती के लिए खरपतवार नियंत्रण औसतन 1-1.5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से सीमाजीन या एट्राजीन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं और इसमें 500-650 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पहली निराई बुआई के 2 सप्ताह बाद करनी चाहिए, मिट्टी चढ़ाना या टॉप ड्रेसिंग बुआई के 3-4 सप्ताह के बाद करनी चाहिए। बुआई के 40-45 दिनों के बाद नर फूलों को तोड़ना चाहिए, डिटेसलिंग की प्रक्रिया बहुत जरूरी है तभी गुणवत्तापूर्ण बेबी कॉर्न हम उत्पादन कर सकते हैं।
6: तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करने के वक्त बहुत सारे रोगों से बचा जा सकता है, तो क्या सारे रोगों से बचा जा सकता है या बाद में रोग लग गए तो किस तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है?
5: बाद में रोग लगने की अवस्था में जैसे इसमें तना छेदक का काफी प्रकोप होता है और बेबी कॉर्न की फसल में शूट फ्लाई पिंक बोरर तना छेदक प्रमुख रूप से लगते हैं तो इसमें इस कंडीशन में हम कार्बेरिल 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे। वैसे तो इसमें कीट की समस्या हार्वेस्टिंग पहले ही हो जाती है क्योंकि दाना बनने की जरूरत नहीं होती, पहले ही हार्वेस्ट हो जाती है तो इसमें कम से कम इंसेक्टिसाइड का यूज होता है और बेबी कॉर्न जो छिलके के अंदर होता है उसमें इसका जरा भी रसायनों का अवशेष नहीं होता
6: जी। और मैम बेबी कॉर्न से तो लाभ किसानों को बहुत मिलता ही है लेकिन और अधिक लाभ के लिए कौन से इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, कैसे अंतर्वर्ती फसल लगाए जा सकते हैं?
5: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान भाई बेबी कॉर्न की फसल तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ साथ जो इंटरक्रॉपिंग जिन फसलों को ले सकते हैं वे हैं आलू, मटर, राजमा, चुकंदर, प्याज, लहसुन, पालक, मेथी, फूलगोभी, ब्रोकली, मूली, गाजर, इन सभी को ले सकते हैं। इसके अलावा खरीफ के मौसम में लोबिया, उड़द आदि उगाई जा सकती है और इसके साथ साथ फूलों को भी लगा सकते हैं, ग्लैडियोलस लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, इन सभी का हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं।
6: मैम बार बार कह रही हैं कि बेबी कॉर्न की जब हम खेती करते हैं तो उसे बहुत जल्दी ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो कैसे कटाई की जाती है या तुड़ाई कैसे की जाती है?
5: बेबी कॉर्न को आमतौर पर जब सिल्किंग स्टेज होता है, सिल्क निकलने के 1 से 3 दिन के अंदर ही इसकी तुड़ाई कर ली जाती है, और एक पौधे से 3 से 4 बार हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि अगात प्रजाति के

0: खरीद लगाए जाते हैं तो 50 से 60 दिनों के अंदर ही ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। इसकी तुड़ाई के समय भुट्टे का आकार हमें ये ध्यान देना होता है कि भुट्टे का आकार 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो, इसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा लंबा या ज़्यादा मोटा भुट्टा एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाता है, और इसका वजन 7 से 8 ग्राम होना चाहिए। भुट्टे को 1 से 3 सेंटीमीटर सिल्क आने पर ही तोड़ लेना चाहिए। इसको तोड़ते समय इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से ये अच्छा नहीं होता है और जल्दी ही खराब हो जाता है। खरीफ के मौसम में प्रतिदिन हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एवं रबी के मौसम में 1 दिन के अंतराल पे हार्वेस्टिंग करते हैं।
1: कटाई के बाद किस तरीके से बेबी कॉर्न का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि नमी का भी ध्यान रखना होता है, तो क्या क्या प्रबंधन करना चाहिए?
0: तुड़ाई के बाद बेबी कॉर्न की ताजगी लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। तुड़ाई के बाद भुट्टों को छायादार जगह में रखकर उसके छिलके को हटाना चाहिए। इसका भंडारण रेफ्रिजरेटर या किसी ठंडी जगह में किसी टोकरी या प्लास्टिक में करना चाहिए। इसकी हम डिब्बाबंदी भी करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन में ट्रांसपोर्ट करें, और जहाँ हम जिस मंडी में पहुँचाएँ या जहाँ भी किसी हम मॉल में पहुँचाएँ वहाँ पर भी रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में होना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये मैंने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है इसका उत्पादन, और इसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसका एक्सपोर्ट काफ़ी होता है इंग्लैंड, अमेरिका, इन सभी देशों में भी भारत से एक्सपोर्ट होता है, और इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ मक्के की कीमत 20 रुपये प्रति केजी किसान भाई पाते हैं, वहीं इसकी कीमत 250 से 300 रुपये प्रति केजी मिलता है। तो और इसकी खेती सालों भर हो सकती है, तो 3 से 4 बार लगा सकते हैं सालों भर। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ फॉडर भी मिल जाता है, तो कहीं भी नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। सो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव क्रॉप है और रोजगार सृजन के लायक है। हमारे जो भी युवा किसान भाई हैं इसके उत्पादन तकनीक को अपनाकर इस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है बीयू सवर के तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ मेज की तरफ से। बेबी कॉर्न की खेती के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चल रहा है एवं ट्रेनिंग दी जा रही है, और भारत सरकार बिहार सरकार आत्मा की तरफ से बीज एवं अनुदान राशि मुहैया कराई जा रही है। तो काफ़ी लाभान्वित होकर किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं और बहुत बहुत मुनाफा कमा सकते हैं।
1: यानी कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है, तो बेबी कॉर्न की खेती करनी चाहिए और ये काफ़ी लाभदायक खेती है, बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, और बेबी कॉर्न के हर एक हिस्से से किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों,

आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें। और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले। और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी

चाहे लेथरीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज. मैं हूं अनु और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करेंगे खरीफ मौसम की सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या एवं प्रबंधन. और इस विषय को आज लेकर हमारे बीच आए हुए हैं डॉक्टर भूपल नामदेव हथजाड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये निमेटोड क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं.
1: नमस्ते सभी को. निमाटोड एक प्रकार का राउंडवर्म है जो मिट्टी, पानी और पौधों सहित वातावरण में पाया जाता है. वे छोटे और पतले हैं जो बेलनाकार शरीर के होते हैं. सूत्रकृमि इसको हिंदी में बोलते हैं और निमाटोड उसको इंग्लिश में बोलते हैं. तो निमाटोड अविश्वसनीय रूप से विविध है और पृथ्वी पर लगभग हर परिस्थिति तंत्र में पाए जा सकते हैं. कुछ निमाटोड फायदेमंद होते हैं, जैसे कि वो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का विघटित करने में मदद करता है, जबकि अन्य हानिकारक होते हैं और फसलों

0: जानवरों और मनुष्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। निमेटोड परजीवी हो सकते हैं, पौधों की जड़ों या जानवरों के ऊतकों पर भोजन कर सकते हैं, या मुक्त रहने वाले मिट्टी या पानी में रह सकते हैं, और बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों पर भोजन कर सकते हैं। निमेटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। वे पौधों की जड़ों पर भोजन करते हैं जिससे पौधों का विकास रुक जाता है, जिसके कारण फसलों की पैदावार में कमी आती है। निमेटोड मिट्टी में पाए जाते हैं और यह कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है।
1: जी, अभी ये जो सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड, ये फसलों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: निमेटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो पौधों के उनकी जड़ों, तनों और पत्तियों खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा करते हैं, जिनमें अवरुद्ध विकास, पत्तियों का पीला पड़ना, मुरझाना और कम उपज शामिल है। निमेटोड सब्जियों, फलों, अनाज और दालों सहित सभी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ फसलें जो विशेष रूप से निमेटोड क्षति के लिए अति संवेदनशील होती है, उनमें टमाटर, आलू, भिंडी, खीरे, तरबूज, केले, खट्टे फल, अंगूर, चावल, गेहूं और छोले शामिल है।
1: बिहार राज्य की हम बात करें तो खरीफ मौसम में कौन कौन सी सब्जियों का उत्पादन यहाँ किया जा सकता है?
0: जैसा कि जानते हैं कि बिहार में व्यापक जलवायु परिवर्तन मौजूद है और इस क्षेत्र में वर्षा 900 से 1700 मिलीमीटर तक होती है। यह राज्य देश में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में सभी प्रकार की सब्जियों का उत्पादन होता है। लगभग सभी सब्जी फसलों जैसे बैंगन, बेल, मिर्च, तंबाकू, टमाटर, कद्दू, तरबूज, खीरा, ब्रोकोली, भिंडी और अन्य जड़ों फसलें राज्य में व्यापक रूप से सफलतापूर्वक उगाई जाती है।
1: जी, खरीफ सब्जियों में कौन कौन से सूत्रकृमि नुकसान करते हैं और उसके लक्षण कैसे पता करेंगे?
0: वैसे तो बहुत सारी निमेटोड से जो इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जिसमें से मोर वैल्यूएबल है जो कि सब्जियों का जड़गांठ रोग, जिसको बोलते हैं मूल ग्रंथि सूत्रकृमि। इसका साइंटिफिक नेम है मेलाडोगाइम प्रजातियम। ये जो जड़ों पर विभिन्न आकार के गांठे बन जाना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों का बौना रह जाना, पौधों का मुरझाना, पौधों को आसानी से उखड़ जाना, उत्पादन में प्रतिकूल गुणात्मक व मात्रात्मक प्रभाव इत्यादि इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। दूसरा निमेटोड है गुर्दाकार सूत्रकृमि रोग, जिसको बोलते हैं रेनिफॉर्म सूत्रकृमि। ये आश्रयी फसलें होती है उसकी उड़द, लोबिया, मूंग, चना, मटर, टमाटर, बैंगन, अंगूर, पपीता, अरंडी आदि। पौधों की बढ़वार रुकना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों का छोटा रह जाना, पौधों का मुरझाना, जड़ों पर छोटे छोटे भूरे रंग के चकते बन जाना, उत्पादन में प्रतिकूल गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव एवं राइजोबियम जीवाणु पर प्रतिकूल असर पड़ना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। और तीसरा है जड़ विकसित रोग, जिसको बोलते हैं जड़ विकसित सूत्रकृमि प्रोटाइलेंकस प्रजाति। पौधों का बढ़वार में कमी, पत्तियों का पीला पड़ना, जड़ों पर काले एवं भूरे रंग के चकते का बढ़ना एवं पूर्णतः क्षत विक्षत हो जाना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं।
1: जी, सूत्रकृमि के कारण होने वाले सामान्य लक्षण क्या हैं, उनके बारे में?
0: जैसा कि निमेटोड सूक्ष्म कृमि जैसे जीव है जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यह दूषित मिट्टी, पानी या पौधों के माध्यम से फैलते हैं। निमेटोड मिट्टी में पाए जाते हैं और कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, जिससे इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। गेहूँ, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, परवल और धान को विशेष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अनार, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर, किन्नू और अंगूर जैसे अन्य फलों वाली फसलों में भी निमेटोड पाया जाता है। निमेटोड के कारण जड़गांठ रोग, पुट्टी रोग, नींबू मुरझा रोग, जड़ सड़न रोग और जड़ फफोला रोग उत्पन्न होते हैं। निमेटोड पौधों की जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। निमेटोड पौधों की जड़ों से रस चूसते हैं, जिससे पौधों का मिट्टी से उर्वरक पानी या पोषक तत्वों की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। निमेटोड के कारण जड़ों में गांठ बन जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधा नष्ट हो जाता है। जब पौधों में निमेटोड का प्रकोप होता है तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे मुरझा कर सूखने लगते हैं। निमेटोड के कारण प्रतिवर्ष 60-80% तक फसल उत्पादन में नुकसान होता है।
1: जी, सब्जियों में जड़गांठ रोग से कैसे बचाव करें?
0: जैसे कि जड़गांठ रोग है, अगर उसको उससे अगर हमें बचाव करना है तो सबसे पहले हमें प्रत्यारोपित सब्जियों की पौधशाला को गर्मियों में 15 से 20 दिन तक पतली पारदर्शक पॉलीथीन से बुवाई पूर्व तक ढक देना चाहिए। और पौधशाला यानी जिससे हमें नर्सरी बोलते हैं, पौधशाला में कार्बोफ्यूरॉन 0.3 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बुवाई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। रोगग्रस्त खेतों में नीम, करंज, महुआ आदि की खली, जिसको हम लोग केक बोलते हैं, 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिलाए। गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में दो से तीन गहरी जुताई करें। रोगरोधी किस्म जैसे टमाटर की है कर्नाटक हाइब्रिड, सिलेक्शन 120, हिसार ललित, रोनीत, और मिर्च के है ज्वाला, गुच्छेदार, बैगन की वैरायटी है विजय, ब्लैक ब्यूटी, कच्चा बैगन, भिंडी IC 97 73 और IC 11 72 97 की बुवाई करनी चाहिए।
1: जी, इसके बाद गुर्दाकार सूत्रकृमि के बारे में आपने बताया था, तो इस रोग का प्रबंधन कैसे करेंगे किसान भाई?
0: हाँ, अगर हमें गुर्दाकार सूत्रकृमि रोगी का प्रबंधन करना है तो उसके लिए 10% की मात्रा से नीम बीज गिरी अथवा कार्बोसल्फोन 3G दवा से 3% सक्रिय तत्व के हिसाब से बीजोपचार करें। रोगग्रस्त खेतों में नीम, करंज, महुआ आदि की खली 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए और गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 गहरी जुताई करें।
1: जी,
0: रोग रोधक किस्मों का प्रयोग करें, जैसे लोबिया की है C-152, V-16 और टमाटर में है सिलेक्शन 120, मूंग की फसल है ML-62, ML-70, ML-80 और मटर की है DDR-39, DDR-40।
1: जी, जड़ विषत रोग से फसल का बचाव कैसे करना चाहिए?
0: इसके लिए भी हम नीम, करंज, महुआ, सरसों आदि की खली का 5 क्विंटल प्रति हेक्टर की मात्रा में प्रयोग करें। गर्मियों में 2-3 गहरी जुताई करें और कार्बोफ्यूरॉन कणों का 1-1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें।
1: फसलों में सूत्रकृमि का अगर जैविक नियंत्रण करना हो तो कैसे करेंगे?
0: कुछ पौधों के अर्क जैसे नीम का तेल और लहसुन में नेमाटिसाइडल गुण पाए जाते हैं, जिसका उपयोग फसलों से नेमाटोड को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।
1: जी।
0: फसलों के चारों ओर आवरण फसलें जैसे कि गेंदा और सरसों की मिट्टी में नेमाटोड आबादी को कम करने के लिए लगाया जाता है। फसल चक्र अपनाना चाहिए, यह निमाटोड के जीवन चक्र को बाधित कर देता है और उनके खाद्य स्रोत को कम करते निमाटोड आबादी को कम करने में मदद कर सकता है। निमाटोड को नियंत्रित करने के लिए कुछ बैक्टीरिया, कवक और वायरस का भी उपयोग किया जाता है। फसलों में सूत्रकृमि को नियंत्रित करने के लिए गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और जुताई के 1 सप्ताह बाद जमीन में फिर से जुताई कर 10 क्विंटल नीम की खली प्रति एकड़ उपयोग करने के बाद ही फसल बोनी चाहिए। नीम की खाद का उपयोग उपज में 40% तक की वृद्धि करता है, फूलों में विकास में वृद्धि करता है, फलों की संख्या में वृद्धि करता है और फलों को अधिक सुखद और चमकदार बनाता है और साथ में फलों का आकार बड़ा हो जाता है। 1-2 साल के पौधों में 1 किलो और 3-5 साल के पौधों में 2-3 किलो पौधों की जड़ों के पास एक ट्रे बनाकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दे और पानी दे। इसके अलावा घुलनशील नीम का तेल ड्रिप द्वारा भी डाला जा सकता है
1: जी। और अगर रासायनिक तरीके से नियंत्रण करना हो तो कैसे करेंगे फसलों में सूत्रकृमि का?
0: उसके लिए हम लोग एक बायर कंपनी का जो वेल्लम प्राइम है, जिसको बोलते हैं कि फ्लूपायरम, 34.48% में आता है SC, दवा का प्रयोग 40 से 425 मिली प्रति 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ ड्रेंचिंग या ड्रिप के माध्यम से उपयोग करें। इस दवा का उपयोग चिपके एजेंट के साथ करें। यह दवा जड़गांठ रोग यानी रूट नॉट नेमेटोड का तेज प्रभावी और लंबी अवधि तक नियंत्रित करती है।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आज खरीफ मौसम की सब्जियों में सूत्रकृमि की समस्या एवं प्रबंधन के बारे में, और आशा करते हैं कि आज के इस वार्ता से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये जो सब्जियों में सूत्रकृमि आपको दिखते हैं, उनके लक्षण, रोग के लक्षण, और साथ ही आप उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हो, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी। कई बार महिलाओं पर ये दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है, करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा खराब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप, हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे, लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर इमोशनल होकर रोने लग गई हैं, या फिर बिना मतलब के बहुत छोटी सी बात है या फिर कोई बात है ही नहीं, फिर भी आपको बहुत उदासी हो रही है, तो सिर्फ ये इमोशनल वीकनेस नहीं हो सकती है, ये हो सकता है कि आप मेंटली भी थोड़ी परेशान हो या फिर ज्यादा परेशान हो। और कई बार ये भी देखा जाता है कि नींद और भूख के पैटर्न में भी बदलाव आता है। आप पहले आराम से आपका टाइम फिक्स था सोने का, आपको नींद भी अच्छी आ जाती थी, लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है या फिर जरूरत से ज्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है, तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा हो सकता है। और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीजें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलते हैं, किसी चीज पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो जरूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत है। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है, तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दे, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें। इससे बहुत फायदा होता है, और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी, और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ, या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं, तो ये भी आपको नींद आने में काफी मदद करता है, तो ये चीजें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीजों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें, और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल, और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ।
3: लेडीज फर्स्ट।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है। सोयाबीन की हम बात करें, सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है, लेकिन जहाँ तक खेती की बात है तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट फिजियोलॉजी में और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद
4: सर। जहाँ हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
5: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो बिहार में अब ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूं की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस ज़िले में हुई है, इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
4: जी तो सर अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
5: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है तो इसके खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीज प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वहीं पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार 1 बार निकौनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है, पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में 1 बार डाइमेथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इसे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं।
4: जी तो इस प्रकार किसान भाइयों आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं तो डॉक्टर साहब अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
5: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार अंकुर शिलाजीत पंजाब 1 किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव मोनेटा MSCS 13 मैक्स 58 पूसा 16 पूसा 20 पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहली किस्म है PK 472। ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजैक पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वैरायटी है JS335। यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु, पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रोई वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी GH93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वैरायटी GH97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी GH95-60 है, इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जर सरण एवं पर्निया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई की यह किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल बीटल सेमी लूपर तंबाकू झल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोग तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
4: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
5: ये सस्क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी भारी उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने के अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बोनेजिम या थीरम के 2 किलोग्राम बीज का 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें, तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन की खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बकर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बकरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उतली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरी फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्लोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और कुछ चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलों या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रभावित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
4: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
5: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैंने विस्तृत

0: रूप से बता रहा हूँ, इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोब्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या एसपी 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि ज़रूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्विनोलोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। एक इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफ्रोजोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनजेबिन 50 WP या थाईफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टोरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 ppm 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड सफ़ेद मक्खी थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाली कीड़ों के थायमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर थाइमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 MHz पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि सामु सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर
3: मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करे जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाए। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
1: और जे रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
1: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
1: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
1: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
1: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा
2: जी। चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात,

0: उत्पत्ति का प्रश्न है। इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
1: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
0: जी,
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी अजीत जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
2: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुनें।
1: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
3: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
4: बहन जी, डाकिया।
3: अच्छा, खोलते हैं भैया।
5: जी कहिए।
4: आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
3: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
3: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम, ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
3: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
7: माँ, माँ, लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
3: अच्छा किया बेटा, तू आ गया। ले बेटा, देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखो तो।
3: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
8: अरे वाह,
3: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
8: ऐसे नहीं, बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
3: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है, फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: माँ, और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से तीन तीन फौजी होंगे।
3: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा।
6: अच्छा। गुलाब बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
2: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें

0: अजीत होरू, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज बातें करने वाले हैं हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। और आप सभी को पता है किसान भाई, आप सभी चाहते हैं कि आपके संपूर्ण क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में अधिक से अधिक गुणवत्ता वाली पैदावार हो। तो किसान भाइयों, देखा गया है कि आप सभी के पास एक अच्छा प्रबंधन नहीं उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज इनसे हम बातें करेंगे इसी प्रबंधन के बारे में, यानी कि हमारा जो आज का जो विषय है, चर्चा का विषय है, वो है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन। तो सबसे पहले तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM है क्या?
2: सबसे पहले बिहार के किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आज का जो टॉपिक है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आपका प्रश्न है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। तो जो पोषक तत्व तो हम दो या दो से अधिक सोर्स से देते हैं, तो वहाँ पर हम उसको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। जैसे हम पोषक तत्व तो जो है उसकी पूर्ति के लिए, फसल में पूर्ति के लिए हम नीम के खली का प्रयोग करते हैं, भूरी खाद का प्रयोग करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, केक्स का प्रयोग करते हैं और फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। तो हम किसी दो सोर्स, जो हमारी सोर्स हैं, जो उसके दो से अधिक को हम जब एक साथ मिला करके प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी जो उपयोग क्षमता है, वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो मृदा का जो भौतिक, रासायनिक और बायोलॉजिकल अवस्था है, वो बेटर होता है। अल्टीमेटली जो क्या होता है, जो मृदा स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो दो से अधिक सोर्स को हम एक साथ जब मिला कर देते हैं, तो उसको हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जब दो पोषक तत्वों को मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है।
2: सोर्स जो है,
1: हाँ, सोर्स उन्हें मिलाया जाए तो उनकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है, जिससे कि फसलों को और भी ज्यादा पोषण मिलता है। तो सर, अब ये बात हो गई कि पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, और इसके बाद हम जानना चाहेंगे आपसे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्यों किया जाए।
2: जैसा कि आज की जो हमारी मृदा स्वास्थ्य है, वो दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। अगर हम बात करें 1950 की, तो हमारे जो स्वास्थ्य मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा थी, वो 1.2% थी। लेकिन करंट में क्या है, जो है ये मृदा की जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो घट करके 0.3% या उससे कम रह गई है। इसका वजह क्या है कि हम दिन पर दिन उच्च उत्पादन वाली फसलों को लेते गए, लेकिन हम उसमें जो खाद का प्रयोग है उसको कम करते गए, अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग करते गए। तो ये जरूरी है कि हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे कार्बनिक स्रोत वाले खाद हैं, जैसे हमारा हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरित शैवाल है, अजोला है, फसल अवशेष है, केक्स है, जो खलियां हैं, इनका भी प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जो मृदा की जो सस्टेनेबिलिटी है, मृदा की जो लंबी अवधि तक उत्पादन करने की क्षमता है, वो बनी रहे और मृदा स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
1: सर, आपने यहाँ पर अभी हरी खाद के बारे में कहा, तो हम जानना चाहेंगे कि हरी खाद किस तरीके से किसानों की मदद कर सकती है।

0: लगता है इस प्रबंधन में, या फिर इसका जो महत्व है वो किस तरीके से यहाँ किसानों को?
1: जी हाँ, जो हरी खाद है, हरी खाद देखा जाए तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रदान करने का एक सोर्स है, और हरी खाद के द्वारा हम सबसे कम खर्च में एक अच्छा पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि हरी खाद में हमें जो हरी खाद की फसलें हैं, जैसे आपका ढैंचा है, सनई है, मूंग है, और भी जो हमारी दलहनी फसलें हैं, उनको हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के लिए हमें करना क्या होता है कि फसल की बुआई से 2 महीना पहले, जो हमारा मुख्य फसल है धान की, हम बुआई करने जा रहे हैं या रोपाई करने जा रहे हैं, तो उससे कम से कम 2 महीना पहले हमें हरी खाद को जो है खेत में बुआई करना होता है। इसके लिए जैसे हम बात करते हैं ढैंचा की, क्योंकि ढैंचा जो है एक बहुत ऐसी फसल है जो दलहनी होते हुए जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन, जो जलमग्न कंडीशन है, फ्लडिंग कंडीशन है, वहाँ पर भी ढैंचा आसानी से हरी खाद के रूप में हो जाता है। और जो है जो इसको हम करीब 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं, और सिंपल जो है जुताई करके बरसात का जो फर्स्ट बार पानी मिलता है या हमारे पास सिंचाई की सुविधा है, तो हम 15 मई के आसपास ही हम जो है इसकी खेतों में बुआई करते हैं। या हमारा जो गेहूं की कटाई हो जाती है, गेहूं की कटाई समाप्त हो जाए, खेत हमारा खाली होता है, तुरंत हम हल्का सिंचाई करके, या अगर बरसात हो जाती है किसी कारणवश, तो हम तुरंत उसी नमी पर ढैंचा की बुआई करते हैं। और हमें ध्यान देना होता है कि जब ढैंचा में जो है फूल आने की स्थिति होती है, या 50 से 55 दिन का जब हो जाता है, एक अच्छी बढ़वार हो जाती है 5 से 6 फीट की, उसी समय हम मिट्टी पलटने वाले हल से, चाहे वो ट्रैक्टर ड्रॉन हो या बुलक ड्रॉन हो, मिट्टी पलटने वाले हल से हम इसको जमीन में मिला देते हैं अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे जो है 15 से 20 दिनों में ये ढांचा जो है जमीन में धीरे धीरे गल सड़ जाता है, और अच्छी तरह सड़ने के बाद, अर्थात पलटने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही हमें धान की रोपाई करनी होती है। क्योंकि अगर हम ढैंचा को जमीन में अच्छे से मिला देते हैं और तुरंत अगर धान की बुआई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ढैंचा हम पलट दिए होते हैं, तो वो जमीन से जो है थोड़ा सा 15 दिन तक माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए वो जमीन से नाइट्रोजन लेता है, तो फसल का बढ़वार रुक जाता है और कभी कभी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए हम इसको लगभग जब ढैंचा हमारा 45 से 50 दिन का होता है, उस समय हम इसको जमीन में मिला देते हैं, और जमीन में मिलाने के बाद इसके 2-3 बार जुताई कर लेते हैं, जिससे अच्छी तरह से उसमें वो सड़ गल जाए, और जमीन में मिलाने के कम से कम 15 से 18 दिन बाद ही, या जो कहिए 15 से 20 दिन बाद ही हमको मुख्य फसल धान की रुपाई करनी होती है। और देखा जाए तो जो ढैंचा है, ढैंचा 2 प्रकार का है, इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं सिस्मिनिया रोस्टाटा और सिस्मिनिया एक्विलेटा। जो सिस्मिनिया रोस्टाटा है, ढैंचा है, ये जो है न्यूडूल, जो इसकी जड़ें होती हैं, इस जड़ों में आप देखेंगे गुलाबी रंग का गांठ बनता है, और उस गुलाबी रंग के गांठ में जो है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है आवास करता है, और वही राइजोबियम जो है गांठों में रहते हुए जब राइजोबियम मरता है तो जमीन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में देता चला जाता है। जो वातावरण में हमारे 78% नाइट्रोजन है उसको जमीन में ला देता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जनरली जो है ढैंचा बोने के लगभग 25 से 28 दिन बाद उसकी जड़ों में ये राइजोबियम वाले पिंक कलर की जो है गुलाबी रंग की गांठें बनना शुरू होती हैं, तो 28 दिन के बाद ही वो गांठें बनना शुरू होती हैं, तो 28 से कम 50 दिन तक वो गांठें बनती जाती हैं, संख्या उनका बढ़ता जाता है, और इस तरह से लगभग लगभग 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है फिक्स कर लेता है। जबकि हमको धान में जनरली 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है, अर्थात अगर सुगंधित धान है तो केवल हम 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देते हैं, और अगर हमारा हाइब्रिड धान है तो 120 किलोग्राम देते हैं। तो देखा जाए तो सुगंधित धान की उत्पादन हम केवल ढैंचा की ग्रीन मैन्योरिंग करके, हरी खाद के प्रयोग करके ही हम सुगंधित धान का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको हाइब्रिड धान लेना है या हाई यील्डिंग धान लगाना है, तो हमें लगभग लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है अलग प्रकार के सोर्स से देना होता है, जो उसको हम फर्टिलाइजर के माध्यम से भी दे सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जब हम ढैंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो 80 किलोग्राम तक तो नाइट्रोजन देता ही है, लेकिन साथ में पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, पोटास तथा जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे है जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, इन सभी को भी वो जमीन में दे देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जमीन में जो हमारे फसल उत्पादन के लिए माइक्रो पोषक तत्व चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए, और भी जो पोषक तत्व चाहिए, जो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लगभग उनका एक वेल बैलेंस कॉम्बिनेशन में ये पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे जो है हमारे जो मिट्टी की जो भौतिक अवस्था है वो तो सुधर ही रही है, केमिकल अवस्था जो है, रासायनिक अवस्था सुधर रही है, साथ ही साथ जो बायोलॉजिकल, जो हमारे मृदा में विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और इस प्रकार देखा जाए तो दो तीन साल अगर हम ढांचे का प्रयोग खेत में करते हैं तो जो मृदा का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सुधर जाता है और हम जो है अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से हम उत्पादनता को बढ़ा सकते हैं।
0: तो सर ने अभी बताया हमें कि हरी खाद का इस्तेमाल, साथ ही इसके महत्व के बारे में भी बताया, लेकिन एक बात सर मैं आपको बताऊं कि अगर जो किसान है, आपसे पूछना भी चाहूंगी और हमारे किसान भी आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद क्या इस महंगाई के इस दौर में क्या हरी खाद उनके लिए अच्छा सोर्स माना जाएगा अगर महंगाई के नजरिए से देखा जाए तो?
1: ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज देखिए जो हमारा भारत सरकार है वो जनरली 75% सब्सिडी पर आप किसान भाइयों को फर्टिलाइजर देती है, अर्थात जितना हमारे देश में 20 से 22 मिलियन टन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है उस सभी फर्टिलाइजर पर 75% तक सब्सिडी देती है। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट पर ओवरऑल कितना ज़्यादा बर्डन पड़ता है। पहले हम जो आज से 1950 से पहले खेती करते थे, हर साल जो है किसान भाई लोग हरी खाद का प्रयोग करते थे खेतों में, लेकिन चूंकि पॉपुलेशन 4 गुना से 5 गुना बढ़ चुकी है तो हरी खाद के लिए अब किसान भाइयों के पास समय नहीं मिल पाता है, वो लगातार इंटेंसिव क्रॉपिंग करते हैं जिससे वो धीरे धीरे हरी खाद को भूल गए हैं। लेकिन हमारी स्वास्थ्य सॉइल मृदा का जो स्वास्थ्य है वो इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इतना खराब हो चुका है कि आज हरी खाद की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो लगभग लगभग जो फसल उत्पादन में 3/4 फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ती है वो हरी खाद से पूरी होती है। और हरी खाद से हम बताएं सबसे सस्ता जो है स्रोत है, हरी खाद जो है पोषक तत्व प्रदान करने का सबसे सस्ता स्रोत है। आपको करना क्या, आप देखिए एक हेक्टेयर के लिए आपको करीब 30 से 35 किलोग्राम ढांचा लगाना पड़ता है। अब ढांचा लगाने के बाद उसको 50 दिन पर सीधे जमीन में इनकॉर्पोरेट करना है, तो अब 50 किलो ढांचे का कीमत जो है आपका 1500 रुपया से ऊपर नहीं हो पाता है, अर्थात देखा जाए तो केवल एक बोरी DAP के बराबर हमारा खर्च हो रहा है और उससे हमको करीब 10 बोरी DAP के बराबर का लाभ मिल रहा है। तो हम क्यों ना उस लाभ को लेना चाहें। हमें सच कहिए तो जो हमारा ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री से फर्टिलाइजर मिलता है उसके प्रयोग को हम जीरो कर सकते हैं। अच्छा। अगर लगातार हम ढांचे का प्रयोग करें, क्रॉप रेसिड्यू का प्रयोग करें, जो फसल अवशेष है उसका प्रयोग करें, भूरी खाद का प्रयोग करें, अजोला का प्रयोग करें, नील हरित शैवाल का प्रयोग करें और जो हमारी केक्स हैं जो उसको हम केक्स विभिन्न प्रकार के हैं इन सब का प्रयोग करें, मतलब जो पोषक तत्व के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्रोत हैं, इन सभी का एक साथ समन्वित प्रयोग करें तो हो सकता है हम जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है उसके प्रयोग को हमें जरूरत ही न पड़े तो हम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो है एक स्वस्थ फसल के उत्पादन की कामना कर सकते हैं और आज उसी की जरूरत है। क्योंकि आज आप देखिए कि सब जगह जो है जो हमारा प्रोड्यूस मिल रहा है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर द्वारा प्रोड्यूस है जिससे हमको विभिन्न प्रकार के बीमारियां और रोगों का सामना करना पड़ रहा है। आज पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा वो लोग उपयोग करते हैं जिससे वहाँ देखिए जो ग्राउंड वाटर, आपको बता दें कि जितना हम नाइट्रोजन डालते हैं उसका केवल 30 से 35% भाग ही पौधा उपयोग कर पाता है, बाकी 60 से 65% भाग जो है विभिन्न प्रकार से नष्ट हो जाता है, 15 से 17% जो है ऊर्ध्वाकरण द्वारा वो ऊपर उड़ करके नष्ट हो जाता है, 25 से 30% लीचिंग ग्लासेस द्वारा ग्राउंड वाटर में चला जाता है, भूमिगत जल में चला जाता है और उसी भूमिगत जल को हम पीते हैं। तो आजकल पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है, जो हमारा भूमिगत जल है वहाँ पर नाइट्रेट की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो वहाँ आप देखेंगे कि बच्चों में जो है नीला पीला होना, उनका कलर जो है नीला होता है जब जन्म लेते हैं, बहुत से बच्चे नीले कलर के जन्म लिए होते हैं, इसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं और ये जो है नाइट्रेट टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। तो आज की तो सख्त जरूरत है कि हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें और अपने बजट को भी सुरक्षित रखें। इस प्रकार हरी खाद का उपयोगिता ओवरऑल देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है और हम कम खर्च में कम बजट में हरी खाद को अच्छे से अपना करके अपने मृदा को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तथा पर्यावरण को भी स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो प्रति हेक्टेयर 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च होता है फर्टिलाइजर में, उसमें हम 3/4 भाग तक कटौती कर सकते हैं, अर्थात करीब 8 से 10 हज़ार रुपया हम बचा सकते हैं सिर्फ फर्टिलाइजर के द्वारा जो हम राइस में देते हैं, धान में देते हैं। अगर हम हरी खाद देते हैं तो कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया हम अलग से बचा लेंगे।
0: तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो हरी खाद है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है हमारे किसान भाइयों के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि 50 हेक्टेयर जमीन के लिए 1500 रुपये लगभग खर्च होते हैं, और सिंथेटिक फर्टिलाइजर के जो हानिकारक जो तरीके हैं क्रियाओं के बारे में सर ने बताया, और बच्चों में जैसे कि बीमारियां फैल रही है, और युवाओं में और जो बुजुर्ग लोग हैं सभी में सिंथेटिक फर्टिलाइजर की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारी बातें बताई डॉक्टर साहब ने। और अब हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जब किया जाए तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सर, तो ऐसी कुछ बातों के बारे में बताएंगे आप जिसका ध्यान खासतौर पर हमारे किसान भाई और बहन रखें।
1: देखिए, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हम किस फसल के लिए समेकित पोषक तत्व देने जा रहे हैं। जैसे आज जो हमारा टॉपिक है वो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन जो है धान में करना है, तो धान के लिए जो हमारा पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, अगर हम हाइब्रिड या हाई यील्डिंग वैरायटी लगाते हैं तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देने की जरूरत पड़ती है। तो अब हमें 120 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है उसको हम बेस मान लेते हैं, उसको हम विभिन्न प्रकार के स्रोत हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है उससे हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमको सबसे चीपेस्ट सोर्स हरी खाद है, तो अब हम हरी खाद देते हैं तो जनरली अगर एक अच्छी फसल है हरी खाद की तो 80 किलोग्राम तक जो है ढैंचा या सनई के द्वारा हम अगर हरी खाद दे रहे हैं तो 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ढैंचा में एक प्रजाति और है जैसे सिसबनिया रोस्टाटा कहते हैं साइंटिफिकली, जिसमें जड़ में भी गांठ बनती है और तना में भी गांठ बनता है, दोनों में राइजोबियम रहता है। तो सिसबनिया रोस्टाटा जो ढैंचे की प्रजाति है इससे करीब 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स रहता है। तो आप देखिए, अगर हम सिसबनिया रोस्टाटा को ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो हमारा 230 किलोग्राम तक नाइट्रोजन फिक्स कर दिया। उसी रेशियो में 0.2% उसमें फास्फोरस भी होता है और 0.4% तक जो है पोटास भी होता है। तो देखा जाए तो धान के लिए जितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास चाहिए सिसबनिया रोस्टाटा के केवल ग्रीन मैन्योरिंग से ही अकेले जो है ढैंचा की सिसबनिया रोस्टाटा की जो ढैंचा वाली प्रजाति है केवल इससे हमारा अकेले जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, हमें अलग से फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम सिसबनिया एक्विलेटा प्रयोग करते हैं जो केवल जड़ों में गांठें बनती हैं तो केवल उससे 80 किलोग्राम तक मिलता है नाइट्रोजन, तो बाकी हमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है 40 किलोग्राम वो अलग से देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको ध्यान ही देना होगा मुख्य रूप से कि हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट डाल रहे हैं। जैसे हरी खाद डाल रहे हैं तो हरी खाद से हमारा कितना नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास या सूक्ष्म पोषक तत्व ये सब जमीन को मिल रहा है। फिर उसके बाद फसल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके आधार पर हम दूसरी खाद चाहे फसल अवशेष है चाहे सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उसके माध्यम से बाकी फुलफिल करेंगे। वैसे अमूमन देखा जाए तो जो हमारा अब तक का रिकमेंडेशन है, जनरली अगर हमारे पास हरी खाद या ऑर्गेनिक खादों की कमी है तो हम क्या करते हैं 3/4 मतलब 75% भाग जो है हम फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं और 25% भाग जो है पोषक तत्व का वो है वो विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिक स्रोत हैं जो कार्बनिक स्रोत हैं फर्टिलाइजर के खाद के उससे देते हैं, चाहे हरी खाद के रूप में दे दें या भूरी खाद के रूप में दे दें, चाहे नीलरे सरवाल से दे दें या अजोला से दे देते हैं या फसलों से दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हरी खाद और ये सब विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक खाद हैं इनकी उपलब्धता है तो हम कोशिश करेंगे कि जो है अधिक से अधिक मात्रा इनसे दिया जाए, बचा हुआ मात्रा जो है वो फर्टिलाइजर के माध्यम से दिया जाए, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है उससे दिया जाए।
0: तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया कि अगर आप नाइट्रोजन पोटास या जो भी सूक्ष्म जीव पोषक तत्व हैं आप अपने मिट्टी को या खेत में जो मृदा है आपकी आप उसमें डाल रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो मिट्टी कितने परसेंट में या फिर कितने प्रतिशत वो उसे कंज्यूम कर रही है। और इसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर हरी खाद है तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर नहीं है तो इसके अल्टरनेटिव जो तरीके हैं उनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया आपको। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और आपको बता दूँ किसान भाइयों की हाल ही में एक अनुसंधान में पाया गया है कि समेकित पोषक तत्व जैसे कि गोबर की खाद या हरी खाद या फसल अवशेषों के भूसे द्वारा कुल पोषक तत्वों के 50 से 75% आपूर्ति में फसल प्रणाली की उपज में वृद्धि हुई है और इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए आप इस पोषक तत्व प्रबंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन INM का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप अपना सकते हैं। आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आज हम इनसे बातें कर रहे हैं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि INM के बारे में। और डॉक्टर साहब, आपने हरी खाद के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरी खाद के अलावे क्या कुछ ऐसे कार्बनिक खाद हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं?
1: जी हाँ, जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया, हरी खाद जो है एक सबसे सस्ता स्रोत है, सोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट है, आजकल बहुत आसानी से मिल जा रहा है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारे पास विभिन्न फसलों के अवशेष हैं उनको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। और जो हमारे पास खलियां हैं, जैसे कि पहले हम लोग के पास नीम की खली हुआ करती थी, महुआ की खली हुआ करती थी, मूंगफली की खली हुआ करती थी, इन सभी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया, गोबर की सड़ी हुई खाद, चूंकि हम बात कर रहे हैं गोबर की सड़ी हुई खाद की, किसान भाई लोग अक्सर क्या करते हैं, गोबर की कच्ची खाद डाल देते हैं खेत में, तो उसे क्या होता है, कच्ची खाद में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे दीमक और कटवर्म का प्रकोप बढ़ जाता है। तो कृपया आप लोग से अनुरोध होगा हमारा कि आप गोबर की खाद जो भी है, 5 क्विंटल, 7 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, जो भी आपके पास उपलब्ध है, वैसे तो अमूमन जो है कम से कम 10 से 15 टन डालना चाहिए, लेकिन आपके पास उतना उपलब्ध नहीं है, आप 10 क्विंटल भी अगर खेत में डालते हैं तो बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। उसका कलर जब भूरे रंग का हो जाए, सड़ी हुई गोबर का, उसको पका दे गड्ढे में, जो है अच्छे से डिकम्पोज करिए, अच्छे से सड़ाइए, और सड़े हुए गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। देखा गया है कि गोबर के खाद में लगभग 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.5% पोटास होता है। तो आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि हम इतना क्विंटल अगर दे रहे हैं तो कितना केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमारी ज़मीन को मिल रहा है। बाकी मात्रा आप जो है बर्मी कंपोस्ट से भी दे सकते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट भी क्या है, जनरली जो हमारा कछुआ है, अर्थवर्म है, अर्थवर्म को हम अधसड़े गोबर पर रिएक्ट करा करके उसे हम बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह दानेदार जो है मटेरियल, वो कछुआ चूँकि इसको खाता है और खाने के बाद कास्टिंग करता है, तो जो चाय की पत्ती जैसा गंधहीन जो है दानेदार बर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और बर्मी कंपोस्ट में जनरली 2% तक नाइट्रोजन, 1 से 1.5% तक फास्फोरस और इस तरह से लगभग 1.5% तक पोटास भी होता है। देखा जाए तो बर्मी कंपोस्ट FYM मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा जो है पोषक तत्व रखता है। साथ ही साथ बर्मी कंपोस्ट में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स भी होते हैं जो कि फसल की ग्रोथ और विकास के लिए बहुत सहायक होते हैं। लेकिन बर्मी कंपोस्ट चूँकि महंगा पड़ जाता है, मार्केट में 6 से 7 रुपये किलो है, तो इसका प्रयोग आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो महंगा पड़ता है। आप अपने घर पे ही बर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं और तैयार करके अपने खेतों में डाल सकते हैं। धान है या विभिन्न प्रकार की जो महंगी सब्जियां हैं उनमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फसल अवशेष है, हम जनरली देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे फसलें हैं, चाहे रबी की फसलें मक्का हो या गेहूँ हो, इसको हम लोग आग लगा करके जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि एक साइड में जो है हमारे पास जो है जो मृदा की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, और पोषक तत्व जो क्रॉप रेसिड्यू में जो अवशेष में पोषक तत्व होते हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण का बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, और जो कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो बेहतर होगा कि जो रेसिड्यू है, जो फसल के अवशेष हैं, उसको हमेशा समय जमीन में ही इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, और उसको जो है जमीन में जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, जमीन में जोताई करके मिला देते हैं, तो धीरे धीरे सड़ गल जाता है और फसलों को एक अच्छी प्रकार का पोषक तत्व देता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जनरली 3/4 भाग जो है, 75 से 80% भाग जो है जो पोषक तत्व जमीन से पौधा लेता है, उसका 75 से 80% भाग जो है जब हम उसके डंठल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जमीन में मिला देते हैं, तो 75 से 80% भाग वापस जमीन को मिल जाता है। अर्थात जो आपका पोषक तत्व जमीन से लिया गया है उसका 75 से 80% तक जो है वापस जमीन में मिल जाता है, अगर हम उसके रेसिड्यू को जलाने के बजाय हम उसको जमीन में मिला देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप रेसिड्यू का भी जो फसल अवशेष है उसका पूरा का पूरा प्रयोग करें, उसको जलाएं नहीं, उसको जमीन में ही इनकॉर्पोरेट करें, तो उससे भी कुछ पोषक तत्व जो है आपको रिवर्स वापस मिल जाते हैं, और भूमि का जो स्वास्थ्य है वो मेंटेन रहती है, जो विभिन्न प्रकार के माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं वो बने रहते हैं, जिसे हम सॉइल फ्लोरा और फौना कहते हैं, वो भी जो है जमीन में अच्छे कंडीशन में मेंटेन रहते हैं। तो इससे किसान भाइयों, आपके जो मृदा का स्वास्थ्य दिन पर दिन, ईयर आफ्टर ईयर जो है मेंटेन होता जाएगा और आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए, जो हमारे समेकित पोषक प्रबंधन है, इसमें हमें फोकस करना है आज के डेट में कि हम अधिक से अधिक जो है ऑर्गेनिक स्रोत के, ऑर्गेनिक जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका प्रयोग करें, जैसे हरी खाद है, भूरी खाद है, नीलहरी सवाल है, सड़ी हुई गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट है, और जो कुछ खलियां इत्यादि हैं उनका भी प्रयोग करें। एक हमने बात कहा भूरी खाद, भूरी खाद हम धान धान जो धान की रोपी धान है उसमें नहीं कर सकते, केवल जो धान की हम सीधी बुआई करते हैं उसी समय हम ढैंचा 30 किलो ले लेते हैं और 30 केजी जो है धान ले लेते हैं और सीड ड्रिल के द्वारा तैयार खेत में हम सीधे बुआई कर देते हैं, तो धान और ढैंचा साथ साथ चलते हैं। उसके बाद जब 30 दिन का हो जाता है धान और सीड ड्रिल के द्वारा तैयार खेत में हम सीधे बुआई कर देते हैं, तो धान और ढैंचा साथ साथ

0: चलते हैं। उसके बाद जब 30 दिन का हो जाता है धान, तो उसमें हम 240 डाल करके 600 से 650 ग्राम सक्रिय तत्व 240 का लेते हैं और छिड़काव कर देते हैं, या कोई दूसरी हर्बिसाइड जो धान में प्रयोग की जाती है उसका हम प्रयोग कर देते हैं, तो ढैंचा जो है वहीं गल करके मर जाता है और धीरे धीरे जमीन में वो मिल करके एक अच्छा जो है हरी खाद भूरी खाद का के रूप में वो पोषक तत्व प्रदान करता है, और साथ साथ जो मृदा का टेम्परेचर है उसको भी बैलेंस किया रहता है, जो मृदा की भौतिक और रासायनिक और जैविक अवस्थाएं हैं उनको सुरक्षित रखता है और मृदा स्वास्थ्य को मेंटेन करता है। इस प्रकार से आप जो है हरी खाद हुआ, भूरी खाद हुआ, नील हरित शैवाल हुआ, अजोला केक्स यानी खलियाँ तथा फसल अवशेष का प्रयोग करते हुए, साथ में जो है थोड़ी बहुत मात्रा में आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करके आप अपनी फसल को तथा मृदा को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया अभी कि जो कार्बनिक खाद है इसके रूप में आप जो गोबर खाद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही रवि फसल के जो अवशेष हैं उसे बिल्कुल ना जलाएं, बल्कि उसे जो अपने खेत में अगर आप गाड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि हरी खाद, भूमि खाद, उजोला का इस्तेमाल करके आप अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो आज आप सभी के साथ यहाँ पर हमारे उन्नत कृषि प्रोग्राम में थे डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी, और इन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों और बहनों को। डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और आप लोग सभी लोग को नमस्कार।
1: तो अगली बार अगले प्रोग्राम में अगले विषय के साथ अगले चर्चा के साथ फिर से हाजिर रहूंगी मैं आप सभी के साथ, आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है, और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें, और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले, और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें, और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें, और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की

निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोज़ेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 ml मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है। आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है। खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है। और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आपको अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है। और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जरूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, BCDE जो भी जरूरी मिनरल्स है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है। आपका मूड कैसा होगा, अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफी अच्छा रहता है, कभी काफी खराब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है।
और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है? तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन बी, सी, डी, ई और बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में ज़रूर बैठें, और ख़ास तौर से सुबह की धूप बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए, धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप अपने अपनों को भी खुश रख पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपने अपनों का ध्यान रखेंगे ना, है ना। तो बस इन्हीं बातों के साथ मुझे, यानी कि आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले खास बात की, अपना रखे एकदम खास ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। आप बने रहे 90.8 FM ग्रीन के साथ। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में, और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस सब विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
2: जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
1: संक्रमण होने
2: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
1: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है।
2: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी, जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये, इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
1: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज़्यादातर देखा जाता है,
2: ज़्यादातर पाया ही जाता
1: और
2: है।
1: सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है।
2: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
1: और गला
2: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
1: और सर एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर भैंस,
2: गौ या भैंस वंश में ज्यादा होती है।
1: तो इसके लक्षण क्या?
2: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांग वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है। और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है। प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है। और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है। और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है। और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
1: टीकाकरण पर विशेष बल देना है और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग भी होते हैं। खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
1: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
2: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
1: अच्छा।
2: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुर पका और मुंह पका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है, किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में, खुरपका मुंह पका रोग में, पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशुपालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
1: उनको नुकसान होता है,
2: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के, पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है, दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं, उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट, शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं। और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
1: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए, और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मानी रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनका दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती है ये?
2: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव, और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता, जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
1: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते
2: हैं। नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है, और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है, जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो, और ऊँचे स्थान पर रखें। वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें, जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें। उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वह नमी की कमी रहती है।
1: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
2: जी, ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं, और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग है और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
1: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
2: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
1: अच्छा।
2: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें, और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू, लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
1: अच्छा।
2: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है, HS, BQ, FMD. और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
1: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है, तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
2: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
1: जहां पर सभी पशु,
2: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल जो जल जमाव है वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं तो उसमें छेरा

0: अच्छा।
1: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
0: कृमिनाशक,
1: हाँ, कृमिनाशक दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
0: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो है वो बीमार ना पड़े, और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
1: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ, HS बीमारी में हम लोग सल्फा डिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फा डिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चूँकि HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरोलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूंकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको, सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का, तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव, तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं, और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है, और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
0: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान
1: होता है।
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों कि जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं, तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का, तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों

0: की पढ़ाई लिखाई की बातें,
1: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
1: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
1: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाए। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड

18 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथो 8 30 सीसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथो 8 30 सीसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रिन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. हेलो नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 और ये है FM ग्रीन. उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. और आज एक हर रोज की तरह एक और आज खास विषय हमारे बीच. जी हाँ, आज का विषय है खरीफ मक्का की उन्नत खेती. और इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं SS मंडल. मैं आपको बता दूं, ये प्रोफेसर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में और पौधा प्रजनन विभाग में कार्यरत हैं ये. और मैं आपको बता दूं कि मक्का विशेषज्ञ हैं, इसलिए आज मक्का के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी सर से. तो सर, सबसे पहले मक्के की अच्छी खेती के लिए हमें भूमि कैसी चयन करनी चाहिए?
1: कि मक्का इस तरह डाइवर्सिफाइड है, मतलब इसकी इतनी विविधता है कि हर एक तरह की मिट्टियों में उपज जाता है. लेकिन इसके लिए विशेष तरह की मिट्टी है जो अभी के लिए होना चाहिए, जो खास करके ये मौसम है, खरीफ है. इस मौसम में जल जमाव की समस्या होती है, तो ऐसी भूमि का चुनाव करें कि जहाँ पर कि जल में, भूमि में जमाव नहीं, पानी का जमाव नहीं हो. और पानी का जमाव होने से पौधे में वृद्धि नहीं होती है. और खास करके उस समय जिस समय ये परागण की अवस्था में होते हैं और मोचा निकलने की अवस्था होती है, उस समय पौधों में जल का जमाव हो जाता है. तो उस समय परागण और मोचा निकलने का जो अंतराल है यह बढ़ जाता है, और जिससे उपज क्षमता बहुत ही प्रभावित हो जाती है. इसीलिए किसान भाइयों को चाहिए कि भूमि और मिट्टी का ऐसा चुनाव करें जहाँ की पानी का जमाव नहीं हो.
0: तो किसान भाइयों, आपने सुना कि भूमि का चयन आपको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ की पानी का जमाव ना हो. और इसके बाद सर, मक्के की खरीफ फसल के लिए खेत की तैयारी हमें कब और कैसे करनी चाहिए?
1: देखिए, खेत की तैयारी के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है हम गर्मी के दिनों में इसकी निकाई गुड़ाई करना शुरू कर दें. और गर्मी में करने से ये फ़ायदा होता है कि जब मिट्टी को जोता जाता है तो उसकी नीचे वाली परत ऊपर चली आती है, जिससे जो खरपतवार के जड़ें हैं उसमें बीमारी के जर्म हैं या कीट पतंग हैं वो ऊपर चले आते हैं और उसका नाश हो जाता है. और ये सब पौधे के वृद्धि में लाभदायक होते हैं
0: जी.
1: और मिट्टी जुताई के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए, 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई मिट्टी के लिए अच्छी मानी जाती है.
0: तो इस तरीके से आपको खेत की तैयारी करनी चाहिए, गर्मी से ही आपको निकाई गुड़ाई कर लेनी चाहिए. सर, अब बुआई की बात करते हैं, तो बुआई हमें किस समय और कैसे करनी चाहिए?
1: कि हमारा प्रदेश मक्के के लिए इस तरह, मतलब सुटेबल है, अनुकूलित है कि हम यदि प्रतिदिन मक्का बोएं तो प्रतिदिन हम मक्का काट सकते हैं. लेकिन इस मौसम के लिए खास है, खरीफ के लिए, कि इसकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक करने से उपज अच्छी आती है.
0: 15 जून से 15 जुलाई तक अगर आप करते हैं तो अच्छी उपज आपको मिलेगी इस समय. और सर, मकई फसल उपजाने के लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी इस समय कितनी हो, और बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ कितनी हो?
1: बीज की मात्रा तो हम लोग बोलते हैं कि 8 से 10 किलोग्राम होना चाहिए. यह 8 से 10 किलोग्राम इसलिए होता है कि हम लोग जो ज़्यादातर मक्का बुआई करते हैं वो हाइब्रिड होता है. और हाइब्रिड चूँकि वो मादा जो पौधा है उस पर उत्पन्न होता है, तो उसकी जो साइज है उसका आकार छोटा होता है. यदि छोटे आकार का है मक्का तो उसकी मात्रा कम लगेगी. यदि बड़े आकार की मक्का है तो उसकी बीज ज़्यादा लगेगी. इसीलिए बोलते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये प्रति एकड़ इसकी मात्रा है और इसको बोते हैं हम लोग 60 से 60 पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर, और अभी के सीजन में पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखते हैं, तो इससे उपज अधिक आती है।
0: इसके साथ ही मकई के बेबी कॉर्न की बात करते हैं, तो इसके लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होगी, और साथ ही सर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए?
1: हाँ, यहाँ पे हम लोग ये समझ लें कि बेबी कॉर्न कोई अलग से मक्का नहीं होता है। बेबी कॉर्न ये सामान्य मक्का है, बट इसके साथ खासियत है कि इसकी तुड़ाई हम लोग उस समय करते हैं जिस समय कि भुट्टे से मोचा निकलने को ही होता है, और इसमें ऐसे पौधे का चुनाव करते हैं कि जिसमें कि एक पौधे में 3 से 4 भुट्टे तक आते हों। तो इसमें होता है कि पहले भुट्टे को तोड़ लेते हैं तो दूसरा भुट्टा आता है, दूसरे को तोड़ लेते हैं तो तीसरा आता है, और तीसरे को तोड़ लेते हैं तो चौथा आता है। क्योंकि इसमें हम लोग इसको घना लगाते हैं, तो घना लगाते हैं तो इसकी बीज दर जो नॉर्मल मक्का है, साधारण मक्का है, उससे ज़्यादा होती है, और इसकी मात्रा होती है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है, और इसकी पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी हम लोग 50 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। इसमें होता है कि जो अभी के सीजन में हम मक्के को जो बेबी कॉर्न के रूप में लगाएंगे, ये मात्र 45 से 55 दिन के अंदर हमारा ये कट जाएगा। क्योंकि ये बहुत जल्दी कटता है, तो इसमें यदि हम लोग प्रति एकड़ पौधे की मात्रा अधिक बढ़ा देते हैं तो ये सीधा उपज को प्रभावित करता है।
0: तो सर साथ ही साथ स्वीट कॉर्न के बारे में भी जानकारी दे दें।
1: हाँ, स्वीट कॉर्न मक्के में भुट्टे का उपयोग हम लोग ग्रीन कॉब उसको बॉयल करके उबाल करके खाने के लिए करते हैं, तो इसमें बीज की मात्रा 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ रखते हैं, और इसकी बुआई 75 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच, कतार से कतार के बीच करते हैं, और पौधे से पौधे 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। इसको भी हम लोग हार्वेस्टिंग कटाई भुट्टे की तुड़ाई कर लेते हैं जिस समय दाना भर जाता है, पकने के पहले कर लेते हैं, और उसी समय इसकी मार्केटिंग होती है या उसको हम लोग खाने के काम में लाते हैं।
0: तो ये तो बातें हो गई हैं स्वीट कॉर्न की, और साथ ही साथ पॉपकॉर्न के लिए बुआई की कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए?
1: कि पॉपकॉर्न किसान भाई आप लोग समझ रहे होंगे कि जो कि एकदम पूरा लावा हो जाता है, मक्के को भूजते हैं तो पूरा का पूरा लावा होता है, उसको पॉपकॉर्न बोलते हैं। तो आपको अनुभव होगा कि इसके दाने बहुत छोटे होते हैं, तो जिस तरह दाना का साइज होगा उसी हिसाब से बीज दर का निर्धारण होता है। क्योंकि इसका दाना छोटा होता है इसलिए इसकी बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है, और इसको लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर पे बोते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं।
0: तो सर अगर मकई के चारे की बात करें, तो मकई के चारे के लिए बुआई के लिए कितनी बीज की मात्रा किलोग्राम प्रति एकड़ की जरूरत होगी, और साथ ही साथ लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए इसमें?
1: कि यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि मक्का को हम चारे के रूप में लें, तो चारा का रूप में लेने का मतलब है कि हमको जो बायोमास है मक्के का, यहाँ दाना का प्रोडक्शन नहीं है, मक्के का पौधे का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो उस पर निर्भर करता है कि हमें चारा कितना मिलेगा। तो तो चारे को हम लोग घना बोते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको पौधा मिल पाए। और चूँकि मक्के में कल्ले नहीं निकलते हैं तो इसीलिए हम लोग जितना बीज डालेंगे उतने ही पौधे बनेंगे। और यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पौधा मिले, तो हम लोग यहाँ पर बीज दर ही बढ़ा देते हैं। और चारे के लिए मक्के का बीज दर हम लोग लगाते हैं 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ लगाते हैं, और 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की रखते हैं।
0: तो इस प्रकार से मकई के चारे के लिए बीज की मात्रा सर ने आपको बताई, और सर मकई की बुआई कैसे करें ये भी बता दें किसान भाइयों को।
1: कि मकई की बुआई पंक्ति में करने से एक पौधे को दूसरे पौधे के बीच की दूरी पर्याप्त होती है, जिससे पौधे को उचित मात्रा में नमी, पोषक तत्व, हवा मिल पाता है। तो हम लोग पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं 60 सेंटीमीटर, जो दाने के लिए मक्का उगाते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 25 सेंटीमीटर, और इसकी बुआई करते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी करते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम मक्का वैसी जगह बोएंगे जहाँ पानी नहीं लगे, और बुआई के तुरंत बाद हम लोग ये व्यवस्था करते हैं कि कहीं पे हमारे खेत में तो पानी लगने की गुंजाइश तो नहीं है, यदि वैसी है तो हम लोग वहाँ पे जल निकासी का व्यवस्था करते हैं।
0: तो सर जीरो टिलेज के बारे में हमने सुना है कि इसे खेती की जाती है, तो मक्के की खेती में जीरो टिलेज तकनीक क्या है उसके बारे में बताएं सर।
1: जीरो का साधारण अर्थ ही है कि जीरो मीन्स कुछ नहीं, और टिलेज मीन्स जुताई। यदि हम ये खेत में कुछ भी जुताई ना करें, हम बुआई के लिए खेत की बिल्कुल जुताई ना करें और उसमें लगाएं, तो उसको हम बोलते हैं जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज में होता है, जीरो टिलेज मशीन आती है, उसमें हम लोग खाद और बीज डाल देते हैं, और दोनों अलग अलग गहराई पर गिरता है बीज और खाद, और उसी मशीन से हम लोग बुआई कर देते हैं, तो इसको जीरो टिलेज बोलते हैं
0: जी।
1: लेकिन यहाँ जीरो टिलेज में है कि लगाने के पहले खरपतवार का नियंत्रण जरूरी होता है, उसको कर लेते हैं।
0: तो सर इस मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे, जीरो टिलेज मशीन के बारे में।
1: जीरो टिलेज मशीन साधारण ड्रिल की तरह होता है, इसमें टाइन चाकू की तरह होता है, और इसमें खाद और बीज अलग अलग गिरते हैं, और ये ट्रैक्टर चालित होता है।
0: तो इस तरीके से आपने जाना जीरो टिलेज मशीन के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात होता है कि लाभ क्या मिलेगा अगर हम जीरो टिलेज से मकई की खेती कर रहे हैं। तो
1: देखिए, जीरो टिलेज मशीन से बुआई करने से जो हम ईंधन लगाते हैं जुताई करने में, वो ईंधन का बचत हमारा होता है 60 से 70% बच जाता है। और ये आप जानते हैं कि ईंधन जलेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और यदि हम 60-70% ईंधन कम करते हैं तो ये तय है कि हम लोग 60-70% वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं, इससे प्रदूषण कम होता है। और जब हम जीरो टिलेज से खेती करते हैं तो इसमें खरपतवार कम उगता है, यदि हम शुरू में नियंत्रित करके लगाते हैं पौधे को, और इसमें नमी की मात्रा बनी रहती है, और हमको इसमें पानी की मात्रा भी कम पड़ता देना पड़ता है। और इस विधि से हम 10 से 15 दिन में पहले फसल लगा सकते हैं, जो कि हमारा 10 से 15 दिन खेत की तैयारी में लगता है, वो हमारा यहाँ पे तैयारी में समय नहीं लगता है, उसकी हमें बचत हो जाती है। और साथ साथ ही जो हमारा आर्थिक लाभ है, इसे 2000 से 2500 प्रति हेक्टेयर बच जाता है, हमारा लागत कॉस्ट बच जाता है।
0: रीस तकनीक के बारे में सर हम जानना चाहें कि मक्का की खेती में रीस तकनीक क्या है और इसे बुआई कैसे कर सकते हैं?
1: कि रीज मेड हुआ और मेड पर बुआई इस मौसम में ख़ास तौर से बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि मेड़ पर यदि हम बुआई करते हैं तो हमारा पौधा जल जमाव, उसके जड़ क्षेत्र में जल का जमाव नहीं होता है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। और इसमें ये फ़ायदा होता है कि यदि हमको पानी भी देना पड़े तो हम एक मेड़ को छोड़ करके दूसरे मेड़ में ही भी पानी दे दें तो हमारा काम चल जाता है, जिससे हमारा पानी की मात्रा, सिंचाई की मात्रा आधी लगती है।
0: तो इस तरीके से सर मक्का की बुआई के बारे में जानना चाहिए, किस दिशा में मक्का की बुआई करें?
1: कि मक्का की बुआई पूरब से पश्चिम की पंक्ति में करना चाहिए, इससे सूर्य का प्रकाश हर एक पौधे को अच्छी तरह मिलता है। और हम जानते हैं कि जो भी पौधे उत्पन्न करते हैं वो जमीन से लेते हैं और सूर्य की गर्मी से लेते हैं, वही उनका उस उत्पाद है। यदि सूर्य की गर्मी पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो उसकी उपज क्षमता अधिक होती है।
0: ज़रूरी होता है कि हम प्रजातियों के बारे में जानें, अगर हम मक्का की बुआई कर रहे हैं सर तो कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां होंगी उसकी जानकारी दें।
1: वो मक्का खरीफ के मक्का के लिए हम लोग की एक प्रभेद है जिसको बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ही विकसित किया है, सबौर शंकर मक्का 1। इसकी उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह 80 से 85 दिन में हो जाता है, क्योंकि इसकी उपज की अवधि बहुत कम लेता है, इसलिए यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए भी अति उपयुक्त है, क्योंकि यह बाढ़ आने के पहले ही कट जाता है। और किसान भाई यदि इसको हम भुट्टे के रूप में लें तो यह 60 दिन में ही इसका भुट्टा तैयार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है।
0: जी सर, मक्का की बुआई पॉपकॉर्न की अच्छी उपज के लिए, इसके लिए कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
1: पॉपकॉर्न के लिए है वीएल पॉपकॉर्न, अंबर, पर्ल, जवाहर, ये सब पॉपकॉर्न की उन्नत प्रभेद हैं।
0: और बेबी कॉर्न के लिए?
1: बेबी कॉर्न के लिए जो अच्छी फसल है, अच्छी फसल लेने के लिए HM4, VL, बेबी कॉर्न 1, ये सब उन्नत प्रभेद हैं। इसमें तोड़न की क्षमता 3 से 4 तक होती है और इसमें जो हरे चारे का, जो बेबी कॉर्न का दूसरा उपयोग है कि बेबी कॉर्न को तोड़ने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद जो फसल बच जाता है तो उसको हरे चारे के रूप में उपयोग करते हैं, इसकी भी उपज क्षमता इसमें अधिक होती है।
0: मीठी मक्का की अगर हम उपज करना चाहते हैं तो इसकी अच्छी उपज के लिए कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
1: तो मीठी मक्का स्वीट कॉर्न है, जिसको हम लोग उबाल कर खाते हैं, तो इसके लिए इसकी उन्नत प्रभेद हैं माधुरी, प्रिया, HSC 1, ये सब इसके उन्नत प्रभेद हैं।
0: और वहीं अगर चारे की बात करें तो उसके लिए कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं?
1: देखिए, चारे में हमारा उद्देश्य रहता है कि हमको बायोमास, पौधे की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब बड़े पौधे हों जिससे हमको चारे की मात्रा अधिक हो, तो इसके लिए वैसी प्रभेद चुनी जाती है कि जो कि बहुत लंबी हो और पौधे की मोटाई भी ज़्यादा हो, तो उनमें से आता है, इस कैटेगरी में आता है अफ्रीकन टॉल जे 1006, प्रताप चेरी 6, ये सब इसकी उन्नत प्रभेद हैं।
0: और अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई कब करनी चाहिए?
1: सिंचाई का सीधा संबंध है, वो पौधे आप लोग देख के किसान भाई खुद जानते होंगे कि पौधा कब पानी मांग रहा है, और आपको लगे कि पौधे को पानी देना है तो सिर्फ खेत को भिगाने का कोशिश करिए, खेत को डुबाने का कोशिश नहीं करिए। होता क्या है, जितनी ज़रूरत पौधे को होगी उतना ही पानी लेगा, और आप ज़्यादा पानी दे देंगे तो आपका पानी का नुकसान होगा। और यदि आपने मक्के को मेड़ पर बोई हुई है तो एक मेड़ छोड़कर दूसरे मेड़ में पानी दें तो पानी की मात्रा आपको आधी लगेगी। यदि आपने जीरो टिलेज से की हुई है तो वहाँ तो कम मात्रा पानी की लगती है, और इसके अलावा उसमें पानी का संरक्षण भी होता है, तो जिस समय ज़रूरत हो उसी समय डालें। और ख़ास करके जो क्रिटिकल स्टेज है, जो पौधे जिस समय इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मक्के की घुटने की अवस्था होती है, उस समय पानी ज़रूर डालें यदि ज़रूरत हो तो। यदि देखें कि पत्तियां उसकी रॉल कर रही हैं, मुड़ रही हैं, सूख रही हैं, तो ये उसको पौधा को पानी मांगने का एक तरीका है, उस समय हम डालें। और दूसरा, जिस समय धनवाली निकलता है, मोचा निकलता है, वो बहुत ही क्रिटिकल अवस्था है वो पानी का, उस समय यदि हम पानी नहीं डालेंगे तो नर मंजरी है और मोचे का बीच का जो दूरी है, मतलब समय है, वो बढ़ जाएगा
0: जी।
1: नर मंजरी में पराग बनता है और जो भुट्टा निकलता है उसमें सिल्क निकलता है जिससे परागन होता है, तो हम उस समय पानी नहीं डालेंगे तो हो सकता है कि उस समय पराग ही नहीं बने, और परागन नहीं हो तो दाना बनने की जो क्रिया है ये बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।
0: तो सर, अगर कीट पतंगों की हम बात करें तो मक्का पौधे में जो ये कीट पतंगे हैं वो पत्तियों पर धब्बेपन बनाते हैं, और साथ ही पत्तियों के साथ साथ पौधे के तने को भी नष्ट कर देते हैं और पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं, तो इसका उपाय क्या है?
1: देखिए, मक्के में जो मुख्यतः कीट लगता है वो तना छेदक कीट है, और ये पत्तियों में ही अंडे देते हैं और जो उसका गाभा है उसी में घुस कर रहता है और उसको खाता है। तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए हम लोग फ्यूराडान का 8 से 10 दानेदार दवा है, इसको किसी बोतल में छेद करके इस दानेदार दवा को रख लेते हैं और प्रति पौधे 8 से 10 दाने डाल देते हैं। और चूंकि ये दवा सिस्टेमिक है, पूरे सिस्टम को जहरीला बना देता है मक्के को, तो उसमें कहीं भी कीट छुटा हुआ हो तो उसकी मौत हो जाती है और हमारा फसल बच जाता है
0: जी। सर, फॉल आर्मी वॉर्म का नियंत्रण कैसे करें?
1: हाँ, ये फॉल आर्मी वॉर्म अभी के समय में बहुतायत पाए जाने वाला कीट है, और जो इसे जो नुकसान है बहुत ज़्यादा नुकसान है, यदि किसान भाई इसको छोड़ दें 2-3 दिन में ही आपके पूरे खेत में फैल जाएगा। और इसमें जो वयस्क पौधे हैं इसके उड़ने की क्षमता है, एक रात में 105 किलोमीटर तक भी चला जा सकता है, इतने मतलब ज़्यादा ये खतरनाक हैं, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। कुछ दवा हैं ऐसी जिससे पूरी तरह ये नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए है इमामेक्टिन बेंजोएट का आधा ग्राम एक लीटर पानी में हम घोल करके इसको छिड़काव कर दें तो ये पूरी तरह से कीड़े नष्ट हो जाते हैं और हमारा फसल बच जाता है।
0: तो श्रोताओं, यहाँ पर आपने खरीफ में मक्का की उन्नत खेती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, तो आशा करते हैं कि इसे ज़रूर लाभ मिलेगा आपको मक्का की, अगर आप खेती कर रहे हैं तो। अगले दिन एक नए विषय के साथ फिर हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखिएगा 90.8 FM ग्रीन पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहाँ हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नहीं है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक माँ की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है, लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूँ। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं। अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम हिया इसका, एक मुसीबत हो गई है। 3 दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है, लगवा दो। कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग 6 इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। और तुमने वीडियो देखा? देखा, सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
0: सुनीता, तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास, क्या तुम हमारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है, उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
1: टीकन भाभी, एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले 3 डोज लगती थी, अब 1 बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी 1 डोज प्रभावी मानी गई है। यह कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है। पर देखो, हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए। यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है। पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है, HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
0: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है। और यही SSLK की ताकत है, मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा, मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में? लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो? देखो, इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने? इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है। बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
0: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना?

0: आएगा। सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है और जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
1: मुफ्त? सच में?
0: हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है: वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
2: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
0: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने? कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
1: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
1: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं, और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
2: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
1: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
1: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
2: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
3: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी ना ना। लेकिन एक बात पक्की है, अब मैं फॉरवर्ड देखकर फैसला नहीं करूंगी।
0: बस यही जीत है। सही सवाल पूछना ही आधी सुरक्षा है।
3: और अगर डॉक्टर वही कहे जो तुम कह रही हो, तो मैं अपनी बेटी को टीका लगवाऊंगी। फिर जो पड़ोसन पूछेगी उसे भी यही कहूंगी, फॉरवर्ड नहीं, तथ्य देखो।
0: और अगर कोई बोले कि हमारे जमाने में तो नहीं लगा, तो कहना हमारे जमाने में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं थी, इसलिए आज जो उपलब्ध है उसे अपनाने में समझदारी है, ठुकराने में नहीं।
2: जाने से पहले एक छोटा सा संवाद और। कई बार लोग कहते हैं हम तो गांव में रहते हैं, हमें ऐसी बीमारियां कहां। ये भी गलत फहमी है, बीमारी जगह देखकर नहीं आती। जानकारी और बचाव भी शहर गांव देखकर नहीं रुकना चाहिए। सरकार इसलिए कार्यक्रम बना रही है कि सुरक्षा पहुंच में हो, सिर्फ बड़े अस्पतालों तक सीमित न रहे।
3: सच है, कई बार हम सोचते हैं कि बड़ी बीमारी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, पर जब घर में किसी को कुछ हो जाता है तब समझ आता है कि बीमारी जात, धन, जगह देखकर नहीं आती।
0: और इसलिए रोकथाम सबसे बराबरी वाली चीज है। जब टीका सरकारी केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है, तो ये सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, न्याय की बात भी है। जो चीज सिर्फ पैसे वालों तक सीमित थी, वो अब आम परिवारों तक पहुंच रही है। इसे शक से नहीं, समझ से देखना चाहिए।
3: पर हाँ, व्यवस्था में कमी हो तो पूछना भी चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई चीज समझ ना आए तो पूछो, कोई कागज चाहिए तो पूछो, अपॉइंटमेंट कैसे होगा पूछो। जानकारी मांगना अधिकार है, यही नागरिक समझ है।
2: और एक जरूरी बात, यदि किसी माँ को अभी भी डर लग रहा है तो वो अकेली नहीं है। डर होना सामान्य है, लेकिन डर के साथ बैठकर सही जानकारी सुनना भी उतना ही जरूरी है। कई सरकारी जागरूकता संदेशों में यही कहा गया है कि स्वास्थ्य के फैसले डॉक्टर, विज्ञान और प्रमाण से गाइडेड होने चाहिए, वायरल फॉरवर्ड से नहीं। ये सिर्फ एक नारा नहीं, जीवन बचाने वाली बात है।
3: मैं सोच रही हूँ कल केंद्र से लौटकर अपनी देवरानी को भी बताऊंगी, उसकी बेटी भी इसी उम्र की है, वो तो मोबाइल पर जो आता है वही मान लेती है।
0: उसे साथ लेकर जाओ, दो लोग जाएंगे तो दो घरों का डर टूटेगा, फिर शायद चार घरों में बात पहुंचेगी। सेहत की जानकारी भी चूल्हे की आग की तरह है, एक घर से दूसरे घर गर्मी पहुंचाती है।
2: ये पंक्ति नोट कर लीजिए, अफवाह अकेले फैलती है पर भरोसा मिलकर बनता है, और भरोसा तब बनता है जब आशा कार्यकर्ता, ANM, डॉक्टर, माँ, पड़ोस, स्कूल सब मिलकर एक ही सच्ची बात बोले।
3: अच्छा टीकन, अगर मेरी बेटी पूछे अम्मा आपने पहले क्यों डर किया, तो मैं क्या कहूं?
0: कहना क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूं। लेकिन प्यार सिर्फ डर नहीं, सही जानकारी जुटाने की हिम्मत भी है। बच्चों के सामने ये स्वीकार करना कि मैं पहले उलझी हुई थी, अब समझ गई हूं, इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है।
2: बहुत सुंदर, और यही इस कार्यक्रम का सामाजिक पहलू भी है। हम सिर्फ टीके की बात नहीं कर रहे, हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें माँ बेटी के बीच डर के बजाय संवाद हो। यही संवाद भविष्य बदलता है।
0: और जिन घरों में मोबाइल पति के पास रहता है या सास कहती हैं हमें ये सब नहीं आता, वहां भी रास्ता है, सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ, स्कूल से पूछो, आशा से पूछो। जानकारी का दरवाजा एक नहीं, कई है।
3: अब मुझे लग रहा है कि फैसला थोड़ा साफ हो गया है। डर अभी भी है, पर अब डर के सामने जवाब भी है।
0: बस यही चाहिए, सवाल रहे, जवाब भी रहे, तभी घर सही निर्णय तक पहुंचता है।
2: शुक्रिया टीकन भाभी आपका और सुनीता जी आपका भी। साथियों, अब अंत से पहले आज की मुख्य बातें संक्षेप में। पहली, क्वाड्रीवेलेंट एचपीवी वैक्सीन की एक डोज प्रभावी है। दूसरी, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और पीरियड्स के दौरान भी सुरक्षित है। तीसरी, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चौथी, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है और 160 से अधिक देशों में उपयोग में है। पांचवी, 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। छठी, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय सोशल मीडिया फॉरवर्ड से नहीं, डॉक्टर और प्रमाणित जानकारी से लें।
0: और मेरी तरफ से एक बात और, मां होना सिर्फ डरना नहीं है, पूछना भी है, और पूछकर सही जवाब तक पहुंचना, वही असली जिम्मेदारी है।
3: और मेरी तरफ से, मैं अब अपने डर को छुपाऊंगी नहीं, पर उसे झूठ से पालूंगी भी नहीं, सही जानकारी लेकर ही फैसला करूंगी।
2: यही है सेहत सही लाभ कई की सीख, चिंता से समझ तक और समझ से सुरक्षा तक। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में जानकारी लें और घर की महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की जानकारी भी अवश्य पूछें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उन दो अफवाहों की जो सबसे ज्यादा फैल रही हैं, पीरियड्स बिगड़ना और बांझपन। तब तक याद रखिए, तथ्य चुनिए, सुरक्षा चुनिए। अब एक उपयोगी सूचना, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और आपके इलाके में यू विन पंजीकरण की सुविधा सक्रिय है तो आप वहां अपॉइंटमेंट और पंजीकरण की जानकारी ले सकते हैं। यदि ये आपके लिए कठिन है तो भी चिंता की बात नहीं, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से सीधे संपर्क करें। याद रखिए, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूँ आरजे अनु और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, वैसे मार्च के बाद यूँ कहें तो आम के जो मंजर हैं वो या फिर फरवरी के बाद भी आप कह सकते हैं, फरवरी में भी कह सकते हैं कि आम के मंजर हमें दिखने लगते हैं। और इसी समय खास देखभाल जो हमारे आम के बागों की है वो हमारे किसान भाई शुरू कर देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा उन्हें ध्यान रखना होता है कि आम के इन कीटों से उन्हें कैसे बचाया जाए, तभी जो फल हैं वो हमें प्राप्त हो पाएंगे। तो इस विषय को लेकर जी हाँ आज हम बात करेंगे आम में लगने वाले कीटों के बारे में और उनका नियंत्रण हम कैसे करें, इसके बारे में सारी जानकारी आज हमें मिलेगी इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर कलमेश, और मैं आपको बता दूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट DKAC किशनगंज से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को उन कीटों के बारे में बता दें जो प्रायः देखे जाते हैं आम के जो बागवान हैं उसमें देखे जाते हैं, आम के फलों पर देखे जाते हैं, जिसकी वजह से आम जो है बर्बाद हो जाते हैं, तो उनके बारे में बताएं।
2: सारे किसानों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आजकल जो है आम का सीजन शुरू हो गया है, और जैसे कि हम जान रहे हैं भागलपुर के आसपास के अंदर भी और इवन भागलपुर पुणे इस हर जगह पे जो है आम का बगान बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, और इसके अंदर जो है आप देखेंगे 4-5 कीट जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे पहले आप यदि देखेंगे तो एक मंजर के ऊपर जो एक कीट लगता है उसको कहते हैं हम हॉपर।
1: हॉपर
2: जी। और उसके बाद एक आता है हमारा फल मक्की, जो देर से अभी जो मंजर स्टेज में आता है वो हॉपर।

0: जो मंजर के ऊपर जो है आप देखेंगे
1: मंजर के समय में जो कीट लगते
0: मंजर
1: हैं।
0: के समय में जो कीट लगते हैं उसके अंदर सबसे पहले जो है एक हॉपर है। ये क्या करता है जी? मैंगो मिली मैंगो
1: साहब, ये दिखने में कैसा होता है उसके उसके बारे में?
0: दिखने में आप देखिए, ये कीट जो है आपको बहुत ही छोटे छोटे कीट है, जैसे कि मच्छर टाइप का लगता है, छोटा छोटा, मच्छर से भी छोटा लगता है कभी कभी, देखने को दूर से आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, नजदीक में आपको देखना पड़ेगा। और ये पूरा मंजर के ऊपर बैठ के क्या करते हैं, रस को चूसते हैं। रस को चूसने वाले कीट है, चूस चूस के क्या करेंगे, उसके अंदर से आधा अपना खुद यूटिलाइज कर लेंगे, फीलेंगे, और उसके बाद आधा जो है थोड़ा सा ये अपना एज ए यूरिनेट कर, मतलब पेशाब करके निकाल देते हैं। जिसके चलते आप देखेंगे आम के पेड़ के मंजर के आसपास देखेंगे तो बहुत सारा चींटी भी आपको देखने को मिलता है। चींटी मिलती है इसका मतलब है कि ये कीट जो है आपका इधर है,
1: इसका प्रकोप है,
0: इसका प्रकोप इस पेड़ के ऊपर आसपास है। तो उस समय क्या होगा, चींटी क्या करती है, चींटी इसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ले जाने के लिए मदद करती है, और इंटर्न ये कीट क्या करता है, कीट जो उसको शुगरी सिक्रेशन को यूरिनेट कर, मतलब पेशाब करके जो है वो देने से उसके अंदर क्या है, शुगर रहता है, शक्कर रहता है, तो वो चींटी को भी काम आ जाती है। इसीलिए चींटी जो इसके आगे पीछे घूमती रही, दोनों के अंदर जो मित्रता है एक तरीके से,
1: मतलब एक तरीके से देखा जाए कि हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं, अगर चींटी अगर किसी पेड़ के पास आसपास दिखाई दे तो समझ आइए कि ये कीट आपके बागों में है अभी और आपके फल पर लग सकते हैं।
0: इधर मैं थोड़ा सा ये बताऊं, मंजर के आसपास यदि आपको ज्यादा दिखेंगे, हाँ जी, तो उस समय के आपको आसानी से इसको पहचान सकते हैं। बहुत ही छोटा सा कीट है, ब्लैक कलर का होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे तो इवन काला काला होने लगता है, पत्ती भी काला काला, जब ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो उस समय पत्ती भी थोड़ा सा काले रंग के होने शुरू हो जाते हैं।
1: ये तो बात हुई हॉपर की, और उसके बाद आपने एक बताया था डॉक्टर साहब,
0: तो इसके नियंत्रण भी मैं इसी समय
1: नियंत्रण
0: तो ताकि जो है इसको पूरा कर लेते हैं। इसके लिए आपको मार्केट में इमिडा क्लोप्रिड करके एक दवा मिलता है,
1: अच्छा,
0: जिसको आपको मंजर आने से 15 दिन पहले और मंजर आने के बाद 15 दिन, मतलब 15 एक बार फर्स्ट आज मान लीजिए आज के बाद 15 दिन के बाद फिर से एक दो स्प्रे यदि करते हैं, वो भी 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के इसको देते हैं, तो इसको बहुत हद तक जो है हम लोग कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, और ये जो है आप कर सकते हैं, 2 बार करना पड़ेगा आपको,
1: 15 दिन पहले मंजर के, 15 दिन पहले आने के और 15 दिन बाद
0: जी, उस समय वो इसको आसानी से आप बहुत हद तक कर सकते हैं, ताकि जो है यदि इसको उस समय नहीं कर पाते तो बहुत सारा फल जो है छोटा छोटा लगने से पहले ही पूरा जो है
1: नीचे
0: जड़ जाएगा
1: जी। उसके बाद एक और कीट
0: जी, उसके बाद जो है आप दूसरा कीट आप देखेंगे, एक तो स्टेम बोरर की बात मैं कह रहा था, स्टेम बोरर का एक, स्टेम बोरर मतलब जो पूरा जो ट्रंक होता है उसका, जो पेड़ हाँ, तो उसको जो है उसके अंदर जो बार्क जो कहते हैं हम, बाहर से जो बार्क कहते हैं, बार्क के अंदर बैठ के खाता रहता है, आपको बाहर दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत बार, तो ये बाहर अंदर बैठ के खाता रहता है और पूरा छेद करते हुए एक गुफा बना लेता है अंदर,
1: खोखला
0: जी, खोखला बनाते चलेगा और उसी के अंदर जो है, और एक खास करके जो पुराना जितना पेड़ होता है बागान के अंदर जो आप देखेंगे जितना भी पुराना पेड़ होता है उसके अंदर इसका प्रकोप जो ज्यादातर देखने को मिलता है, नए पेड़ के अंदर ये उतना ज्यादा
1: नहीं
0: करता है, बट आप उस तरीके से दिखता है तो आपको उस समय क्या करना है, उसको बार को हटा के आप पर्टिकुलरली वो कीट जो है आपको दिखाई पड़ता है हटाने के बाद, तो उसको किल करना पड़ेगा मैनुअली।
1: अच्छा
0: जी, तो उस तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो कुछ क्योंकि ये अंदर रहता है तो आप बाहर से स्प्रे करेंगे तो भी काम नहीं होगा,
1: नहीं करेगा जब तक वो अंदर तक ना जाए।
0: और वैसे ज्यादा पुराना है तो मेन है कि जो है हम लोग बहुत बार रेकमेंड करते हैं कि ये वाला पेड़ को आप हटा दीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो है उससे दूसरे पेड़ को भी ज्यादा नुकसान होता है, हो जाता है, उसी को रिप्लेस करके आप नया पेड़ लगाएंगे तो वहाँ पे तो वो अच्छा तरह ग्रो हो पाएगा
1: जी।
0: जो तीसरा हमारा मेन इसके अंदर कीट आता है उसको कहते हैं हम लोग
1: फल मक्खी जी।
0: फल मक्खी जो है आपको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, तो ये जो है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज है जो कि बहुत सारा सब्जियों के अंदर भी आता है और ये फल के अंदर भी आते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये कीट क्या करते हैं, ये भी एक तरीके से इसके अंदर जो है, जैसे ये अंडा जो इसका स्टेज होता है, ये जहाँ पे सड़ने वाले आम होते हैं या सड़ते हुए जो जहाँ पे मान लीजिए पेड़ के ऊपर से आम नीचे गिर गया, गिरने के बाद हम लोग उसको उठा के मतलब ये नहीं करते हैं, वहीं पे पड़ा रहता है,
1: हाँ।
0: तो जैसे ही वो उसके अंदर क्या होता है, ये इसके लिए बहुत अच्छा फूड है जो फल मक्खी के लिए, ये सबसे ज्यादा, और जो है उसके अंदर जो क्या होता है सड़ते हुए, और इसको जो है ज्यादा अच्छा लगता है
1: सड़े हुए फल
0: जो और ज्यादा अच्छा लगता है इस कीट को, जैसे ये इस तरीके से मिलता है तो उसके अंदर जाके अंडा दे देते हैं, जैसे अंडा
1: मल्टीप्लाई होते जाते
0: हैं जी, उसके अंदर एक और इवन ये अच्छा फ्रेश फ्रूट्स को भी ये अंडा दे देते हैं, उसके अंदर भी डैमेज करते हैं और इनको थोड़ा सा

0: सड़ते हुए मिल गया तो और ज्यादा इनको फेवरेबल है एक तरीके से, ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे ये। तो उस तरीके से क्या होगा, ये इनका थोड़ा सा वो भी पोस्टर जो है ना बहुत ज्यादा शार्प रहता है, ये बहुत ज्यादा तेज जो है डैमेज करके फल के अंदर ये करते हैं। उसके अंदर क्या होगा, तुरंत जो है बाहर का इन्फेक्शन जो आ जाता है, इन्फेक्शन आने से क्या होगा वो जल्दी जल्दी सड़ना शुरू करेगा, सड़ना शुरू करे तो इसके अंदर जो एक छोटा सा पिल्लू रहता है आपने देखा होगा बहुत बार जो है, जब भी आप आम काट के देखते हैं काते हुए तो उसके अंदर एक छोटा सा पिल्लू टाइप का आपको दिखाई पड़ता है ऊपर नीचे करता रहता है, तो ये इसी फल मक्की का ही कीट है जो लार्वल स्टेज कहते हैं हम लोग उसको, तो ये इसके अंदर रहता है। तो उसको जो है आप कुछ दिन इसके अंदर 5 स्टेजेस होते हैं, 5 जैसे ही खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप जो है फल से नीचे गिर जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, इसका प्यूपल स्टेज जो है मिट्टी के अंदर रहता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत बार रेकमेंड करते हैं इसको नियंत्रण के अंदर, तो पेड़ के नीचे थोड़ा सा बीच बीच में आपको हल्का सा मिट्टी को खोदना पड़ेगा ताकि जो है जितने भी ये प्यूपा नीचे गिरा हुआ है या मिट्टी के अंदर है तो वो जो है एक्सपोज हो जाए सनलाइट को या कोई बर्ड्स को ताकि वो उसी समय डैमेज को मतलब उसको डैमेज कर सके
1: खाले या फिर हम
0: जी। उसके बाद जैसे ही बड़ा होके जब मक्की आ जाती है फल मक्की, ये जो है फिर अलग अलग फ्रूट के ऊपर ये जो है डैमेज करते करते करते पूरा बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं सारे फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसे भी कीट है, इस कीट के चलते हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट भी जो है निर्भर है, मतलब इस फ्रूट फल में के चलते हमारा बहुत सारा आम जो है दूसरे देश में जाने से भी रोका जाता है,
1: मतलब ये बर्बाद कर देते हैं जिस वजह से
0: बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये जो है कीट दूसरे देश में कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब उनके यहाँ है नहीं तो इसको आने से रोक देते हैं, हमको ये आपका ये आम नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसे केसेस हुआ है हमारे आम गया है वहाँ से वापस भी आया है या नॉन कम्प्लायंस के जरिए, क्योंकि उसके अंदर जैसे ही कीट एक कीट आपको देखने को मिलता है वो वहाँ से इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो है ये कीट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको रोकना जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसको नियंत्रण के लिए भी मैं एक दो चीज़ जैसे एक पता है वो मिट्टी को थोड़ा सा नीचे खोदना एक तो वो मेथड है, दूसरा मेथड जो जितने भी आपका आम गिर जाते हैं नीचे उनको हम कोशिश करें कि जो है जितना भी उनको है तो निकाल निकाल के एक जगह पे इकट्ठा करके उसको एक गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर उसको बंद कर दे ताकि जो है इसको
1: सड़े हुए आम सड़े, ना ऊपर
0: जितने भी नीचे मान लीजिए ऊपर से नीचे गिर गया तो एक दो दिन के बाद तो सड़ना
1: है जी।
0: तो मेन है कि आप जितने भी नीचे गिरा हुआ है वो सारे आम को जो है निकाल के एक जगह पे मिट्टी के अंदर उसको गड्ढा खोद के गाड़ दें, तो उससे क्या होगा आपका बहुत हद तक भी ये कीट जो है इसको आहार नहीं तुरंत आहार मतलब फूड वाला नहीं मिलेगा, इससे भी थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। और आजकल बहुत सारा फेरोमोन ट्रैप्स भी है अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं इसको नियंत्रण के लिए
1: जी।
0: और इसके अलावा कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स है जैसे कि डाइमिथोएट है और आपका इमिडाक्लोप्रिड भी इसके अंदर काम करता है, डाइमिथोएट है, इसको भी आप लगभग 2 ml प्रति लीटर पानी के अंदर डाल के छिड़काव करने से बहुत हद तक इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं
1: जी। सर एक और चौथे किस्म के कीट के बारे में आपने बताया था,
0: एक जो है मीली बग एक करके आता है दहिया कीट भी कहते हैं इसको, ये कीट जो है अभी आपका मान लीजिए जैसे कि मंजर आने के स्टेज और अप्रैल मार्च अप्रैल के बीच में ही ये कीट क्या करता है, मिट्टी के अंदर से रहता है बाजू में वीड मतलब खरपतवार के अंदर ये रहता है जगह जगह पे, तो जैसे ही आम के अंदर थोड़ा सा फल लगने लगते हैं
1: अच्छा
0: तो ये कीट क्या करता है धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है अभी जैसे तापमान बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे टहलते जमीन के ऊपर टहलते पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, ये नीचे से ही आता है ऊपर कहीं नहीं रहता है ना ही ये उड़ पाता है, ये नीचे जमीन से चढ़ते पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा
1: चींटियों की तरह
0: जी चींटियों की तरह चढ़ते और ये ऊपर जाके पूरा जहाँ पे जो नरम पत्ती है नरम ये होता है जो पौधा का पोर्शन होता है उस जगह पे जाके ये भी रस को चूसने लग जाते हैं, ये रस को चूसने जैसे लग जाते हैं बहुत सारा पल जो लग रहे होते हैं या अभी भी लगे हुए हैं वो सब जो अपने आप गिरने लग जाते हैं पूरा आपका नीचे गिरने लगते हैं, ये इस तरीके से आपको कीट जो है नुकसान पहुंचाता है
1: जी।
0: तो इसको जो है आपको देखेंगे तो आपको बहुत दूर दूर से पता चल जाएगा कि सफेद कलर का पूरा जो इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग कहते हैं हम लोग इसको पूरा एक तरीके से सफेद कलर का कपड़ा पहना दिया इस कीट के ऊपर तो उस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा और ये पूरा ग्रुप में ही रहता है बहुत ज्यादा जो है आपको झुंड में ही आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ये कीट जो इस तरीके से रस चूस के बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है, ये कीट जो है हमारे यहाँ इस जगह पे भी बहुत ज्यादा हम लोग पाए गए हैं बहुत बार। इसको रोकने के लिए हम लोग बहुत बार कहते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने के लिए, डाइमेथोएट जैसे बताया वो भी इसके ऊपर काम करता है। इसके ऊपर बेस्ट एक तरीका हम लोग एक और देखे हैं, ट्रंक के ऊपर जो है, स्टेम के ऊपर जो है, हम लोग एल्यूमिनियम फाइल को एक गोल करके लगा देते हैं ताकि जितने भी नीचे से इसके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हों कीट वो अपने आप नीचे गिर जाएंगे, ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे, स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी होने से क्या होगा, वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा
1: जी।
0: तो इसको इस तरीके से आपको सारे पेड़ के अंदर जहाँ जहाँ आपको ये देखने को मिलता है इस तरीके का कीट, तो आप उस पेड़ का जो ट्रंक होता है, ट्रंक के ऊपर पूरा गोल करके एक एल्यूमिनियम फाइल आता है, तो एल्यूमिनियम फाइल को आप थोड़ा सा उस पेड़ के ऊपर लगा देंगे, या नहीं तो आपको बहुत बार ये भी हो सकता है ग्रीस जो मिलता है जो गाड़ियों में लगती है, तो उस ग्रीस को भी आप लगा सकते हैं, एक पूरा 3 या 4 सेंटीमीटर का एक जो है बड़ा पूरा गोल करके लगा देंगे, तो जब भी ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करेगा उस ग्रीस के अंदर वो फंस जाएगा, उसका पाँव जो है उस ग्रीस के अंदर फंस जाएगा, तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। इस तरीके से इस कीट को हम लोग आसानी से रोक सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको चार तरह के इन कीटों के बारे में, जो प्रमुख कीट जो लगते हैं आम के फलों पर, मंजर पर, तो अलग अलग स्टेज है इन कीटों का लगने का, और उनके बारे में कैसे आप उन्हें पहचान सकते हैं वो भी बताया इन्होंने, साथ ही आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उनकी भी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दिया, और आशा करते हैं कि अभी इस मौसम में इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है, और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है, और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें, और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले, और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें, और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें, और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करे। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 cc की 2 ml मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर लैम्डा साहिलेथ्रिन की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल ले और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रिन की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, खास तौर से कामकाजी महिलाओं के वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, वो बाहर जा रही हैं, 9 से 5 काम कर रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो होती है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि प्रोफेशनल काम के साथ अपना निजी जीवन कैसे वो संतुलित करती हैं, ये उनके लिए अभी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो ऐसी परेशानियों से महिलाएं कैसे बच सकती है, कैसे कामकाजी महिलाएं अपने निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन को मैनेज कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी महिला मित्रों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि काम और घर के काम दोनों अलग अलग करें। काम के समय पूरा ध्यान काम पर लगाना है और जब आप घर पे होती है तो पूरा समय घर और परिवार को देना है। कई बार आपाधापी में हमारे कुछ जरूरी काम छूट जाते हैं, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप हर रात सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लें कि कल कौन से काम ज्यादा जरूरी हैं और कौन से काम कम जरूरी हैं जिन्हें कि छोड़ा जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। ऐसे में क्या होगा कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे ही करेंगी आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि आज ये काम हमें करना ही करना है क्योंकि ये जरूरी है, तो कुछ जो जरूरी काम होंगे वो आपके छूटेंगे नहीं। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है, इससे आपका वक्त जाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ब्रेक लेती हैं तो ऐसे में आप उस वक्त खुद को रिचार्ज कर रही होती हैं, अपने अंदर आप फिर से ऊर्जा भर रही होती हैं और बेहतर तरीके से काम करने की। इसके साथ ही खुद के लिए, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय निकाले। जब आप अपने दिन की शुरुआत करती हैं तो दिन की शुरुआत के कम से कम आधे घंटे आप खुद को दें। आप उस वक्त पे योगा कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं या फिर आप वॉक पे जा सकती हैं। अगर आप योगा करती हैं तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आप मेडिटेशन करती हैं तो आप पूरे दिन शांति से सारी स्थिति से निकल जाती हैं, मतलब उसे संभाल लेती है, आपका दिमाग इतना शांत रहता है। और इसके साथ ही ध्यान रखिए कि समय पर आराम और नींद लेना बहुत जरूरी है। जब आप नींद नहीं लेंगे तो अगले दिन के लिए आप रिचार्ज नहीं होंगे, अगले दिन के लिए आप तैयार नहीं होंगे, इसलिए अगले दिन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बेहतर नींद लेना जरूरी है। अभी हमारी सहेलियां सोच रही होंगी कि भाई सवेरे सवेरे खुद के लिए आधा घंटा क्या 5 मिनट भी निकालना मुश्किल है। ऐसे में पता है आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार में एक साझेदारी बना सकते हैं। जी हाँ, घर के कामों को आप परिवार के सदस्यों में बांटे। सुबह जब आप जगते हैं तो साफ सफाई होता है, बर्तन होते हैं या फिर किचन का काम होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। अगर आप घर के हर सदस्य में काम बांट देंगे तो आप पर दबाव कम पड़ेगा। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरत है कि घर के लोग समझें, खास तौर से जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनसे ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि वो घर के काम करेंगी, बाहर के काम संभालेंगे, फिर आकर घर के काम करेंगी, तो ऐसे में उनका जो निजी जीवन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि घर का काम घर के सारे सदस्यों को मिलकर करना चाहिए, तभी तो उसे घर का काम कहते हैं ना। घर परिवार का काम है तो घर परिवार को मिलकर करना चाहिए। किसी एक पर आप बोझ डाल देंगे तो सोचिए वो दब कर गिर जाएगा या नहीं। तो बस छोटे मोटे काम आप घर के अलग अलग सदस्यों में बांट दीजिए ताकि आप अपने लिए ये वक्त निकाल सके। और अगर आपके घर के सदस्य इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए। सबसे पहले आप जो आपके सबसे करीब हैं उनसे बात कीजिए, आप उन्हें अपने भरोसे में लीजिए, फिर धीरे धीरे घर के और भी सदस्यों से बात कीजिए और सबको समझाइए। इसके साथ ही जो भी घर के लोग सुन रहे हैं, फिर चाहे आप उस महिला के पति हैं, माता हैं, पिता हैं, सास ससुर या बच्चे भी हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब परिवार किसी को समर्थन देता है तो उस इंसान के अंदर और भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है और वो अपने परिवार के लिए भी और ज्यादा डेडिकेटेड होता है। जब कोई बोझ के अंदर दबकर काम करता है तो वो बस दबाव में काम करता है, लेकिन आप जब साथ में काम करेंगे तो वो खुशी खुशी काम करेंगे, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये तो हो गई घर परिवार की बातें, और अब हम बात करते हैं कि जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पर क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा है, तो आप अपने बॉस या टीम से खुलकर बात करें कि ये

0: बहुत ज्यादा काम है, आप इसे नहीं मैनेज कर पा रही हैं, या फिर आपको थोड़ा वक्त लगेगा इस काम को सीखने में, अभी इस काम को कम कर दिया जाए और थोड़े समय बाद जब आप काम को अच्छे से सीख लेंगी तो आप काम करेंगे। और इसके साथ ही कई सारे जगहों पर आप अपने हिसाब से काम के समय को, काम के घंटे को चुन सकती हैं, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम की भी अनुमति ले सकती हैं, परमिशन ले सकती हैं, अगर आपके ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून है, तो जी हाँ है, कुछ है। कामकाजी महिलाओं के लिए और कामकाजी पुरुषों के लिए भी एक लेबर कोड है। लेबर कोड की अगर हम बात करें तो भारत में नए श्रम कानून लागू हो चुके हैं और ये जो कानून है वो कहते हैं कि काम के समय, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, काम की स्थिति और ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आमतौर पर आप 9 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप पर काम करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता और हफ्ते में आप 48 घंटे ही काम करने के लिए बाध्य हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि अगर कई बार स्थिति ऐसी होती है कि काम बहुत होता है, ऐसे में जब ओवर टाइम कराया जाता है तो अतिरिक्त वेतन भी मिलता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो महिलाएं माता हैं और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं है और काम छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें घर, काम, बच्चा तीनों संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर के लोग माँ की जिम्मेदारी को समझें और उसका साथ दें। और ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं कि ऑफिस में मैटरनिटी लीव दिया जाता है, यानी कि मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है, आप इसके हकदार होते हैं, जिसमें बच्चे की देखभाल के लिए और रिकवरी के लिए छुट्टी होती है। इसके साथ ही आप जिस भी जगह काम करते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, तो वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच सुविधा भी उपलब्ध कराना उस कंपनी के लिए, उस संस्था के लिए जरूरी है। क्रेच सुविधा क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्रेच का मतलब होता है बच्चों के लिए सुरक्षित देखभाल केंद्र, या फिर जिसे कि आम भाषा में हम डे केयर भी कहते हैं, जहां की कामकाजी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को, जो कि आम तौर पर 6 महीने से 6 साल तक के हो सकते हैं, उन्हें रख सकती हैं। वहां उन बच्चों को संभाला जाता है, उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है जबकि माँ और पिता काम पर होते हैं। और जब आप जिस संस्था में काम कर रही हैं, जिस ऑफिस में काम कर रही हैं, वही आपको क्रेच सुविधा यानी कि डे केयर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपका बच्चा आपके आसपास ही रहता है। कुछ नियम ऐसे भी हैं कि काम का वक्त आपका जैसे ही ख़त्म हुआ, मान लीजिए कि आपके ऑफिस की छुट्टी शाम को 5 बजे होती है, तो शाम के 5 बजे के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बॉस के कॉल या ईमेल का जवाब दें। ये भी एक हमारा हक है, राइट टू डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं, तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रख सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम निजी स्तर पर बात करें तो आपके आसपास बहुत सारी महिलाएं होंगी, जहां आप काम करती हैं वहां भी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर के काम और ऑफिस के काम दोनों में इस तरीके से पिस गई होंगी कि बिल्कुल परेशान होंगी, तो उनसे आप बात कीजिए कि कैसे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज कर पा रही हैं और दोनों साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान निकालिए, तो आपका मन भी हल्का होगा और कोई ना कोई समाधान भी आप मिलकर निकाल लेंगी। और इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम में आपको रुचि हो, जैसे कि आपको गाना सुनने का शौक हो सकता है, कुछ महिलाओं को पेंटिंग का शौक होता है, किसी और चीज़ का आपको शौक है, तो अपने शौक को भी आप थोड़ा वक्त दें। आपको शॉपिंग जाने का शौक हो सकता है, आप घूमने का आपका शौक हो सकता है, तो ये इन चीज़ों में जब आप समय बिताती हैं तो आप खुद को रिफ्रेश करती हैं, आप खुद को थोड़ा और अच्छा महसूस कर आती हैं। जो भी महिलाएं सुन रही हैं वो तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी ही, इसके साथ ही जो उनके घर वाले सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि घर का काम घर के सारे लोग मिलकर करते हैं, तो इन कुछ बातों का ध्यान रख के अपने परिवार का साथ पाकर, अपने परिवार से बातचीत करके, अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल कर आप घर के काम और बाहर के काम दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं और इसके साथ ही आप खुश रह सकती हैं और आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना वो परेशानी के साथ नहीं आएंगे, खुशी के साथ आएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: आप
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ अनु। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान की बात करते हैं हम। जी हाँ, धान में हम बहुत सारी बातें आपको बताते हैं कि कैसे बुआई करनी चाहिए, कौन सा मेथड आपके लिए सही होगा। DSR के बारे में भी हमने आपको बताया, लेकिन आज कुछ उर्वरक की बात करेंगे हम। तो आज जो हमारा विषय है वो है धान में जैविक उर्वरक का महत्व। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच है डॉक्टर AK झा, मृदा वैज्ञानिक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप जैव उर्वरक के बारे में बता दें कि ये क्या है।
1: देखिए, जैसे नाम बताता है, जैव उर्वरक यानी जीवित पदार्थ जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सके उसको आप जैव उर्वरक कहते हैं। यानी कहने का मतलब, यदि आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे राइजोबियम की बात करते हैं, या एजोटोबैक्टर की बात करते हैं, या एजोस्पाइरलम की बात करते हैं, या अजोला की बात करते हैं, या BGA की बात करते हैं, ये सब के सब जितने हैं, सब के सब जीवित पदार्थ हैं और उर्वरक की तरह पोषक तत्व तो इनको देने का काम करते हैं, इसीलिए इसको जैव उर्वरक कहा जाता है।
0: जी, मतलब पोषक तत्व तो देते हैं। और साथ ही साथ ये जो जैव उर्वरक हैं, क्या धान में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर किया जाता है तो किन किन जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है?
1: अभी जैसे मैंने नाम बताया कि धान के केस में यदि आप देखें तो धान के केस में आप जो प्रयोग करते हैं एजोस्पाइरलम का प्रयोग कर सकते हैं। खास करके नाइट्रोजन प्रदायक की बात करें, जो नाइट्रोजन देता है, तो उसमें आप एजोस्पाइरलम प्रयोग करते हैं। वैसे कुछ जगहों पर एजोटोबैक्टर भी लोग यूज करते हैं, लेकिन एजोटोबैक्टर से बढ़िया आपको एजोस्पाइरलम होगा, तो एजोस्पाइरलम का प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोरस यदि आपको प्रदान करना है तो आप PSB का प्रयोग कर सकते हैं। ये बीज में जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे तो सीडलिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं आप। और इसके अतिरिक्त नील हरित शैवाल ये भी 30-40 kg नाइट्रोजन की बचत करता है, तो नील हरित शैवाल का भी प्रयोग धान के केस में किया जाता है। और एक जो हमारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिस पर करता है, अजोला बड़ा ही फायदे की चीज है, तो ये अजोला का भी प्रयोग आप इस खेती में कर सकते हैं।
0: जी, अजोला का प्रयोग इस खेती में किया जाता है, तो क्या इससे क्या फायदा मिलेगा धान की खेती में? सर
1: देखिए, अभी तक लोग ये कहते थे कि अजोला के प्रयोग से नाइट्रोजन की बचत होती है 30-40 kg, लेकिन बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शोध करके देखा कि नाइट्रोजन ही नहीं, फास्फोरस भी, पोटास भी, ये सब की बचत करता है। क्योंकि इसमें देखें तो नाइट्रोजन इसमें 4.5-5% के बीच में नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास भी इसमें 2.5% से लेकर 4.5% तक इसमें पोटास भी पाया जाता है, 1% के आसपास इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो इसका यदि आप हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं या डुअल क्रॉपिंग के रूप में करते हैं, तो जो कुछ भी आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास धान को दिया उसकी मात्रा आधी कर दीजिए, और आधी मात्रा कर देने के बावजूद भी आपके उपज में कोई कमी नहीं होगी। यदि मान लीजिए 5-6 हजार रुपये का आप खर्चा करते हैं फर्टिलाइजर के ऊपर, यानी 2-3 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर आपको बचत हो जाता है यदि आप अजोला का प्रयोग करते हैं तो ये फायदा है।
0: ठीक है, मतलब जो है आय जो है उसमें बचत हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि जो पैसा हम लगा रहे हैं उसमें बचत हो जाता है, ज़्यादा खर्च नहीं होता है। और अजोला का प्रयोग कैसे करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है जानना।
1: अभी आपने कहा कि हमें बचत हो जाता है, बचत ही नहीं होता है, आज जरूरत है टिकाऊ खेती की।
0: बिल्कुल,
1: टिकाऊ खेती के लिए उसमें कार्बन को देने के काम की जरूरत है। और यह जो पौधा है ये हरा पौधा है, और हरा पौधा है तो ये वातावरण से कार्बन को लेकर के आपकी मिट्टी में डालता है, क्योंकि कार्बन बड़ा महत्वपूर्ण एलिमेंट है, या आपकी मिट्टी में होना चाहिए 0.75% के ऊपर, लेकिन बहुत सारी मिट्टियों में देखेंगे तो कहीं 2%, 0.2%, 0.3%, 0.4% ऐसे ऐसे है। जबकि 0.5% के नीचे यदि जैविक कार्बन है आपकी मिट्टी में, तो उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि यह निम्न है, लो है। 0.5 से 0.75% के बीच में है तो इसको कहते हैं कि मध्यम है, और 0.75% के ऊपर है तो कहते हैं उच्च है। और ये कार्बन जो है आपके सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि भौतिक गुण का क्या मतलब, यानी कि जल धारण क्षमता कितनी बढ़िया है, वायु संचार कितना बढ़िया हो रहा है, तो ये सारे आते हैं आपके भौतिक गुणों में। रासायनिक गुणों में जो हमारा पोषक तत्व लॉस कर जा रहा है, तो वह पोषक तत्व हमारा लॉस कैसे नहीं करे, वह कैसे हमारे मिट्टी में बचा हुआ रहे। जैसे आप जिंक ही यूज करते हैं, वह आप देखते हैं कि बह के चला जाता है, वो लीच हो जाता है या परकुलेट हो जाता है, वह कैसे नहीं हो, उसका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे हो, तो ये सारी चीजें कार्बन के ऊपर निर्भर करता है। और तीसरी बात हमने कहा जैविक गुण, तो जैविक गुण का मतलब होता है कि उसमें जो लाभदायक जीव जीवाणु हैं उसकी संख्या कितनी अच्छी है। अब आज आपके मिट्टी में बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिस सबकी संख्या घटती जा रही है, यदि उसमें कार्बन है तो उसकी संख्या ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि इसकी जलधारण क्षमता बढ़ाएगा, और साथ ही साथ जो उस जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उसके लिए खाने का भी काम वो देगा, तो इसीलिए उसकी संख्या अच्छी होगी, तो ऐसी स्थिति में वह आपको ज्यादा बढ़िया होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कार्बन को बढ़ाइए यदि टिकाऊ खेती चाहते हैं, क्योंकि हमको इसी पीढ़ी की नहीं सोचना, आने वाली पीढ़ी को भी भोजन मुहैया कर सके, हमारी खेती टिकाऊ बनी रहे, यह ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए कार्बन बढ़ाना है। और कार्बन बढ़ाने में आपको ये जो हमने अजोला का नाम लिया, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्रयोग होता है, और जितना भी हरा पदार्थ है ये वायुमंडल से कार्बन को लेकर के ट्रैप करके ये सॉइल में डालने का काम करता है, तो इसीलिए ये काफी फायदेमंद चीज है, तो इसका प्रयोग तो किसान भाई जरूर करें। दूसरा आपका क्या प्रश्न था कि इसका प्रयोग हम कैसे करें,
0: कैसे करें?
1: तो दूसरा इसका प्रयोग करने की बात ऐसा है कि अजोला का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो दो ढंग से धान के खेत में कर सकते हैं, एक तो हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा डुअल क्रॉपिंग के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के रूप में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना लीजिए, और 10 मीटर × 2 मीटर की क्यारी बना करके, खास करके जहां पर पानी आपका रुकता है बरसात के दिनों में, तो वैसे भी खेत में पानी रहता है, कोई समस्या नहीं है, तो जब भी 3-4 हफ्ते के बाद आपको धान की रुपाई करनी है तो उसके पहले ही आप इसको क्यारी बना लीजिए, और क्यारी बना करके आप पानी है ही खेत में या बोर्डिंग के पास कीजिए, जहां पर पानी यदि घटने लगे तो आप बोर्डिंग से पानी दे सकें, वो क्यारी बना करके उसमें आप 5 से 8 किलो गोबर को 10-15 लीटर पानी में घोल लीजिए, घोल करके उस गोबर के घोल को आप पूरे क्यारी में छिड़क दीजिए, और छिड़क करके उसमें आप कुछ अजोला डाल दीजिए, 4-5 किलो आप अजोला डाल दीजिए, वह अजोला जो छोटे क्यारी में हम बनाए हैं पैदा किए हैं वो ले जा करके वहां पर डाल देंगे। अब क्या है कि 3 हफ्ते तक आपको पानी का स्तर 2-4 इंची बरकरार रखना पड़ेगा, वह 2-4 इंच पानी उसमें यदि बरकरार है, और SSP ये हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 से 2.5 ग्राम SSP प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से यह छिड़कते रहिए, जिसे बढ़वार और तेजी से हो, ये आप कर देंगे तो क्या होगा कि 3 हफ्ते में आप देखेंगे कि पूरा आपका भर जाएगा, और अजोला कम से कम एक क्यारी से लगभग 1 क्विंटल तो आपको अजोला मिल ही जाएगा जो आपने 4-5 किलो डाला था, क्योंकि अजोला बढ़ता बड़ा तेजी से है, 2 से 5 दिन में यह अपने बायोमास को दूना कर लेता है, तो आपको तेजी से बढ़ जाएगा। अब उस अजोला को आप जैसे हरी खाद ढेंचा पलटते हैं उसी ढंग से आप खेत की जुताई के समय मिला दीजिए, तो यह तो एक तरीका है, लेकिन इसमें मात्रा ज्यादा चाहिए, इसमें 10 टन/हेक्टेयर के हिसाब से इसकी मात्रा होती है। और दूसरी जो बात हमने कहा डुअल क्रॉपिंग, मान लीजिए उतना अजोला आपके पास नहीं है तो धान को रोप दीजिए, रोप देने के बाद जब वो 1 हफ्ते का हो गया उसी समय आप सिर्फ 1 टन/हेक्टेयर के हिसाब से वह अजोला को डाल दीजिए, और धान में पानी वैसे भी चाहिए, धान में पानी आप 2-4 इंच पानी आप मेंटेन रखिए, और जो आप फास्फोरस डालते हैं जो भी उस फसल के लिए डालते हैं उसमें कम से कम 10-15-20 किलो ज्यादा SSP/हेक्टेयर के हिसाब से आप बढ़ा करके डाल दीजिए। अब क्या होगा कि ये 3 हफ्ते में पूरा आपके खेत में कवर कर लेगा, उसके बाद पानी को थोड़ा कम कर दीजिए या अपने आप यह जो है क्या कहते हैं आपको मिट्टी पकड़ लेगा और मिट्टी में चला जाएगा। और इसकी खासियत क्या है अजोला का कि यह मिनरलाइजेशन बड़ा तेजी से होता है, इसका खनिजन बहुत तेजी से होगा, तो उसमें जो कुछ उस अजोला में पोषक तत्व है वो पौधे को मिलने लगेगा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि जो आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास आप डालते हैं किसी फसल में, वह नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा आपको आधी ही डालनी पड़ेगी, जितनी आपने मात्रा डाली है, मान लीजिए एक धान आप यहाँ बिहार के कंडीशन में करते हैं तो 100 kg आप उसमें डालते हैं नाइट्रोजन, 40 kg फॉस्फोरस, 20 kg पोटास, तो इसकी मात्रा को आधी कर दीजिए और अजोला जो है क्या कहते हैं आप डालते हैं तो आपके उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है, साथ ही साथ हमको उर्वरक पर होने वाला खर्चा भी बचेगा। यदि मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये आपको खर्चा हो रहा है तो आपको ₹2,500 उसमें खर्चा होगा, यानी ₹2,500 प्रति हेक्टेयर की बचत भी होगी और मृदा का सेहत भी ठीक ठाक होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसका फायदा ये है
0: जी। तो किसान भाइयों, आपने जाना जैव उर्वरक के बारे में, साथ ही अजोला कैसे फायदा दिलाता है धान की खेती में, ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आप जैव उर्वरक जितना ज्यादा हो सके आप उपयोग करें, और अजोला भी बिल्कुल फायदेमंद है आपकी खेती के लिए।
1: एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी बात दिमाग में आ गई। हमने कहा था कि यदि आप जो स्पायरलम यूज करना चाहते हैं या पीएसबी यूज करना चाहते हैं, तो किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये यदि प्रयोग करना चाहे तो वो कैसे प्रयोग करें। तो उसमें देखिए सीधी सी बात है, जो स्पायरलम आप सॉइल में भी प्रयोग कर सकते हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं, लेकिन उसमें यदि मिलाते हैं तो आपकी ज्यादा मात्रा उसमें डालनी पड़ती है। तो आपको सीधा करना क्या है कि आप ये जो मान लीजिए आपका कोई, क्योंकि उसमें भाई बिचड़ा बहुत वो करते हैं, बिहन लगाते हैं ना आप, तो उसमें जो है आप एक केजी मान लीजिए आपने लिया ये जो स्पायरलम या पीएसबी ही, और उसको आप डुबा दीजिए, और डुबा करके उसके जड़ को डुबा रहने दीजिए 10-15 मिनट, और 10-15 मिनट के बाद प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि कोई किसान भाई पीएसबी प्रयोग करना चाह रहे हैं या जो स्पायरलम भी प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसमें सीक्वेंस ये होगा कि पहले आप पीएसबी से उपचारित करें, बाद में आप जो स्पायरलम से करें, ये चीज उसका तरीका होगा। और यदि आप बीजीए का प्रयोग करते हैं तो आपको 10 केजी के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीजीए का जो पपड़ी टाइप का वो आता है वह आपको प्रयोग करना पड़ता है। तो ये मैं इसकी भी मात्रा की बात थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता था
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: CIET NCERT presents audio book कौशल बोध, textbook of vocational education for grade 7,
4: page number 25, project 2, school habitat garden. There's a QR code given on the top right hand side of the page for additional resources related to this chapter. This project will help you learn about providing suitable conditions for groups of animals to live and thrive. You will create a habitat garden in your school to attract different groups of animals, birds, mammals, insects, reptiles, etc., by providing them with shelter, water, food, and space. As part of the project, you will be able to identify needs of animals, design and develop the habitat garden, make provisions for the needs of animals, maintain the habitat garden, observe the animals in the habitat garden. Figure 2.1 is given, creating a habitat for animals in the school. Some children are creating a habitat garden in this picture. Some of them are taking notes, some of them are planting trees, some are looking at birds and insects. Page 26. Many animals coexist peacefully with humans. Figure 2.1, 2.2 and 2.3. Beyond domestic and farm animals, several other animals share our surroundings, including crows, sparrows, pigeons, owls, kites, bats, monkeys, langurs, squirrels, mice, rats, butterflies, and moths. They lead their busy lives alongside us, adapting to the human-dominated environment. Have you ever wondered where these animals lived before towns and cities replaced farmlands and forests? how many of them have managed to adapt to the changes brought about by human expansion? As villages, towns, and cities continue to grow, natural habitats are shrinking, forcing many animals into unfamiliar territories. This habitat loss has led to an increase in sightings of leopards, wolves, and even tigers in urban areas and farmlands. Imagine being suddenly displaced from your home, losing the safety and comfort it provides. This is the challenge these animals are now facing. Figure 2.2. Birds nest hanging from the roof of a veranda in a city. Figure 2.3. White-throated kingfisher can be seen on wires near water bodies or parks in cities. Animals that can adapt to changes in their habitat continue to coexist with us, while those that cannot retreat into the remaining untouched areas. Take birds, for example, specifically pigeons. Their natural habitat consists of cliffs and rocky hills, which is why they are commonly seen perched on building ledges. In contrast, house sparrows prefer sheltering in dense trees and bushes. As cities expand and green spaces diminish, the sparrow population gradually declines until they eventually disappear from urban landscapes. Page 27. All animals require food and water to survive. Additionally, they need sufficient space to move freely and a safe shelter where they can rest and raise their young ones without fear of predators or exposure to harsh weather conditions. These four essentials, space, shelter, food, and water, form the foundation of every animal's habitat. However, the specific needs of different animals vary. For instance, in terms of space, carpenter ants can establish a colony within just a few square centimeters, whereas spiders spin webs that are much larger than themselves. Similarly, water sources differ. While butterflies and ants can sip dew droplets from grass, birds often drink from puddles or leaking taps. Shelters also vary. Squirrels find safety in trees, while lizards are comfortable on flat concrete surfaces, as few predators can climb walls to reach them. Near human settlements, a diverse range of food is readily available, including human leftovers, flower nectar, leaves, insects, and small animals. Figure 2.4. Additionally, birds find various materials for nest building in such areas. They collect twigs, dried vegetation, and grass to construct sturdy nests. Figure 2.5. For the nest lining, sparrows often use feathers or even paper, whereas crows incorporate metal wires and ropes to reinforce their nests. There are two pictures given in the middle of the page of an insect and of a bird. Figure 2.4. Insect feeding on nectar of a flower also helps in the pollination. Figure 2.5. A bird gathering material for its nest. Once basic needs are fulfilled, habitats must also provide comfort and joy. For example, some birds like bulbul, dove, and munia love to bathe in shallow water containers to cool down and clean their feathers. Page 28. Numerous initiatives have been undertaken in our country to create and maintain suitable habitats for wildlife, ensuring their protection and conservation. These efforts include the establishment of various wildlife sanctuaries and national parks, such as 1. Kaziranga National Park in Assam, renowned for its population of one horned rhinoceros. 2. Bharatpur Bird Sanctuary in Rajasthan, a haven for migratory birds. 3. Periyar Tiger Reserve in Kerala, dedicated to tiger conservation. 4. The butterfly enclosure within Phambong Lo Wildlife Sanctuary in Sikkim, which provides a safe habitat for diverse butterfly species. And 5. Kanha National Park in Madhya Pradesh, which serves as a vital refuge for Barasingha, swamp deer and other wildlife. These are just a few examples among the many protected areas across the country. The term sanctuary literally means a safe place where one's needs are met. In the context of wildlife conservation, sanctuaries are typically vast, well-maintained areas managed by experts who ensure the protection and well-being of various species. However, the concept of a sanctuary is not limited to large-scale conservation efforts alone. Even a small habitat garden in your backyard or neighborhood can serve as a miniature sanctuary, providing shelter, food, and a safe space for birds, butterflies, insects, and other small animals. By creating and nurturing such spaces, individuals can contribute to biodiversity conservation and support local wildlife in their own surroundings. What will I be able to do? At the end of the project, you will be able to 1. Identify groups of animals in and around the school that can be attracted to the habitat garden. 2. Identify the needs of these groups of animals in terms of space, shelter, food, and water. 3. Describe how these needs can be met within the school habitat garden. Page 29. 4. Design and set up a habitat garden in your school based on the above needs. 5. Observe the groups of animals attracted to the habitat garden. What will I need? You will need tools and materials for setting up the habitat garden, along with what are referred to as non-plant elements that will attract animals. 1. Gardening tools and materials. A. You will need gardening tools like shovels, spades, trowels, and watering cans and safety gloves. B. You will also need plant seeds or seedlings, including those of flowering plants, and materials like compost to help them grow into healthy plants. 2. Materials for including non-plant elements to attract animals. A. Gravel, wood chips, or bricks to create garden pathways. B. Waste materials like old containers, discarded wood or plywood, cardboard, and old string to create shelters, feeders, and bird baths. C. Stones, rocks, logs, waste cardboard, and compost to create shelters for insects. D. Tools like hammer and a small saw. E. Nails and fasteners. How do I keep myself and others safe? Some key precautions to be followed while creating the habitat garden are as follows. 1. Be sensitive to the needs of animals. Take care not to disturb them. 2. Do not damage the habitat of animals. 3. Wear gloves when handling tools and materials to protect yourself. Page 30. Internet safety. Ask your teacher for help while using the internet. Be careful not to upload or download anything without checking. Do not share personal information anywhere. What do I need to know before I start? In order to develop the habitat garden, you must first identify animals in and around the school. Next, you must understand the needs of these animals in terms of space, shelter, food, and water. After all, these animals will be attracted to the garden only if their needs are fulfilled. Activity 1. Identifying animals in and around the school. Spend some time looking around the school and identify the animals around you. Next, ask the gardeners in a nearby park or members of the community living close to the school about the animals they have observed in the surroundings. Depending on where your school is located, there will be pigeons, crows, sparrows, kites, peregrine falcon, bulbul, maina, munia, sunbirds, woodpeckers, owls, and many other birds. Figure 2.6. Sunbird feeding on nectar also helps in pollination. There is a picture in the middle of the page where a sunbird is already feeding on the nectar. This process also helps in pollination. You may find squirrels, mice, rats, bats, mongoose, and maybe some other small animals, as well as lizards and frogs. Insects like ants, butterflies, dragonflies, beetles, caterpillars, mosquitoes, and many others are also likely to be around. Figure 2.7. Caterpillar on the leaves of a flowering nasturtium plant. This figure is also in middle of the page. Make a list of the animals around you that are likely to be attracted to the habitat garden and decide which ones you would like to have in the school and which ones you would like to avoid. Page 31. Write your responses in Table 2.1. Animals that you want or not want in the school habitat garden. There's a table given with 5 rows and 2 columns with some blank space and examples. The first column starts with a heading, "We would like these animals in our habitat garden." Some examples that are shared in the first and second row are butterflies and sunbirds. Then, some space is provided for your responses. The second column has the heading, "We would not like these animals in our habitat garden." The examples that are given are mosquitoes and snakes. The blank space that is provided is for your own responses. Once this list is ready, the next step would be to identify what these animals need in their habitat. Activity 2. Interaction with an expert. To assess the need of the animals identified by you, it will be useful to speak to an expert. The expert can be a farmer, gardener, or any other community member who has a garden and an interest in animals. If possible, you can also meet a naturalist who gains understanding of the natural world through observation over a long period of time. Conservationist, who explains the need for protection of animals and gives suggestions. Zoologist, who studies animal behavior. Entomologist, who concentrates on insects. Lepidopterists, who concentrates on butterflies and moths among insects. Botanist, who studies plants. And any scientist who studies the natural world. Think of questions to ask the experts. Some questions are given. You can think of many more. With each question, you have been provided with a blank space to write your answers. 1. Which of the animals identified in the surrounding of the school are likely to be attracted to our school habitat garden? Blank space. 2. How can we prevent the entry of animals we do not

हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरते और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा
मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस

भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. हेलो नमस्कार, तो लीजिए फिर से हाजिर हैं हम और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम. जी हाँ, वैसे समय की बात करें, सीजन की बात करें तो सब्जियों की रोपाई का वक्त आ चुका है और उसमें भी बहुत सारे सब्जियां हैं जो आप अपने बागान में लगा सकते हैं. तो सब्जियों को लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि हम सावधानियाँ बरतें. सावधानियाँ यानी कि जो कीट पतंगे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, उन कीट पतंगों से हम कैसे आज़ादी दिलाएं अपने बागानों को, यानी कि खास तौर पर सब्जियों के बागानों को. तो आज हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं एक खास विषय पर जो है सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन. जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर टी साहा जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में. और जहाँ तक देखा जा रहा है तो मौसम के अनुसार भी हमारे किसान भाइयों को अभी ये सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने नए बागान सब्जियों के लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम बैंगन की ओर जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि बैंगन के अगर हम बागान लगाते हैं तो उनमें कौन कौन से कीट पतंगे जो हैं वो आ सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम.
1: धन्यवाद. मैं पहले बताना चाहूँगा, बैंगन में हमारे बिहार में जो है मुख्यतर तीन चार कीड़े जो है सबसे ज़्यादातर डैमेज करते हैं. उसमें जो है बैंगन के तना और फली छेदक है, जो जब हमारे बैंगन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन के बाद से ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है. ये पहले तना में अटैक कर डैमेज करता है, तना के अंदर वो जो है छेद करके उसके अंदर घुसता है, जब एक से जब उसका पिल्लू निकलता है उसके बाद फिर वो होल पहले शुरू में जो है बहुत छोटा रहता है, बट जब मैच्योर होता है लार्वा जो पिल्लू जो है वो निकल के फिर फ्रूट में डैमेज करता है. जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है, फल का अवस्था होता है तो फल में वो डैमेज करता है. ये पिल्लू जो है देखने में थोड़ा सा हल्का सा उजला और भूरा कलर का मिक्सचर है और जो उसका हेड है जो उसको बोलते हैं वो जो है भूरा कलर का होता है. और ये जो है दोनों तना को भी एवं फल को भी ये छेद करते हैं, किंतु इसका जो एडल्ट है जो संपूर्ण अवस्था है ये डैमेज नहीं करता है, किंतु इसका जो इमैच्योर जिसको हम लोग पिल्लू बोलते हैं इसको ज़्यादा डैमेज करता है सब्जी में, बैगन में. और ये डैमेज जो है लगभग 20-80% तक डैमेज करता है. रबी में भी डैमेज करता है, तो रबी फसल में थोड़ा सा कम करता है कंपेयर अगर किया जाए हम लोग खरीफ बैगन और रबी में अगर बैगन लगाए. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सबसे मुख्य कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डा बीटल, ये शुरू के टाइम में ज़्यादा डैमेज करता है. जब बैगन का 2-3 पत्ती के समय आता है इसमें ये क्या, ये बैगन का पत्ती को जो है नोच के इसको पूरा उसका जो हरा वाला पोर्शन है, पीला हरा वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा डैमेज करके ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है. और उसमें जो पत्ती में जो वेंट्स वगैरह रहता है वही से बढ़ जाता है. तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा. जब बैगन का 2-3 लीप का स्टेज रहे उसी समय हमको इनको अच्छा से कंट्रोल करना पड़ेगा. अच्छा. उसके बाद तीसरा जो कीड़ा है ये है बैगन का जैसिड बोल सकते हैं हम लोग. ये पूरा पीला का हरा कलर का होता है, बहुत छोटा होता है और बैगन के पत्ती के निचले भाग में ये ज़्यादातर देखा जाता है. ये अंडा भी उसी के अंदर ही देता है, अंदर जो बैगन के नीचे वाला पत्ती में. और ये बैगन को बैगन से जो है पत्ती से रस चूस के इसको कंप्लीट जो है एकदम ड्राई कर देता है. जो पत्ता जो आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदर जो क्लोरोफिल रहता है बैगन के पत्ती में ये पूरा ख़त्म करके इसको भूरा कलर का आकार कलर में आ जाता है. पहले पीला करते हैं फिर भूरा कलर होके फिर पत्ती गिर जाता है. और ये वायरस नामक एक बीमारी भी फैलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ बेंजर. ये कैसे होते हैं देखने में, जब भी ये वायरस बीमारी आपके खेत में आए तो बैगन का जो नॉर्मल जो हाइट होता है उससे वो छोटा हो जाएगा, उसमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा. और बैगन का जो जितना भी ब्रांचेस आता है उसमें छोटा छोटा छोटा छोटा जो है जो पत्ती है छोटा छोटा हो जाएगा और वो ऊपर की तरह थोड़ा सा मुड़ जाएगा और उसमें कोई फूल भी नहीं लगता है कोई फल भी नहीं लगता. और उसका पत्ती का जो कलर है जो नॉर्मल हमारा बैगन का पत्ती का कलर है उससे ज़्यादा डार्क डार्क जो है डार्क हरा कलर का पत्ती आता है, तो ये जो है बहुत भयंकर बीमारी है। ये अगर आपके खेत में आ जाता है तो आपको तुरंत जो है आपको खेत को वो बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कुछ और छोटा छोटे कीड़ा है जिसे हम लोग बोल सकते हैं सादा मक्खी बोल सकते हैं बैगन का, ये भी डैमेज करता है, ये भी निचले वाले पोर्शन के बैगन के पत्ती के नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, ये भी शुरू के टाइम में ही डैमेज करता है मैक्सिमम। ये जब डैमेज करता है जो पत्ती का फिर वही कलर चेंज हो जाता है और बैगन का पत्ती का कलर जो है ये पीला कलर का हो जाता है फिर भूरा कलर का हो जाता है, तो इससे भी हमको सावधानियाँ बरतना पड़ेगा। यही सब जो है बैगन का मुख्य कीट जो है हमारे इधर लगता है।
0: अच्छा, यहाँ पर आपने बताया डॉक्टर साहब कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं इन कीट पतंगों से, तो अब जो समेकित अगर हम इसके समाधान के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए खासतौर पर बैंगन के लिए?
1: हाँ, हम लोग अगर समाधान करने के जाए बेचा हम शुरू से बताना चाहेंगे हम कैसे बैगन का समाधान करेंगे। जैसे शुरू में हम आपका आप लोगों को बताएं जो बैगन का जो जैसीड है और सादा मक्खी है ये शुरू के समय में ज़्यादा लगता है और जो दो से तीन पत्ती में हड्डा बीटल लगता है।
0: अच्छा।
1: जो अगर हम बीज शोधन करके अगर हम लगाए तो ये हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है जैसे जैसीड हो गया सादा मक्खी हो गया ये जो है 20 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और नर्सरी में भी हम जब इसको बुवाई करेंगे तब भी कोई दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो है कि जो फसल में जो कीटनाशी का प्रभाव भी कम होगा और हमारा फसल में जो फार्मर फ्रेंडली जो बंधु कीट है इसका भी नंबर बढ़ेगा और डिजीज भी हमारा कम है, मतलब तो रोग भी जो है हमारा कम आएगा। तो ये हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा। शुरू से हम लोग बीज शोधन करें, बस सीडलिंग डीप मतलब जो सीडलिंग जो नर्सरी से आप मेन फील्ड में जब रोपाई करेंगे तो सीडलिंग को अगर इमिडाक्लोपीड बथायोमिथाक्साम नामक जो दवा है इमिडाक्लोपीड का गौचो और थायोमिथाक्साम नामक एक तरह का दवा है, ये दवा अगर 3 ml और 3 ग्राम 15 लीटर सॉरी 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप इसको डीप कर सकते हैं। अगर कम मात्रा में बनाना है तो इसका मात्रा है 1 ग्राम/1 ml प्रति 3 लीटर पानी। अगर स्प्रेयर में लेना है तो 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर में 5 ग्राम/15 लीटर स्प्रेयर में आप घोल कर सकते हो। तो हम इसको बीज शोधन जो है हम उसको नर्सरी से मेन फील्ड में लगाने के बाद हम इसको सीडलिंग डीप करके भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा जो चूसने वाले कीड़ा से हम 25 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो हमारा हड्डा बीटल के बारे में आप बताएं जब हम 2 से 3 लीफ्स की स्टेज में हैं वो मैक्सिमम डैमेज करता है। अगर वो एक बार डैमेज मैक्सिमम कर देंगे तो फिर उसमें फल भी नहीं बनेगा फूल भी नहीं आएगा और वो ग्रोथ भी बंद हो जाएगा तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम अगर समेकित प्रणाली में जाए तो हम जानते हैं हमारे गाँव में जो है राख मिलता है, राख मतलब जो जलावन करने के बाद जो रेसिड्यू रहता है उसको अगर हम कलेक्ट करके उसको अगर हम भुरकाव करें पत्ते के ऊपर, भुरकाव करने के बाद हल्का सा मिट्टी का तेल डाल दे, इसलिए डाल दे जो वो उसके ऊपर बना रहे, नहीं तो कभी कभी ये होता है बारिश के समय पे वह हल्का जो ठंडी के समय पे जो ड्यू जो पानी गिरता है उससे जो है वो फिर पत्ती में सट के नहीं रह सकता है। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें अगर डाल देंगे तो ये जो है हमको कोई भी कीटनाशी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हमारा जो पत्ती जो है और हमारा बैगन का जो फसल है कीटनाशी मुक्त रहेगा और इस तरह से हम समेकित प्रणाली से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके गाँव में नीम का पेड़ है, नीम का पत्ती आपको मिलेगा, अगर नीम आधारित कोई दवा अगर आप इस्तेमाल करना चाहे अगर बाजार में उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना मिले तो नीम का पत्ती जो है आप पेड़ से तोड़ के 400 से 500 ग्राम पत्ती मिक्सचर ग्राइंडर में उसको क्रश करके उससे जो निष्कास निकलेगा उसको एक उजला कपड़ा में पोटली बनाकर 1 लीटर पानी एक मिट्टी के घर में घड़ा में व कोई भी बर्तन में आप रख के उसको ओवरनाइट जो 1 रात तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन देखिएगा जो पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, निष्कास से जो पानी में जो मिल गया उससे जो जो आपको जो जो बना जो नीम का सॉल्यूशन बना वो आप एक लीटर का पानी का जो बॉटल मिलता है उसमें आप उसको आप स्टोर कर गए, स्टोर करके उसी से 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप छिड़काव करें। अगर 15 लीटर का नेफ्सट्रक स्प्रेयर है तो 75 ml, 75 ml का जो है आप लेके उसको छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको कोई कीटनाशी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और हम जो है समेकित कीट प्रबंधन के और भी बढ़ सकते हैं। तो इससे बहुत हद तक हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप केमिकल में भी जाना चाहते हैं तो केमिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक केमिकल है बहुत ही सस्ता है जिसको हम लोग बाजार में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन जो नाक के नाम से मिलता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है 1 ml 1 लीटर पानी में आप घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया जो चूसने वाले कीड़ा और जो चूसने और चाटने वाले। अब जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा है बैगन का, ताना और फली छेदक। ताना और फली छेदक के लिए हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। इसलिए बैगन जो है हम डायरेक्टली इसको खाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कीटनाशी का छिड़का जितना हद तक कम करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में हम आपको जैसे नीम आधारित दवा के बारे में बताएं, आप नीम आधारित दवा अगर बाज़ार में मिले आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। नीम के पत्ती से बना जो सॉल्यूशन बनाए हम उसको 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल में 25 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप उसके अंदर छिड़काव करने से ये जो है रिपेलेंट का काम करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारे कीड़े का आक्रमण कम होगा। और हम फेरोमोन ट्रैप जो है बाजार में उपलब्ध है, फेरोमोन ट्रैप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं आपके खेत पे। इससे क्या होगा, जो मेल जो मक्खी होता है वो मक्खी सोचेगा उसका फीमेल उस ट्रैप के अंदर है, वो उससे मेटिंग करने जाएगा और उसके अंदर वो फंस के मर जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारा जो बैगन का तना और फली छेदक का पॉपुलेशन है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और इससे हमारा कंट्रोल भी बहुत हद तक हो जाएगा। ये तो हुआ समेकित कीट प्रणाली। अगर हम बायोपेस्टिसाइड भी इसके अंदर हम बताना चाहेंगे, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस नामक एक बायोपेस्टिसाइड है जो बैक्टीरियासाइड बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 ml 1 लीटर पानी में बाजार में BT करके नाम से मिलता है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस भारत कुर्सटाकी के नाम से मिलता है। इसको हम लोग बाजार से खरीद के इसको भी 1 ml 1 लीटर के दर से पानी के दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये भी समेकित कीट प्रणाली में कर सकते हैं। और दो बायो इंसेक्टिसाइड्स है, अगर आपको लगे जो नहीं मात्रा 10% to 15% डैमेज से ज़्यादा हो जा रहा है हमारे विल में, इस समय जो है आप दो बायो इंसेक्टिसाइड है, एक है स्पाइनोसेट जो बाजार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा जो है 2 लीटर पानी में 1 ml, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाजार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है जिसका मात्रा है 5 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो ये दोनों में से कोई भी मिल जाए, थोड़ा सा ये दो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है किंतु ये दवा तभी आपको उपलब्ध स्प्रे करना पड़ेगा जब आपका खेत में कीड़े के

0: आक्रमण 20-30% से ऊपर डैमेज कर रहा है तब, नहीं तो हम जो आपको समेकित कीट प्रणाली बताए जिसमें आपको नीम का नीम लीव्स कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेसिस का स्प्रे कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं तभी आप कर सकते हैं। और ये भी दोनों बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा दो केमिकल पेस्टिसाइड है। इस एक जो नाम है फ्लूबेंडियामाइट, जो फेम करके दवा के नाम से आता है, ये जो है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में आप घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो है लैम्डा साइहैलोथ्रिन, जो कैराटे के नाम से आता है, लैम्डा साइहैलोथ्रिन नामक दवा, ये भी बहुत अच्छा है। ये बैगन के तना फली या तनाछेदक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी यूज़ करते हैं। इसका दाम थोड़ा सा कम होगा। फेम नामक जो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है, किंतु ये ही दवा आपको कब कब करना पड़ेगा, जब आपका आक्रमण ज़्यादा होगा तभी आपका छिड़काव करना पड़ेगा।
1: तो इस तरीके से आप बैंगन के कीट से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप राख का छिड़काव कर सकते हैं उस पर क्रासन तेल डालकर। और इसके अलावे जो है अगर सावधानियों की बात करें तो आप नर्सरी से जैसे ही उसे पौधे रोपाई के लिए ले जाते हैं तो बीज शोध करके ही ले जाएँ, अन्यथा नहीं ले जाएँ, क्योंकि डर रहता है कि उसमें कीट पतंगे भी लग सकते हैं। इसके अलावे अभी बात आ रही है डॉक्टर साहब कि हम टमाटर की जो है रोपाई वो कैसे करें। अभी फ़िलहाल टमाटर की रोपाई का सीज़न भी है, सलाह दिया जा रहा है किसान भाइयों को कि आप टमाटर की आराम से रोपाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सावधानी भी बरतना है। और उसके उसमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि कीट पतंगों से कैसे बचा जाए। तो हम जानना चाहेंगे टमाटर खासतौर पर इस पौधे में जो कीट पतंग लगते हैं उनके बारे में और वो किस तरीके से इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं।
0: टमाटर में हमारे बिहार में मुख्यतर 3-4 तरह के कीड़े हैं जिसमें ज़्यादा समस्या दिखाई देता है। शुरू के टाइम में जो सादा मक्खी, जिससे एक वायरस डिजीज जो हम लोग बताते हैं टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, मतलब पत्ता ऊपर की तरह कुकड़ी हो जाता है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये जो वायरस जो बीमा वायरस बीमारी है ये सादा मक्खी नामक कीड़े से फैलता है। ये सब शुरू में ही सबसे प्रॉब्लम होता है। इसके छोड़ के टमाटर के सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है टमाटर फसल को वो है फली छेदक। वो जो है अंतिम अवस्था में आता है, जब फल आना शुरू होता है उस समय जो है फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत ही समस्या। तो फली छेदक को अगर हम लोग कैसे पहचाने, तो हम जब भी देखेंगे टमाटर के फल में छोटा सा छेद किया हुआ रहता है, जब भी उसका आक्रमण होता है उसको अगर हम तोड़े फल को, तो उसके अंदर से एक पिल्लू, तो हरा कलर का पिल्लू जो है निकल के आएगा। तो वो सबसे ज़्यादा बैगन में जो है 20-30% तक डैमेज करता है अगर हम बैगन लेट में लगाए। अगर हम बैगन अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगा देते हैं और हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हो जाता है हमारे, उस केस में हम लोग देखते हैं जो बैगन में फली छेदक का आक्रमण कम है। अगर बैगन हम लोग लेट लगाते हैं, लगभग नवंबर के एंड बट दिसंबर में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग हम लोग मार्च के मिडिल से अप्रैल तक करते हैं, तो उस फसल में हम फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादातर देखते हैं। ये फली छेदक छोड़ के जो तीसरा जो हमारा कीड़ा है, जो हम लोग टमाटर का लीफ माइनर कहते हैं, जो पत्ता में जो है सांप जैसा जो है अपना दाग छोड़ के जाते हैं, और ये भी जो है बहुत ही हद तक डैमेज करता है, किंतु हमारा फल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, किंतु टमाटर का पत्ती के ऊपर मैक्स बहुत हद तक ये डैमेज पहुँचाता है। तो ये तीन जो है मुख्य कीड़ा है, टमाटर का सादा मक्खी, टमाटर का फली छेदक और टमाटर का लीफ माइनर। और माइनर अगर जो उससे भी अगर हम डैमेज अगर कम करें इसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे, तो टमाटर में माइट का भी, मकड़ी जिसको बोलते हैं, माइट का भी समस्या है। और इसमें जो है पत्ता जो है टमाटर का नीचे की तरह मुड़ने लगेगा। जब हम बताएं सादा मक्खी जब आक्रमण होगा तो ऊपर की तरह मुड़ेगा, किंतु जब मकड़ी व माइट का आक्रमण होता है तो नीचे की तरह मुड़ता है। तो ये भी जो है बहुत हद तक डैमेज करता है टमाटर के पत्ते के शुरू के समय में।
1: अच्छा, तो ये हो गई बातें कीट की, और अब इसका समाधान कैसे करें हमारे किसान भाई, उनके बारे में जानना चाहेंगे।
0: समाधान के लिए पहले ही हम बताना चाहेंगे आपको, शुरू से ही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप बीज शोधन से शुरू करते हैं तो आपको जो बैगन टमाटर में जो वायरस बीमारी है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जिसको हम कहना चाहेंगे, इससे आप बहुत हद तक जो है आप निष्कास पा सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है इमिडाक्लोपिड नामक दवा, जो गौचो करके नाम से आता है, 5 ग्राम प्रति केजी सीट, थायमिथक्सम बा एक तरह नामक दवा जो आता है वो भी 5 ग्राम प्रति केजी सीट के दर से आप इसको बीज शोधन कीजिए। बीज शोधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम आपको ये थोड़ा सा बता दें। एक पॉलीथीन जो है आप मिट्टी में बिछा दीजिए और सीट को फैला दीजिए पॉलीथीन के ऊपर, और पॉलीथीन में थोड़ा सा हल्का सा जो है बीज के ऊपर नमी के लिए थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिड़काव करें, और जो इमिडाक्लोपिड नामक दवा और थायोमिथक्सन का जो पाउडर हम बताएं वो पाउडर पूरा बीज में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करके आप हाथ में पॉलीथीन पहन के, खाली हाथ में नहीं, हाथ में कुछ पहन के, पॉलीथीन पहन के पर कुछ भी ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिला के एक पूरा रात छोड़ दीजिए, अगले दिन अगले से एक दिन और छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन जाके आप इसको जो है सोइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपको शुरू के समय में जो आपका वायरस नामक बीमारी का जो समस्या है ये समस्या आपके खेत पे नहीं आएगा, ये बहुत हद तक जो है आपको खेत में कंट्रोल भी कर देगा और कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुरू के 20 से 25 दिन के बाद अगर बीज शोधन करते तो 30 दिन और 40 दिन के अंतराल में, मतलब 10 दिन के इंटरवल में, 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप दो छिड़काव, कीड़ा खेत में थोड़ा भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड नामक दवा है वो एडमायर बा कन्फिडर के नाम से मिलता है, 1 ml 3 liter पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। बा आप जो है थायोमिथक्सम जो एक तरह नामक दवा है इसका भी जो है आप 1 gram 3 liter पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर समय की पीठ प्रबंधन के तरफ आप जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा जो ये सादा मक्खी जो है, जो वेक्टर है जो बीमारी का, जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, इसके लिए हम लोग योलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। योलो स्टिकी ट्रैप ये है, आप कोई भी पीला कलर का कागज व पॉलीथीन जो है, आप एक पिच बोर्ड जो है, बच्चे लोग जो पढ़ता है वो पिच बोर्ड को उसको उखाड़ के पिच बोर्ड के दोनों तरफ जो पीला कलर का कागज साट दीजिए, साट के उसके अंदर जो है ग्रीस और गोंद का मिक्स करके, ट्रांसपेरेंट गोंद होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गोंद और ग्रीस का जो है प्रोलेप मिक्स करके उसको ब्रश से इससे दोनों साइड में आप उसका प्रोलेप लगा दीजिए। लगा के जो है आप एक जो बांस का ये मिलता है स्टिक मिलता है उसको जो है आप गाड़ के जो फसल का जो हाइट होता है, जो हमारा पौधा का जो हाइट है उसी हाइट के अनुसार आप अपना जो ट्रैप जो बनाए उस ट्रैप को आप जो फील्ड खेत में लगाइए। ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना, जो उसका हाइट है फसल का वही सिमिलर हाइट में आपको लगाना है। इसलिए लगाना है जो हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है वो ज़्यादातर ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, वो बहुत ही वीक है, उड़ नहीं पाते, तो इसीलिए वो सिर्फ हवा के माध्यम से ही दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो हम येलो स्टिकी ट्रैप बताए, जो पीला कलर का ट्रैप बताए, इससे क्या होगा, जो हमारा सादा मक्खी उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और उसमें जाके वो फंस जाएगा। एक बार जब उसमें फंस जाएगा उसके गोंद और ग्रीस के वजह से वो उधर से निकल नहीं पाएगा, उसी में वो मर जाएगा। तो इससे जो है बहुत हद तक हम पॉपुलेशन जो है हमारा सादा मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरू में जो है आप नीम आधारित, आपको हम बताए थे नीम आधारित कोई भी दवा, नीम्बिसिडिन हो, नीमाजोल हो, एचूक हो, कोई भी दवा अगर आपको बाजार में मिले वो कर सकते हैं। बा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम लोग बोलते नीम का बीज को मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश करके उसका 5% सॉल्यूशन बना के 5 ml 1 liter पानी में घोल करके भी हम छिड़काव कर सकते हैं, पर नीम का पत्ती से भी हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम कीट बताए, कीड़े के बारे में बताए, जो टमाटर का फली छेदक है, फली छेदक के लिए हम लोग शुरू से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जब भी हम लोग जिस फील्ड में लगाना है उस फील्ड को अच्छा से जुताई करना चाहिए, इसलिए जो कीड़ा है, कीड़े का जो इमैच्योर जो अवस्था है वो एक इमैच्योर स्टेज जो है वो सॉयल जो मिट्टी के अंदर भी रहता है, अगर हम उसको अच्छा से प्लाउइंग करेंगे तो वो जो है सूर्य के सामने जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, उससे क्या होगा उसका पॉपुलेशन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्लाउइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हम टमाटर में हम ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप क्या मतलब जो है, जो जो कीड़ा टमाटर छोड़ के दूसरे क्रॉप में भी अट्रैक्ट हो, उससे क्या होता है जो हमारा जो मेन क्रॉप टमाटर है वो बच जाएगा। जो ट्रैप क्रॉप है, ट्रैप क्रॉप के ऊपर ही हम दवा का छिड़काव करेंगे तो मेन क्रॉप में कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा। तो ये ट्रैप क्रॉप का नाम है मेरीगोल्ड, गेंदा जिसको हम लोग बोलते हैं। गेंदा का जो है 25:2 रो, मतलब 25 रो टमाटर, 2 रो गेंदा, 25 रो टमाटर, 2 रो गेंदा, ये लगा के हम जो है अपना पेस्ट जो है जो हम बोले पिल्लू हेलिकोबार्फा, वो हम गेंदा पे शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज गेंदा का जो फूल है वो जो पीला कलर का होता है, इसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसमें वो शिफ्ट हो जाए, तब हम गेंदा में स्प्रे कर से जो हमारा टमाटर जो मेन फसल है इसको पेस्टिसाइड के लोड से बचा सकते हैं। ये एक तकनीक है समेकित कीट प्रबंधन का। दूसरा जो समेकित कीट प्रबंधन का तकनीक है, हम बताए थे फेरोमोन ट्रैप के बारे में। फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हो। फेरोमोन ट्रैप का नाम है हेलिलियो। हम लोग अगर मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग मतलब कब हमारे खेत में कीड़ा आए, इसके अगर हम लोगों को जानना है तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टेयर में 12 ट्रैप लगाना पड़ेगा 200-200 मीटर के दूरी में। उससे क्या होगा, जो उसका एडल्ट का जो एडल्ट है, पिल्लू का जो एडल्ट है वो उसमें फंस जाएगा, उससे हमको पता चलेगा जब हमारे खेत में जो है हेलिकोबार्फा का इन्फेस्टेशन शुरू हो चुका है, तो हम लोगों को सचेत रहना होगा। और उसके बाद हम लोगों को अगर इन्फेस्टेशन लेवल जो है 5%, 5% या 10% फ्रूट डैमेज से ज़्यादा हो तो हमको समेकित कीट प्रणाली में से एक दवा आता है HANPV, उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबार्फा आर्मीजेरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये नामक दवा का जो है हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से बहुत 70-80-90% तक हमारा कीड़े का जो है कंट्रोल हो जाएगा, अब मैनेजमेंट हो जाएगा, तो हमको कोई रासायनिक दवा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान बंधु रासायनिक दवा में भी जाना चाहता है तो रासायनिक दवा के लिए हम बता देते हैं, जो एक दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्साकार्प, जो बाजार में एवांट करके नाम से मिलता है, उसका मात्रा है 2 लीटर पानी में 1 ml इंडोक्साकार्प एवांट, ये दवा है। दूसरा जो दवा है ये है लैम्डासाइलोथ्रिन, जो बाजार में कराटे के नाम से मिलता है, ये शुरू में आप दे सकते हैं, इसका महंगा भी नहीं है ज़्यादा। आप इसे अगर आपका कीड़े का आक्रमण ज़्यादा हो गया, अगर लगता है जो नहीं कीट जो है कीटनाशी, अच्छा कोई कीटनाशी देना पड़ेगा जिससे कंट्रोल और कम हो जाए, इसके लिए हम बताना चाहेंगे थोड़ा कॉस्टली दवा है, जैसे स्पाइनोसेट, जो हम बताना चाहेंगे स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, 2 लीटर पानी में 1 ml के दर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बस फ्लूबेंडियामाइड जो फेम है, फेम भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के दर से 15 लीटर पानी में 5 ग्राम के दर से आप छिड़काव कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा दवा है जो कोराजेन के नाम से मिलता है, ये भी जो है 3 लीटर पानी में 1 ml के गुना के दर से घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दो जो लास्ट दवा बताए, फ्लूबेंडेमाइड फेम और कोराजेन, ये थोड़ा सा महंगा दवा है। जब आपका खेत में आक्रमण जो है 20-30% के ऊपर चला जाएगा तभी इस दवा का छिड़काव करें, अन्यथा आपको जो पहले जो हम इंडोक्सोकार्प के बारे में बताए, लैम्डासाइलोथ्रिन के बारे में बताए, इसी दवा का आप छिड़काव करें। और अंतिम जो मैं कीड़े के बारे में बताया था, टोमेटो का लीफ माइनर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पत्ते में जो सांप के जैसा दाग छोड़ देता है, इसके लिए जो है आप समेकित कीट प्रबंधन में नीम आधारित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक में क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा है, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो है आप प्रोफेनोफॉस नामक दवा है जो कुराक्रॉन के नाम से मिलता है, ये भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि लगभग सभी सब्जियों में कीट और समाधान एक समान है, लगभग, तो इसलिए आप इस तरीके से इन दवाइयों का छिड़काव जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन दवाइयों का छिड़काव करके या फिर कुछ सावधानियों को अपनाकर अपनी सब्जियों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि इन कीटों से दूर रख सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे आगे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। तब तक सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान आने वाले काले खून के बारे में। क्यों आता है काला खून, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सीधी बात कि हर बार जो काला खून आता है वो बीमारी की पहचान नहीं होती है। ये अक्सर इस वजह से होता है ना कि खून हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रुका रहा और वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि पुराना हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है, वैसे ही खून का रंग गहरा हो जाता है, यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है या तो फिर ब्लैक हो जाता है। और अगर हम पुराने खून की बात करें, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो पुराने खून आते हैं, जो काला खून आता है उसकी बात करें, उसके कारण की बात करें, तो जब हमारा पीरियड से धीरे धीरे शुरू होता है या फिर बहुत धीरे खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में भी काला खून आता है। और कई बार खून यूट्रस में बहुत ज्यादा देर तक रहता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो काला या तो फिर डार्क ब्राउन कलर का खून आता है। और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर भी खून काला हो जाता है और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल रीज़न है। और कई बार जो फ्लो बहुत धीमा होता है पीरियड्स का होता है ना, कई बार बहुत धीमा फ्लो होता है, कई बार बहुत हेवी फ्लो होता है, तो जो धीमा फ्लो होता है तो ऐसी स्थिति में भी जो खून आता है वो काला आ सकता है। क्या होता है कि धीमा फ्लो है तो खून जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में रुक रुक कर अंदर डार्क हो जाता है और अक्सर ये लास्ट डेज में दिखता है कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है। और कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है। हार्मोन्स यानी कि जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो साइकिल है ना, तो वो भी इरेगुलर हो गए हैं और खून का रंग भी बदल सकता है। और अगर PCOS जैसी कंडीशन है तो भी आपके पीरियड्स के दौरान के जो खून है वो काले हो सकते हैं। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के दौरान काला खून इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, यानी कि संक्रमण की वजह से आ रहा है, तो परेशानी की बात हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से काला खून आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी बदबू आती है और साथ ही खुजली भी होती है और दर्द भी होता है काले खून के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का एक सिम्टम हो या फिर उसका ये एक साइन हो, यानी कि मिसकैरेज का एक साइन हो। ऐसी स्थिति में भी डार्क या तो फिर ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डार्क हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो गर्भावस्था की जो शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं ना, उनमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और वो डार्क हो। अगर मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बता दूं आपको, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से काफी अलग होता है। ये उतना लंबा नहीं चलता है और बहुत हेवी फ्लो भी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके अलावा यूट्रस से भी जुड़े कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे कि फिब्रॉइड्स हो सकता है या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फिब्रॉइड्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ बन जाते हैं, तो इसमें आमतौर पर लक्षण दिखते हैं कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं। ऐसे में पेल्विक पेन हो सकता है या तो फिर पेल्विक में आपको दबाव महसूस हो सकता है और साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत भी पड़ती है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में सूजन या तो फिर भारीपन भी आपको महसूस होता है और कभी कभी इसमें खून गहरा यानी कि

और कभी बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, इसके अलावा डेली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है कि इतनी ज्यादा परेशानी आपको हो रही है, इतना आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप सीधे आप डॉक्टर से मिलिए। आपको वेट करने की ऐसी स्थिति में जरूरत नहीं होती है। यानी कि सिंपल आपको मैं समझाऊं तो सिर्फ ब्लैक ब्लड है, गहरा खून है, डार्क ब्राउन खून है, तो इसे नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ब्लड के साथ आपको पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप किसी और भी परेशानी से जूझ रही हो। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही बहुत समझदारी का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली। कई बार डिलीवरी के बाद भी जो डिस्चार्ज होता है उसका भी जो रंग होता है वो धीरे धीरे लाल से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज्यादा आपकी जो लाइफस्टाइल है वो तनाव से भरी हुई है, आपकी डाइट खराब है, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर आपके कलर यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड है उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चिंता कब करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत तब होती है जब आपका जो साइकिल है लगातार हर साइकिल में काला खून आ रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज्यादा या तो फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीरियस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसे कोई भी परेशानी, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे काले खून के साथ, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और कब ये नॉर्मल होता है, तो पीरियड्स के शुरुआत में या फिर पीरियड्स के अंत में काला खून आना नॉर्मल है। अगर आपका फ्लो कम है तो भी ये नॉर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार होता है, लगातार हो रहा है तब टेंशन की बात है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि काला पीरियड ज्यादातर पुराना खून होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हेल्थ इश्यूज के भी संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको पुराना खून बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने साइकिल को ट्रैक कीजिए, ताकि आप अगर आप अपने साइकिल को ट्रैक करेंगे तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज के वजह से आपको पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है या डार्क ब्राउन खून आ रहा है, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसका आप पता लगा पाएंगे और डॉक्टर से मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और आपको काला खून आने की परेशानी नहीं होती है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। और जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे बिल्कुल विशेष ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार, और सुनते रहे 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का

अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डाले। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: باشی. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम स्वागत है आपका।
1: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसी बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान का उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं: जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज़ जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज़ हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी जो हो, हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए, और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी। एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए, जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें, और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा और इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता। गंभीर कीटों या बीमारियों, निमेटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए, और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं, या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पर आप करौंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में, ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा, कार्यालय या फिर सह भंडार, जहाँ से आप सारे चीज़ों को मैनेज कर सके। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है, या तो लेयरिंग से होता है, या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। इस और ये जो मदर प्लांट है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है, और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना। जो बीज की क्यारियाँ तैयार करते हैं नर्सरी में, यह घटक पौध और रूट स्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई हो है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए, और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है, इसे बीज बोने, निराई करने, पानी देने, छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूट स्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों की वृद्धि में एकरूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए, जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं, और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है। वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पे, फील्ड में लेके जाने पे उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु

0: दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे एक डेढ़ महीना रखिए और फिर एक डेढ़ महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की दो बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को की में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयतकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शया की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शया में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1 से 1.5 मीटर ही होनी चाहिए और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें। तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है। जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1 या 1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फ़ायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है। और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है वो 3 समय हम बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है और एक सितंबर अक्टूबर का महीना हो जाता है। तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो जुलाई अगस्त का महीना है, जब वर्षा ऋतु होती है। और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉली बैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है या पॉली बैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धंसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई। नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा निष्फलता करना शुरू करे और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए, इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको हम आप किसी को बेच सके या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों, विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुँचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
1: उन्नत कृषि।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश। नमस्कार श्रोताओ।
1: अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। जोहार। प्रस्तुत है सबसे पहले आज का सुंदर विचार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: इस विचार को हमें भेजा था डुमरांव बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। धन्यवाद बहुत बहुत आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमानाज अंसारी।
1: और जेल रोड जालंधर से रोशन जहां और मन्नत जहां।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे।
1: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। अब एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओ आज हम बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की एक शाखा आयुर्वेद के एक महान चिकित्सक जीवक के बारे में।
2: कहते हैं शरीर चिकित्सा विज्ञान में उनको महारत थी। वे कठिन से कठिन व्याधियों का भी उपचार प्राकृतिक चिकित्सा विधि से कर सकते थे जिनमें वनस्पतीय औषधियों का बहुत बड़ा योगदान था।
1: श्रोता उन्हें विशेषकर महात्मा गौतम बुद्ध के निजी वैद्य के रूप में इतिहास जानता है
2: जी।
1: उनका जीवन संघर्ष ज्ञान और सेवा का अनूठा उदाहरण है। उनका जन्म लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक बिहार के राजगीर नामक स्थान पर हुआ था।
2: लोक मान्यता है कि जन्म के पश्चात उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था और यूं ही किसी स्थान पर छोड़ दिया था। जब वो मरणासन्न अवस्था में थे तब किसी ने उन्हें अपनाया और पिता के समान उनका पालन पोषण किया
1: और इसीलिए उनका नाम जीवक रखा गया जिसका अर्थ होता है जीवित या बचा हुआ
2: जी।
1: बड़े होने पर उन्होंने तक्षशिला महाविद्यालय से भारतीय चिकित्सा यानी आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया
2: और चिकित्सा की विधा में अत्यंत कुशल हो गए। मधुमेह जैसी बीमारियों का भी उन्होंने सफल इलाज करके लोगों के जीवन की अवधि बढ़ाई। मधुमेह या डायबिटीज जैसी बीमारियों के बारे में उनका मानना था कि स्वस्थ प्राकृतिक जीवन शैली और समुचित आहार द्वारा इसे रोका जा सकता है।
1: कहा जाता है कि वे सामान्य चिकित्सा के साथ साथ शल्य चिकित्सा में भी निपुण थे। बाद में वे राजा बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे सम्राटों के भी राजवैद्य बने
2: जी।
1: महात्मा बुद्ध से उनका बड़ा गहरा और आत्मीय संबंध था और वे बौद्ध भिक्षुओं का निःशुल्क इलाज करते थे।
2: धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई और लोग कठिन से कठिन बीमारियों के उपचार के लिए उनके पास आते थे। बौद्ध साहित्य विनय पिटक में उनकी चिकित्सा विधा, बुद्ध की सेवा और शल्य कौशल का वर्णन मिलता है।
1: श्रोताओ आयुर्वेद के क्षेत्र में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है
2: वैद्यराज जीवक के बारे में किस ग्रंथ में विस्तार से जानकारी मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैद्यराज जीवक के बारे में किस ग्रंथ में विस्तार से जानकारी मिलती है। श्रोताओ आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है इंसुलिन की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में जीवन रक्षक द्रव इंसुलिन की खोज के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कितने शोधों और प्रयोगों के बाद इंसुलिन की खोज हुई। ये मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ।
1: इंसुलिन की कहानी भाग एक।
3: सन 1918 की शरद ऋतु, सितंबर 28, प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी वर्ष। संयुक्त सेना के ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के जर्मनी पर प्रहार जारी। अपनी चिकित्सा स्नातक की डिग्री को हासिल कर एक 25 वर्षीय नौजवान लेफ्टिनेंट कनाडा सेना की मेडिकल कोर में दाखिल हुआ था। फ्रांस के युद्ध स्थल पर कार्यपरायण डॉक्टर को हाल ही में पदोन्नति के साथ कैप्टन बनाया गया था। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे बॉक्सटन के विशेष अस्पताल में लाया गया था।
4: थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ,
5: हाथ,
4: हाँ, थोड़ा और बस। मुझे खेद है कैप्टन, लगता है कि हाथ काटना पड़ेगा।
5: नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं
4: कैप्टन,
5: बिल्कुल नहीं।
4: मुझे इस बात का एहसास है कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है।
5: लेकिन नहीं, नहीं डॉक्टर।
4: ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ देते हैं।
5: शुक्रिया।
4: मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे।
5: शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया।

0: मरीज के जीवन का जोखिम लेते हुए उनकी बांह को बचाने की खातिर डॉक्टर पाल्मर ने उनके हाथ को नहीं काटा। वो बहादुर जख्मी थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। एक साल बाद उन्हें वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस के पदक से सम्मानित किया गया। सन 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो कनाडा लौट आए और थोड़े समय के लिए उन्होंने ओंटारियो प्रांत के लंदन शहर में डॉक्टरी की। डॉक्टरी का काम निभाने के साथ साथ पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय के हड्डी चिकित्सा विभाग में अल्पकालिक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। एक दोपहर डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय में सर्जरी, गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स नामक पत्रिका पढ़ रहे थे। इस नवंबर अंक के पहले लेख का लंबा शीर्षक था, द रिलेशन ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस टू डायबिटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉजेज ऑफ पैंक्रियाटिक लिथियासिस। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट को डॉक्टर मोजेस बैरन ने लिखा था। इस लेख के सार की 3 मुख्य पंक्तियों को बेंटिंग ने अपनी पॉकेट नोटबुक में लिख कर रख लिया। लिगेट द पैनक्रियाटिक डक्ट्स ऑफ डॉग्स, कीप डॉग्स अलाइव टिल एसीडी डिजनेट, रिमूव द रेसिड्यू एंड देन आइसोलेट इंटरनल सिक्रेशन। ये साधारण सी पंक्तियां थी पर इनमें चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को रचने के बीज थे।
1: डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर एफ आर मिलर के दफ्तर गए। प्रोफेसर मिलर स्नायु क्रिया तंत्र के विशेषज्ञ और शरीर क्रिया शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। डॉक्टर बेंटिंग ने उन्हें बताया,
2: प्रोफेसर मिलर ये देखिए, इस लेख में ये दावा किया गया है कि जब पैनक्रियाटिक नली को सर्जरी से बांधकर बंद कर दिया जाता है तो अग्नाशय की वो कोशिकाएं जहां एंजाइम ट्रिप्सिन बनते हैं वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पर आइलैंड ऑफ लैंगरहांस की कोशिकाएं बची रह जाती हैं।
3: वाकई ये एक बहुत सरल विचार है।
2: हाँ, और ये तर्क संगत भी लगता है।
3: डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ,
3: मेरे अध्ययन और शोध का क्षेत्र स्नायु तंत्र की कार्य प्रणाली है। आपने जो शोध समस्या सुझाई है वो वास्तव में एंडोक्रिनोलॉजी का विषय है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय की छोटी सी प्रयोगशाला ठीक नहीं रहेगी। आपको ज्यादा बेहतर सुविधाओं और उपकरणों की जरूरत होगी।
2: तो प्रोफेसर मिलर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
3: डॉक्टर बेंटिंग
2: जी,
3: आपको टोरंटो विश्वविद्यालय जाना चाहिए।
2: टोरंटो?
3: वहां शरीर क्रिया प्रणाली के प्रोफेसर हैं जॉन जेम्स रिकर्ड मैकलियोट
2: जी,
3: जो कनाडा के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञानी हैं। स्कॉटलैंड से आए ये मेहनती इंसान चिकित्सा विज्ञान विभाग के एसोसिएट डीन भी हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में विशेष महारत हासिल है। इनकी प्रयोगशाला आपके लिए सही जगह रहेगी।
2: ठीक है प्रोफेसर मिलर, मैं वहीं जाऊंगा उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: वेलकम।
0: अगले सप्ताह नवंबर 8 सन 1921 की सुबह डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर जॉन मैकलियोट से उनके दफ्तर में मिले।
2: प्रोफेसर?
4: हाँ,
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
4: हाँ, आइए, कृपया यहाँ बैठिए।
2: जी धन्यवाद। श्रीमान, मुझे प्रोफेसर मिलर ने आपके पास भेजा है।
4: किस लिए?
2: जी ये मेरे पास मधुमेह रोग के इलाज के लिए एक शोध का प्रस्ताव है। मेरी सोच का आधार है कि
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर ये सब आप करेंगे कैसे?
2: सर, पाचन प्रणाली में अग्नाशय क्या क्या और कैसे कैसे अपना कार्य करता है इसका पता लगाकर।
4: हाँ जी, हाँ, ये मेरा अपना भी विशेष शोध क्षेत्र है।
2: अच्छा सर, मैं सोचता हूँ कि अग्नाशय में कुछ ऐसे रस का रिसाव होता है जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है।
4: पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई रिसाव इसके लिए जरूरी है?
2: ये बिल्कुल स्पष्ट है, और कम से कम मैं ये कोशिश करके साबित करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ।
4: क्या आपके पास पहले प्रयोग और शोध करने का कोई अनुभव है डॉक्टर बेंटिंग? क्या आपको रक्त में शक्कर की मात्रा मापना आता है?
2: जी जी नहीं, मैं रसायन शास्त्री नहीं हूँ।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं आपकी मदद करूँगा। आपका शोध में कोई प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए अन्वेषण की प्रयोजना तैयार करने में मैं आपकी सहायता करूँगा।
2: जी,
4: आप चूंकि रसायन शास्त्र के जानकार नहीं हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक रसायन शास्त्र प्रशिक्षित सहायक भी दूंगा।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
4: डॉक्टर बेंटिंग।
2: जी,
4: लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तरीका आप सुझा रहे हैं, यूरोप के अग्रणी नामी गिरामी शोधकर्ता पहले ही उसकी कोशिश करके देख चुके हैं, और उनमें से कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ।
2: जी सर।
4: उनके अलावा आप क्या हल करना चाहते हैं?
2: मुझे उनके प्रयासों और परिणामों के बारे में पता नहीं है, फिर भी मैं खुद एक बार अपने तरीके से करके आजमाना चाहता हूँ सर।
4: डॉक्टर बेंटिंग, कम से कम आपको तर्क संगत तो बनना ही पड़ेगा।
2: जी जी सर।
4: विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको अपनी मर्जी के प्रयोग अपनी ही प्रयोगशाला में करने की इजाजत भला कैसे दे सकता हूँ? आपसे बेहतर और काबिल लोग ऐसे प्रयोग करने के लिए मौजूद हैं।
2: जी।
4: आपकी थ्योरी मुझे लगता है बेकार है।
2: सर, एक बार के लिए आप मान लीजिए कि डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाला कोई आंतरिक रसायन है।
4: ओके।
2: कोई अनजाना एक्स हार्मोन है। मैं उसे धागे से बंधे हुए अग्नाशय से अर्क बनाकर निकाल लेता हूँ और एक डायबिटीज रोग से पीड़ित कुत्ते में इंजेक्ट कर देता हूँ, और कुत्ते के रक्त में शक्कर की मात्रा घट जाती है। क्या ये सबूत काफी नहीं? मैं तो सिर्फ आपसे इस शोध को करने की अनुमति मांग रहा हूँ।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मेरी सलाह है कि आप अगली गर्मियों के मौसम तक इंतजार करें। हाँ। और उसके बाद एक या दो महीने के लिए आप टोरंटो आ सकते हैं।
2: शुक्रिया, धन्यवाद सर। प्रोफेसर मैकलियोट, अगर शोध के लिए मुझे सभी सुविधाओं को देने का आपका वादा बरकरार है, तो मैं आशा करता हूं कि अपने शोध प्रोजेक्ट पर गर्मियां शुरू होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा।
4: अपने शोध को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं, तो मैं आपके लिए प्रयोग करने की सुविधाएं और जानवरों का इंतजाम करता हूं। मैं चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट से आपके साथ काम करने का अनुरोध करूंगा। वो शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातक हैं, अभी वो किशोर उम्र में ही हैं, पर इस काम के लिए वो बेहतरीन हैं।
2: जी सर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा।
4: बेस्ट में रसायन विश्लेषण का जुनून है और आप एक अच्छे सर्जन हैं। आप दोनों मिलकर कुत्तों पर बखूबी प्रयोग कर सकते हैं।
2: और प्रयोगशाला की बाकी सुविधाएं?
4: अभी के लिए आप एक छोटी प्रयोगशाला से काम चला सकते हैं, जहां ऑपरेशन के बाद जानवरों को पिंजरे में रखने की व्यवस्था हो, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ऑपरेशन करने के लिए एक अलग विशेष कमरा भी हो, जिसे आप ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।
1: यह साधारण सी घटना बाद में एक महान खोज में तब्दील हुई। 1920 के दशक में डायबिटीज यानी मधुमेह एक खतरनाक रोग था, जिसमें मौत शर्तिया ही होती थी। डॉक्टर भी उतना ही इस रोग से डरते थे जितना कि इस रोग के मरीज। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही पता था कि बचने का एक ही तरीका है, कि मरीज को एक साधारण पर संतुलित आहार पर रखा जाए, ऐसे भोजन पर जिसमें शक्कर की मात्रा कम से कम हो। इन सब उपचारों से मरीज कुछ ही बरस तक जी तो जरूर लेते थे, पर वो बचते नहीं थे। कई बार तो खुराक इतनी घटा दी जाती थी कि मरीज भूख से ही मर जाता था।
0: बेंटिंग और बेस्ट की जोड़ी कमर कसकर दिन रात एक करते हुए गर्मियों के मौसम में प्रयोगशाला की छोटी सी कोठरी में पसीने से तरबतर अपने प्रयोगों में जुट गईं।
2: चार्ल्स, हमारे पास 10 कुत्ते हैं और हमें इनमें से 5 को डायबिटीज से ग्रसित रोगी बनाना है।
5: क्या?
2: हाँ, हमें बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी।
5: अब डॉक्टर बेंटिंग, तुम्हारा मतलब है कि इन 5 कुत्तों में एंटी डायबिटिक गुण उत्पन्न होंगे?
2: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो चार्ल्स। अच्छा चार्ल्स, ये क्या यंत्र है?
5: ये कैलोरी मीटर है, रक्त में शक्कर की मात्रा मापने के लिए।
2: अच्छा अच्छा अच्छा चार्ल्स, इस शोध परियोजना में शामिल होने की तुम्हारी कोई खास वजह?
5: डॉक्टर बेंटिंग, बचपन में मेरी एक नन्ही सी दोस्त थी, मेरा मतलब मेरी बचपन की साथी, डायबिटीज की वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हो सकता है कि हमारे काम से कोई राह निकले और जो तुम कर रहे हो उससे एक दिन लाखों लोगों की जान बचाना मुमकिन हो सके।
2: बिल्कुल बिल्कुल होगा। तुम्हें पता है कि इस काम का तुम्हें कोई मेहनताना नहीं मिलेगा?
5: हाँ डॉक्टर, प्रोफेसर मैकलियोट ने मुझे पहले ही बता दिया था।
2: अरे वाह, तब तो कोई समस्या नहीं है।
5: अच्छा डॉक्टर, कब शुरू करेंगे हम अपना काम?
2: बस अभी।
0: मैकलियोट ने पहले अपनी प्रयोगशाला के लिए 8 सप्ताह का ही वादा किया था और उनका समय समाप्त हो चुका था। 10 में से 7 कुत्ते वो पहले ही खो चुके थे, वो भी बिल्कुल टूट चुके थे। इसलिए बेंटिंग ने और कुत्ते खरीदने के लिए अपनी कार बेच दी। अब बेस्ट शहर की गलियों में क्या दिन क्या रात कुत्तों की तलाश में निकल जाते थे। उनके मालिकों से मोल भाव करते उन्हें खरीद कर प्रयोगशाला में ले आते थे। लेबोरेटरी में सैकड़ों कुत्तों पर उन्होंने प्रयोग किए। हर कुत्ते को एक नंबर दिया जाता था। कभी ये नंबर पिंजरे का नंबर होता था तो कभी ऑपरेशन की तारीख के मुताबिक उन्हें नंबर दे दिया जाता था। ज्यादातर ऑपरेशन के बाद कुत्ते अपनी सामान्य स्वास्थ्य की हालत में वापस आ जाते थे, पर उनके अग्नाशय से पाचन रस बनना लगभग बंद हो जाता था और अग्नाशय अवयव की बाहरी कोशिकाएं या तो सिकुड़ जाती थीं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती थीं। एक दिन डॉक्टर बेंटिंग, चार्ल्स और डॉक्टर मैकलियोट प्रयोगशाला में थे।
2: ये तो मैंने कर दिया। चार्ल्स, इस सिकुड़े हुए अग्नाशय को काटकर निकालो और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको नमक और पानी के घोल में डाल दो।
5: जी डॉक्टर।
2: और हाँ, परख नली के चारों तरफ बर्फ के टुकड़े रख दो ताकि घोल सुरक्षित रहे।
5: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग।
2: और हाँ, जब अग्नाशय तंतु बर्फ की ठंड से जमने लगे तो छान कर उससे तरल को सफाई के साथ अलग कर लो। समझ गए?
5: जी। ये मैंने छान लिया और इसको अलग कर लिया। वाह, ये रहस्यमयी तरल कई बार निथारने के बाद बना है।
2: अरे वाह चार्ल्स, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक काम करते हैं चार्ल्स, क्यों ना हम इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें?
4: अच्छा तो काम आप लोगों का यहाँ पर।
5: डॉक्टर मैकलोड,
2: मैकलोड सर आइए ना।
5: आइए आइए सर।
2: इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें
5: क्योंकि ये लैंगर हैंस के आइलेट से आया है।
4: हाँ वैसे सोचना आपका अच्छा है, पर आइलेटिन को मेरा ख्याल है कि इंसुलिन कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैटिन भाषा में आइलैंड को कहते हैं इंसुला। इंसुला इंसुलिन, राइट?
2: हाँ सर,
5: राइट सर,
2: बिल्कुल सही कहा आपने मैकलॉड सर। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
5: जी मैं भी।
2: सही फरमा रहे हैं।
4: थैंक यू।
0: प्रयोग के दूसरे कुत्तों के समूह का सारा ही अग्नाशय बाहर निकाल दिया गया। बिना अग्नाशय के ये कुत्ते डायबिटीज के मरीज बन जाते थे और लगभग एक सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके साथ ही उन कुत्तों का जिनके अग्नाशय की नली को बांध दिया गया था दोबारा ऑपरेशन किया जाता था। डायबिटीज रोग से ग्रस्त दो कुत्तों में से एक का इलाज अर्क से किया गया और दूसरा कुत्ता बिना इंजेक्शन के रखा गया।
5: डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ
5: वो कुत्ता जिसे हमने इंजेक्शन नहीं दिया था वो मर गया।
2: हाँ लेकिन चार्ल्स फिर भी वो चार दिन तक जिंदा रहा।
5: हाँ
2: अच्छा उस पीले रंग के कोली कुत्ते का क्या हुआ?
5: तुम्हारा मतलब कुत्ता नंबर 92?
2: हाँ हाँ वही वही वही नन्ना सा प्यारा सा कुत्ता। मैंने 8 cc एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन उसे लगा दिया है।
5: मैं कैलोरी मीटर से उसके रक्त में शक्कर की मात्रा लगातार माप रहा हूँ।
2: चार्ल्स आधी रात को रक्त में शक्कर की क्या मात्रा थी?
5: 12 बजे के करीब ये 43 थी।
2: 43? चार्ल्स हर घंटे रक्त में शक्कर की मात्रा का रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में लिखते रहो।
5: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग। डॉक्टर बेंटिंग, इस कुत्ते की हालत में सुधार होता नजर आ रहा है। ये देखिए रात के 2 बजे अब ये 33 अंक पर है।
2: हाँ।
5: 3 बजे 29 अंक पर।
2: अच्छा।
5: और 4 बजे 21 अंक पर।
2: अरे वाह।
5: और 5 बजे ये 15 अंक पर है।
2: बहुत खूब।
5: यानी 6 घंटे में ये 43 अंक से गिरकर मात्र 15 अंक पर आ गया।
2: अरे वाह। इसका मतलब ये हुआ कि उसके रक्त में शक्कर की मात्रा घट गई है।
5: हाँ डॉक्टर बेंटिंग, वाकई ये तो कमाल हो गया।
2: अरे वाह चार्ल्स, वाह कमाल कर दिया सच में। अब ये कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और रोग के लक्षणों से मुक्त है। ओ चार्ल्स, हमने कर दिखाया। हाँ।
5: लेकिन डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ
5: हमें अपना प्रयोग कई बार दोहराना पड़ेगा। हमें वो चीज मिल गई है जिसकी डायबिटीज के रोगी बरसों से प्रार्थना कर रहे थे।
2: हाँ, हाँ, हाँ, चार्ल्स देखो देखो ये कुत्ता भी कितना खुश है ना। हाँ, और खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा है। हाँ, हाँ, सचमुच चार्ल्स हमने कर दिखाया।
5: हाँ डॉक्टर
2: सच में। हाँ, आखिरकार हमने कर लिया,
5: कर दिखाया,
2: अपने मकसद में कामयाब हुए।
5: हाँ डॉक्टर।
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
0: शोधकर्ताओं को लगा कि वे मधुमेह के इलाज के करीब पहुंच चुके हैं। ये कुत्ता जो उनका दोस्त बन चुका था 92 इंजेक्शनों की वजह से भला चंगा हो रहा था, पर उनके पास जरूरत के मुताबिक अर्क द्रव्य नहीं था। आखिर कुत्ता बीमार पड़ गया। उसके रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगी और वो पेशाब भी बार बार करने लगा और वो कमजोर से कमजोर होता गया। इसके बावजूद वो रोग के साथ और इंजेक्शनों की मदद से पूरे 20 दिन तक जिंदा रहा। डायबिटीज से पीड़ित कुत्ते की मौत पर बेंटिंग के आंसू निकल पड़े, पर इस प्रयोग से इन दोनों शोधकर्ताओं को उम्मीद की किरण भी नजर आई।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम इंसुलिन की कहानी, और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है जलाते चलो।
7: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है। हिंदी साहित्य के महान कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इस कविता में आह्वान किया गया है कि मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, हमें आत्मबल से निरंतर आगे बढ़ना है और सबको अपने जीवन से प्रोत्साहित करना है।

0: अभी आपने सुना ये प्रेरणादायक गीत जलाते चलो। अब हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो मुझे यानी अजीत
1: और मुझे यानी विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि

0: के बारे में जानकारी होता है कि ये पंचकव्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे किस तरीके से रखा जा सकता है, ये खेती में किस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो आज यही विषय लेकर हम आए हैं, यानी कि पंचकव्य की पूरी जानकारी देने हम आपको आए हैं। तो आज का हमारा विषय है पंचकव्य बनाने का विधि एवं उपयोग, और इस विषय पर विशेष चर्चा के साथ आए हैं हमारे बीच डॉक्टर शंभू प्रसाद जी। और मैं आपको बता दूं कि ये हैं सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पंचकव्य है क्या?
1: मैडम ये पंचकव्य खास करके मैं किसानों को विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा, पंचकव्य जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है, पंच मीन्स पांच और गब मीन्स गाय।
0: जी।
1: गाय से प्राप्त पांच उत्पादों यथा गाय का गोबर, गाय का दूध, घी, दही और मूत्र को मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक तरल जैविक खाद है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से जैविक खेती में की जाती है।
0: अच्छा।
1: और इसके प्रयोग से बहुत सारे फायदे हैं, और किसान अगर चाहेंगे कि अपनी खेती को समृद्ध बनाएं तो निश्चित रूप से उन्हें पंचकव्य को अपनी खेती में शामिल करने की जरूरत है।
0: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि पंचकव्य क्या है और इसके प्रयोग से यानी कि खेती को और समृद्ध अगर बनाना चाहते हैं हमारे किसान भाई तो इसकी बहुत ज़रूरत है, वो ऐसे बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इसकी सामग्री की ओर जाते हैं, अगर इसे बनाना है तो सबसे पहले हम सामग्री को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या क्या सामग्री इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पंचकव्य बनाने के लिए गाय से प्राप्त पांच उत्पादों की आवश्यकता होती है। उसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर है, गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का दही है और गौमूत्र है।
0: अच्छा।
1: इसके अलावे अगर हम पंचकव्य को और समृद्ध करना चाहते हैं तो इन सारे पांच उत्पादों के अतिरिक्त हमें कच्चे नारियल का पानी भी मिलाने की जरूरत पड़ती है, और उसमें चूंकि ये जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाने वाला उत्पाद है पंचकव्य, तो इसके लिए हमें जीवाणुओं के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए लगभग 250 से आधा किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है।
0: अच्छा।
1: जिसको आम भाषा में लोग गुड़ भी बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है।
0: जी।
1: और फर्मेंटेशन की क्रिया को और बढ़ावा देने के लिए उसमें ईस्ट कल्चर की भी जरूरत पड़ती है।
0: अच्छा।
1: तो ईस्ट कल्चर को भी मिलाना हम लोग उचित समझते हैं और सजेशन भी देते हैं किसानों को कि ईस्ट कल्चर को भी उसमें मिलाया जाए, उससे फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन की क्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है और पंचकव्य सही मायने में अच्छे तरह से तैयार हो पाते हैं।
0: जी। तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल पंचकव्य बनाने में किया जाता है इसके सामग्री के रूप में, तो हम जानना चाहेंगे कि क्यों किया जाता है कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल?
1: ये जो कच्चे नारियल का पानी जिसको देहात में लोग डाब भी बोलते हैं,
0: जी जी,
1: और ख़ास करके जिन लोगों को पीलिया या जॉन्डिस की शिकायत होती है
0: जी,
1: तो उसमें इस नारियल के पानी का प्रयोग भी लोग करते हैं। और इसमें एक खासियत है कि इसमें काइनेटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी काफ़ी उपयोगिता है क्लोरोफिल सिंथेसिस में।
0: जी।
1: तो अगर नारियल के पानी का प्रयोग हम पंचकव्य बनाने में करेंगे
0: जी जी,
1: तो इस काइनेटिन पदार्थ के कारण जिस पौधे पर पंचकव्य का स्प्रे होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होगी और फोटोसिंथेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बनेंगे। इसके साथ ही साथ पौधों का विकास भी सही होगा और दाने भी पुष्ट होंगे और उपज की अच्छी प्राप्ति होगी।
0: तो ये तो बात हो गई सामग्रियों की, और अब विधि जानना चाहेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है।
1: जी हाँ, इसको बनाने का तो बहुत ही सरल तरीका है, हालांकि इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, विधियाँ हैं, लेकिन मैं काफ़ी सुगम विधि को किसानों के बीच लाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा उन्हें। और ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले वो जो आवश्यक सामग्री है पंचकव्य बनाने के लिए, किसानों से अनुरोध होगा कि पहले उसको इकट्ठा कर लिया करें, और उसमें खास करके 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर है, गाय का

0: गोबर 2 किलोग्राम, गाय का दूध 2 किलोग्राम, दही 1 किलोग्राम, घी और 3 लीटर गौमूत्र। इसके अलावे उन्हें 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी चाहिए, 250 से 500 ग्राम शक्कर चाहिए और 1 दर्जन पके हुए केले का पल्प या गुदा चाहिए।
1: जी,
0: मैं क्रम से इसको बताना चाहूँगा ताकि किसानों को, हमारे किसान बंधुओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो।
1: जी,
0: तो सबसे पहले क्या करें कि एक प्लास्टिक के टब में 5 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर लें और उसमें 1 किलोग्राम गाय का घी को दोनों हाथों से अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से मिला दें, और जब वो अच्छे तरह से मिल जाए तो उसको छाया में रख दें और उसको किसी सूती वाले कपड़े से या जूट की बोरी से ढक दें। दूसरी तरफ 20 से 25 लीटर क्षमता वाली एक प्लास्टिक का गैलन लें और उस गैलन में 3 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर गाय का ताज़ा दूध, 2 किलोग्राम दही, उसको मिलाएं और उसी में 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी डाल दें और साथ में 250 से 500 ग्राम शक्कर को भी मिलाएं। और ये इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद जो 1 दर्जन केला है उसके पल्प को अच्छी तरह से मसल कर इस मिश्रण में मिला दें और उस मिश्रण को छड़ी से या डंडा से इस तरह से मिलाएं कि सारा मिश्रण अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए। अब इस गैलन को भी छाया में रखना है अलग 4 दिनों तक। दोनों ये पहले जो हमने पात्र में गोबर और घी का मिश्रण मिलाया है उसका वो टब जो है उसको भी अलग रखेंगे और उसी जगह इसको भी रख देंगे और इसके मुंह को भी सूती के कपड़े से या जूट वाले कपड़े से ढक के रखेंगे।
1: जी,
0: 4 दिनों तक दोनों जो मिश्रण है दोनों को अलग अलग रखा जाएगा और प्रत्येक दिन दोनों मिश्रण को दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार अच्छी तरह से मिलाना है। गोबर और गोबर और घी का जो मिश्रण हमने प्लास्टिक के टब में रखा है उसको भी मसल के मिलाना है और इधर जो तरल पदार्थ का मिश्रण है उसको भी छड़ी या डंडे से दिन में 3 बार घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में मिलाते हुए मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाकर मिला देना है।
1: जी,
0: और फिर 5वें दिन ये दोनों जो अलग अलग मिश्रण है दोनों को एक साथ कर देना है। गोबर और घी का जो मिश्रण है उसको चौड़े मुंह वाले गैलन, जो प्लास्टिक के गैलन है उसमें डाल देना है और फिर छड़ी या डंडे से उसको अच्छी तरह से मिला देना है। अब ये जो मिश्रण है इसको लगभग 15 दिनों तक छोड़ देना है छाया में ही और फिर इसको प्रत्येक दिन 3 में 3 बार फिर छड़ी से मिलाना है घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में।
1: जी,
0: तो इस प्रकार से 4 और 15 दिन, 19 दिन के बाद ये हमारा जो है जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से और उसके बाद फिर पतले सूती के कपड़े से इसको हमें छान लेना है और छानने के बाद जो तरल पदार्थ हमें मिलेगा वो पदार्थ हमारा पंचगव्य के रूप में माना जाएगा और ये तरल पदार्थ हमारे खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है। किसान इस तरल पदार्थ को, इस छने हुए तरल पदार्थ को पंचगव्य के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों आपने जाना कि कैसे इसे बनाया जाता है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हम इसे कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।
0: एक्चुअली ये सारे जीवाणु के द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं और इसमें जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त होती है।
1: जी,
0: तो बेहतर इस्तेमाल के लिए इसको, इस तरल पदार्थ को, जो तैयार पंचगव्य है उसको लगभग 2 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।
1: 2 महीने तक?
0: जी, तो उसमें उसकी क्रियाशीलता में कोई ज़्यादा कमी नहीं आती है। फिर ज़्यादा दिनों तक अगर रखेंगे तो उसकी क्रियाशीलता में कमी आती जाती है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि उसको 2 महीने के अंदर ही उसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर लें।
1: ठीक, तो सर अब इसमें जो है खेतों की बात करते हैं, तो इनका जो प्रयोग है वो खेतों में कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: किसान बंधु इसको विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। इसको बीज के साथ उपचारित भी कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसको सिंचाई जल के साथ खेतों में डाल भी सकते हैं और फसल खरी फसल में इसका छिड़काव विधि के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी।
0: और खास करके मैं तो कहूँगा कि इसकी शुरुआत किसान बंधु अपने बीजों को उपचारित करने में, चाहे वो राइजोम हो या कटिंग हो या सीड्स हो, उसको लगभग 20 मिनट तक पंचगव्य के 3% घोल में डुबा करके रखें और उसके बाद उसको छाया में थोड़ी देर के लिए सुखा दें, फिर उसका इस्तेमाल खेतों में बोने के रूप में या लगाने के रूप में या कटिंग को प्लांट करने के रूप में करें। तो इस तरह से सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान बंधु चाहते हैं कि मैं इसको मिट्टी में इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि पंचगव्य का 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ अपने खेतों में व्यवहार कर सकते हैं। किसी भी फसल में, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो या दलहनी फसल हो, किसी भी फसल में इसका प्रयोग सिंचाई, जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल करते हैं उसमें करें, जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें वो कंपोस्ट के साथ या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर खेत में छींट सकते हैं अंतिम जुताई के समय में। लेकिन खेत में थोड़ी नमी रहनी चाहिए उस समय, ताकि जो जीवाणु हैं उसको जीवित रहने का भी अवसर मिले, मौका मिले, और उतना जो आवश्यक तापमान है उस तापमान पर वो जीवित रह सके। तीसरी बात है कि छिड़काव के रूप में, छिड़काव के रूप में भी किसान बंधु इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और छिड़काव के रूप में इसके 3% घोल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर पंचगव्य को मिलाकर किसी भी फसल में इसका छिड़काव, किसी भी फसल में पंचगव्य का छिड़काव कर सकते हैं। और ये छिड़काव मुख्य रूप से 2 बार करनी चाहिए। पहला छिड़काव करना चाहिए जब कली वाली अवस्था आती है, यह कली लगना शुरू होता है पौधे में, उस समय करना चाहिए। और दूसरा छिड़काव करना चाहिए जब उसमें फल आ जाते हैं या पौधे में फल जब पकड़ लेता है, तो उस समय उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर एक ही छिड़काव करना है उनको, तो फल लगने के बाद इसका छिड़काव करें, और इससे उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। और हम लोगों ने अपने यहाँ प्रयोग करके भी देखा है, देख भी रहे हैं। तो इसके छिड़काव से एक फ़ायदा ये समझ में आता है कि इसमें कुछ एक विशेष प्रकार का गंध होता है,
1: अच्छा,
0: जिसके वजह से पौधे में कीड़े और रोग का प्रकोप कम हो जाता है।
1: अच्छा।
0: जिस फसल में इसका छिड़काव करते हैं उसके आसपास कीड़े नजर नहीं आते हैं, तो ये काफी उपयोगी है। और ना सिर्फ ये रिपेलेंट का काम करता है, बल्कि पौधों में ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, उसके विकास में सहायक होता है। और इसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व तो ऐसे रूप में विद्यमान हैं, वर्तमान ये मौजूद हैं, जो पौधों को मिल नहीं पा रहे हैं उनको भी घुलाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं, और पौधों के जड़ के आसपास एक ऐसा आवरण बनाते हैं, एक ऐसा परिधि बनाते हैं जिसमें हानिकारक रोग का अटैक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से पौधे स्वस्थ रह पाते हैं। अगर हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी पौधों के पत्तियों पर भी एक आवरण बनाता है, जिसके वजह से बाहरी कीटों का या रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर हो पाता है।
1: तो आपने जाना किसान बंधुओं की क्या क्या फ़ायदे हैं पंचगव्य के, और आपने जाना कि कैसे इसे बना सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं खेतों में, इसकी विधि को जाना आपने, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी जो हैं डॉक्टर साहब ने बताया। तो फिलहाल तो चाहेंगे कि आप भी अगर नहीं जानते हैं इसे बनाना, तो यहाँ पर जो भी आप सभी को बताया गया, तो अगर आप उसे अपनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आप इसे सीख जाएंगे बनाना और आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते ये उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले। और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 cc की 2 ml मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वॉच कार्यक्रम में। आज हम बातें करने वाले हैं किसी एग्जाम के बारे में नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि फलाना एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी। आज हम पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों ये जो हमारी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, खास तौर से छात्र का जो जीवन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस दौरान जो आदतें हम अपनाते हैं वही आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता तय करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, यानी कि गोल सेटिंग की। दोस्तों अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि आपने तय ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है, तो कल आप किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे, कल आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी होता है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर कुछ और भी। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तब आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये तय कर लें कि आपको बनना क्या है, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। समय जो होता है ना बहुत कीमती होता है। पैसा खो देंगे, कुछ भी खो देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, पर समय अगर एक बार चला गया ना तो वो नहीं मिलता। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने दिन की एक योजना बना ले, पढ़ाई के लिए समय तय करें, खेलने के लिए समय तय करें और आराम के लिए भी समय निकालें, क्योंकि आराम भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी होती है ना। और अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन पांचवें दिन पढ़ाई की, उसके बाद फिर 3 दिन गायब। तो ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन और ये क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और पढ़ाई खत्म। लेकिन आपको पता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी। खरगोश बहुत तेज था दौड़ने में और कछुआ बहुत स्लो, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने क्या किया, वो रुक गया। चलता रुक जाता, चलता रुक जाता। और ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि कंसिस्टेंसी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। रोज पढ़िए, पर लगातार पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन बंद हो गया, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन बंद हो गया। ध्यान रखना है कि नियमित अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं एकाग्रता की, ध्यान और एकाग्रता की। आज के समय में जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय इन सारी चीजों से आप दूरी बनाकर रखें, एक शांत जगह पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपको फोन की आदत है या फिर सोशल मीडिया की आदत है, तो आपको लगेगा अगर उसने मैसेज कर दिया तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, फिर आगे क्या होगा, अरे किसी का फोन तो नहीं बज रहा होगा, गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगा या फिर गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगी, अरे ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, कोई नया गेम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट, नई कंट्रोवर्सी या फिर फोन पर किसी दोस्त से गपशप, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से दूरी बनानी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। पहले दिन आप 5 मिनट फोकस कर पाएंगे, अगर आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है तो आप पहले दिन 5 मिनट फोकस करेंगे, अगले दिन 10 मिनट। इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी आदत और आपका फोकस बेहतर होता जाएगा और एक दिन आप देखेंगे कि लगातार आपने 40-45 मिनट पढ़ाई कर ली है। लगातार 40 मिनट 45 मिनट से ज्यादा पढ़ाई करनी होती भी नहीं है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ाई की। ये होता है एक हेल्दी तरीका पढ़ाई करने का। लेकिन आज के टाइम पे फोकस बहुत मुश्किल से होता है, तो ध्यान रखें मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सारी चीजों से एक टाइम बना ले कि 2 से 3, या फिर आपका अपने हिसाब से कोई भी टाइम आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 2 से 3 मुझे इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कुछ भी करना है लेकिन इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, इस दौरान मुझे पढ़ाई ही करनी है। और जब आप कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करते हैं, फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खुद ही आने लगता है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी होगी, आपको कहना होगा खुद से, खुद को समझाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। और ये छोटा सा जो सेंटेंस होता है ना, ये आपके अंदर बहुत ताकत पैदा कर सकता है, ये आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत पैदा कर सकता है। हर रोज जगने के साथ ही आईने में देख कर कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये होगा और मैं ये करके दिखाऊंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। ऐसी कुछ बातें बस 5 मिनट हर रोज सुबह, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है असफलता। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपने कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की, फोकस्ड रहे आप, टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से की और उसके बावजूद आप सफल ही होंगे, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप असफल हो और फिर क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, जीवन में हर किसी को कभी ना कभी असफलता का सामना करना ही पड़ता है, करना। लेकिन असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेनी चाहिए कि कहीं कुछ तो छूट गया होगा ना, या फिर कहीं हमसे कोई कमी नहीं रही है, तो फिर शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता चुना गया है जिस पर हमें चलना होगा। तो थोड़ा ठहरिए और अपने नए रास्ते की तलाश कीजिए, या फिर अगर आप एक बार और कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, पर घबराइए मत, हारिए मत। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और हर असफलता कहते हैं कि आपको सफलता के और करीब और बेहतर तरीके से करीब लेके जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम स्वास्थ्य के बारे में भी बातें कर रहे थे, तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो फिर पढ़ाई पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज और सही खान पान और पूरी नींद। जी हाँ, सोशल मीडिया और मोबाइल्स ने और गेम ने भी हमारे नींद को भी बहुत बुरे ढंग से प्रभावित किया है। हम रात रात भर जाग कर इन सारी चीज़ों के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं, और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अभी फ़िलहाल उन सारी परेशानियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कि अपनी नींद पूरी ज़रूर करें, 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और पूरी नींद लें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपके स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सके। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी होता है कि आप गुड कंपनी में रहें, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत से गुण है और संगत से गुण जात है। इसलिए आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। अगर आप फोकस्ड लोगों के साथ रह रहे हैं, पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अगर आप रास्ता भटकेंगे भी ना, तो वो आपको रास्ते पर ले आएंगे, वो बातें करेंगे पढ़ाई की, तो आपको भी लगेगा कहीं कुछ तो छूट रहा है ना, मेरी पढ़ाई भी तो छूट रही है ना। वो अच्छी बातें करेंगे तो आपके ऊपर भी असर अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि वो अपने साथ आपको पीछे खींच कर लेकर जाए। और अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। जी हाँ, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं। ऐसे समय में खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट कर पाने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो डायरी लिखना शुरू कीजिए और उसमें एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको खुद के अंदर विश्वास आने लगेगा। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, पर हफ्ते भर में तो पक्का आएगा। और आप जब डायरी में लिखेंगे कि ये चीज़ें हुई और मैं अभी बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ इस वजह से मैं लो फील कर रही हूँ, तो लिखते लिखते आपको आधे जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा आपको कोई कहने के लिए नहीं होगा कि टाइम हो चुका है, पढ़ाई करने बैठो टाइम हो चुका है, खाना खाने जाओ टाइम हो चुका है, फ़ोन नीचे रख दो सो जाओ, नहीं होगा। यह आपको खुद के अंदर खुद ही ये चीज़ लानी होगी, यानी कि आत्म अनुशासन लाना होगा। अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है, और अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लें, आत्म अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़ें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके जीवन का वो फेज चल रहा है जब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा ये, मैं हार चुकी हूँ, थोड़ा रुकिए, डायरी लिखिए, आईने में देखकर खुद से बातें कीजिए और थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए और फिर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन किसी ना किसी सही दिशा में पहुंच ही जाएगा। और अब मैं अंत की ओर आगे बढ़ती हूँ और आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को कभी भी छोटा मत समझिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो, नमस्कार, हाजिर है आरजी अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है, लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो है वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और ये हैं पशुपालन विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
3: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब भी कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है, या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है, क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है, और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है, जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं तो उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के, और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय पर डालने से वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का और गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ क्वालिटी उन्नत नस्ल के सांड का जो बीर्य डालने से वो काफ़ी उन्नत नस्ल के बछड़े बाछा या बाछियाँ उनको प्राप्त होती है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो हमने जाना कि ये क्या होता है, और अब ज़रूरी होता है कि हम जानें कि इससे लाभ क्या मिलता है और साथ ही इससे हानि क्या मिलता है।
3: जी, जैसा कि आपको हमने बताया पहले कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशुपालकों को कि गाय को एक जगह से दूसरे जगह गर्मी की अवस्था में ले के जाना, तो आजकल जो डोर स्टेप लेवल पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी, NGO के द्वारा भी, और कॉम्फेड के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें कि श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इससे फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पे मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसेमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे, AM PM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसिमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40-50% ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है, एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेन डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24-26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहाँ कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह से गायनेको क्लिनिकल जांच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मनपसंद आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीका से उसमें आर्टिफिशियली सीमेन डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसिमिनेशन में गाय का कुछ गाय छोटी होती हैं और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेज ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है, ये पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावा भी कुछ सावधानियाँ हैं जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
3: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
0: अच्छा।
3: और दूसरी चीज़ है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे ज़रूरी है समय, और तीसरी चीज़ है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है नाइट्रोजन सिलेंडर में, जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो कैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहाँ से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं, थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गाय को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी हुई नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देसी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे नस्ल छोटी गाय है तो आप अगर हॉस्टिन फ्रीजियन का सीमेन डालेंगे तो कभी कभी डिस्टोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है और जब डैम का साइज या जो मादा पशु है उसका साइज छोटा होगा तो बच्चा देने के क्रम में वो कठिनाई होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल की गाय है और आप जो उसका जो कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं तो वो किस नस्ल से करा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है।
0: तो सुना आपने पशुपालक भाइयों की टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको, उसका खास ख्याल रखना है और साथ ही नस्लों का भी खास ख्याल रखना है। अब इसके बाद ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब, खास तौर पर पशुओं के बारे में हमने जाना कि उन्हें अगर वो इस तरीके से गर्भधारण करते हैं यानी कि कृत्रिम गर्भधारण, तो क्या लाभ होता है पशुपालक भाइयों को या क्या हानि मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्थिक पहलू के नज़रिए से, तो किस तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो इस कृत्रिम गर्भधारण के बारे में जानकर या फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर आर्थिक पहलू के नज़रिए से किस तरीके से वो मुनाफा पा सकते हैं।
3: जी, ये बहुत ही मार्केबल प्रश्न है कि जहाँ अभी हमारी सरकार के द्वारा जगह जगह पर हर एक अस्पताल में लगभग कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक हम लोगों के द्वारा ये सुविधा नहीं पहुँचाई गई जा पाई है, क्योंकि वहाँ आने जाने का जो साधन है उसमें भी दिक्कत है। और तो इसके लिए अभी सरकार के द्वारा भी, NGO के द्वारा भी, कॉम्फेड के द्वारा भी ग्रामीण स्तर पर जहाँ की उनका संगठन है वहाँ से कुछ ग्रामीण युवकों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण देने के पश्चात उनको जो सब्सिडाइज रेट पर या निःशुल्क ढंग से हम उनको क्रायोकैन या जो भी जितनी भी गन है, जो आर्टिफिशियल कैथेटर, ये सारा चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और इससे वो सुदूर देहाती क्षेत्रों में भी अब कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा पहुंच गई है, तो एक और इससे उनको तो फ़ायदा है। दूसरी चीज़, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे पशुपालक हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, और जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेके कॉम्फेड के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी NGO के द्वारा ट्रेनिंग लेके अगर वहाँ इस चीज़ को अपना रहे हैं तो उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो एक और जहाँ की डोर स्टेप लेवल पर कम शुल्क में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है। दूसरी चीज़ है कि जो भी व्यक्ति जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जिनको इस क्षेत्र का अनुभव है या जो इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेनिंग लेके इस पेशा को अपना रहे हैं, तो उनको भी लाभ होता है, क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ की वेटनेरियंस या जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जिनको कि जाने आने में कठिनाई होती है, उन क्षेत्रों में भी उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।
0: जी।
3: तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों, एक और जहां हमारे पशुपालक ग्राम जो गरीब भी होते हैं और दूर क्षेत्रों में भी, जो देहात क्षेत्र में भी है, वहां भी ये सुविधा मिल रही है, और दूसरी ओर जो करने जा रहे हैं उनको भी फायदा हो रहा है।
0: जी।
3: तो इस ओर से इस तरह से ये करीब करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो है बुन है, और जरूरत है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनकी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो।
0: तो यहाँ पर जाना अपने श्रोताओं की कैसे ये बहुत ज़रूरी है हमारे पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान, और साथ ही अगर इसे एक रोजगार के तौर पर देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ही अच्छा एक माध्यम है पैसे कमाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही कुछ अच्छी बातें और कुछ जानकारियों वाली बातें हम लेकर आते रहेंगे आप सभी के बीच। तो सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम।
2: उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने अपनों का विशेष ध्यान रख रहे होंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए हम जितने भी फल खाते हैं वो सारे फल एक जैसे दिखते, उनका स्वाद एक जैसा होता, या फिर इतने खूबसूरत जो फूल हम देखते हैं वो सारे के सारे फूल एक रंग के होते, एक जैसे होते, एक साइज के होते, एक शेप के होते, तो कितना नीरस होता, मतलब फूलों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता। ठीक उसी तरीके से सोचिए सारे इंसान एक जैसे दिखते, एक जैसे रंग के होते, एक साइज के होते, एक हाइट के होते, तो अच्छा होता क्या? नहीं ना। जब हम ये बातें जानते हैं कि एक रंग के, एक साइज के, एक हाइट के सारे लोग नहीं हो सकते हैं और उनका एक जैसा होना अच्छा लगेगा भी नहीं, तो फिर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, अगर कोई बहुत पतला है तो अच्छा नहीं है, अगर कोई बहुत मोटा है तो भी अच्छा नहीं है, ऐसी बातें हम क्यों सोचते हैं? अगर सब एक जैसे होंगे तो सबकी अपनी जो पहचान है, अपनी यूनिक पहचान जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और आज के समय में जब सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ना जाने कितने तरह के फिल्टर्स लगे हुए हैं, उस पर जब लोग देखते हैं किसी और को, बिल्कुल फिट बॉडी है, निखरा हुआ रंग है, और ऐसे में जब हम खुद को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो बहुत खूबसूरत थे या बहुत खूबसूरत था, लेकिन हम उतने खूबसूरत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी टाइप वैसी नहीं है या फिर हमारा रंग वैसा नहीं है। ऐसी कुछ बातें सोचकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी आज बातें होने वाली है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में। बॉडी पॉजिटिविटी, पता है आपको ये टर्म कब आया था? ये टर्म पहली बार आया था 1990s में। बॉडी पॉजिटिविटी ये टर्म पहली बार आया था, लेकिन उससे भी पहले बॉडी पॉजिटिविटी की जड़ें रखी जा चुकी थी, उसकी नींव रखी जा चुकी थी 1960s में। जी हाँ, 1960s में फैट एक्सेप्टेंस मूवमेंट चला था, यानी कि जब मोटे लोगों को उनके मोटे होने के लिए उनका मजाक नहीं बनाया जाता था, तब एक ये मूवमेंट चला था कि मोटे लोगों का उनका मजाक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें अपने से अलग नहीं समझा जाएगा। फिर 1990s में एक प्रॉपर टर्म आया बॉडी पॉजिटिविटी, और इसके बाद अब हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात को समझने की, बॉडी पॉजिटिविटी को समझने की, और अलग अलग तरह की बॉडी को एडमायर करने की, अलग अलग बॉडी की खूबसूरती को समझने की। आज हर कोई एक जैसी आंखें चाहता है, एक जैसे होंठ चाहता है, एक जैसी हाइट चाहता है, एक जैसा बॉडी साइज चाहता है, यानी कि एक टाइप में फिट होना है। अगर सब एक जैसा हो तो कैसे अच्छा लगेगा? मैंने शुरुआत में कहा था ना, आप सोचिए कि सारे फूल एक जैसे हों, उनके रंग एक जैसे हों, उनकी बनावट एक जैसी हो, तो कितना नीरस हो जाएगा, नहीं? ठीक उसी तरह से। और आज के समय में आपको पता है बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में पता नहीं होने की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी हाँ, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के मन में हमेशा ये बात बैठी होती है कि वो कैसी दिखती हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कैसा सोचती है, वो क्या काम करती हैं। सिर्फ डिप्रेशन नहीं बल्कि उनका कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है, उनमें खाने की बहुत अजीब सी आदत हो जाती है। इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातें करेंगे। एक स्टडी बताती है कि 50% से भी ज़्यादा लड़कियां अपने शरीर को अच्छा ना समझते हुए डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उन्हें खाने की बुरी आदत लग जाती है, सबसे पहले तो आइए हम मोटापे की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर बॉडी पॉजिटिविटी की शुरुआत हुई थी तो वो मोटापे से ही हुई थी। और आज भी पता नहीं क्यों हम मोटे लोगों का मजाक बनाते हैं। आप बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, कभी आपको हीरो या हीरोइन मोटा या मोटी नहीं दिखेगी। अगर कोई मोटा किरदार है तो उसे बहुत फनी दिखाया जाता है। ये बहुत गलत बात है जो फिल्मों ने भी हमारे दिमाग में डाली है। और अगर हम मोटापे की बात करें तो कुछ लोगों की बॉडी टाइप वैसी ही होती है, वो थोड़े मोटे होते हैं लेकिन उनमें मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होती है। आप अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे हीरो या हीरोइन को देखेंगे जो बहुत पतले नहीं है, लेकिन वो खुलकर कहते हैं कि मुझे इससे जुड़ी हुई कोई बीमारी नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आप मोटे हैं, आप पतले हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। अगर आप बिल्कुल लीन एंड थीन नहीं है, आप बिल्कुल पतले नहीं है लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल दौड़ भाग पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत आपको लग रहा है कि आप थोड़े मोटे हैं लेकिन फिर भी आपको मोटापे से जुड़ी कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आपका ये बॉडी टाइप बिल्कुल ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोटापे के बाद अब हम आते हैं रंग पे। देखिए, रंग जो हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और आप जो टीवी पर या फिर अलग अलग जगहों पर जो प्रचार देखते हैं अलग अलग तरह की क्रीमों का या फिर अलग अलग तरह की चीज़ों का, जो ये दावा करती है कि आपके नेचुरल रंग को, आपके प्राकृतिक रंग को वो बदल सकती है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको ठग रहे हैं या फिर आपके शरीर में आपके चेहरे की मदद से बहुत सारे केमिकल्स ठूसे जा रहे हैं जो आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसे नुकसान से बचिए और आपकी जो नेचुरल स्किन है जो भगवान ने आपको तोहफे में दिया है, उसे क्यों ना प्यार करें। और हमारे आसपास के लोगों को भी यह समझना होगा कि हर किसी का रंग एक जैसा नहीं हो सकता है ना। हर फूल एक रंग का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जो सफेद फूल होते हैं वही खूबसूरत थोड़ी होते हैं, अलग अलग रंग के फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग रंग का हर इंसान खूबसूरत है, बस उसके अंदर चमक होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो फिर आप चाहे गोरे हो, आप चाहे काले हो, आप सांवले हो, आपका चेहरा बिल्कुल डल हो जाएगा, आपके चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी। कुछ लोग सांवले होते हैं पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं पर उनके चेहरे पर चमक ही नहीं होती, वो आकर्षण ही नहीं होता है क्योंकि उनके पेट में गड़बड़ी होती है। जी हाँ, अगर आपके पेट में गड़बड़ी है तो आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, फिर आप गोरे हो काले हो मायने नहीं रखता है। तो खूबसूरत गोरा भी हो सकता है, खूबसूरत काला भी हो सकता है, खूबसूरत सांवला भी हो सकता है, बस आप अंदर से स्वस्थ होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में कही जा सकती है। इसके अलावा भी हम अपने चेहरे के अलग अलग फीचर्स को देखकर सोचते हैं कि मेरी नाक थोड़ी छोटी रह गई या फिर मेरी आंखें उतनी खूबसूरत नहीं है। आंखें देखने का काम करती है, आंखें आपको नजरिया देती है, आंखें आपको समझाती है सच्चाई। तो फिर आंखें कैसी भी हो, काम तो वही है, आंखें स्वस्थ हो, बस इतनी ही बात काफी है। और आपकी आंखें आपकी पहचान होती है, आपकी आंखें आपका जरिया होती है इस दुनिया को देखने की, बस इतना ही काफी है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हो तो आपकी खूबसूरती बहुत अच्छे से झलकेगी। आपका किरदार बेहतर हो तो लोग अपने आप आपके ओर आकर्षित होंगे, और आपका किरदार बढ़िया होगा तो अच्छे लोग ही आपके ओर आकर्षित होंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर ली और ये भी कहा कि अगर आप मोटे हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर भी कह रहा है कि आपका वेट बिल्कुल ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोटे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको आपका वजन कम करना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बॉडी पॉजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए, हम किसी को मोटा कैसे कह सकते हैं, ये गलत है। आपको स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको वेट कम करना चाहिए तो वेट कम कीजिए। और जैसे ही वेट कम करने वाली बात आती है, हम पहुंच जाते हैं फटाक से अपने खाने पर और अपने खाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और आजकल बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पूरे दिन नहीं खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, और इसे कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। और ये बहुत बहुत भयानक बीमारी होती है। मतलब इसमें जो बच्चियां हैं, जो युवा बच्चियां हैं या युवा बच्चे हैं, वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। और आपको ये समझना होगा कि वजन कम करने का एक स्वस्थ तरीका हो सकता है और होता है। आप खाना अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, प्रॉपर मील लीजिए। ये नहीं कि सुबह का नाश्ता हम नहीं करेंगे या फिर रात का खाना हम नहीं खाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से खाइए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए या फिर अपने शरीर की भी बात सुन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कुछ खा लेने पर भी मोटे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन चीजों को आप छोड़ दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, सबसे जरूरी बात कि आप अगर खाने के साथ कितना भी परहेज कर ले, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप किसी भी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये सोचेंगे कि मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा और एक हफ्ते में ही हम अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक हफ्ते में अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी होगा और आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाएगा। जो चीजें धीरे होती है वो खूबसूरत होती है, वो ज्यादा हेल्दी होती है, इस बात का ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, लेकिन सारी चीजें लिमिट में होनी चाहिए और खुद से बहुत प्यार करें। पता है, इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आईना हर सुबह, या फिर सुबह वैसे बहुत अच्छा होता है, बाकी अगर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त पे आप आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइए और

परेशानी से जूझ रहा है, यानी कि अपने बॉडी में वो खुश नहीं है, वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत सारे क्रीम्स अपने चेहरे पर लगा रहा है ताकि वो थोड़ा और ज़्यादा निखर जाए, या फिर बहुत कम खा रहा है ताकि वो पतला हो जाए, तो उसे ये समझाइए कि भाई देखो तुम्हारे जो चेहरे का रंग है वो नहीं बदल सकता है, बस उसमें चमक लाई जा सकती है बहुत सारा पानी पीकर, हेल्दी खाना खाकर और एक्सरसाइज करके। और तुम अगर मोटे हो और फिर भी तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम अच्छे से दौड़ भाग पा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारे शरीर का टाइप ही यही है। और अगर तुम पतले भी हो तो सेम वही चीज़ तुम्हारे ऊपर अप्लाई होता है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है तो उसे ज़रूर समझाइए, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हालांकि ये जो परेशानी है लड़कियों में ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद से ढेर सारा प्यार करेंगे, और एक और बात कि आप जहाँ भी थोड़ा भी वक्त बिताएंगे वहाँ के साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी है, इस बात का ध्यान रखें, और अपने और अपने अपनों से करें ढेर सारा प्यार और रखें अपना खूब ख्याल। नमस्कार, बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 MHz से यानी FM ग्रीन, और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहाँ पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं, और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद अनु।
2: मैम, बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम की जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
3: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
2: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं, और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
3: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं, और ऐसे इसका नाम कैलोसाइबा इंडिका है, और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी, तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती खत्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से

0: मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे NRC सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑस्टर्न मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है। इसका कुछ करेक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि, कुछ स्टेप आपका ऑस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
1: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
0: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में, उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम अच्छा। लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें, फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे, तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे। इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है, या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें, वो उसका चयन कर लें। उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पे चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं। फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं। जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद, फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं। उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद ये दो तरीके में से, या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं, या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं, तो इसमें पूरे बैग में छेद, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है, वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं। उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसिलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसिलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे। तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं, लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं। तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं, या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए, या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू, नदी की पेटी का जो बालू होता है, वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग मिलाते हैं। आते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो तीन भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, एक भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और दोसा सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं, तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले लिए, ये सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको, यदि दोसा सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं। ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटेलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो, तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं। लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है। लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है, ये सब है, तो वो सबको हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे। निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं। केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं, उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 gram और 1 liter पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी करते हैं, तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग करते हैं, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब माइसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में, तब उसका केसिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं। और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 cm मोटी परत डाल देते हैं। और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े, या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, तो बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 cm मोटा परत दिए हैं, सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए, इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है। और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
1: अब मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
0: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सरा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है, वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं। प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं। प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब सामग्रियों को जैसे सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ ना पुराने ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं, तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिए लेंगे, 1 भागिए लेंगे। और यदि हमारे पास 2 साल से पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, हम टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर ले करके हम लोग उसको मिलाते हैं। और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवीकृत करना, ये हम लोग करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं।
1: और अंत में मैम, मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये आपको बता दें, मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में, ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 25 से 35 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है। तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है, तो उसके उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का, या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट, वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वह ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है, जो हमारा फसल कक्ष है, उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बेंडाजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें, ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से गिलहरी से ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीका है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज़ और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है, वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेज़ी से लंबा होता है, फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो कोप्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए, बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहे लेथरीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहे लेथरीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी हैं उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाए। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और हमारे खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले ज़माने की, तो लोग काफ़ी ज़्यादा शरीर से बलिष्ठ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि उनके खान पान का एक हिस्सा मड़ुआ यानी कि रागी भी हुआ करता था, जो हमारे शरीर को पोषण युक्त जो तत्व हैं वो तो देते ही थे और शरीर को बीमारियों से भी दूर रखते थे। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, डॉक्टर आनंद। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से, और आज रागी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए आज डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि रागी की पौष्टिक और आर्थिक उपयोगिता के बारे में।
1: किसान भाई को नमस्कार। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे मोटे अनाज, जो हमारे पूर्वज पहले बहुत अच्छी तरह से खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृषि विकास की ओर दौड़ा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग मोटे अनाज को छोड़ते चले गए। लेकिन अब आवश्यकता है कि मोटे अनाज की खेती विशेष रूप से की जाए। तो किसान भाई, इसके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटे अनाज में रागी का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि रागी ऐसा फसल है जिसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे 100 ग्राम दाने में 344 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मिलता है, जिसका उपयोग करके हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती ही हैं। रागी बच्चों और बड़ों के लिए सबसे उत्तम आहार है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटे अनाज में प्रोटीन, वसा, रेशा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उसी तरह रागी में 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 8% प्रोटीन और 15 से 20% जो रेशा है, डायट्री फाइबर इसको बोलते हैं, तथा 2.5 से 3.5% खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विटामिन में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एवं आवश्यक अमीनो एसिड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो कि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे रागी युक्त आहार में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, तो जो आजकल शुगर की बीमारी है उसमें भी यह बहुत अच्छा फायदा करता है। कैल्शियम व अन्य खनिज तत्वों के प्रचुर मात्रा होने के कारण जो हम लोग को आजकल बुढ़ापा में ऑस्टियोफोरोसिस बीमारी से हम लोग ग्रसित रहते हैं, से संबंधित बीमारियों तथा बच्चों में आहार हेतु विशेष रूप से यह बहुत ही लाभदायक है। इसके दानों का इस्तेमाल खाने में कई तरह के से किया जाता है। इसके दानों को पीसकर आटा बनाया जा सकता है, जिसे मोटी डबल रोटी, साधारण रोटी और डोसा बनाया जा सकता है। अनाज भंडारण कीड़े के प्रतिरोधी होने के कारण इसको हम लोग बहुत 50 साल तक अच्छी स्थिति में रख सकते हैं। और जैसा कि आजकल खाद असुरक्षित जो हमारे गरीब किसान हैं, ये उन लोगों के लिए एक वरदान फसल है।
0: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं इसके उत्पादन की और उन्नत शस्य क्रियाओं की।
1: जैसे रागी की खेती शुष्क और आंध्र शुष्क जलवायु इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि हमारे बिहार में इसकी खेती गर्मियों के मौसम में खरीफ की फसल के साथ की जाती है। इसकी खेती के लिए गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त होता है। खरीफ की फसल होने के कारण सर्दियां शुरू होने के पहले इसे काट लिया जाता है, इस कारण सर्दी का प्रभाव इस पर नहीं देखने को मिलता है। इसकी खेती के लिए सामान्य बारिश की जरूरत होती है, अधिक बारिश होना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। रागी के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान पर आसानी से विकास कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 से 22 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है। उसके बाद पौधों के विकास करने के लिए 30 डिग्री के आसपास तापमान का होना उपयुक्त माना गया है। तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग रागी का यदि हम लोग खेती करते हैं, तो भूमि का चुनाव हम लोग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम जरा चर्चा करेंगे। रागी की खेती उपजाऊ और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छा उत्पादन बलुई दोमट को सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने की वजह से इसके पौधे खराब हो जाते हैं। इसकी खेती के लिए जो हमारी भूमि है उसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होनी चाहिए। और भूमि की तैयारी में हम लोग को कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे पूर्व फसल में कटाई के पश्चात आवश्यकता अनुसार ग्रीष्म ऋतु में 1 या 2 गहरी जुताई कर देना चाहिए किसान भाइयों को, जिससे खेत से फसलों एवं खरपतवार के अवशेष एकत्रित हो उसे नष्ट कर दें। मानसून प्रारंभ होते ही खेत में एक या दो जुताई करके पाटा लगा के एकदम खेत को समतल कर दें और अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई को चाहिए कि बुआई के पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें और उसके बाद जो फफूंदी नाशक दवा होती है कर्मिंडाजिम उससे उपचारित करके वहीं बोएं। रागी की बुआई दो तरह से की जाती है, एक होती है सीधी बुआई और दूसरा होता है रोपा पद्धति, इसको ट्रांसप्लांटेड हम लोग कहते हैं। सीधी बुआई जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है और छिटकवा विधि या कतारों में बोई जाती है। पंक्ति में बुआई करने हेतु जो हमारा बीज लगता है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है जो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लोग को हर समय 22.5 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के लिए नर्सरी में बीज के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देनी चाहिए, नर्सरी में लगा देनी चाहिए। एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम लगती है एवं 20 से 25 दिनों का पौध जो सीडलिंग है होने पर रोपाई करनी चाहिए। रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके। रागी के बीजों में दोनों विधि से रोपाई के दौरान इसके बीजों को भूमि में 3 से 4 सेंटीमीटर के गहराई पर बीज को बोना चाहिए ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो सके। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि खेत की तैयारी हम लोग कैसे करें। तो रागी की रोपाई के लिए भुरभुरी मिट्टी का होना बहुत आवश्यक माना जाता है क्योंकि भुरभुरी मिट्टी होने से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है और रागी की खेती के लिए शुरुआत में खेतों की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों को अवशेषों को नष्ट कर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दें ताकि सूरज की धूप वो मिट्टी में मौजूद हानिकारक जो कीट रहते हैं उसे नष्ट हो जाए और खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद हम लोग को, जैसे आजकल सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर जोर दे रही है कि जैविक खाद को हम लोग अपनाना चाहिए, तो जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छी तरह से मिला दें और खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी चलाकर खेत का पलेवा कर दें। पलेवा करने से एक फायदा है कि 3-4 दिन बाद जब जमीन की ऊपरी सतह हल्की सूखी हुई दिखाई देने लगे तो फिर खेत की जुताई कर दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें ताकि बारिश के मौसम में जल भराव जैसी समस्या का सामना न करना पड़े, जो एक बहुत बड़ा रागी के फसल में एक है कि यदि पानी में जल भराव होता है तो हमारा फसल नहीं अच्छा होगा। जैसे उर्वरक की मात्रा के बारे में किसान भाइयों को जरा बता दें, रागी के पौधों में उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी खेती के लिए शुरुआत में खेत की तैयारी के वक्त लगभग 12 से 15 गाड़ी जो होता है पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक खाद के रूप में 1.5 से 2 बोरे NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी यदि हम रेनफेड कल्टीवेशन वर्षा आधारित खेती करते हैं तो उसमें 40-20-20 यानी 40 केजी नेत्रजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास। यदि हम इरिगेटेड कंडीशन यानी सिंचित अवस्था में रागी की खेती कर रहे हैं तो आखिरी जुताई तो उसमें जो उर्वरक की मात्रा होती है वो 60-30-30 यानी 60 केजी नेत्रजन, 30 केजी फास्फोरस P2O5 और 30 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो नेत्रजन की जो आधी मात्रा होती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की आखिरी जुताई के वक्त खेत में छिड़क कर मिट्टी में मिला देना चाहिए और दूसरी जो आधी मात्रा शेष आधी मात्रा जो नेत्रजन की होती है वो प्रथम सिंचाई के बाद उसमें दे देना चाहिए। तो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो खरपतवार नियंत्रण। तो रागी के खेत में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। यदि हम रासायनिक तरीके से खरपतवार के लिए नियंत्रण के लिए बीज रोपाई के पहले एक खरपतवार नाशी होता है आइसोप्रोट्रोन, उसका डोज जो है 0.5 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर ये रेनफेड कंडीशन में जो रेनफेड जो वर्षा आश्रित क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, और सिंचित क्षेत्र में ऑक्सीफ्लोरोफेन 0.1 लीटर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर की उचित मात्रा का छिड़काव खेत में कर देना चाहिए। यदि हम प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण पौधे को की गुड़ाई कर लिया जाता है तो इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उसकी पहली गुड़ाई कर निकाई गुड़ाई कर दें, और रागी की खेती में प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए दो बार निकाई गुड़ाई काफ़ी आवश्यक है। इसके पहले निकाई गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों को एक बार और गुड़ाई कर दें, यानी 45 दिनों तक जो हमारा रागी का खेत हो वो खरपतवार से मुक्त हो।
0: जी, और अब बात करते हैं अधिक उपजशील और अनुशंसित किस्मों के बारे में।
1: तो किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित किस्में तथा जो अधिक उपजशील हो तथा गुणवत्तापूर्ण बीज का ही चयन करना चाहिए। तो एक जो किस्म है वो है VL मांडू 379 जो हमारे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान से शाला जो अल्मोड़ा में है वहाँ से विकसित की गई है। ये अभी 2018 में CBRC से भी नोटिफाइड वैरायटी है। इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 111 दिन में यह मैच्योर कर जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसकी औसत उपज बहुत अच्छी है, 31.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और इसका बुआई का समय 2 मई से जून के प्रथम सप्ताह तक इसके बुआई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी प्रभेद है वो OEB 526। ये OEB 526 ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में अवस्थित है वहाँ की से विकसित की गई है। इसकी परिपक्वता अवधि 110 से 115 दिनों की ये प्रभेद है। इसकी औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और यह जो झुलसा रोग इसमें लगता है उसके प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। दूसरा जो अधिक उपजशील किस्म है वो OEB 532, ये भी ओडिशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से विकसित की गई है, 2012 में रिलीज हुई, जिसकी भी परिपक्वता इसे पकने की अवधि है 110 से 115 दिन। इसकी औसत उपज 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, ये भी झुलसन रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो और प्रभेद जो हमारे बिहार के लिए अनुशंसित है, जोन के लिए अनुशंसित है, वो उसमें है VL 352 जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से विकसित की गई। इसकी परिपक्वता अवधि ये 100 ड्यूरेशन की वैरायटी है, ये 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 33 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर है, ये भी झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। एक और किस्म है VL 376, इसकी परिपक्वता अवधि 103 से 109 दिनों की है, औसत उपज 29 से 31 क्विंटल की प्रति हेक्टेयर है, और झुलसा रोग के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इसके अलावा दो पुरानी प्रभेद भी है, जैसे A404 ये BAU रांची से विकसित की गई, और RAU8 ये RAU ढोली से विकसित की गई। दो किस्में हैं जो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी औसत उपज भी 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और किसान भाई इसकी इस अनुशंसित किस्मों का यदि चयन कर खेती करते हैं तो रागी से उन्हें अच्छी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी, और रागी में लगने वाले कौन कौन से रोग एवं कीट हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, और रोकथाम कैसे करें हम?
1: रागी में जैसे जो फफूंद जनित दो रोग इसमें मुख्यतः लगते हैं, एक है झुलसन एवं दूसरा है भूरा धब्बा। रागी प्रमुख रोग व्याधियां हैं जिनका समय पर निदान नहीं होने से उपज में हानि होता है। जो झुलसन रोग लगता है वो रागी की फसल पर पौध अवस्था से लेकर बालियों के दाने बनने तक किसी भी अवस्था में फफूंद जनित झुलसन रोग का प्रकोप देखा गया है। संक्रमित पौधे की पत्तियों में भिन्न भिन्न माप के आँख के समान धब्बे बन जाते हैं जो मध्य के धूसर और किनारों पर पीले पीले रंग के होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पत्तियां को झुलसा देते हैं। बालियों की ग्रिया और उंगलियों पर भी फफूंद का संक्रमण होता है, और ग्रीवा का पूरा या आंशिक भाग काला पड़ जाता है, जिससे बालियां संक्रमित भाग टूट के लटक जाती है या फिर गिर जाती है, और किसान भाइयों को इससे घाटा हो जाता है। उंगलियों पर भी आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से संक्रमित होने पर सूख जाती है, जिसके कारण उपज में गुणवत्ता जो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण जो उपज होना चाहिए उसकी मात्रा प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पूर्व बीज को जो जैसा हम जानते हैं फफूंदनाशक दवा जैसे मेनकोजेब, कार्बेंडाजिम या कार्बोक्सिन या उनके मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो की बीज दर से उपचारित करना चाहिए। यदि खरीफ फसल में झुलसन रोग का दिखाई पड़े तो कार्बेंडाजिम, कीटाजिन या ईडी फेनफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर या मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर मिलाकर की दर से छिड़काव करें और 10 से 12 दिन के बाद एक फिर से हमको एक छिड़काव रिपीट कर देना चाहिए, दोबारा कर दें। और जैव रसायन जैसे सीडोमोनास फ्लोरेसेंस का पर्ण छिड़काव 0.2% जो झुलसन के संक्रमण को रोकता है और रोग प्रतिरोधी किस्में भी यदि हम लगाएं तो इससे हम लोग बचाव हो सकता है। जैसे रोग रोधी किस्म है VL 379, VL 356, VL 352, OEB 536, 532 का चुनाव करें। इससे इस रोग से हम लोग उसमें जो रेसिस्टेंट है उसमें उस वैरायटी में मॉडरेटरी रेसिस्टेंट है तो उससे मध्यम प्रतिरोधी किस्म होने के कारण ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण रोग उसमें लगता है वो भूरा धब्बा रोग। यह भी फफूंद जनित रोग जो संक्रमण पौधों के सभी अवस्थाओं पर हो सकता है, चाहे वेजिटेटिव स्टेज हो या रिप्रोडक्टिव। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के हल्के भूरे अंडाकार धब्बे बन जाते हैं, बाद में इनका रंग गहरा हो जाता है। अनुकूल अवस्था में ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को समय से पूर्व सुखा देते हैं। बालियों एवं दानों पर संक्रमण होने पर दानों का उचित विकास नहीं हो पाता और दाने सिकुड़ जाते हैं, जिसकी उपज में भी काफ़ी कमी होती है। इसकी रोकथाम जैसा कि मैंने पहले बताया झुलसा रोग में है, वही रोकथाम इसमें भी किया जाता है। और जो कीट में तना छेदक एवं बालियों में सुनी रागी का प्रमुख कीट है, तो तना छेदक कीट जो होता है उसका व्यस्क कीट एक पतंगा होता है, जबकि लार्वा तने को भेद कर छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है एवं फसल को नुकसान पहुंचाता है। कीट के प्रकोप से डेड हट लक्षण पौधे पर दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कीटनाशक दवा डाइमिथोएट या फॉस्मामिडोन या न्यूअक्रोन 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें और कीट प्रतिरोधक किस्म की बुवाई करें, जिससे कि रोग से बचाया जा सके, कीट से बचाया जा सके। और दूसरा प्रमुख कीट है वो बालियों की सुंडी। इस कीट का प्रकोप बालियों में दाना बनने के समय होता है, जैसे ही दाना बनने लगता है तो बाली में ये पकड़ने का इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। भूरे रंग में रोएदार इलियाँ रागी की बालियों को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसके फलस्वरूप दाने कम एवं छोटे बनते हैं। इसकी रोकथाम के लिए जो क्यूनोलफॉस दवा आती है 1.5% थायोडाउन डस्ट 4-4% का प्रयोग 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कीट जो नई प्रभेद के बारे में हम बताए हैं वो कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर बुवाई करें तो ये कीट उसमें लगने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार यदि हम रागी जैसे फसल की कटाई और मड़ाई कैसे करें, तो रागी के पौधे रोपाई के लगभग 110 से 115 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिसके बाद इसके सिरों पर पौधों को काटकर अलग कर लेना चाहिए। सिरों की कटाई करने के बाद उन्हें खेत में एकत्रित कर कुछ दिन के लिए सुखा लेना चाहिए। उसके बाद जब दाना अच्छी तरह से सूख जाए तथा मशीन की सहायता से दानों को अलग कर एकत्रित कर बोरा में भर लेना चाहिए। रागी की विभिन्न किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा इसे 60 से 70 क्विंटल भूसा भी हम किसान भाई को प्राप्त हो जाएगा, जिसका बाजार भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास पाया जाता है। इस हिसाब से किसान भाई एक बार में एक हेक्टेयर में 60 से 70 हज़ार रुपये की कमाई आसानी से कर सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही मोटे अनाज में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और किसान अब आवश्यकता भी है, सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर भी है। और इसीलिए 2018 में इंटरनेशनल ईयर मनाया गया कि मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर, और सरकार इसके प्रति किसानों को भी प्रेरित कर रही है।
0: जी, तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले दिन आपसे एक अलग विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सुन रहे हैं अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई कई के आज नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी। और वैसे तो पिछले कई सारे एपिसोड्स में हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, वेक्टर बोरोन डिजीज की भी, कभी फाइलेरिया की, कभी काला आजार की, तो कभी मलेरिया की। पर आज हम बात करने वाले हैं एक अहम वेक्टर जनित रोग की, यानी कि एक्यूट एनफ्लाइटिस सिंड्रोम की, जिसे कि हम जापानी दिमाग के बुखार के नाम से भी जानते हैं। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी आरजे उमा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो शख्स जिनसे पूरा इलाका सलाह लेता है, सेहत के बारे में पूछता है। हमारे साथ सेहत के साथी हैं सेहतिया सिंह जी। सेहतिया सिंह का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। सेहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपसे एक घटना के बारे में बात करना चाहूंगी। हमारे पास के ही गांव में 6 साल की बिटिया चिंगी की बात करेंगे हम आज। बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया था और चिंगी वहीं खेल रही थी, और शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक उसे दौरा भी पड़ने लगा था।
1: हाँ आरजे उमा, यह मामला AES या JE का ही था। परिवार को लगा कि बस थकान होगी, किसी ने झाड़ फूंक की सलाह दी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी है, ये इंतजार नहीं कराती।
0: और देखिए, दुख की सबसे बात यही है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं होती है, ऐसी घटनाएं बरसात के मौसम में कई बच्चों को होती है और कई बच्चे इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग इस बीमारी को सही समय पर पहचानें।
1: अरे भाई, आज फिर कुछ काम की बात करेंगे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए आज हमें सुनने वालों को बताना बहुत जरूरी है कि JE AES क्या है, कैसे फैलता है और गांव समाज मिलकर कैसे इसे रोक सकते हैं, ताकि एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में ना पहुंचे।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल गांव, बाजार, खेत खलियान, हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, AES और JE। लोग इन शब्दों से डरे हुए भी हैं, उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरी जानकारी दे दी जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर AES या फिर जिसे JE भी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है?
1: देखो आरजे उमा, AES का पूरा नाम है एक्यूट इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम, यानी अचानक होने वाली तेज दिमाग की सूजन वाली बीमारी, और JE यानी जैपनीज इन्फ्लाइटिस यानी जापानी दिमाग की बुखार, AES का ही एक गंभीर रूप है।
0: यानी AES एक बड़ा नाम है और JE इसका मुख्य कारण है।
1: बिल्कुल सही। जैसे बरसात में कई तरह के बाढ़ आते हैं, पर उनमें से एक बहुत खतरनाक होता है, उसी तरह से AES में कई वजहें होती हैं, पर JE उनमें भारी बीमारी है।
0: अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग कह रहे हैं कि ये हवा से फैलता है, कोई कहता है फल से फैलता है, कोई कहता है मच्छर से फैलता है, लेकिन सच्चाई क्या है?
1: आरजे उमा, जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी JE का फैलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। इसका कारण इसका अपना पर्यावरणीय चक्र है। इस वायरस को बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक एम्प्लीफाइंग होस्ट जैसे सुअर और कुछ पक्षी जैसे बगुला, सारस वगैरह वगैरह, और दूसरा क्यूलेक्स मच्छर, जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाता है। इसी वजह से JE ज्यादातर उन इलाकों में मिलता है जहां धान की खेती ज्यादा होती है, खेतों में पानी भरा रहता है और बरसात के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। यानी यह बीमारी न पूरे देश में फैलती है न हर मौसम में, यह खासकर धान के खेतों वाले इलाकों और बरसात के बाद सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है।
0: थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना सेहतिया भैया।
1: अरे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि JE एक वायरल बीमारी है और वेक्टर यानी मच्छरों के जरिए फैलती है, खासकर क्यूलेक्स मच्छर। ये वही मच्छर होते हैं जो भारी गंदे पानी, खेतों के किनारे जमा पानी, सुअरों के पास तथा जंगल के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं।
0: अच्छा, इसका मतलब मच्छर ही इसके मुख्य कारण है।
1: हाँ, बात यही नहीं खत्म होती। ये वायरस पशुओं, खासकर सुअर और पक्षियों में चक्कर लगाता है और मच्छर उसे इंसानों के शरीर तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक चक्र।

0: और AES की किन वजहों से होता है?
1: AES कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, पोषण की कमी, लीची खाने से भी अगर बच्चा भूखा हो, लेकिन JEE इसका सबसे खतरनाक रूप है।
0: अब तक हम जान गए कि कैसे फैलता है, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि कौन से लक्षण दिखे जो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए, ना कि किसी और तरीके का सहारा लेना चाहिए।
1: बहुत जरूरी सवाल। AES या JEE में लक्षण अचानक आते हैं। इसमें जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, जिसे मुख्य लक्षण है तेज और अचानक बुखार, उलझन, बच्चा बार बार रो रहा हो, नींद ज्यादा आना, या उल्टा हो सकता है कि नींद बिल्कुल आना ही नहीं, लगातार रोना, दौरा पड़ना जिसको मिर्गी या फीट बोलते हैं, बच्चा होश में न रहना, गर्दन अकड़ना या चलने फिरने में दिक्कत होना।
0: मतलब ये सारे लक्षण बहुत तेजी से खराब होते चले जाते हैं, इतनी तेजी से कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है।
1: अरे हाँ, AES समय बर्बाद नहीं कराता, इसलिए हमें भी नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाए तो घर वाले क्या करें ऐसी स्थिति में?
1: कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। तुरंत अस्पताल ले जाएं, समय बिल्कुल न गवाएं, घरेलू इलाज जैसे झाड़ फूंक, देसी दवा में समय बर्बाद न करें। रास्ते में मरीज की सुरक्षित रखने के लिए कुछ आपको हम टिप्स दे देते हैं। वो है कि बच्चा बेहोश हो तो कुछ भी मुंह में न दें, न पानी न दवा। बुखार ज़्यादा हो तो गुनगुने पानी की पट्टी लगाएं। फिट्स आए यानी कि बेहोशी छाए तो बच्चे के दोनों ओर करवट दिलाकर रखें। रास्ते में गिरने से बचने के लिए सिर को सपोर्ट दें। अस्पताल में बताए गए नियमों का पालन करें। किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई उपचार बीच में न रोकें।
0: अच्छा भैया, बीमारी तो एक तरफ है, पर गांव समाज की इस बीमारी को रोकने में भूमिका क्या है? हम AES या JEE को रोकने में क्या क्या कर सकते हैं?
1: बहुत कुछ कर सकते हैं आरजे उमा। AES या JEE के खिलाफ असली लड़ाई गांव में ही जीता जा सकता है। JEE वैक्सीन, 1 से 15 साल के बच्चों को यह टीका जरूर लगे। यह टीका मुफ्त उपलब्ध है और प्रभावशाली भी है। दूसरा है कि मच्छरों को पनपने से रोकें, घर आंगन में पानी न जमने दें, सुअरों के बाड़े को घर से दूर रखें, नालियों की सफाई, पानी की टंकी को ढककर रखना और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग। इसके साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखें, खेलते समय पूरा कपड़ा पहनाएं, शरीर खुला न रखें और सुबह शाम बच्चे बाहर न जाएं। पानी और खाना हमेशा साफ रखें। स्वच्छ पानी AES के मामलों में बड़ा कारण है। उबला पानी दें, बासी खाना न खिलाएं और लीची खाली पेट न दें। लक्षण दिखते ही बेझिझक अस्पताल जाएं। समय पर इलाज मतलब कि जीवन बचाना।
0: मतलब समय पर अस्पताल जाना जरूरी है। अच्छा भैया, हमारे एक श्रोता हैं रामवरन, पिछले साल उनके पड़ोसी का एक बच्चा बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले कि 2 दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाए, पर जब अस्पताल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी।
1: हाँ आरजे उमा, AES में 24 घंटे ही निर्णायक होते हैं। लोग समझते देर कर देते हैं और बीमारी अपना काम शुरू कर देती है। भाइयों बहनों, AES JEE कोई आम बुखार नहीं, यह ऐसी बीमारी है जो हमें सोचने का समय नहीं देती। हम जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी जान बचेगी।
0: अच्छा सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि AES या JEE कितनी गंभीर बीमारी है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है?
1: बिल्कुल आरजे उमा, एक घटना आपको सुनाता हूँ जो आज भी मेरे दिल में बस गई है। यह कहानी है हमारे ही पास के एक गांव की, जहाँ सुबह का समय था, बच्चे स्कूल जा रहे थे और औरतें नए ओवरहेडेड टैंक से पानी भर रही थी और गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसी समय हमारे इलाके की आशा बहन ममता देवी अपने दिन की तैयारी कर रही थी। अचानक उनका फोन बजा, दीदी मेरा बच्चा बहुत तेज बुखार में है। मैंने 108 पर फोन कर दिया। एक घबराई हुई माँ की आवाज थी। ममता ने तुरंत कहा, बहुत सही किया बहन, बस मैं अभी जा रही हूँ, हिम्मत रखिए। वह अपना स्वास्थ्य बैग उठाकर तुरंत उस घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने मुझसे कहा था, सेहतिया जी यही तो हमारा काम है, जब गाँव को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब पहुँचना। जब ममता ने दरवाज़ा खटखटाया तो दस्तक सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, वो परिवार के लिए उम्मीद थी, भरोसा था, जीवन रक्षक कदम था। देखिए आरजे उमा, कुछ साल पहले इसी इलाके में AES और JE ने बच्चों की जान ले ली थी। लोग डरते थे, समझ नहीं पाते थे कि यह बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है या कोई श्राप है, अभिशाप है, कोई जादू टोना है। बहुत से माता पिता झाड़ फूक में विश्वास करते थे और जब तक अस्पताल पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। ममता जैसी आशा बहनों सरकारी प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें सिखाया गया कैसे शुरुआती लक्षण पहचाने, कैसे परिवारों को समझाएं और कैसे ई कवच पोर्टल से हर केस को ट्रैक करें।
0: ई कवच ये कैसे मदद करता है भैया?
1: बहुत जबरदस्त टूल है ई कवच पोर्टल। CHO और आशा को यह सुविधा देता है कि कौन बच्चा किस बीमारी के जोखिम में है, किस परिवार को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हों, पोषण NCD से संबंधित जानकारी क्या है, किसे कब रेफरल की जरूरत है। यह ऐप उन्हें कदम कदम पर मार्गदर्शन देता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे।
0: वाह, ये तो अच्छी बात है। और ममता बहन ने इन सब का इस्तेमाल कैसे किया?
1: अरे आरजी उमा, ममता तो इस काम में मिसाल बन गई। वो रोज घर जाती, उनके बैग में पर्चे, स्टिकर, टीकाकरण रिकॉर्ड सब रहता। शुरुआत में परिवार टीके से डरते थे, इंजेक्शन से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ऐसा उनका डर था। पर ममता ने कमाल कर दिया, उन्होंने अपने ही बच्चों का टीकाकरण गांव वालों के सामने करवाया और बोली, देखिए मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आप भी डरिए मत। और धीरे धीरे लोगों का डर भरोसे में बदल गया।
0: अच्छा सेहतिया भैया, आपने बताया कि JE बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका बचाव कैसे हो सकता है, क्या इसका भी कोई टीका है?
1: हाँ बिल्कुल आरजे उमा, JE से बचाव का सबसे अच्छा और मजबूत तरीका टीकाकरण ही है। सरकार ने इस पर बहुत साफ गाइडलाइन बनाई है। हमारे देश में बच्चों को JE के 2 टीके जरूर लगाते हैं।
0: 2 टीके कब कब?
1: पहला टीका 9 महीने की उम्र में, ठीक उसी समय जब बच्चों को खसरा का टीका लगता है। दूसरा टीका 16 से 24 महीने के बीच, जब बच्चे को DPT बूस्टर लगता है। अप्रैल 2013 से ये दोनों डोज देश के 334 एंडेमिक जिले में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है।
0: अच्छा भैया, बच्चों के लिए तो टीका है और बड़े लोगों के लिए भी टीका होता है क्या?
1: हाँ, जिन राज्यों में बड़ों में भी JE के केस देखे गए हैं वहाँ एडल्ट वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। 3 राज्यों जिनमें असम के 9 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले और पश्चिम बंगाल के 26 जिले में 15 साल से ऊपर के लोगों को JE का टीका लगाया जाता है। इसके लिए एक खास वैक्सीन इस्तेमाल होती है, JenVac, जो कि वयस्कों के लिए बनाई गई है।
0: मतलब बच्चे हो या बड़े, समय पर अगर टीका लग जाए तो JE से बचाव काफी हद तक संभव है।
1: बिल्कुल आरजे उमा, आपने सही कहा। इसलिए हम आशा, ANM और CHO लगातार यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा और हर जरूरतमंद वयस्क JE का टीका लगवाए।
0: अच्छा भैया, आपको क्या लगता है हमारी रेडियो जैसी कोशिशें कितना फर्क डालती है?
1: बहुत बड़ा फर्क। जब रेडियो से सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचती है तो लोग जागरूक होते हैं, टीकाकरण बढ़ता है, मच्छर रोकथाम पर जोर बढ़ता है, अस्पताल आने में हिचक खत्म होती है। इस तरह सेहत सही और लाभ कई जैसे कार्यक्रम व्यवहार बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: तो दोस्तों, आज हमें AES या JE का पूरा ज्ञान मिला, यानी कि इस बारे में हमने पूरी जानकारी ली, इससे कैसे बचना है, इसे कैसे पहचानना है, क्या करना है और कैसे अपने गांव को सुरक्षित रखना है।
1: हम लगातार यही कह रहे हैं, आदत बदलें, सेहत सुधरेगी, साफ सफाई रखें, टीका लगवाएं और जागरूक रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दोस्तों ध्यान रखें, जानकारी ही बचाव है और सही समय पर डॉक्टर ही असली उद्धारक। तो अभी के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेहत से जुड़े विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने फिर से, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को
0: अपने
1: और अपने अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दे, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दे, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है, ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: прыщі. आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। तो श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हम आपसे कुछ उपयोगी बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूबी रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इनसे आज हम बात करने वाले हैं। हमारा जो आज विशेष विषय है वो है फल वृक्षों को लगाने की विधि। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और मैम, जब बात आ रही है हमारे विषय की, तो आज जैसे कि हमने बताया कि फल वृक्षों को लगाने की विधि, और कहीं ना कहीं इसे बागवानी से भी जोड़ा जाता है। कई लोगों को बागवानी करने का शौक भी होता है, कई लोग चाहते हैं कि उनके बागों में फल के वृक्ष दिखें, पौधे दिखें, कोई चाहते हैं कि फूलों के पौधे दिखें। तो लेकिन यहाँ पर फल वृक्षों की बात हो रही है मैम, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए बाग की स्थापना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: सबसे पहले बता दूं किसान भाइयों कि फल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और कम लागत में आप ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फल वृक्ष जो है आपको लगाने के आठ साल बाद आपको फल देंगे, और इसलिए ये चूंकि लंबे समय का ये कार्यक्रम होता है, लंबे समय के बाद आपको इसका फायदा पता चलेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप इसको लगाने के पहले पूरी तरह से सावधानी बरतें, और लगाने के नए बगीचे लगाने के पहले आप सारी बातों की जानकारी रखें, अन्यथा आपको 6 साल 7 साल के बाद पछताना पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से नहीं लगाया, इसलिए हमारा उत्पादन सही ढंग से नहीं मिल पाया। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप नए बगीचे लगाने के पहले, या आप एक दो फल के भी पेड़ अगर लगाना चाहते हैं अपनी गृह वाटिका में आगे या पीछे, तो भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। सही जानकारी होनी चाहिए कि पौधे हम कैसे लगाएं, किन चीज़ों का चुनाव करें, किन किस्मों का चुनाव करें, छोटी जगह है तो उनमें किन फल वृक्षों का चुनाव करें, अगर बड़े बाग लगाने हैं तो हमारा एरिया में, हमारे क्षेत्र में किन फलों की ज़्यादा डिमांड है उसका चुनाव करें, ना कि हमारे यहाँ डिमांड के अनुकूल नहीं है उसका चुनाव करने पर आपको आगे समय में मुश्किल हो सकती है उसको बेचने में, या उसको सही मुनाफा आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए इन सभी बातों की जानकारी रखनी बहुत ही आवश्यक है कि आप किन तरह के वृक्षों का चुनाव करें, कैसे उसको लगाएं, और किन जगहों में अपने नए बगीचे की स्थापना करें। अगर आपको व्यावसायिक खेती करनी है उसकी, तो आप ऐसे जगह में लगाएं कि वो सड़क के किनारे हो, और ताकि आपके जो भी उत्पाद प्राप्त हो 7 साल 8 साल 10 साल के बाद, वो आसानी से आप अपने बाजार में आप ले जा सकें। दूसरी बात, सबसे पहले कि किस तरह की भूमि का चुनाव करें आपको अगर नए बगीचे लगाने हैं, तो उसमें आपको ऐसी भूमि का चुनाव करना है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा ना हो, लगभग समतल हो, 2 से 3% ढलान तक आप ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ढलान जो है वो भूमि नहीं लेनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा हो, और इसमें लेबर फोर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, श्रमिक की उपलब्धता कभी कभी ज़्यादा होती है, तो आप उसको ये भी देखना पड़ेगा कि अब श्रमिक की उपलब्धता आपके पास है या नहीं है, और सड़क के किनारे हो, सड़क से जितना पास हो उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सड़क के किनारे की ज़मीन भी बहुत महंगी होती है, उससे थोड़े अंदर में भी आप ले सकते हैं, लेकिन
0: मतलब बाजार से उनके डिस्टेंस कम होनी चाहिए,
1: मतलब कम से कम हो, लेकिन वो आर्थिक रूप से आपको नुकसान ना दे। दूसरी बात, आप जहाँ भी बगीचे लगाएं आपके आवागमन का साधन होना चाहिए। इन सब बातों को देख करके आपको बगीचे का स्थल का चुनाव करना है।
0: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि जो भूमि की चयन की बात कही मैम ने, जैसे कि समतल होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नीचा आप जहाँ पे आप बागवानी करना चाहते हैं वहाँ की भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही मैम ने बताया कि आपका जो वृक्ष लगाने का जो स्थान है वो जहाँ पर आप बिक्री करते हैं फलों की, उससे नज़दीक होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में भी पैसे ना लगें और आसानी से आप आ जा सकें और अपने फलों की जो बिक्री है वो कर सकें। इसके बाद मैम, जब बात आती है यहाँ पर ध्यान किन किन बातों को ध्यान रखने की, बात तो आपने कह दिया उसके बारे में, और इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि फल वृक्षों को, पौधे जो हम लगाते हैं फल वृक्षों के, उसके किस्मों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए।
1: सबसे पहले मैं बता दूं कि किस्मों का चुनाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत सभी किसी भी फल वृक्ष के सभी किस्में सभी क्षेत्र के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्षेत्र में किन किस्मों का ज्यादा डिमांड है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में, जैसे बिहार में आम का ही अगर फसल लेते हैं, तो इसमें मालदा, जरदालू और गुलाब खास, कृष्ण भोग, बम्बई, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा, आम्रपाली, इन इन सब किस्मों की ज़्यादा डिमांड है, तो हम हमें इन किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए। साथ ही अगर आप गृह वाटिका में लगाना चाहते हैं तो और तो वैसे वृक्षों का, वैसे फल वृक्षों का चुनाव ना करें जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि आपके पास फिर ज़मीन कम होती है गृह वाटिका में। अगर एक ही आम के पौधे बहुत फैल जाएंगे तो बाकी चीज़ जो है आप नहीं लगा सकते। इसलिए उन जगहों में जहाँ की गृह वाटिका में आप लगाना चाहते हैं या एक दो पौधे लगाना चाहते हैं, अगर आम की लगाना चाहते हैं तो उसमें आम्रपाली जो कि कम बढ़ती है, उसका फैलाव भी कम होता है, उन किस्मों का चुनाव करें। इसके अलावा वैसे फल वृक्ष जैसे केला, पपीता, इन सब चीजों का आप गृह वाटिका में लगा सकते हैं। और बगीचे भी अगर लगाना चाहें तो केला, पपीता में भी किस्मों का चुनाव आपको करना पड़ेगा और उन किस्मों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी कि हमारे क्षेत्र में कौन सा, हमारे क्षेत्र का जो जलवायु है किस किस्मों के लिए अनुकूल है, इसलिए इन बात की बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आप, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सेब बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आप, आपका क्षेत्र का जो जलवायु है वो सेब के अनुकूल नहीं है, इसलिए वैसे पौधों का चुनाव ना करें ताकि आपको फल ही ना दे। इसलिए अपने जलवायु के अनुकूल, अपने मिट्टी के अनुकूल और अपने स्थान विशेष, जगह के कितना भी भूमि क्षेत्र है उसके अनुकूल तथा हमारे क्षेत्र में जिनका डिमांड है उसके अनुकूल आप फल वृक्षों का और उनके किस्मों का चुनाव करें, ये बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा 5 से 7 साल के बाद आपको पता चलेगा कि आपने 6 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर चुकी और आप नुकसान में रहेंगे।
0: तो किसान भाइयों, मैम ने जैसे बताया कि आप अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और फल के मांगों को देखते हुए फल के पौधे लगाएं और 6-7 साल तक आप अगर अपनी मेहनत को यूं ही गंवाना नहीं चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो मैम, जब बात होती है नए पौधे लगाने की तो उनकी विधि भी बहुत ज़रूरी होती है जाना, क्योंकि जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसकी विधि जानना ज़रूरी होता है। अगर विधि जान लेते हैं तो हम आराम से बनाते हैं और खाना भी स्वादिष्ट बनता है। तो वैसे ही पौधे लगाने की विधि हम जानना चाहते हैं ताकि हम 6-7 साल बाद पछताएं नहीं और हमें फल मीठे मीठे मिले।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, पौधे लगाने की वैज्ञानिक विधि अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे किसान भाई फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मैडम, पौधा मैंने लाया, बहुत अच्छे से पौधे थे, लगाया और 2 महीने के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद मर गया, या फिर 1 साल के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आया, वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है जब पौधे पे खर्च कर देते हैं, वो अपनी ज़मीन की तैयारी करने के बाद उसको लगाते हैं और उनको पता चलता है कि जो पौधे सही ढंग से नहीं लग पा रहे हैं। तो मैं आप बताना चाहूँगी कि पौधे, जैसे कि आप फल वृक्ष, हमारे जलवायु की बात करूँ तो फल वृक्ष लगाने का समय हमारे यहाँ मध्य जून से लेकर अगस्त सितम्बर महीने तक लगा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: तो लगाने के पहले 1.5 से 2 महीने पहले इसकी तैयारी आपको शुरू करनी पड़ेगी। अब जो भी मान लीजिए कि आप आम का पौधा लगा रहे हैं तो उसकी एक नियमित नियत दूरी रहती है, कितनी दूरी पर आप पौधों को लगाएं। तो आप आम में जो ज़्यादा बढ़ने वाले किस्में हैं उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, जैसे कि मालदा हुआ, बम्बई हुआ, उसको 8 मीटर की दूरी पर लगाएं, और जो आप कम बढ़ने वाली किस्में हैं उसको 4 से 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं, जैसे आम्रपाली है, मल्लिका है, उसे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, उसको 5 मीटर की दूरी पर आप लगा सकते हैं। और लगाने के पहले आपको गड्ढा करना है, जो गड्ढे की तैयारी करनी है, ज़मीन की तैयारी जो करनी है आपको अप्रैल माह में शुरू कर देनी है। और अप्रैल माह में आप 1-3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा गड्ढा करें, या 8 मीटर की दूरी पर, या फिर आप 5 मीटर की दूरी पर करें, यह निर्भर करता है आप किन किस्मों को चुनाव कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट गहरा गड्ढा करें और जो गड्ढे की मिट्टी है उसको बाहर निकाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दें, गड्ढे को खुला छोड़ें। अप्रैल माह में धूप बहुत तीक्ष्ण होती है और जिसके कारण उस तीक्ष्ण धूप से जो गड्ढे के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो मर जाते हैं, और बाहर जो आपने मिट्टी निकाली है अगर उसमें भी कीड़ों के अंडे रहते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरह से वो कड़ी धूप में आप 3 से 4 सप्ताह उसको छोड़ दें, यूं ही खुला छोड़ दें। उसके बाद उस मिट्टी में आप, अगर आपको आम के पौधे लगाने हैं तो आप 30 से 35 केजी कंपोस्ट, 100 ग्राम फ्यूराडॉन 3 mg और 4 से 5 केजी आप नीम या अंडी की खल्ली को लगाएं और डालें, मिक्स करें उसमें, और उसको मिक्स करने के बाद जो है उसको गड्ढे में भर दें। गड्ढे में भरने के बाद आप पानी से उसको अच्छी तरह से सिंचित करें गड्ढे को, ताकि वो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाए गड्ढे में, और जब पूरे अच्छी तरह से भींग जाए और बैठ जाए तो पुनः एक बार उसमें अच्छी तरह से सिंचित करें। जब दूसरी बार सिंचित करेंगे तो मिट्टी पूरी तरह से बैठ जाएगी, और उसके बाद ये ध्यान रहे कि मिट्टी की जो उसमें गड्ढे जो है उसके 3 से 4 इंच ऊंची तक वो मिट्टी रहे। उसके जब पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर उसके बाद जब दूसरी सिंचाई कर देंगे तब फिर क्या है, बीच में गड्ढा करके आप पौधे उसमें लगाएं और हल्के से दबा दें। ध्यान रहे कि बीच वाला भाग थोड़ा ऊंचा रहे, क्योंकि उसके बाद जो बारिश होने वाली रहती है अगर ऊंचा नहीं रहेगा तो बारिश के समय में उसके जड़ के आसपास जल का जमाव होगा, जो कि नए पौधों के लिए नुकसानदेह होता है। तो आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। और मैं बता दूं, किसान भाइयों अधिकतर गलती क्या करते हैं, सबसे पहले वो पौधे खरीद के लेके जाते हैं, घर में रखते हैं, उसके बाद गड्ढा लगाया, खाद डाला, गोबर डाला, तुरंत पौधे लगा करके पानी डाल दिया, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जैसे ही आप तुरंत खल्ली डाल के खाद डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे उसमें से गर्मी उत्पन्न होता है, और तुरंत अगर पौधे आप लगाए हैं तो जड़ के जलने की समस्या हो रहती है। इसलिए किसान भाइयों आप 1 महीने अप्रैल के महीने में गड्ढे की खुदाई करें, 3-6 हफ्ते उसको छोड़ दें जैसा मैंने बताया, उसके बाद से आप पौधे लगाएं, पानी 2 बार पानी डाल करके, हालांकि उस समय तक बारिश शुरू हो जाती है तो अलग से सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बारिश में पूरे होने दें, अच्छे तरह से मिट्टी बांटने दें, और जैसा मैंने बताया उस तरह से आप पौधे को लगाएं, पौधा आपका कभी नहीं मरेगा, और इस तरह से पौधे के लगाने की विधि है।
0: तो मैम जैसे कि आपने कहा कि क्षेत्र मतलब हर किसानों को अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही पौधे का चयन करना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि हमारा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में किस तरह के उर्वरक देने चाहिए फल के पौधों को।
1: देखिए पहले क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बता दूँ, हमारा क्षेत्र जो है बिहार राज्य जो है उसमें आम, लीची, अमरूद, केला, पपीता, शरीफा, इन सब चीज़ों की खेती आराम से हो सकती है। अगर आपका कुछ हद तक कुछ हमारे कुछ एरिया में जैसे सीमांचल एरिया में जहाँ की आर्द्रता ज़्यादा रहती है वहाँ नारियल की भी खेती हो सकती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नारियल की खेती हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। इन सब की खेती आप चाहेंगे सेब, खुबानी, आड़ू, ये सब लगाना, तो इन सब की खेती यहाँ संभव नहीं है क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं है। अब रही खाद उर्वरक की बात, मैंने बताया कि जब पौधे आप लगा रहे हैं तो लगाने समय में आप कंपोस्ट डाले हैं, खल्ली डाला है, और उसके साथ जो है ज़्यादा नहीं लगाते, इसमें 250 ग्राम ही आप DAP जो डाई अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं उसको डालें, और फ्यूराडोन मैंने बताया कि 100 ग्राम डालें, जो कि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं वो थोड़ा सा मार देता है, वो ग्रब जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो इतना डालें, और अगले 6 महीने तक आप उसमें कोई खाद ना डालें।
0: अच्छा,
1: जब आप देखने लगे, मैं आम के को मुख्यतः बता रही हूँ, हालांकि सभी फल वृक्षों के जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है, जैसे पपीता के अलग होंगे, अमरूद के अलग होंगे, आम के अलग होंगे, लीची और आम के लगभग समान होते हैं क्योंकि उनका मौसमी के अलग होंगे, नींबू के अलग होंगे, सभी पौधों के जो है वो उर्वरक की मात्रा अलग अलग होती है। मैं आम और लीची को के बारे में भी बताऊंगी, अपने लगाने के 6 महीने के बाद आपको कोई भी उर्वरक नहीं देना है। जब 6 महीने के बाद जैसे आपने जून जुलाई में लगाया, आपको ठंडी के सीजन तक आपको कोई उर्वरक नहीं देना है, लेकिन सिंचाई आपको नियमित रूप से करनी है। जब आप फिर फरवरी का महीना आता है तब उसमें नए कोपल फिर से आने शुरू होते हैं, और तब आपको लगता है कि जड़ इसके अच्छी तरह से जम चुके हैं, फिर आप उसमें जो है वो पौधे उसमें जो है खाद और उर्वरक देना शुरू करें। 1 साल के पौधे में मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बताऊंगी, क्योंकि इस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए आप बहुत सारे उर्वरक यूज कर सकते हैं, और सभी उर्वरक में इनकी मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए मैं किसी एक उर्वरक का नाम नहीं लूंगी, मैं उनके तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उनके मात्रा के बारे में बताऊंगी। तो पहले साल में एक पौधे में आपको लगभग 6 आम के पौधे में लगभग 60 से 70 ग्राम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और 30 से 40 ग्राम फास्फोरस की ज़रूरत होती है। उसी तरह से 40 से 50 ग्राम या 40 से 60 ग्राम प्रति वर्ष 1 साल के पौधे में पोटास की जरूरत होती है, और ये मात्रा जो है हम हर साल बढ़ाते जाते हैं, पहला साल इतना, दूसरे साल उसका दुगुना, तीसरे साल उस तिगुना, इसी तरह से 10 साल तक इसकी मात्रा बढ़ाते हैं, और 10वें साल जो हमारी मात्रा होती है नाइट्रोजन की मात्रा 700 से 800 ग्राम, फास्फोरस की मात्रा 400 से 600 ग्राम, और पोटास की मात्रा जो है वो 600 से 800 ग्राम प्रति पौधे होती है। और ये निर्भर करता है, अगर आपकी मिट्टी जो है वो न्यूट्रिशन में कम है तो थोड़ा सा आप हायर साइड जो ज़्यादा अधिकतम मात्रा है वो देंगे, अगर आपके यहाँ जो है नाइट्रोजन पोटाश की मात्रा मिट्टी में सही है तो आप उसको कम वाली मात्रा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उसका उर्वरक का उपयोग करेंगे, और ये उर्वरक आप दो भागों में बांट के दें, 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, और 1/4 भाग आप अप्रैल के महीने में दें, तब आपका फलन भी अच्छा होगा और पौधे का बढ़वार भी अच्छा होगा।
0: कहने का मतलब है कि जब जैसे हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो हमने कम खाना देते हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता और बढ़ती जाती है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें भूख भी लगती है, खाना भी चाहिए। उसी प्रकार पौधों को भी आप जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनकी भी क्षमता या फिर उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, आप उसी तरीके से उन्हें उर्वरक और खाद देते जाएँ। और इसके बाद मैम, बागवानी जब हम करते हैं तो किस प्रकार के पौधों का चुनाव हमें करना चाहिए?
1: देखिए, पौधे लगाने की विधि तो मैंने बताई आपको, उसको उर्वरक में क्या, लेकिन पौधे किस तरह का चुनाव करें पौधे लगाने के लिए, मैं आम और लीची के संदर्भ में ही अभी बात करूंगी क्योंकि सारी चीजों को एक साथ समाहित करना थोड़ा मुश्किल होता है।
0: जी जी।
1: तो मैं आम और लीची को ही संदर्भ में बात करना चाहूंगी। जैसे आम के पौधे आप लेने जाते हैं तो वो 3 फीट से छोटा नहीं होना चाहिए, 3-4 फीट का पौधा होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल पुराना होना चाहिए, और 3 साल से ज़्यादा का भी नहीं होना चाहिए, वरना वो पौधे जो हैं वो फील्ड में जाकर के लगने में परेशानी होती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए हों, स्वस्थ होना चाहिए, जहाँ तक हो वो सीधा होना चाहिए, उसकी टहनियाँ जो है सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और जिन किस्मों का आपको आप लेना चाहते हैं पौधा उसी किस्म का होना चाहिए। इसके लिए मैं किसान भाई आपको ये कहूँगी, आपसे अनुरोध करूँगी कि आप हमेशा जो है रजिस्टर्ड नर्सरी या सरकारी नर्सरी से ही पौधे लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने आम्रपाली ले गया और 7 साल के बाद पता चला कि उसमें जो है वो दूसरे किस्म के फल आ रहे हैं। तो किस्मों की सुनिश्चित करने के लिए आप रजिस्टर्ड नर्सरी से ही पौधे लें, स्वस्थ पौधे लें, सही उम्र के पौधे लें, और तभी आपका जो है वो बगीचा में पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और
0: फल अच्छे
1: होंगे और आपके मनचाहे किस्म भी मिल पाएंगे।
0: तो बहुत अच्छी बात कही किसान भाइयों, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और इसके बाद मैम, जस्ट अब हमने बागवानी कर ली, पौधे लगा लिए हैं, तो इसका रख रखाव देखभाल कैसे किया जाए?
1: देखिए, देखभाल में आपको सबसे पहले तो पोषण की है, फिर सिंचाई आती है। हमारे यहाँ जो है मध्य जून से लेकर के लगभग अगस्त सितंबर तक बारिश होती है, उसमें आपको अलग से सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगस्त के बाद अगर उस फल वृक्ष में जिसमें कि फल नहीं लगने शुरू हुए हैं उसमें आप नियमित रूप से पानी दें, सप्ताह में आप जरूर पानी दें, अगर ठंडे के समय में आप 15 दिन के अंतराल पर भी पानी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में आप हर सप्ताह में उसमें नियमित रूप से पानी दें ताकि उसके उसको बढ़वार बनी रहे। जब आपका वृक्ष फलन में आ जाता है, यानी कि 4 से 5 साल के बाद वो फलन में आ जाता है लगभग, उस समय आपको आम और लीची के पौधे में नवंबर दिसंबर के महीने में पानी ना दें। अगर उस समय आप पोषण और पानी देंगे तो उसमें फल बनने की प्रक्रिया बंद होकर के और पत्तियां निकलनी आरंभ हो जाएंगी और वो फूल नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, इस बात का बहुत ही ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर के महीने में आम और लीची के पौधों में सिंचाई ना करें, पोषण ना दें, इसका बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारे कीट व्याधि भी लगते हैं, तो आप नियमित खेत उस बगीचे की सफाई रखें, टहनियाँ जो इधर उधर बिखरी रहती हैं उसको काटें, बहुत ज़्यादा घने बगीचे ना होने दें, और कीट व्याधि का नियंत्रण 100 समय करें ताकि आपको ज़्यादा फैलने ना पाए, ज़्यादा आपको नुकसान ना हो।
0: तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी बात कही मैम ने और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर आप फल के वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको खास ध्यान रखना चाहिए इनके बारे में मैम कहा, साथ ही किस्मों के बारे में किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए पौधों के किस्मों का उनके बारे में मैम ने कहा, नए पौधे लगाने की विधि के बारे में कहा। इसके बाद हमने जाना कि बागवानी के लिए पौधों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए और इसके उपरांत देख रेख कैसी होनी चाहिए। तो मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद आपको भी
0: और आप सभी को। मैं किसान भाइयों आशा करती हूँ आप सभी से कि मैम के दिए गए सुझावों को आप अपनाएंगे और अपनी बागवानी को अच्छे तरीके से करेंगे और एक सफल किसान बनेंगे, साथ ही एक अच्छा फल आप बाजार में बिक्री के लिए ले जाएं और हमें भी खिलाएं। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीजों की जरूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की जरूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और खास तौर से महिलाओं को जरूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है, और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है पदार्थ है उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जैसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और खास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है, और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफी ज्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा, इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुंझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है, तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद हैं वो आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही लें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही, इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप के आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जांच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जाँच ज़रूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे ज़रूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
3: नमस्ते क्लास। टीवी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फायदे हैं। मैम
5: थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है। तो आम फलों का राजा ये काफी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 ग्राम जो है उसमें प्रति 100 ग्राम में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफी ज्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
1: अच्छा।
5: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसके जो गिरी होता है उसके अंदर, गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है, उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक कि चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसको हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है। इसमें चूंकि विटामिन मिनरल्स पाया जाता है तो ऑटोमेटिक है, और ये एनर्जी रिच फूड है, तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है, और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है। शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है। नींद आने की किन्हीं को

0: बहुत फायदा है। यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है और उसको हमें सेवन अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?
0: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2-3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहनी वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10-15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं, लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, खत्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी खराब होने लगता है, 2-3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ चीज तो ऐसे है कि 1-2 दिन में ही हमारा खराब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि जो चीज की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं, वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है। दूसरा कि यदि हम कोई जो किसी चीज को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है, तो जैसे कि हम आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है,
1: खराब हो
0: जाता है। यदि उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हम अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा।
0: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं, और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए, इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इससे। मैम, अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
0: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियाँ बनाती हैं, जिसपे हम लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही है, तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में सुखा करके बनाती हैं, लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी, आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है, और दिल्ली जैसे शहर में पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है, मतलब इसका काफी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 liter पानी, 80 gram नमक, 20 gram काली मिर्च

0: और 20 ग्राम साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। तो उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश इस को हम लोग बोतल में भरते हैं, उसी तरह बोतल में भर देते हैं और इसमें KMS पोटासियम मेटाबाइसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 लीटर है तो उसमें 3 ग्राम के अंदाज से उसमें के दर से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉफ फल भी ले सकते हैं, जो भी आप पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उन फलों को आप अच्छे से धो कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आपका पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसके बाद उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गूदा को अलग कर लेते हैं, रेसा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं। उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गूदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गूदा हुआ है उस गूदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं। और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आँच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसके बाद प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम 4 ग्राम चूँकि कच्चे आम का बना रहे हैं इसलिए 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 ग्राम साइट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका कुछ हटा करके उसके गूदे को निकाल लेना है, गूदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है। इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं, ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में से गर्म करके गूदा को नरम कर लेते हैं। अब गूदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी तरह यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गूदा लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं। और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में, साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2-3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेट कर खौलते पानी में 5-10 मिनट तक डुबोएं। बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उससे थोड़ा छेद कर दीजिए और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5-2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए। उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं, फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य पोषणीय सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और श्रोताओं, आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रिन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई गुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करे जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाए। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हो या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बना कर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बना कर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10-2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियां हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता,
इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है। वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है

0: ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जाकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचे खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, खास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आम तौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए, आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आपको ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2-3 बजे सोने वाले प्राणी हैं। इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज़ करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे। फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है, अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। ये है 90.8 MHz और आप सुन रहे हैं FM ग्रीन पर। आपकी होस्ट एंड दोस्त RJ अनु को स्वागत है आप सभी का उन्नत कृषि कार्यक्रम में। एक खास विषय एक बार फिर उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे एरोबिक धान की खेती के बारे में। मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती आप कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर। तो इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आपको पूरी जानकारी मिलेगी इनसे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानते हैं कि एरोबिक धान की खेती ये तकनीक क्या है और परंपरागत धान की खेती से ये कैसे अलग है।
3: धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एरोबिक धान, मौसम अनुकूल एरोबिक धान की खेती के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धान बिहार में पैदा की जाने वाली खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से धान की अच्छी फसल लेने वाले किसानों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिहार में धान की खेती बड़े पैमाने पर 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जितनी चावल की खपत हुई थी उसकी तुलना में 2035 में 25% ज़्यादा चावल की जरूरत होगी, जो बदलते हुए पर्यावरणीय परिवेश में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को दूर करने के लिए हमारे किसान बंधुओं का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरोबिक धान की खेती, पानी उपलब्ध होने की परिस्थिति में धान उगाने की एक आधुनिक तकनीक है। यह कम पानी में भी अच्छी हम उपज ले सकेंगे। अनुसंधान परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि एरोबिक धान की जल उत्पादकता जो प्रचलित परंपरागत विधि से हम लोग जो धान उगाते हैं उसकी तुलना में अधिक होती है। एरोबिक विधि से धान उगाने के लिए अधिक पैदावार देने वाली एरोबिक धान की संस्तुत अधिक उपजशील प्रजाति को सीड ड्रिल या देसी हल से सीधे खेत से बुआई करते हैं तथा गेहूं के भांति धान को उगाया जाता है। साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहते हैं। एरोबिक विधि से धान की खेती से बुआई में बुआई के समय जो पानी बहुत कम लगता है, जैसे 67% कम पानी लगती है, और जो मजदूर जो धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगती है उससे 90% कम मजदूर इसमें लगते हैं, और 30% तेल की बचत होती है तथा 60-70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, जबकि उत्पादन लगभग समान धान जैसा होता है।
0: तो इस तरीके से ये अलग है। और डॉक्टर साहब, धान इस एरोबिक धान की खेती से क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को, वो भी बता दें।
3: जैसे प्रारंभिक प्रचलित जो हमारे धान किसान भाई खेती करते हैं वो पानी भरी एवं वायु संचारित दशा में धान की खेती करते हैं। उसके सापेक्ष में जो वायु संचारित एरोबिक धान की खेती से बहुत सारे लाभ हैं। इस पद्धति से धान की खेती में हम लोग सीधी बुआई करते हैं तथा खेत में नमी बनाई रखी जाती है। जैसा लेकिन जैसे हम लोग जो परंपरागत हम लोग खेती करते हैं उसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखी जाती है, इसमें 5-6 सेंटीमीटर पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक नमी केवल खेत में नमी बनाई रखी जाती है और खेत में लगातार पानी भरने रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि परंपरागत में नर्सरी लगानी पड़ती है तथा रोपाई की आवश्यकता होती है, एरोबिक धान में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग इसमें सीधी बुआई करते हैं। इसमें हम लोग सीड ड्रिल के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं जिसके कारण बीज की कम मात्रा लगती है और जो लेबर जो परंपरागत में ज़्यादा लगता है इसमें बहुत 50% से ज़्यादा इसमें हम लोग को लेबर नहीं लगता है और सिंचाई जल 60% सिंचाई जल की बचत होती है तथा पौधा उर्वरक उपयोग क्षमता में वृद्धि करता है और कीट बीमारियों के प्रकोप में भी कमी आती है। एरोबिक धान लगाने से पर्यावरण में हानि पहुंचाने वाले मीथेन गैस के उत्सर्जन में 80-85% कमी आती है। इसमें मजबूत जड़ तंत्र विकास होने के कारण फसल में गिरावट नहीं होती है और ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये भूमि की भौतिक दशा में भी सुधार लाता है।
0: तो ये तो बातें हो गई हैं हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ मिल सकता है अगर एरोबिक धान की खेती कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्रियाओं के बारे में और साथ ही प्रभेद के बारे में। तो डॉक्टर साहब, एरोबिक धान की खेती में प्रयुक्त होने वाले प्रभेद और स्वास्थ्य क्रियाओं के बारे में बताएं।
3: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के संयुक्त रूप से एरोबिक धान की खेती तकनीक रूप से विकसित की गई है और एरोबिक धान की खेती ऐसे किस्म करीब करीब उतनी ही उपज देती है जितनी समान तरफ से ज़्यादातर पैदावार देने वाली धान की किस्में देती हैं। तकनीकी तौर पर यह एरोबिक राइक कल्टीवेशन कहलाता है। इसमें स्थिर पानी की जरूरत नहीं होती है। यह एपो नाम के ब्राज़ील में एरोबिक राइस की दुनिया में सबसे अच्छी एरोबिक राइस माना जाता है। एपो को भारतीय धान के साथ क्रॉस ब्रीड करवाकर ऐसी तैयार किस्में की गई है जो भारतीय कृषि की परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। इन किस्मों में 40% कम प्रतिशत पानी का इस्तेमाल होता है तथा इसका उपज 4.5 टन प्रति हेक्टेयर को उपज देती है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो भी किस्में एरोबिक धान के लिए अनुशंसित है उसमें हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय से सबौर अर्जल है जिसकी परिपक्वता अवधि 120 से 125 दिनों की है। इसकी औसत उपज 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और दूसरी जो प्रभेद अनुशंसित है वह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक द्वारा विकसित की गई है, वह है सीआर धान 201 और सीआर धान 202। यह 110 से 15 दिनों की है और इसकी भी औसत उपज 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एरोबिक धान की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जो सीडलिंग होते हैं वो पूर्ण अंकुरण देते हैं और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और जो एरोबिक धान में सबसे बड़ा दिक्कत किसान भाई को आती है वो घास के और ये घास के प्रति प्रतिस्पर्धी होती है और इसका त्रिबायोमास का विकास होता है जिसके कारण पैदावार अच्छी मिलती है। सबसे पहले हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एरोबिक धान की खेती में कितनी बीज की मात्रा लगती है और उसको हम लोग कैसे बीज उपचार कर सकते हैं। बुआई से पहले स्वस्थ बीजों को छटनी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 10% नमक के घोल का प्रयोग करना चाहिए। नमक का घोल बनाने के लिए 2 किलोग्राम समान नमक 20 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 25 किलोग्राम बीज डालकर अच्छी तरह हिलाएं। इससे स्वस्थ भारी बीज नीचे बढ़ जाएगा और जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे। इस तरह साफ और स्वच्छ आटा हुआ बीज 20 किलोग्राम बीज वाले मशीन में 25 किलोग्राम मोटे दाने वाले पर्याप्त होते हैं। बीज उपचार के लिए 10 ग्राम बेबेस्टीन और 2.5 ग्राम जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 1 ग्राम एग्रीमाइसिन 10 लीटर पानी में घोल लें। अब 20 किलोग्राम जो छाटे हुए बीज या 25 मोटे दाने वाले 25 किलोग्राम यदि बीज हो उसको अच्छी तरह उसमें मिला लें और उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद हम लोग दूसरे सबसे बड़े बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन। इस कैसे करते हैं हम लोग एरोबिक धान की खेती में, तो अधिक उपज के लिए जैसे कि हम लोग समान जो परंपरागत धान की खेती के लिए 120 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास मात्रा की संस्तुति गई है। उसी तरह इसमें भी एरोबिक धान में भी 120 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर संस्तुति की गई है। उसके बाद एक तिहाई जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय डालना अति लाभकारी होता है और नाइट्रोजन की शेष दो तिहाई मात्रा को बराबर बराबर भागों में बांटकर फूल निकलते समय तथा पुष्पावस्था पर दे देनी चाहिए।
0: जी, तो इसके साथ ही हम और आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कीट व्याधियों के बारे में कि कौन कौन से कीट लग सकते हैं इस एरोबिक धान में और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं।
3: कीट प्रबंधन में हमारे किसान भाई जो मुख्यतः कीट लगते हैं वो लगते हैं पौध के भूरे काले हम सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। उनके शिशु और वयस्क दोनों ही पौधों के तने और को रख के रस को चूस कर फसल को हानि पहुँचाते हैं। फसल पर इस कीट की निगरानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फूद के तने पर रहते हैं और पत्ती पर नहीं दिखते हैं। इसकी निगरानी के लिए प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप का प्रयोग किया सकता है। आवश्यकता अनुसार इमिडाक्लोपीड दवा जो होती है वो 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोल कर पानी का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय यह ध्यान रखना है कि नोजल पौधे के तनों पर रखें। और दूसरे सबसे प्रमुख कीट है वह तना छेदक कीट है और तना छेदक की केवल सुइयां ही फसल को हानि पहुंचाती है तथा व्यस्क पतंगे फूलों को शहद आदि को निर्माण करते हैं। बाली आने से पहले इसके हानि लक्षणों को डेड हॉट तथा बाली आने के बाद सफ़ेद बाली के रूप में जाना जाता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद ट्राइकोकार जो आता है उसमें 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर उसके लार्वा रहते हैं, उसको हम लोग ट्राइकोकार का उपयोग कर सकते हैं या रासायनिक कीटनाशक में दानेदार कीटनाशक कार्बोफिरोन 3G या कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G का या फिप्रोनिल 0.3G का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा कीट गंधी बग है। यह कीट खेत में दुर्गंध फैलाता है अतः इसे गंधी कीट कहा जाता है। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही दुधिया अवस्था में दानों के रस को चूसकर खाली कर देते हैं। ऐसे दानों पर काला निशान बन जाता है। आवश्यकतानुसार किनॉल फॉस 25 cc 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। रोग प्रबंधन में ब्लास्ट एक प्रमुख रोग है। यह रोग फफूंद से फैलता है। फफूंद सभी भाग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर भूरे के रंग के रूप में दिखाई देता है। ट्राइसाइक्लोजोल जो दवा आती है उससे हम लोग को बीज उपचारित कर सकते हैं। उसके बाद यदि पत्तियां पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1000 या ट्राइसाइक्लोजोल 500 ग्राम को 500 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी पत्ती का जीवाणु झुलसा रोग है। यह बीमारी जीवाणुओं के द्वारा फैलाई जाती है। पौधों की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह बीमारी की कमी हो सकती है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग में शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगती है। इसमें सबसे पहला बीजोपचार सबसे अच्छा उपाय है। इसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2.5 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के घोल में बीज को 12 घंटे तक डुबोकर बीजोपचार करें और जिस खेत में बीमारी लगी हो उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। इससे बीमारी फैलने की जो आवश्यक आशंका है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ खेत को पानी, खेत में पानी नहीं रहने देना चाहिए। खेत में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए खेत में संबोधित जल निकास की व्यवस्था की जाए। बीमारी के नियंत्रण के लिए जो 74 ग्राम एग्रोमाइसिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस प्रकार हम लोग कटाई और मराई जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं तो बालियाँ निकलने में लगभग एक माह बाद सभी किस्में पक जाती हैं। कटाई के बाद 80% बालियाँ

0: 80% दाने भर जाएं, उसके बाद 20% उसमें नमी हो तो उस समय उपयुक्त होता है। मराई और सफाई के बाद धान को अच्छी तरह सुखा के भंडारण करना चाहिए। भंडारण के पूर्व दानों में 10% नमी तक सुखा देते हैं। उपज समस्त उपयुक्त संस्क्रियाओं को करके एरोबिक धान को अधिक उपजाऊ संस्कृत किस्मों को अपनाने से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई पा सकते हैं।
1: जी, तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर जो बताई गई हैं आपको एरोबिक धान की खेती के बारे में। और हमारे बीच थे डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और भी बातें होंगी, तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ काम की बातें। चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं उन बातों को शुरू। बच्चों से घर गुलजार होता है और बुजुर्ग होते हैं घर की छतरी छाया। दोनों को ही खास देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन हम बड़े बच्चे अक्सर ये समझ पाने में नाकामयाब रहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उन्हें भी खास देखभाल की जरूरत हो सकती है। और ऐसे में कई बार अनदेखी हमारे छतरी छाया को कमजोर कर देती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे घर के बुजुर्गों के लिए छोटी छोटी चीजों को याद रखना मुश्किल होता है, समय पर दवाई लेना, योग करना जैसे छोटे छोटे काम। और आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास भी कहाँ टाइम होता है कि वो इन बातों के लिए हर वक्त अपने बुजुर्गों के पास मौजूद रहें। तो ऐसे में आज के समय के साथ चलते हुए क्यों ना बुजुर्गों को थोड़ा सा स्मार्ट बनाया जाए। और अगर हमारे घर के बड़े स्मार्ट फोन को चला पाने में सक्षम नहीं है तो क्यों ना उनके लिए उनके मनोरंजन के संसाधन टीवी यानी कि टेलीविजन को स्मार्ट बना दिया जाए। जी हाँ, आजकल के जमाने में टेलीविजन आपका स्मार्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। कुछ जरूरी चीजें हम आपको बता देते हैं। अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी है तो पहले से ही आपके पास आपका असिस्टेंट तैयार है, बस कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत है। जैसे कि आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर दें, रिमोट पर लगे माइक्रोफोन बटन को दबाकर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। इससे बोलकर आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइमर सेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास नया स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या करें? तो फिर आप अपने पुराने टीवी में Amazon, फायर स्टिक, गूगल क्रोम कास्ट और ऐसी ही कई सारी स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं जिसके आप बॉक्स अपने घर ला सकते हैं और टीवी के HDMI पोर्ट में लगा सकते हैं। इसे आप वाईफाई से कनेक्ट कर लें और यही डिवाइस आपके टीवी को वॉइस कमांड समझने और रिमाइंडर एप्स चलाने में मदद करेगा। अगर आप इन सारे सेटिंग्स के झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप खास तौर से बुजुर्गों के लिए बना जुबली टीवी अपने घर ला सकते हैं। जुबली टीवी एक सेटअप बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो सीधे टीवी से जुड़कर केयर टेकर जैसा काम करता है। यानी कि आप अगर घर पर नहीं है तब भी आप अपने बड़ों की फिक्र कर सकते हैं। आप अपने बड़ों को छोटी छोटी चीजें याद दिला सकते हैं। आप अपने बड़ों से, आप अपने करीबी से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जुबली टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से। इसके साथ ही इसमें केयर टेकर फीचर भी होता है। इसके रिमोट में बड़े बटन होते हैं जो बुजुर्गों के लिए कंट्रोल करना आसान होता है। और आवाज से चलने वाले फीचर भी होते हैं। जुबली टीवी की स्क्रीन पर अक्षर भी बड़े बड़े दिखते हैं। आपको जुबली टीवी कहाँ मिलेगा? तो इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। स्मार्ट टीवी बहुत सारी चीजें कर सकता है, इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा। स्मार्ट टीवी आपको सुबह जगा सकता है। आपको दवाई कब लेनी है इसका आप टाइमर सेट कर दें, वो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपके दवाई का वक्त हो गया है। कई बार बुजुर्ग अपने बच्चों को फोन लगा पाने में मुश्किल का सामना करते हैं, ऐसे में वो बस बोलेंगे और उनका स्मार्ट टीवी उनके बच्चों से बात करा देगा। और हमारे बुजुर्ग ऐसी परेशानी में भी फंस जाते हैं जहां उन्हें इमरजेंसी सुविधा की जरूरत होती है और उनके आसपास कोई नहीं होता, तब केवल वो अपने वॉइस से टीवी को ये कमांड दे सकते हैं कि इमरजेंसी कॉल की जरूरत है और आपका टीवी यानी कि आपका असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल कर देता है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि टीवी के वॉइस असिस्टेंट या वीडियो कॉलिंग ऐप जैसे कि जूम और गूगल मीट में इमरजेंसी कॉन्टेक्ट सेव कर ले। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप अपनी बेटी, बेटे या फिर पड़ोसी का नाम सेव कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुसीबत में रिमोट के वॉइस बटन से इमरजेंसी कॉल बोलते ही लग जाएगा। जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ हमें स्मार्ट होने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को स्मार्ट करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो अपने बुजुर्गों को स्मार्ट बनाएं। अगर वो अकेले हैं तो उनके लिए उनका एक पर्सनल असिस्टेंट आप उनके साथ रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काम की लगी होगी। हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारी काम की बातें लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए।

0: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
1: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
0: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि, किसान भाइयों को आरजी अनु का प्यार भरा नमस्कार। आइए आज मैं लेकर चलती हूँ आपको धान में शीत ब्लाइट के प्रबंधन की ओर, और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर एपी भगत, प्राध्यापक पौधा रोग विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और डॉक्टर साहब, जब बात आती है रोगों की, और वो भी धान में, तो ये जो शीत ब्लाइट रोग है वो हमारे धान की फसलों के लिए एक प्रमुख रोग बनकर रह गया है। और ऐसे में हम सभी देख रहे हैं कि पहले के चार पाँच साल से धान की फसल में 60% तक गिरावट आई है। और ऐसे में किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का प्रबंधन करना एक चुनौती बन गया है। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीत ब्लाइट नाम क्यों पड़ा इस रोग का?
3: आप किसान भाई जानते होंगे कि आप जब धान लगाते हैं अपने उत्पादन के लिए अपने, तो क्या होता है कि आप जब फसल हमारा 30 से 40 दिन का हो जाता है रोपने से, हाँ, जिसमें हम लोग घास उसमें खेत से निकालने के लिए तैयार होते हैं, उस समय देखते हैं कि बहुत हमारा खेत स्वस्थ होता है। और उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि घास निकालने के बाद जब खेत में घूमने जाते हैं कुछ दिन के बाद, देखते हैं कभी कभी कि हमारे खेत में धब्बा लग जाता है। यह जो धब्बा है शीत ब्लाइट कहलाता है, जो आप लोकल भाषा में, जो हमारा क्षेत्र यह है, इसमें हम लोग गलसा गलसा कहते हैं। हाँ, यह गलसा क्यों होता है? हाँ, गलसा जैसे है शीत बाला ब्लाइट, उसको हम लोग आवरण झुलसा भी कहते हैं। आवरण झुलसा मतलब हुआ कवर, जैसे आपके धान के पत्ती को खींचते हैं तो एक कवर होता है नीचे में, पत्ती के नीचे, उसी आवरण पर यह लक्षण सबसे पहले दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसको शीत ब्लाइट बोलते हैं, और उसका हिंदी में आवरण झुलसा बोलते हैं।
2: अच्छा, आवरण झोसा,
3: जी हाँ।
2: और इसके बाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शीत ब्लाइट वैसे तो रोग हानि ही पहुंचाता है, चाहे वो मनुष्य हो या धान हो या फसल हो, जो भी हो। तो रोग की बात कर लेते हैं, शीत ब्लाइट रोग की, तो ये धान की फसलों को कहाँ तक हानि पहुंचाता है?
3: आप किसान भाई जानते होंगे यह शीत ब्लाइट जो हमारा है, यह जो गलसा रोग है, आपको अगर शुरू अवस्था में लगा तो देखेंगे कि उग्रता के हिसाब से, उग्र जब रोग होता है पूरे बाली तक आ जाता है, झुलसा ये हमारा पूरे बाली तक आ जाएगा, तो हमारा जो भोजन बनाने की क्रिया है पत्ती द्वारा वह समाप्त हो जाता है। लगभग हमें यह रोग 50% तक हानि हो जाता है। आधा जो फसल हमें 10 क्विंटल होना चाहिए उसके से हमको 5 क्विंटल होगा, मतलब 50% तक के हानि को देखा गया है इसमें।
2: यानी कि 50% तक की गिरावट हो सकती है फसलों में, धान की फसलों में, या फिर यूँ कहें कि धान की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है कि हम जानें कि हमारे इस धान की फसल को शीत ब्लाइट रोग लग चुका है, और इसके लिए ज़रूरी है पहचान। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस रोग का पहचान कैसे किया जाए?
3: आप किसान भाई देखेंगे कि जब आपका पौधा 50 से 60 दिन हो जाएगा, तो आपके जो आवरण है, जो जहाँ पर पानी की सतह है, पानी की सतह से 1-2 इंच ऊपर देखेंगे आवरण पर या शीत पर भूरा रंग का धब्बा बनता है। यह भूरा रंग का धब्बा जब बढ़ता है तो यह पत्ती की ओर चला आता है। जब पत्ती पर आता है तो हम पत्ती पर देखते हैं भूरा से चिकता ने माँ सांप का जो इस धब्बा होता सांप के ऊपर भरकदार चमकदार उस तरह के पत्ती पर और नियमित आकार का, कोई निश्चित नहीं है कि गोल होगा, वो अनियमित आकार का धब्बा दिखाई पड़ता है, बहुत चमकीला होता है और उसके बाद यह धब्बा जो है आपके पूरे पत्ती को झुलसा देता है और धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर बढ़ जाता है। इसका पहचान यही है जिसको आप लोग बाद में क्या कहते हैं कि झुलस गया गलस गया, आप लोग बहुत देर से देखते हैं, अगर शुरू अवस्था में देखेंगे तो आवरण पर भूरा रंग का धब्बा बनेगा जहां पानी से एक दो इंच ऊपर जो हमारा धान का पौधा है जो पत्ती के नीचे जो कवर किया हुआ डंठल वो आवरण जो है वह शीत जो है उसको उस पर धब्बा दिखाई पड़ता है। बाद में यह क्या होता है कि पूरे पत्ती पर झुलस जाता है।
2: तो डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की आवरण पर भूरे रंग का धब्बा अगर आपको दिखाई दिया जाए तो आप समझ लें कि वो प्रारंभिक अवस्था है शीत ब्लाइट रोग का, और अगर आप उसका उपचार करते हैं उसी समय तो आप इससे बच पाएंगे, इस रोग से अपने धान के फसलों को बचा पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शीत ब्लाइट रोग है ये हमारे धान की फसलों में फैलता कैसे है?
3: किसान भाई आप जानते होंगे कि आप जब भी खेती बाड़ी करते हैं तो हम स्वस्थ बीज का उपयोग करते हैं। जब स्वस्थ बीज का उपयोग किए बिचरा लगाए तो क्या करता है कादो करने के समय जो शीत ब्लाइट का जो बीज है इस रोग यह रोग जो है फफूंद के कारण होता है। इस फफूंद का नाम है राइजोक्टिनिया सोलाना है। यह फफूंद जब अपनी पूर्ण अवस्था करके फिर यह जो बीज को छोड़ देता है उसका गोल गोल बीज होता है जो सरसों का दाना आप जानते हैं जो बहुत छोटा होता है उस तरह का बीज इसका होता है जो जमीन में पड़ा हुआ मिलता है। जब आप कादो करते हैं तो यह बीज तैर करके ऊपर आ जाता है सो ऊपरी सतह पर। जब आप कादुआ करते हैं उसके बाद हम वह बीज दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसका भी रंग भूरा होता है, मिट्टी में गंदा पानी होता नहीं दिखाई पड़ता है। बाद में आप देखेंगे कि जब यह

0: उभर कर आता है। तो यह जो बीज है किसी एक पौधे में लगेगा, किसी एक एक धान के पौधे में, फिर दूसरे पौधे में कैसे कंटामिनेट होगा कैसे, तो एक पत्ती के द्वारा जब वृद्धि हो गया, पत्ती में जब यह लक्षण आता है, दूसरे हमारे पौधे में जो पत्ती है उससे चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, आपस में मिला हुआ रहता है, तो उस पत्ती में चला जाता है, उस पत्ती से उस पौधे में चला जाता है, फिर यह इसका वृद्धि जो होता है उसी पौधे से, आक्रांत पौधे जहाँ पर हम लगाए हैं, आक्रांत पौधे से अगल बगल फैलेगा। यह हवा द्वारा नहीं फैलता है, यह कंटेक्ट से फैलता, आपस में संपर्क से फैलता है। एक एक लक्षण यह है फैलने का, यह पूरे खेत में नहीं फैलेगा, जहाँ लगा है, जहाँ यह लक्षण दिखाई पड़ा उसी के आसपास यह दिखाई पड़ेगा। दूसरा बात क्या होता है कि हमारे किनारे जो घास है, हमारे आर जो बंद है, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, उस पर घास बहुत होते हैं, उस घास में भी ये पलते हैं और वह घास आक्रांत होता है। घास हमारा जो है पौधे से सटा हुआ रहेगा तो वहाँ जल्दी जल्दी फैला जाता है, जिसको आर के किनारे फैलता है। उसमें भी एक देखते हैं, आर का जो पूर्वी आर है वहाँ पर कम दिखाई पड़ता है, जो पश्चिमी आर है उसके तरफ जो पौधे हैं उस पर ज़्यादा होता दिखाई पड़ता है यह रोग। क्यों ऐसा होता है कि 9 से 10 बजे तक पश्चिमी किनारे में हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलता है और पूर्वी किनारा जो होता है हमारे प्लॉट का, वहाँ धूप जल्दी उग जाता है, मॉइस्चर कम देर रहता है, इसलिए वहाँ कम दिखाई पड़ता है। जबकि हमारा पश्चिमी किनारा जो होता है, कोई भी बंड के किनारे जो पौधे हैं वहाँ पर यह रोग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यह रोग जो किनारे में दिखाई पड़ता है ड्यू टू घास, जैसे घास का अगर हम सफाई सुथरा करते रहें तो हमें यह रोग पश्चिमी किनारे की ओर नहीं बढ़ता है। और यह खेत के अगर 10 ये हमारा एक बीघा खेत है या 10 कट्ठा खेत है या 5 कट्ठा, जो भी हमारा खेत का क्षेत्र है, वहाँ यूनिफॉर्मली सब जगह नहीं दिखाई पड़ेगा। जहाँ तहाँ आपका पौधे से संसर्ग में जहाँ बीज लग गया इसका आपके फफूंद का, वहीं पर यह रोग फैलता है। यह किसान भाई इस लक्षण यही है, अगर यह जब आप पहचानेंगे तो एक डंटल तोड़ लें बीच बीच से और उसके डंटल को आवरण पर देखें भूरा रंग का है कि नहीं।
1: अच्छा, तो ये बातें हो गई है कि यहाँ पर ये कैसे फैलता है ये रोग, और इसके बाद डॉक्टर साहब जब रोग फैल जाता है तो ज़रूरी होता है उसका उपचार करना, और कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों के लिए शीत ब्लाइट का उपचार करना या फिर इसे स्थायी रूप से इसे बंद करना या फिर इसे छुटकारा पाना एक चुनौती भरी जो समस्या है वो उभर कर आ चुकी है। तो इसलिए डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इससे कैसे बचे और इस रोग का उपचार कैसे किया जाए।
0: किसान भाई, आप जानते हैं कि जब भी रोग लगता है तो हमें उपचार करना चाहिए या हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए, तभी तो हम उत्पादन पूरा पूरा ले सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारे किसान भाई उसको पहले तो अपने जब वह खाद बीज घास निकालने के बाद, जैसे 30 से 35 दिन में घास निकालते हैं हम लोग रोपाई के बाद, उसके बाद हमें 15-20 रोज जो है में खेत घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे डंटल पर जो आवरण जमीन जो पानी के सतह से जो हमारा डंटल है वहाँ उसको निचोड़ करके तोड़ करके देखिए कि उस पर धब्बा हुआ तो नहीं पड़ा है। अगर भूरे रंग का धब्बा आप देखते हैं और अधिक संख्या में देखते हैं तब खेत में हमें दवा छिड़कने की ज़रूरत है, अगर भूरा धब्बा नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि वह आप खेत जो है रोपनी से 60 दिन के बाद जाते हैं देखने के लिए, जब वह आक्रांत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो जब किसान भाई यह बात देखते हैं पत्ती पर तो क्या कहते हैं कि हमें खेत में रोग लग गया, लगता है वही गलसा है। सही, गलसा तो है, अगर हम जैसे पत्ती पर जो लक्षण बताए भूरा रंग का चमकीला भड़कदार धब्बा दिखाए पत्ता पत्ती पर, तो नीचे की ओर से होता है ना कि ऊपर की ओर से होता है, तो आपको झुक कर देखना पड़ेगा हमारे पत्ती में क्या क्या लक्षण आया है कि नहीं है। तो उस अवस्था में अगर धब्बा हमें दिखाई पड़े तो किसान भाई दवाई का छिड़काव करेंगे। इसमें हमें दवाई का छिड़काव करने के जिस खेत में बार बार होता है, इसकी हम लोग ये भी कहते हैं जहाँ जिस क्षेत्र में बार बार हो, साल में हमेशा होता हो आता रहे यह रोग, तो आप पौधे की रोपाई जो है थोड़ा सा दूरी बढ़ाकर करें, जितना सघन करेंगे उतना रोग फैलेगा, उतना रोग ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम रोप की बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ा देंगे एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच में, तो हमें हवादार मिलेगा, जब हवादार मिलेगा तो वहाँ पर मॉइस्चर जो है वातावरण जो ये है वो पानी

0: मात्रा उस धान के आसपास कम होगा जहाँ पर वो लगा हुआ नीचे जमीन के सतह पर, तो वहाँ ह्यूमिडिटी कम हुआ तो वहाँ रोग नहीं होगा। जहाँ सघन रोपाई किए आपने तो ह्यूमिडिटी जो पानी की मात्रा है वहाँ ज़्यादा देर तक टिका रहा, तो वहाँ पर रोग फैलने की ज़्यादा संभावना होता है। इसलिए रोपाई उस खेत में थोड़ा दूरी दूरी करें जिससे कि लाइट रोशनी जल्दी जाए, और लाइन स्विंग करना जरूरी है। जैसे आप पूरा पश्चिम लाइन स्विंग किए तो आपको फायदा क्या है कि धूप सभी पौधे में बराबर पड़ेगा और वहाँ पानी की मात्रा जल्दी से उड़ जाएगा, उस वजह पानी की मात्रा कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, वाष्प वहाँ पर कम रहेगा तो रोग कम होगा। अगर रोग लग ही जाता है, लग गया है, तब उपचार करने के लिए हम लोगों को वहाँ पर दो दवाई बाजार में हम लोग ज़्यादा, ये दवाई एक है और उस बाजार में दो नाम से सीथमार आप लोग सुने होंगे। सीथ मतलब है सीथ लाइट से नाम रख के रखा उन्होंने, सीथ मार बोलते हैं मारने वाला। तो इस सीथ मार जो दवाई है बहुत, यह केमिकल नाम अलग है, वैलिडामाइसिन कहते हैं हम लोग इसको, वैलिडामाइसिन। ये वैलिडामाइसिन जो केमिकल है, इस वैलिडामाइसिन का उपयोग करना चाहिए बाजार में भिन्न भिन्न तरह का। पहले तो मैं जानता था दो ही दवाई, राजोसिन नाम करके एक दवाई आता था, इसी का नाम है केमिकल बाजारू नाम राजोसिन है। तो कहने का मतलब ये तरह का वैलिडामाइसिन का उपयोग करना है। वैलिडामाइसिन का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें 2 ml दवा 1 लीटर में घोल करके उसी जगह छिड़कना है जहां हमें रोग दिखाई पड़ता है, और सभी जगह नहीं। अगर ये हवा वाली रहती, हवा द्वारा फैलता तो हम पूरे बोलते पूरे प्लॉट में छिड़क दीजिए, पूरे खेत में छिड़किए, लेकिन यह छिड़काव इसलिए हम लोकलाइज करते हैं, उसी जगह करते हैं कि जहां उससे बढ़ेगा नहीं
1: जी।
0: हाँ, किसान भाई के साथ कंसेप्ट यह है कि कोई भी दवा को पूरे खेत में छिड़क देते हैं, तो हमको उसी जगह छिड़कना है दवाई, सभी जगह नहीं, जहाँ हो वहाँ छिड़केंगे तो वह बढ़ेगा नहीं।
1: तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जब आप रोपाई करते हैं तो समय समय पर आकर आप देखें कि कहीं धब्बे तो, यानी कि भूरे रंग के धब्बे तो नहीं लग रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आप अगर पौधों की रोपाई करते हैं तो थोड़ी दूरी बनाकर करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि पौधों को रोशनी मिल पाएगी। और इसके बाद डॉक्टर साहब ने शीत मार एक दवा बताई है, वो भी आप बाजार से लेकर जो फसलों हैं धान की फसलों पर दे सकते हैं। हाँ, वैलिडामाइसिन जिसे कहा भी जाता है, यानी कि शीतमार को वैलिडामाइसिन भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी से आशा करते हैं कि आज जो भी सुझाव मिले हैं आपको डॉक्टर एपी भगत जी से, आप उसे अपनाएंगे और उसे अपनाकर अपने धान के फसलों को शीत ब्लाइट से बचा पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर से मुलाकात होगी किसान भाइयों आप सभी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अजीत। आप सबको धन्यवाद देता हूं संदेश भेजने और उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीवा जी ने।
2: उन्होंने लिखा है, जिस इंसान ने खुद से बढ़कर आप पर विश्वास किया हो उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, हमें याद रखना चाहिए कि हर रिश्ते की नींव है भरोसा या विश्वास। ये टूट जाए तो कहीं न कहीं गांठ तो पड़ ही जाती है। इस संदर्भ में संत कबीर दास की ये पंक्तियां हमें याद आती हैं।
2: रहमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए।
1: बहुत सुंदर विचार हैं कबीर दास जी के। तो आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
1: और जेल रोड कानपुर से फातिमा अली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार।
2: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, श्रीमती नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े।
2: धन्यवाद आपका संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी, इन दिनों समाचार पत्रों में, मीडिया में हर जगह एक खास मुद्दा छाया हुआ है और वो मुद्दा है जलवायु परिवर्तन।
2: आपने सही कहा जी जी, ये गंभीर पर्यावरण संकट है
1: जी,
2: जिससे सारी दुनिया जूझ रही है।
1: तो क्यों ना आज इसी पर विस्तार से चर्चा की जाए
2: जी।
1: तो हमारा पहला प्रश्न ये है विमलेश जी कि जलवायु परिवर्तन है क्या? क्या ये मौसम परिवर्तन है?
2: देखिए, इसे ठीक से समझना होगा। मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है
1: जी।
2: मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है और ये नियमित होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए चलिए पहले जलवायु शब्द पर ध्यान देते हैं। ये दो शब्दों से बना है, जल और वायु। यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है। लेकिन अजीत जी, एक बात ध्यान देने की है, जरा बताइए क्या?
1: विमलेश जी, ध्यान देने या समझने की बात मुझे लगता है ये है कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है, यानी वर्ल्ड वाइड। हाँ, ये क्षेत्रीय भी कुछ मायनों में कहा जा सकता है
2: जी।
1: तो कहा जा सकता है कि यदि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक बदलाव होता दिखाई दे तो ये जलवायु परिवर्तन है।
2: हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे या स्थायी हो जाए तो इसे जलवायु परिवर्तन कहेंगे।
1: तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने से पहले विमलेश जी, पहले क्यों ना ये जान लें कि जलवायु परिवर्तन के तत्व क्या क्या हैं, यानी जलवायु का निर्माण कैसे होता है।
2: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा कि जलवायु को बनाने वाले तत्व भी पांच हैं, जैसे तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व माने जाते हैं
1: जी।
2: ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और इनके द्वारा ही जलवायु का निर्माण होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है।
1: तो इसे क्यों ना एक उदाहरण से शुरू करें।
2: बिल्कुल।
1: एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे यदि आज से 20 वर्ष या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई, या बारिश बहुत होती थी पहले लेकिन अब कम या पहले से ज्यादा हो गई है। और ये स्थानीय तौर पर ही नहीं लेकिन वैश्विक हो गई है या तो क्षेत्रीय हो गई है, तो ऐसी स्थिति को हम जलवायु परिवर्तन कहेंगे। लेकिन इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जरा श्रोताओं को बताएं।
2: जी जरूर, जैसे अनियमित बारिश और बाढ़, ग्लेशियरों का पिघलना और इसके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना
1: जी,
2: बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना
1: जी।
2: लेकिन अजीत जी, इसके कुछ कारण तो होंगे
1: जी। इसके कई कारण हो सकते हैं विमलेश जी, जैसे ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। बता दें कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने तो देती हैं
2: जी,
1: लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं।
2: चलिए अब ग्रीन हाउस को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं
1: जी, ये बड़ा अच्छा रहेगा।
2: आपने देखा होगा कि पौधों के लिए गर्मी या तापमान को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे के घर बनाए जाते हैं।
1: देखा तो है।
2: तो जरा बताइए कि इससे क्या होता है।
1: इससे होता ये है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक पहुँच तो जाती है लेकिन शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती
2: जी।
1: ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन इत्यादि प्रमुख हैं
2: जी।
1: जब ये गैसें बहुत बढ़ जाती हैं ना, तो तापमान बढ़ता है।
2: श्रोताओं, आपने देखा होगा कि धूप में खड़ी कार बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने से अंदर ही फंस जाती है। ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए यही काम करती हैं। फिर होता यह है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़, सूखा और तूफान बढ़ जाते हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है।
1: तो अब बात करते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई और कटाई की तुलना में कम पेड़ लगाना।
2: जी सही कहा। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। पेड़ों के नहीं होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पेड़ों के नहीं होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग। वाहन, कारखाने और मशीनें ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं, इससे भी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है।
1: जी, तो आइए अंत में बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को भला रोका कैसे जा सकता है। तो पहली बात है श्रोताओं, पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना।
2: दूसरी बात, वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग और जहां तक संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जलवायु परिवर्तन पर। आशा है कि ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
2: जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। श्रोताओ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर या हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: श्रोताओ, आज आपने जलवायु परिवर्तन पर हमारी चर्चा सुनी। अब आइए इसी विषय पर सुनते हैं कार्यक्रम मदर अर्थ। CIET NCERT presents to you the program मदर अर्थ पार्ट टू।
3: आई एम योर मदर, आई केयर्ड फॉर यू Since you were born, I showered all my virtues on you with great love. Yes, the virtues of green trees, fragrant flowers, rain, and so many things which possibly you don't even imagine. I nursed you with beautiful, lovely seasons. But with the time flew by, I'm compelled to think and to ask you, did you ever think of my well-being? Have you ever realized my sufferings? Emission of poisonous gases, cutting of jungles, too much exploitation of my resources. The list is so long, which knows no end. Can I lend your some time to listen to me?

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम परीक्षा।
2: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक सुंदर कहानी का नाट्य रूपांतर है। मूल कथाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि सत्य, निष्ठा और ईमानदारी ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है।
3: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
4: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
5: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
4: जी महाराज।
6: महाराज
5: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
6: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
5: दीवान साहब।
6: महाराज,
5: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
6: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
5: शर्त ये है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
6: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
3: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं मिस्टर अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए। आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
7: वो तो गेंद लिए खुद ही दौड़ा चला जा रहा, उसे पास देना चाहिए।
8: लगता है खुद ही गोल करके मारेगा। अभी छीनता हूँ गेंद उससे।
3: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
9: आज खेल में बड़ा मजा,
10: बहुत मजा आ गया। क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
9: हाँ, गोल हो गया।
10: दिल खुश।
3: कि तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी, उसकी गाड़ी वहीं फंस गई।
11: अरे कहाँ फंस गई?
12: ए, इधर क्या देख रहे हो?
11: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
13: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
14: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
15: चलो
11: अरे लेकिन
13: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
3: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
16: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
11: हाँ, ठीक है, कोशिश करते हैं। निकल गया।
3: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
11: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
16: जी बाबा।
11: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
16: तो क्या इनाम देते हो?
11: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
3: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है, राज दरबार सजाया गया।
16: पूरा एक महीना हो गया है।
10: हाँ,
16: आज फैसला।
10: तुम्हें क्या लगता है महाराज आने जाने?
16: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
3: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
11: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ साह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ।
17: बधाई हो, बधाई हो पंडित जी। बहुत बहुत।
11: जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
16: सही, सही कहा।
11: उसका संकल्प दृढ़ है, वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
16: बिल्कुल सही कहा,
11: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
3: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
16: उनका अच्छा इंसान है, हमेशा सही काम
3: करेगा। देवगढ़ रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ सा को बधाई दे रहे थे।
17: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो पंडित जी, बहुत खूब चुनाव किया।
12: महाराज की
15: जय हो,
12: महाराज की
15: जय हो,
12: महाराज की
15: जय हो,
12: महाराज की
15: जय हो।
3: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी परीक्षा का नाट्य रूपांतर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मोइनुल हसन नियाजी, मोहम्मद शमीम खान, आरएस रघु, वैभव श्रीवास्तव, सुनील लोहिया और ऋचा सयाल। ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, नाट्य आलेख अजीत होरो, ध्वनि संपादन एवं निर्माण कुसुमलता तथा निर्देशन विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा,
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजैक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजैक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई कटाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलोथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करे जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गहाई और मड़ाई में उपयोग आने वाले यंत्र के बारे में, यानी कि इसे थ्रेसिंग मशीन भी कहा जाता है. तो इस आधुनिक यंत्र के रखरखाव के बारे में आज हम जानेंगे और इस विषय को लेकर डॉक्टर सनोज कुमार हमारे साथ हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये गहाई और मड़ाई यंत्र क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी जानकारी दें.
1: किसान भाइयों, फसल की बालियों से अनाज या दाने को अलग करने की क्रिया को हम लोग दौनी अथवा मड़ाई या गहाई हिंदी में कहते हैं, इसी को हम लोग थ्रेसिंग कह सकते हैं. सो थ्रेसिंग या मड़ाई के लिए उपयोग की जो हम भी जिस किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम थ्रेसर कहते हैं. और विभिन्न फसलों की मड़ाई के लिए विभिन्न प्रकार के थ्रेसर आजकल प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि धान की फसल की दौनी के लिए एक जापानी थ्रेसर है, मकई के बालों की दौनी के लिए मक्का थ्रेसर है, या मक्का डिहस्कर कम सेलर भी है. इसके अलावा शक्ति चालित थ्रेसर का उपयोग आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि हर एक अन्य जो फसल हैं उनका हम थ्रेसिंग करने में काम आता है. इसमें मुख्यतः ट्रैक्टर चालित थ्रेसर या जिसको हम पावर थ्रेसर कह सकते हैं का प्रयोग किसानों के द्वारा किया जा रहा है. गेहूं की फसल की दौनी के लिए ट्रैक्टर चालित हडम्बा थ्रेसर तथा धान की फसल की दौनी के लिए एक्सियल फ्लो धान थ्रेसर या एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेसर कहते हैं, जिसको इसका भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज है. और मकई के बालों की दौनी के लिए मक्का थ्रेसर या मक्का डीहस्कर कम सेलर, जो कि उसका ऊपर का छिलका उतार दे और बाद में उसके दाने को भी छुड़ा दे, उसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है. इस प्रकार के थ्रेसर थोड़े ज़्यादा मूल्य के होते हैं, परंतु अधिक कार्य क्षमता के कारण इन थ्रेसरों के प्रयोग से हमारा ओवरऑल जो खर्च होता है थ्रेसिंग का वो घट जाता है.
0: जी डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि शक्ति चालित जो थ्रेसर है उसका भी इस्तेमाल अभी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, तो ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें.
1: थ्रेसिंग करते समय थ्रेसर के द्वारा जो प्रमुख कार्य हैं वो हैं निम्नवत, जैसे कि यह बालियों से दानों को अलग करने के साथ साथ फसल के डंठलों को तोड़कर भूसा भी बनाता है, जो जानवरों को हम खिला सकते हैं. इसके बाद यह दाने और भूसे को अलग करता है और यह ओसाई करके अनाज को अच्छी तरह से साफ भी कर देता है, और इसके द्वारा मड़े हुए अनाज को हम बोरों में आराम से भर भी लेते हैं. तो ये सब कार्य हैं जो एक शक्ति चालित थ्रेसर जो है बड़े आराम से कर सकता है.
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई शक्ति चालित थ्रेसर की, लेकिन अगर इसका उपयोग हम करना चाहते हैं तो इसे सबसे पहले हम स्थापित कैसे करेंगे?
1: शक्ति चालित थ्रेसर को स्थापित करते समय विशेष तौर पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए किसान बंधुओं को, जिसमें सर्वप्रथम है कि इसको एक समतल जगह पर मजबूत फाउंडेशन बना करके स्थापित करना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है. फिर है इसे ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां से थ्रेसिंग के दौरान भूसा उड़कर वापस थ्रेसर पर ना आ सके. इसी के साथ साथ इंजन, ट्रैक्टर या इलेक्ट्रिक मोटर, ये सभी जो भी चीज़ हैं इन सभी को थ्रेसर के पास नहीं रखना चाहिए. फिर भूसा निकालने का द्वार जो है वो ऑलवेज ये देखना चाहिए कि हवा की बहने की दिशा में है, ना कि हवा के बहने के अपोजिट डायरेक्शन में है. फिर है बेल्ट को आपको चेक करते रहना चाहिए उस समय स्थापना करने से पहले कि वो पुली पर ठीक से बैठा है कि नहीं.
0: जी, तो ये कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं स्थापित करने के लिए. और थ्रेसर के प्रयोग करने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें डॉक्टर साहब बताएं.
1: शक्ति चालित थ्रेसर को चलाने से पूर्व कुछ बिंदुओं को किसानों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें प्रमुख है इसमें लगे हुए नट बोल्ट को आप अच्छे तरीके से देखें, उसे देखें कि वो कसा हुआ है कि नहीं है. फिर बेल्ट को ठीक तरीके से टाइट होना चाहिए जो पुली पर लगा होता है. बेल्ट ढीला होगा तो हमारा जो पावर ट्रांसफर होता है, शक्ति संचरण, वो नहीं हो पाता है. सो थ्रेसर जो है ठीक से काम वहाँ नहीं करेगा. फिर यदि फसल के लॉक में कोई बाहरी पदार्थ, कंकड़ पत्थर ऐसा कोई चीज़ आ गया है तो उसे निकाल देना चाहिए. यदि थ्रेसर का भाग कहीं पर मुड़ गया हो, टूट गया हो, तो चलाने से पहले उसे ठीक कर लेना चाहिए या ज़रूरत हो तो उसे बदल देना चाहिए. यदि चलनी, जिसको कि सीप कहा जाता है, के छेद अगर जाम हो गए हों तो उसे भी अच्छे तरीके से साफ़ कर देना चाहिए. फिर है लॉक लगाते समय, यानी आदमी जब पूरे अपना पौधे को डालता है, फसल को डालता है उसमें, जिसको कि लॉक कहते हैं, उस समय आदमी को सिलेंडर में अपने जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे हाथ कटने की संभावना बढ़ जाती है।
0: जी जी, ये तो बातें हैं थ्रेशर मशीन के से जुड़ी आवश्यक बातें, और प्रयोग करने से पहले क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए?
1: थ्रेशर के प्रयोग के समय सावधानी की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत ही प्रमुख है कि थ्रेसिंग करते समय आदमी को ज़्यादा ढीला कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फिर थ्रेसर के पास बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए, कार्य करने वाले व्यक्ति को शराब या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, फिर थ्रेसर पर खड़ा नहीं होना चाहिए, फिर चलते समय थ्रेसर में किसी प्रकार का एडजस्टमेंट या समायोजन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये जब भी करें तो जब थ्रेसर बंद हो तभी ये करनी चाहिए, हाथ को बेल्ट या पुली के नज़दीक में आपको नहीं रखनी चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं को अगर किसान बंधु ध्यान देंगे तो आशा करेंगे कि हम लोग की थ्रेसर चलाने समय दुर्घटनाएं नहीं होंगी।
0: जी, तो इस प्रकार अगर जो भी चीज़ यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट्स बताई हैं उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप थ्रेशर मशीन का इस्तेमाल करें। अब इसे चलाने की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो चलाने से पहले क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए?
1: चलाने से पहले मशीन के सभी पुर्जों की भली भांति निरीक्षण करनी चाहिए, मशीन की ठीक से सफाई हुई होनी चाहिए, ढीले नट बोल्टों को ठीक से कसा होना चाहिए, अच्छी किस्म के ग्रिस से जो बियरिंग होता है बियरिंग कप उसे भर देना चाहिए, अगर कोई पुर्जा टूट गया हो तो उसे या तो ठीक करा लें या ज़रूरत पड़े तो उसे बदलवा लेना चाहिए, फिर एक बार थ्रेसर को खाली चलाकर ड्रम की चाल की दिशा देखनी चाहिए, मशीन से कोई आवाज़ आ रही है कि नहीं ये देखनी चाहिए, पट्टों यानी कि जितने भी बेल्ट है वो सीध में हैं कि नहीं इसकी जांच करनी चाहिए, ये सभी होनी चाहिए, मशीन को बिना कोई लॉक डाले बिना कोई लोड डाले ऐसे ही खाली चला करके, और अगर कोई बाधा हो चलने समय तो उसे दूर कर लेनी चाहिए, फसल की स्थिति देख लें, ऐसा ना होना चाहिए कि फसल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, वह अच्छे से सूखा होना चाहिए, ज़्यादा नमी वाले फसल कि अगर गहाई करने की कोशिश करेंगे भी तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर लगेगा और वो थ्रेसिंग जो है आपका वो ठीक से हो भी नहीं पाएगा, फिर फसल को हमको थ्रेसर के पास रखना चाहिए ना कि बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आने जाने में समय लगेगा, और मशीन के पास ही आपको पानी का ड्रम या रेत की बाल्टी वगैरह रखनी चाहिए, क्योंकि आग लगने की संभावना रहती है, तो अगर आग लगी भी तो उसे हम बुझा सकें, तो इन सभी बातों को थ्रेसर चलाने से पहले ही हमको अरेंज करके रखना चाहिए अपने पास।
0: इसकी रख रखाव से जुड़ी बातें बहुत ज़रूरी होती है डॉक्टर साहब, उसकी भी जानकारी दें।
1: थ्रेसर एक महंगी मशीन होती है, इसका इस्तेमाल अधिकतर साल में 2 या 3 महीने ही होता है।
0: जी।
1: कार्य उपरांत मशीन को ठीक प्रकार से साफ कर लेना होता है, धोकर सुखाकर और किसी जंग प्रतिरोधी पेंट वार्निश ऑयल से रंग कर किसी सुरक्षित स्थान में हमको ठीक से ढक कर रखना चाहिए, इसके रबर के बेल्ट पट्टे वगैरह आदि को हमको निकाल के रखना चाहिए प्रयोग करने के बाद, अगर रबर के पहिए लगे हों तो उनको ज़मीन से ऊपर उठाकर ईंटों पर हमको रखना चाहिए सहारा लगाकर, मशीन को धूल धूप और बरसात से भी आपको बचा के रखना है, अनुचित रखरखाव गलत मशीन सेटिंग या पावर थ्रेसर के दोषपूर्ण संचालन से नुकसान और ईंधन की खपत में वृद्धि हो सकती है और यह ऑपरेटर के स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, वियर या टियर मतलब कोई टूट फूट हुई है तो उसके लिए थ्रेसर की जांच लगातार करते रहनी चाहिए, साथ ही साथ पुली सतह जिस पर कि बेल्ट लगे होते हैं उनकी जांच करनी चाहिए, रफ ग्रुप्स अगर कहीं बन रहे हों तो उसे फाइन फाइल करके उसे चिकना किया जाना चाहिए, क्रैंक वाली पुलियों को या जो भी कहीं पर टूट फूट भी दिख रहा हो तो ऐसे बदल देना चाहिए वैसे जगह को, समय से पहले अगर बेल्ट की टूट हो रही हो विफल हो रहा बेल्ट फेल्यूर हो रहा हो उसको रोकने के लिए प्रत्येक बेल्ट के अलाइनमेंट और उसका टेंशन टेंशन मतलब तनाव अलाइनमेंट मतलब संरेखण उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि वो एक लाइन में हो रहा है कि नहीं ये बेल्ट जो लगाए हैं, फिर ब्लोअर या सिलेंडर बेल्ट पर सही तनाव के लिए आइडलर पुली जो एक लगा रहता है उसको आप समायोजित करें कि बेल्ट अगर ढीला भी हो जाए तो आइडलर पुली को आप थोड़ा नीचे करके आप उसे टाइट कर सकते हैं, जकड़न यानी कि टाइटनेस के लिए थ्रेसिंग सिलेंडर पर सभी पेग्स जो लगे रहते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, फिर अगर कोई ढीला पेग्स है या लूज पेग्स है तो उसे आपको निकाल देना है या ख़राब हो गया है तो, और नहीं तो अगर बनने लायक हो तो उसी पर कस करके आप उसे बनाने की कोशिश करें, इसके अलावा अगर टूट फूट है तो बेसिकली ज़्यादातर टूट फूट आपके वो जो पेक्स होते हैं उसमें होता है, तो उसकी आपको जांच करते रहना है। टूटे हुए खूंटे को उनके साथ बदल दें जिनमें कम टूट फूट हुई हो, या बुरे हालत के अगर वॉर्न पेक्स हैं तो उन्हें आपको कम्प्लीटली बदल देना चाहिए, या फिर आपको वेल्डिंग वगैरह करके उसको नए से निर्माण करना होगा।
0: जी, अब बात करते हैं अब भंडारण की, तो भंडारण कैसे करें हम?
1: सबसे पहले किसानों को चाहिए कि वे अपने मशीन को यूज करने के बाद अच्छी तरीके से साफ करें, उसके बेल्ट जितने भी लगे हुए हैं भी बेल्ट उन्हें निकालें और उन्हें एक सूखी जगह में रखें, और जिन भागों की रीपेंटिंग की ज़रूरत हो, होता है कि कहीं कहीं का पेंट उखड़ जाता है तो उससे रीपेंटिंग की ज़रूरत हो तो उसे तत्काल पेंट करें। जंग को रोकने के लिए एक्सपोज्ड धातु की सतहों को आपको साफ़ करते रहना है, और ज़रूरत पड़े तो ऑयलिंग करें। मशीन को एक साफ़ जगह शुष्क स्थान में रखा जाना चाहिए, और फिर धूल से बचने के लिए उसे कवर भी करते हैं। इंजन भंडारण पर इसके अलावा जिस कंपनी का भी आप थ्रेसर लेंगे तो उसकी जो सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन हैं, उसको फॉलो करते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इसमें आने वाली, इस यंत्र में आने वाली परेशानी और उसका निवारण कैसे करें फिर?
1: थ्रेसर में मुख्यतः कुछ समस्याएं हैं जो आती हैं, आम हैं, जैसे कि सिलेंडर जाम हो जाना, अनाज के साथ भूसा भी आना, या अनाज का टूट फूट जाना, भूसे के साथ अनाज भी उड़ जाता हो, या अनाज में तने की गांठें मौजूद रह रही हों, या आपके थ्रेसर के चलने के समय कंपन हो रहा हो, तो ये सब प्रमुख समस्याएं हैं। तो एक एक करके हम संभावित कारण और उनके निदान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला समस्या ये था कि सिलेंडर जाम हो गया हो
0: जी।
1: तो इसका संभावित कारण ये हो सकता है कि फसल की ज़्यादा लॉक जो आपने सिलेंडर में एकाएक डाल दिया हो, तो अगर ऐसा हुआ है तो आप ये समझिए कि आपको उतना अधिक लॉक नहीं डालना है, ऐसा एक यूनिफॉर्म लॉक डालना है, ऐसा नहीं कि एक बार कम और एक बार बहुत ज़्यादा, एक ही समान लॉक डालिए। फिर दूसरा ये हो सकता है सिलेंडर जाम होने का कारण कि आपका जो बेल्ट है वो ढीला हो गया हो, पावर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो, तो आप बेल्ट को कस दें। पावर ट्रांसफ़र नहीं होने से अंदर में वो जो आपका सिलेंडर है वो घूमेगा ही नहीं। फिर सिलेंडर की चाल अगर कम है तो आप सिलेंडर की चाल को थोड़ा सा बढ़ा के देखिए। फिर फसल ठीक से अगर सूखी नहीं होगी तब भी सिलेंडर जाम हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सिलेंडर में जो भी आप फसल डाल रहे हैं वो सूखा हुआ हो। फिर कॉन्केव ग्रेट और सिलेंडर के बीच की दूरी अगर बहुत कम है, जिससे कि थ्रेस होने के बाद फसल आगे बढ़ नहीं पा रहा हो, तब भी सिलेंडर जाम हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो कॉन्केव क्लियरेंस बोला जाता है वो कुछ ना कुछ अच्छे से बना रहे, तो कॉन्केव ग्रेट और सिलेंडर के बीच की जो दूरी है थोड़ी सी उसे आप बढ़ा दें अगर कम हुई हो तो। अब दूसरा समस्या यह आता है कि अनाज के साथ भूसा भी आ जाता है, तो ये तभी हो सकता है जब पंखे की चाल बहुत कम हो, यानी कि अनाज के साथ भूसा आ रहा मतलब भूसा उड़ के बाहर नहीं जा रहा, अनाज के साथ आ जा रहा, ये तभी होगा जब पंखे की चाल बहुत कम होगी। तो अगर ऐसा है तो पंखे की चाल को थोड़ा बढ़ा दीजिए, या ये भी हो सकता है कि चलने की माप जो है वो ठीक नहीं है, दूसरे फसल की अगर कहीं लगा दिया है और कर रहे हैं तीसरे फसल की थ्रेसिंग तब भी हो सकता है, तो उचित माप की चलनी को आपको इस्तेमाल करना है। फिर कॉन्केव जो है उसका अगर कोई छिद्र जाम हो गया हो तब भी हो सकता है, तो वैसे केस में आपको कहा जाता है कि थ्रेसर चलाने से पहले इन सभी चीज़ों की जांच करनी चाहिए कि कोई भी छिद्र जाम ना हो, तो वो किया जाना चाहिए था। फिर चलनी की दोलन गति अगर कम होगी तब भी ऐसा हो सकता है, तो चलनी की दोलन गति को आप बढ़ा सकते हैं, उसमें सेटिंग रहते हैं थ्रेसर में। फिर सिलेंडर में फसल की लॉक आप असमान गति से डाल रहे हो, कभी कम कभी बहुत ज़्यादा फिर कम, तो इस तरीके से करने पर भी सिलेंडर जो है अच्छे से थ्रेसिंग नहीं कर

0: थोड़ा सा आप बढ़ा के देखिए तो टूट फूट की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। फिर अगली समस्या है कि भूसे के साथ अनाज भी उड़ जाना, यानी कि पहले क्या था, पहले वाले एक समस्या था कि अनाज के साथ भूसा आना, उसमें क्या बोला गया था कि पंखे की चाल जो है बहुत कम होगी, ऑब्वियस है, लेकिन अब भूसे के साथ अनाज भी उड़ जाना, इसका मतलब पंखे की चाल बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा कि पंखे की चाल को थोड़ी से कम करके देखिए। फिर चल्ली में जितने भी छिद्र हैं उसके जाम हो जाने से भी ये समस्या होगी, तो चलनी के छिद्र को आप अच्छे से साफ कर लें। फिर अनाज में तने की गांठें अगर मौजूद रह रही हों तो ऐसा केस में जो कारण है सबसे पहला ये होगा कि ऊपर वाली चलनी के छिद्र जाम हो गए हों, ठीक है, तो ऊपर वाली जो चलनी है उसका अगर छिद्र जाम हो गया हो तो नीचे के चलनी पे कोई चीज़ जा नहीं रहा, तो इसको वजह से तने की गांठें जो है अनाज के साथ मिलेंगी आपको। सो इसको अच्छे तरीके से आपको साफ़ करना होगा ऊपर वाली चलनी को। फिर चलनी की माप को आप फिर से देखें कि ठीक है कि नहीं है, तो उचित माप की चलनी का प्रयोग करें। चलनी फिर एक उचित झुकाव पर अगर नहीं लगी होगी तब भी ये समस्या आ सकती है। तो चलनी, चूँकि सभी किसान बंधुओं को ये पता होगा कि एक उचित झुकाव पर लगा रहता है, क्योंकि जब वो वाइब्रेट करता है तो सब अलग अलग हो जाता है, दाना एक साइड और आपका भूसा एक साइड, तो चलनी को एक उचित झुकाव पर हमें लगा के रखना होगा। फिर है एक महत्वपूर्ण समस्या ये भी होता है कि चलते समय थ्रेसर में कंपन हो रहा हो, तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये होगा कि थ्रेसर आपने ठीक से स्थापित नहीं किया है, तो इसको क्या करेंगे कि हम सख्त ज़मीन या फाउंडेशन लगा करके अपने थ्रेसर मशीन को वहाँ बैठाएंगे। फिर ये भी हो सकता है कि बेयरिंग जितने हैं वो ढीले हो गए होंगे कुछ, तो आपको बेयरिंग को उसे केस में कस देना है। और ये भी हो सकता है कि थ्रेसर के कुछ भाग घिस गए हों, तो ऐसे केस में आपको घिसे हुए भागों को बदल देना चाहिए।
1: जी, तो ये कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो समस्याएं आती हैं उनके निदान के लिए। और यहाँ पर आप जान रहे थे थ्रेशिंग मशीन के बारे में, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है गहाई मड़ाई के आधुनिक यंत्र और रखरखाव, और इस विषय में पूरी जानकारी आपको मिली डॉक्टर सनोज कुमार से। तो आशा करते हैं कि आपकी जानकारियों का ये स्रोत और बढ़ा होगा, और अगले दिन उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक और विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कृषि

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हाँ, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता।

बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है। और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लिम्सिया, स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी सुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है। और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है, जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और खास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनके लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
2: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
1: तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
2: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
1: सर जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
2: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
1: सर जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
2: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़ो कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद, या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
2: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
2: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छाटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग। तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
2: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूंगा। जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
2: धन्यवाद आपको भी।
1: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
3: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
4: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
3: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
1: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। 4 ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
2: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
1: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
3: रामसिंह,
4: हाँ,
3: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
4: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
3: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
4: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
3: हाँ,
4: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं। हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
3: चलो जल्दी चलो।
4: हाँ,
3: उन्हें बता देते हैं।
4: हाँ। जय हिंद सर।
5: जय हिंद राम सिंह।
4: सर पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
5: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है। समझा। सुनो।
4: जी सर।
5: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
4: जी सर।
5: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
4: जी सर।
5: जय हिंद।
4: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रही। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: दरअसल चीनी सैनिकों को मालूम हो गया था कि भारतीय सैनिकों के पास गोलियां बहुत कम मात्रा में हैं, इसलिए वो चाहते थे कि भारतीय टुकड़ियों के पास रही सही गोलियां भी समाप्त हो जाए। जानवरों को भेजकर वो भारतीय सेना की स्थिति और प्रतिक्रिया का भी पता लगाना चाहते थे।
0: लेकिन भारतीय कमांडर ने अपनी सूझबूझ से टुकड़ी के कारतूस बचा लिए। ये कमांडर कोई और नहीं, मेजर शैतान सिंह थे, जिन्हें भारत चीन के युद्ध में अपूर्व शौर्य दिखाने पर मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: एक दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए।
1: अपने स्कूल और कॉलेज के जीवन में वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें भारत संघ की कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया।
0: अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो, तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
2: फायर! बढ़ो।
3: साहब साहब वो देखिए घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
1: फतेह सिंह अभी उन्हें और पास आने दो, जब पास आ जाएं तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
3: जी सर।

0: सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया। रेजांगला घाटी में भारतीय सेना की दो चौकियां थी। मेजर शैतान सिंह बारी बारी से दोनों चौकियों में चीनी सैनिकों की भीषण गोलीबारी के बीच बिना सुरक्षा के भाग भाग कर जाते और बचे हुए सिपाहियों का हौसला बढ़ाते।
2: राम सिंह, नीचे उप, नीचे। डक्कर, फायर को डक्कर।
3: जी सर, मैं लोड करता हूँ,
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
4: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं। कितना खून बह रहा है। आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
3: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ।
4: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
3: अच्छा।
4: साहब, यही मशीन गन।
3: हुकुम सिंह, एक काम करो।
4: जी।
3: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
4: जी सर।
3: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को।
4: जल्दी करो।
3: जी सर।
4: बांध दिया सर।
3: ठीक से बंध गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो। जल्दी खींच कर, खींच के इस तरफ निकल। हील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
4: जी सर।
3: भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
4: संभल कर।
3: सब यहाँ सर टिका लीजिए।
4: सर ऐसे
5: कालिका माता की जय।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगे। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
5: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया,
5: साथी हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
4: साहब,
5: तुम लोग आगे निकलो।
4: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे साहब।
5: नहीं, बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। अपनी जान बचाओ।
4: नहीं साहब।
5: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
4: नहीं साहब,
5: नहीं, आदेश, इट्स एन ऑर्डर
4: सर।
5: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों।
1: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
0: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
6: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
0: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
1: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजांग ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूँ।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।

अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शमाइला परवेज, बावला कोचर, आर एस रघु और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण परामर्श विमलेश चौधरी और वंदना अरिमर्दन, निर्माण सहायक अमित कुमार, आलेख निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था

प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डाइमेथोएट 30 सीसी की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 सीसी की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रिन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಋಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं. उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं. तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद. सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार.
0: तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ. सर आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं.
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है. जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं. तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं. सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं. और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है. और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं.
0: जी, तो सर ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
1: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी, ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है. ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है. और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है. और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन घटता है.
0: तो सर फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
1: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं.
0: और इससे बचने का कोई तरीका, जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
1: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं. जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए, वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए, ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है. अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है.
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है.
1: बिल्कुल.
0: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
1: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए. और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं. तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है. लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे. तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें. खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
2: अच्छा।
1: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
0: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
1: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
0: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
3: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
4: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
3: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब

0: बारे में लोग सुनते तो बहुत है, लेकिन सही जानकारी अभी भी हर घर तक नहीं पहुंच पाई है। आज हम बात करने वाले हैं टीबी रोग के बारे में, यानी क्षय रोग के बारे में। आज हम बहुत सारी बातें समझने वाले हैं, किस तरीके से हम सब मिलकर बना सकते हैं टीबी मुक्त भारत, इस बारे में हम बातें करने वाले हैं विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, पास के ना एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश भाई जी को कई हफ्तों से खांसी थी। पहले उन्होंने सोचा मौसम बदल गया होगा, फिर पड़ोसियों ने कहा कि पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, बुखार आने लगा, रात में पसीना आने लगा, लेकिन शर्म और डर की वजह से उन्होंने जांच ही नहीं करवाई। जब हालात ज्यादा बिगड़ गई तब आशा दीदी उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई। जांच हुई तब पता चला कि टीबी है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई? इलाज शुरू हुआ, दवाइयां मुफ्त मिली, पोषण सहायता मिली और आज रमेश पूरी तरह स्वस्थ है। यानी सच यही है कि टीबी लाइलाज नहीं है, बल्कि पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है। बस हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। और इन सारी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अपनी प्रिय टीकन देवी। स्वागत है आपका टीकन देवी जी।
1: धन्यवाद आरजे जी। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, टीबी से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। जी हाँ, टीबी को समझने की जरूरत है। टीबी को हम समझेंगे तभी उससे हम लड़ पाएंगे। श्रोताओं, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैलती है, और जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, टीबी का इलाज संभव है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ये पूरी तरह मुफ्त है। और भारत सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से टीबी को पूरी तरीके से देश से खत्म कर दिया जा सके।
0: टीकन देवी जी, आपने बताया कि देश में टीबी खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है, क्या कोई स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं?
1: बिल्कुल आरजी जी, और ये जानना बहुत जरूरी भी है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत साफ और समयबद्ध लक्ष्य तय किए हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जितनी जल्दी हो सके टीबी मरीजों की पहचान की जाए, क्योंकि अक्सर लोग महीनों तक खांसी को सामान्य समझते रहते हैं, जांच नहीं करवाते हैं। उन्हें लगता है कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम के बदलने की वजह से हो गया है, या फिर किसी भी वजह से वो जांच नहीं करवाते, जिससे टीबी जैसी बीमारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है। इसलिए अब सरकार की कोशिश ये है कि हर संदिग्ध व्यक्ति तक जांच की सुविधा पहुंचे और बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाए, जिससे बीमारी को जड़ से खत्म करना आसान हो। और दूसरा लक्ष्य है टीबी से होने वाली मौतों को कम करना। देखिए, जब मरीज समय पर इलाज शुरू करता है और दवाइयां नियमित लेता है तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मरीज देर करता है तो मौत भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी मरीज का इलाज बीच में ना छूटे। इसलिए मरीजों के लिए जरूरी होता है कि वो नियमित और पूरी दवाई ले। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रखा है हमारे भारत सरकार ने कि समुदाय में नए टीबी मामले कम से कम मिले या बिल्कुल खत्म हो जाए। यानी सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग और लोगों की भागीदारी सबसे अहम है। श्रोताओं, दरअसल ये अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। जैसा अभियान का संदेश भी कहता है, टुगेदर वी कैन स्टॉप टीबी, योर वॉइस, योर अवेयरनेस एंड योर एक्शन कैन हेल्प बिल्ड अ हेल्दियर टीबी मुक्त भारत। यानी हम सबकी आवाज और भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत संभव है।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने। मतलब सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब समाज भी साथ आएगा। टीकन देवी जी, एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग टीबी के लक्षण पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सामान्य खांसी या कमजोरी है। ऐसे में लोग कैसे समझें कि जांच करवाने का समय आ गया है?
1: आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को दो हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी बनी हुई है तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लें। कई बार खांसी के साथ बलगम भी आता है और कुछ मामलों में खून भी दिखाई दे सकता है, और ये गंभीर संकेत होते हैं अगर आपको बलगम के साथ खून दिखाई दे। इसके अलावा अगर बार बार बुखार आता रहे, खासकर शाम या रात के समय, और रात में अधिक पसीना आए, तो ये भी टीबी का लक्षण हो सकता है। कई मरीजों में धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है, भूख कम लगती है और शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती है। और कुछ लोग सीने में दर्द या

0: सांस लेने में तकलीफ भी महसूस करते हैं, इसलिए रोजमर्रा के काम करते हुए जल्दी थक जाना भी एक संकेत हो सकता है आरजे जी। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो जांच करवाने में देर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी।
1: यानी शरीर संकेत देता है, बस हमें समझने की जरूरत होती है और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। एक सवाल और, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है या कुछ लोग ज्यादा खतरे में होते हैं?
0: देखिए, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों को पहले कभी टीबी हो चुकी है उनमें दोबारा संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। इसी तरह अगर घर में किसी सदस्य को टीबी है तो बाकी परिवार के लोगों की नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वे लंबे समय तक एक मरीज के संपर्क में रहते हैं तो हो सकता है कि उनमें भी संक्रमण फैल जाए। और एक और बहुत बड़ा कारण है कुपोषण। हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है कुपोषण और टीबी का क्या रिश्ता होगा। है, जिन लोगों का शरीर कमजोर होता है या जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो टीबी का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जिन्हें डायबिटीज है और HIV से प्रभावित है उन व्यक्तियों में भी संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है आरजे बाबू। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि धूम्रपान और शराब का सेवन फेफड़ों और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे टीबी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए धूम्रपान शराब से बिल्कुल बचा कर रखें खुद को, और जो भी धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं उन सभी की नियमित स्क्रीनिंग बहुत जरूरी मानी जाती है, ताकि बीमारी समय रहते पकड़ा जा सके और उसका इलाज किया जा सके।
1: मतलब जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने और समय समय पर जांच करवाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, और यही जागरूकता टीबी मुक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
1: अब तक हमने लक्षणों और जोखिम वाले लोगों के बारे में जाना, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है जल्दी जांच और जल्दी इलाज। आखिर ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
0: देखिए आरजे जी, टीबी को खत्म करने की सबसे बड़ी रणनीति बहुत सरल है लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। पहला कदम हमें क्या उठाना है, बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचानना है, और जब किसी व्यक्ति की समय पर जांच हो जाती है तो संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू कर दिया जा सकता है, तो ऐसे में बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचानना, दूसरा कदम है तुरंत इलाज शुरू करना। कई बार लोग जांच तो करवा लेते हैं लेकिन दवा शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं या फिर वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि आप दवा शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि टीबी का इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी मरीज स्वस्थ होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा इलाज पूरा करना। टीबी की दवाइयां बीच में छोड़ देने से बीमारी वापस आ सकती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। अगर आप टीबी का इलाज बीच में छोड़ेंगे तो उसके बाद मरीज को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा हो जाता है आरजे बाबू। इसलिए ये तीन कदम बहुत जरूरी होते हैं, पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचान लीजिए, दूसरा कदम कि तुरंत इलाज शुरू कीजिए, और इलाज शुरू करने के बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम इलाज पूरा कीजिए। डरना नहीं है, इलाज करवाना है, नियमित और पूरी दवाई खानी है और पौष्टिक आहार लेना है। और बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अस्पताल जाएंगे, खर्चा बहुत होगा, और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है टीबी को लेकर। इसलिए अब सरकार सिर्फ इंतजार नहीं कर रही है कि टीबी मरीज अस्पताल आएंगे, बल्कि अस्पतालों में, विशेष OPD में और हाई रिस्क समूहों में स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि बीमारी की पहचान खुद लोगों तक पहुँच कर की जा सके। इससे क्या होगा कि बीमारी की पहचान हो जाएगी, उनका इलाज जल्दी शुरू होगा, और उनका इलाज जल्दी शुरू होगा तो उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक होगी।
1: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों का इंतजार नहीं कर रही बल्कि लोगों तक खुद पहुंच रही है, ये सच में बहुत अच्छी पहल है। टीकन देवी जी, कई श्रोता ये सोचते हैं कि टीबी की जांच और इलाज बहुत महंगा होगा, इसलिए लोग डर जाते हैं और जांच कराने में देर करते हैं। क्या सच में इलाज इतना मुश्किल और खर्चीला है?
0: नहीं आरजे जी, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है और मैं आज सभी श्रोताओं से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, टीबी की जांच और इलाज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में बलगम की जांच बिल्कुल मुफ्त की जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि होती है, यानी कि उनके जांच में टीबी निकलता है, तो पूरी दवाइयां भी सरकार के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि पैसे बहुत खर्च होंगे, आपको जांच से लेकर दवाइयां तक सब कुछ मुफ्त मिलेगा।
1: मतलब मरीज को दवाइयों के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं?
0: बिल्कुल नहीं, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर ना करें। सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति पैसों की चिंता की वजह से इलाज से वंचित ना रह जाए। और ये बात हर किसी तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आप, अगर आपको लक्षण दिखे तुरंत जांच करवाइए जो मुफ्त होगा, और अगर लक्षण दिखने के बाद, जांच करवाने के बाद टीबी निकलता है तो उसके बाद आगे का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त होगा। डरिए मत, इलाज करवाइए और आप पूरी तरह स्वस्थ हो पाएंगे।
1: लेकिन लोग अक्सर दवा कुछ दिन लेने के बाद छोड़ देते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टीबी का इलाज सामान्य बुखार या खांसी जैसा नहीं होता है, इसका इलाज कई महीनों तक लगातार चलता है। और सबसे जरूरी बात, दवा नियमित और पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। और अगर मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो बीमारी दोबारा और बहुत गंभीर रूप में लौट सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और इसके बाद क्या होगा कि दवाइयां कम असर करने लगेगी और उसके बाद टीबी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दवा बीच में बिल्कुल ना छोड़ें और याद रखें कि पूरा इलाज ही टीबी को पूरी तरह से ठीक करता है।
1: टीकम देवी जी, आपने पहले बताया था कि सरकार सक्रिय रूप से लोगों की जांच भी करा रही है, ये जांच कहाँ कहाँ की जा रही है?
0: बहुत अच्छा सवाल। अब टीबी की पहचान सिर्फ अस्पताल वाले मरीजों तक सीमित नहीं है, सरकार एक्टिव केस फाइंडिंग यानी सक्रिय खोज अभियान चला रही है और अब जांच कई जगहों पर की जा रही है, जैसे कि एचआईवी क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग होती है, एनसीडी क्लिनिक में होती है जहां डायबिटीज या अन्य बीमारियों के मरीज आते हैं, डायलिसिस केंद्र में भी मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर उपचार केंद्र में, वहीं तंबाकू निषेध क्लिनिक में भी मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि इस समूह को भी टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। और अस्पताल के ओपीडी में या फिर आईपीडी में, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही विभागों में नियमित स्क्रीनिंग की जाती है। देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, सक्रिय खोज अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य साफ है, बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके ताकि संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू हो सके और मरीज स्वस्थ हो सके।
1: यानी अब सरकार मरीज के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद खोज रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, यही रणनीति टीबी खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जल्दी पहचान और तुरंत इलाज।
1: टीकम देवी जी, क्या इन प्रयासों से भारत में सच में कोई बदलाव दिख रहा है?
0: जी हाँ, ये बहुत उत्साहजनक खबर है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वर्ष 2015 से 2023 के बीच हमने टीबी के रोकथाम में बहुत सफलता पाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में टीबी के मामलों में लगभग 18% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 21% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये सबके प्रयासों का ही फल है कि हम वैश्विक औसत से भी तेज प्रगति कर रहे हैं, जो दिखाता है कि जब सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और समुदाय साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव बहुत संभव हो जाता है।
1: ये सच में उम्मीद देने वाली बात है, यानी अगर लोग समय पर जांच और पूरा इलाज करवाएं तो टीबी को खत्म किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और इसलिए मैं श्रोताओं से फिर कहना चाहूंगी, टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, जांच और इलाज मुफ्त है, दवा नियमित लें और पूरा कोर्स करें, और लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर बिल्कुल ना करें।
1: दोस्तों याद रखिए, जानकारी ही बचाव है और समय पर कदम उठाना ही सबसे बड़ी सुरक्षा। एक सवाल जो अक्सर श्रोता पूछते हैं, इलाज तो ठीक है लेकिन टीबी मरीज कमजोर हो जाता है, ऐसे में सरकार या समाज उनकी क्या मदद कर सकता है?
0: बहुत जरूरी सवाल है ये। टीबी सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सही पोषण से भी ठीक होती है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है तभी दवाइयां असर करती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होता है कि टीबी मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो पौष्टिक भोजन ले सके और इलाज के दौरान जो कमजोरी होती है उससे बच सके। इसके अलावा निक्षय मित्र पहल भी चल रही है, जिसमें समाज के लोग, संस्थाएं और समुदाय आगे आकर मरीजों को पोषण, भावनात्मक सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। और निक्षय मित्र कोई भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप निक्षय मित्र बनिए और टीबी मरीजों को आप किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आप उन्हें हौसला दे सकते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप अपना इलाज पूरा कीजिए और जो भी जरूरी सहायता आपसे संभव हो सके वो आप प्रदान कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, आप कह सकते हैं कि पूरा समाज मरीज का सहारा बनता है ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के दौरान अकेला महसूस ना करे।
1: वाह, मतलब इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि समाज के सहयोग से पूरा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, क्योंकि टीबी मुक्त भारत सिर्फ सरकार अकेले नहीं बना सकती है ना, इसमें समाज की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। जन भागीदारी का मतलब होता है हर व्यक्ति जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे। सबसे पहले लोगों तक टीबी के लक्षणों की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है और जब जानकारी होगी तभी लोग जांच के लिए आगे आएंगे। दूसरा, हमें लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित करना होगा। कई लोग डर या शर्म की वजह से जांच नहीं करवाते और ये सोच बदलनी होगी कि अगर आपको टीबी हो गया है तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ना ही डरने वाली बात है। आप जांच करवाइए और इलाज करवाइए। और लोग इसलिए भी डरते हैं, शर्माते हैं कि उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो, तो तीसरी सबसे जरूरी बात यही है कि भेदभाव खत्म करना बहुत जरूरी है। टीबी मरीज को अलग या कमजोर समझना बहुत गलत है, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। चौथा, मरीज को पूरा इलाज करवाने में मदद करना चाहिए। परिवार और समुदाय की ये जिम्मेदारी होती है कि मरीज को पूरा इलाज के लिए आप प्रोत्साहित करें। और सबसे अहम बात कि मरीज को पोषण और मानसिक सहयोग देना होता है। जब समाज साथ खड़ा होता है तो मरीज का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी कि टीबी पर खुलकर बात करें, इसे छुपाएं नहीं।
1: सही कहा आपने, बीमारी छुपाने से नहीं समझने और मिलकर लड़ने से खत्म होती है। किकन देवी जी, हमारे समाज में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि टीबी छूने से फैलती है या मरीज के पास बैठने से बीमारी हो जाती है, क्या ये सच है?
0: नहीं, ये पूरी तरह गलत धारणा है आरजे बाबू। टीबी साथ बैठने से नहीं फैलती, ना ही खाना साझा करने से फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से तब फैलती है जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता है या छींकता है और हवा में मौजूद जीवाणु उन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी सावधानियां बहुत ही सरल है। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, भीड़भाड़ वाली जगहों में सावधानी रखें और घर या कमरे में ताजी हवा आने दें। जब सही जानकारी होगी तब डर और गलत फहमियां भी खत्म होगी आरजे।
1: यानी डर नहीं, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तिकन देवी जी, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो खुद को टीबी से कैसे बचा सकता है?
0: देखिए, रोकथाम के तरीके बहुत आसान हैं और रोजमर्रा की आदतों से जुड़े हैं। सबसे पहले खांसी शिष्टाचार, यानी कि जब भी खांसी आए तो अपने मुंह को ढके, छींके तो भी अपने नाक को ढककर छींके। इससे क्या होगा कि संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। दूसरा है कि पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है, क्योंकि मजबूत शरीर संक्रमण से बेहतर लड़ पाता है ना। और तीसरा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और घर में अच्छा वेंटिलेशन रखना भी बहुत जरूरी है ताकि हवा का प्रभाव बना रहे। आप बंद कमरे में रहेंगे तो जो भी संक्रमण होगा वो कमरे में ही रहेगा, लेकिन जब साफ हवा कमरे के अंदर आएगी तो आप संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। और जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें डॉक्टर की सलाह से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है, जिससे बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जोखिम ज्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात कीजिए।
1: छोटी छोटी आदतें लेकिन बड़ा असर, यही संदेश है।
0: और अंत में मैं सभी श्रोताओं से दिल से कहना चाहूंगी कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसकी जांच और इलाज दोनों मुफ्त है। बस सबसे जरूरी है कि पूरा इलाज करिए और मरीजों का साथ दीजिए, भेदभाव नहीं करिए। और याद रखिए, अभियान का संदेश यही है, यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय इंडिया, पावर्ड बाय जन भागीदारी। यानी कि जन भागीदारी के साथ ही हम टीबी को खत्म कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आपकी आवाज, आपकी जागरूकता और आपका सहयोग ही बनाएगा टीबी मुक्त भारत। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी टीबी के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। और अब समय है विदा लेने का, पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ।
2: हाय, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।
3: धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और कृषि में आज हम किसी फल या सब्जी के बारे में या फिर किसी अन्य तरह के फसल के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती से आय के नए अवसर के बारे में। हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है लेकिन खेती नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर स्वप्नील भारती। मैम आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: मैम आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि फूलों की खेती आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है?
3: ये बहुत ही अच्छा सवाल है उमा, और सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आज के समय में क्या हो गया है कि फूलों की खेती सिर्फ एक पारंपरिक कृषि गतिविधि नहीं रह गया है। अभी क्या है कि तेज़ी से ये जो फूलों का डिमांड है हमारा वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है और ये उद्यमशीलता आधारित क्षेत्र बन चुका है। यदि हम कुछ वर्ष पहले की बात करते हैं तो फूलों का उपयोग मुख्य रूप से सिर्फ धार्मिक कार्यों या फिर पूजा पाठ या फिर घर की सजावट, इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता था, यहीं तक सीमित था हमारा फूलों का उपयोग। लेकिन अगर अब वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो समाज में जो हमारा है या फिर समाज में और बाज़ार में इसकी ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं। अभी इसकी उपयोगिता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी फूलों की मांग हमारी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो हमारा शादी हो या फिर कोई भी कॉरपोरेट इवेंट्स हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सब में हमें फूलों की सजावट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके साथ साथ कोई भी शादी होती है हमारे घर में या फिर कोई पूजा का समारोह हो रहा है, उस समय भी हमारा जो फूल है वो एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे जिंदगी का, जीवन शैली का। इसी प्रकार होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में जो कट फ्लावर्स होते हैं, जो डेंटल वाले फूल होते हैं, जो ताज़े होते हैं, उनकी उपयोग से वातावरण जो है वो आकर्षक होता है, साथ ही साथ प्रीमियम लुक देता है वो होटल्स में। तो इससे क्या है कि जो वो होटल का जो भाव है वो भी बढ़ जाता है, जो कमरे का रेंट, वो सब चीज़ें भी हम फूलों की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं हमें। इसके अलावा हाँ, साथ ही साथ जो फूल है उसका सिर्फ हम सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं,

0: ये परफ्यूम या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी इसका कच्चे माल के रूप में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि हम बात करें अगर कुछ फूलों की, गुलाब हो गया हमारा, रजनीगंधा है, जास्मिन है जिसे हमारे प्रदेश में चमेली के नाम से हम जानते हैं, तो इनका इत्र या फिर इनसे जो गुलाब जल बनाते हैं हम, जल या फिर इत्र, उसका उपयोग हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं और इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हम इसके साथ साथ गुलाब या फिर गुलाब हो गया, कार्नेशन हो गए, ऑर्किड हो गए, इन सब के डंठल भी हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा जो है वो भी अर्जित हो रही है और किसानों की जो आय है वो सिर्फ हमारा सीमित नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ देशी मुद्रा के लिए, वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। तो इसी वजह से किसानों की जो आय है वो भी हमारी वृद्धि हो रही है। तो इसी बढ़ती मांग को अगर देखा जाए तो किसान को जो पारंपरिक फसलें हैं हमारी उसके तुलना में अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो वो आपको अधिक लाभ दे रहा है, क्योंकि ये कम समय में आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं और साल भर आप खेती कर सकते हैं। आप बार बार फूल तोड़ सकते हैं, 4-6 महीने में ही आपने कितनी बार डंठल तोड़े, कितनी बार आपने फूल तोड़े, तो इस वजह से जो है हमारा डिमांड जो है, जो मार्केट में जो उपलब्धता है फूलों की, हमेशा बरकरार रह रही है और हमारे किसान इसे अच्छा अर्जित कर रहे हैं, अच्छी कमाई उनकी हो रही है।
1: तो मैम, हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन कौन से फूलों की ऐसी किस्में हैं जो सबसे अधिक लाभदायक मानी जाती
0: हैं? ये सबसे ज़रूरी है हमारे किसी भी प्रकार की, जब हम खेती करते हैं किसान भाई, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में हम कौन सा कहाँ पर ये अनुकूल है, कौन सा ताप, ये एरिया जो है हमारा, वो बिहार प्रदेश जो है हमारा, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें उगा सकते हैं। तो इसमें आप कम लागत में, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे जो प्रमुख हमारा जो फसल है, जो सबसे प्रमुख जो फूल है वो है गेंदा, जिसकी मांग जो है वो हमारी पूरे वर्ष किसान भाई बनी रहती है, चाहे वो त्यौहार हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, सजावट हो, किसी भी चीज़ों में हमारा गेंदा जो है वो हमेशा उसकी मांग बनी रहती है। इसको लगाना भी, और सबसे है कि ये तीनों सीज़न में, जो हमारा ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो, ये तीनों सीज़न में हमें इसकी ज़रूरत रहती ही रहती है। तो अगर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसे प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो है वो है गुलाब। गुलाब भी बहुत अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे इसका जो कट फ्लावर है वो हमारा ईस्टर में, क्रिसमस में, मदर्स डे में या फिर न्यू ईयर में, वैलेंटाइंस डे में, इन सब समय में हमारा कट फ्लावर जो है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे साल कोई ना कोई फंक्शंस, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं, या फिर शादियों का समारोह चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उन सब में भी हमें कट फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका डिमांड हमको पूरे साल मिलती रहता है। गुलाब में ही आपको जो देसी गुलाब है उसकी भी खेती अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे गुलाब जल बना सकते हैं, या फिर आप उसे पंखुड़ी बना सकते हैं, फिर आप उसको मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं, उसका फिर रोज़ शरबत बना सकते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा ये फसल भी। एक बार आप इस फसल को लगाएंगे और आपको 7 वर्षों तक इसे फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी जो फसल है किसान भाई वो है ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस साल में एक बार आप लगा सकते हैं, सितंबर माह से हम लगाना उसको शुरू करते हैं, लेकिन आप 6 से 8 महीनों तक इसके स्पाइक को काट के बेच करके आप अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आपका आता है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी एक बहुत प्रमुख फसल है और इसकी खेती बहुत ही आसान होती है। इसे आपने एक बार लगाने के बाद में आप 3 वर्षों तक इसमें फूल ले सकते हैं, जिसमें आप कट के फ्लावर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लूज में, यानी खुले यानी ढीले फूलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत माला बनता है शादियों में, जो हमारे वरमाले होते हैं वो भी होता है, वो आप बना करके इसको बेच सकते हैं, या फिर भगवान को अर्पित करने के लिए भी फूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये है। उसके अतिरिक्त रजनीगंधा और ग्लैडियोलस में 2 प्रमुख चीज़ें हैं, जो कि है कौर्म और इसका कंद। उसे भी आप बेच करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत प्रमुख फसल, एक ऑर्किड है, जरबेरा है। इन दोनों की खेती हम पॉली हाउस में करते हैं ताकि पॉली हाउस में करके, और फिर इसका जो क्वालिटी ऑफ द फ्लावर होता है, जो फूलों की गुणवत्ता होती है, वो पॉली हाउस में बहुत अच्छी रहती है। तो इसी वजह से हम इनकी खेती पॉली हाउस में करते हैं और फिर हम इसे बाजार में बेचते हैं, जो कि सजावट के रूप में काफ़ी काम आता है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्किड एक ऐसा फूल है जिसकी जो वास लाइफ, यानी जो आप उसको रखते हैं या फिर उसको आप कहीं सजावट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप कम से कम वो 10 से 15 दिनों तक वो फूल बहुत फ्रेश रहता है। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब फूलों की खेती आप करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: तो मैम, क्या छोटे और सीमांत किसान भी फूलों की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं?
0: हाँ जी माँ जी, बिल्कुल। हमारे किसान भाई, आप किसी भी कोई भी सीमांत हो या फिर कोई भी छोटे किसान हो, कितनी भी भूमि आपके पास हो, आप उसमें खेती करके आराम से अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए किसान भाइयों के पास, हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर भूमि नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 1 से 2 बीघा भी ज़मीन है, उसमें भी आप गेंदा या रजनीगंधा, जो मैंने आपको बताया, अगर उन फसलों की आप खेती करते हैं, तो जो आप पारंपरिक खेती जो आप कर रहे हैं, दलहन का, तिलहन का, गेहूं, ये सब चीज़ों का, उसकी तुलना में हमारे किसान भाई आप 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण, सबसे ज़रूरी जो कारण है, वो ये है कि इन फूलों की अगर हम तुलना करें किसी भी प्रकार की फसलों से, तो इनका जो डिमांड है, इनकी जो बाज़ार में मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मूल्य बहुत बेहतर होता है। और अगर हम किसी सीज़न से अतिरिक्त इसको हम उगा पा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छा भाव आपको बाज़ार में मिलता है। साथ ही साथ इसकी तुड़ाई, कोई फसल जब हमारा होता है, जैसे दलहन या तिलहन, उसकी तुड़ाई हम एक ही बार कर पाते हैं, किंतु इन फूलों की खेती में क्या है, आप जितना उनकी तुड़ाई करेंगे, आपको उतनी फूल आपको प्राप्त होते जाते हैं। तो इनकी तुड़ाई आप बार बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, 3 से 4 कटाई तो आप कर ही लेंगे। तो इसकी वजह से आपको नियमित आय भी मिलते रहता है। आपको आय सिर्फ एक बार नहीं डिपेंड होना पड़ता है, आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसके अलावा हम पॉली हाउस या फिर नेट हाउस के उपयोग से भी किसान हमारे जो हैं वो नियंत्रित वातावरण में, जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसमें आप उच्च गुणवत्ता वाले फूल बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इससे मौसम जो है वो निर्भर नहीं, मौसम पे कम निर्भर करेगा हमारा फूल का जो है, और उससे आप ऑफ सीजन जब हम उसको उगाते हैं, तो आपको कीमत बहुत अच्छी मिलती है मार्केट में।
1: तो मैम, फूलों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ जी उमा, ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष तौर पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है कि मिट्टी और जलवायु, क्योंकि मिट्टी और जलवायु का अगर वो सही चयन कर रहे हैं, तभी हमारे जो कोई भी फूल है या फिर कोई भी फूलों की फसल है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उस ज़मीन में। क्योंकि क्या है कि हर फूलों का जो है, हर फूल हर फसल की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी को सैंडी लोम जो बोलते हैं हम, उस वो मिट्टी चाहिए, किसी को क्ले मिट्टी चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो प्रदेश है, उसमें हमारी जो मिट्टी है, जो गंगा के किनारे की मिट्टी होती है ना, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसमें अगर हम फूलों की खेती किसान भाई करते हैं, तो काफ़ी अच्छे गुणवत्ता वाले आपको फूल प्राप्त होंगे। उससे दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि आपकी जो बीज होंगी, वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ही बीज होने चाहिए। या फिर बीज नहीं तो अगर आप पौधे खरीद कर ला रहे हैं मार्केट से, तो वो जो पौधा भी है, उसका वो पौधा काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए। तो जब भी हम बीज या फिर पौधा लेकर आते हैं, तो एक प्रिकॉशनरी के तौर पर हम किसान भाई क्या करेंगे कि उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे। कोई भी फफूंद नाशक, वैसे तो जो हम बीज खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो बैवेस्टीन या फिर थायरम के साथ में वो ट्रीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको एक सेफ साइड पे रहना है, तो हम पौधों को, उसके जड़ को या फिर बीज जो है उसको हम, या फिर कंद होता है हमारा, कंद बल्ब कुछ भी, जो भी हमारी जो सीड प्लांटिंग मटेरियल है, उनको हम कोई भी फफूंद नाशक के साथ में आधे घंटे तक उसमें घोल बनाकर रखते हैं। उसके बाद उसको छाया में सुखाने के बाद तभी आप इसे खेत में लगाएं। तो ये बहुत अच्छा आपका प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा, जैसे कि जो भी मिट्टी से जनित आपकी बीमारी होगी, वो पौधों में आपकी नहीं लगती हैं। साथ ही आपको सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ताकि जो आपके पौधे हैं उनका जो विकास है, उनकी जो वृद्धि है, वो संतुलित रहे और फूलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती रहे। इसके अलावा जो आपकी एक सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाज़ार में मांग, बाजार में मांग और मूल्य, ये दोनों चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। उसी के तहत हमारी कौन सी चीज़ किस एरिया में, हमारी कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसी के बेसिस पर उसी पर्टिकुलर क्रॉप का, उसी पर्टिकुलर फसल का खेती चयन करना चाहिए करने के लिए। उसके अलावा जो है सबसे जो लास्ट में अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कटाई के बाद जो प्रबंधन, वो कैसे करेंगे, उसमें पैकिंग आपको करनी होती है। कटाई के बाद हम कोई भी फूल को तुरंत पानी में डालते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसे दूर मार्केट में भेज रहे हैं तो आपके पास परिवहन, उसके आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए उसे दूर मार्केट में भेजने के लिए। उसके बाद तुराई का समय आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कब तुराई करें। अगर आपको बहुत दूर मार्केट में भेजना है तो आप कोशिश करें कि रात में ही, शाम में ढलते ही तुराई कर ले, ताकि रातों रात आपका फूल चला जाए मार्केट में और सुबह होते ही आपकी फूल बिक्री के लिए शुरू हो जाए। अगर आप लोकल मार्केट में उसकी बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से 4-5 बजे तक आप अपनी तुराई कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप उसे स्थानीय मार्केट में भेज करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम, फूलों की खेती से जुड़े जो नए अवसर हैं वो कौन कौन से हैं?
0: हाँ, ये जो एक किसान भाई हमारा जो एक सेक्टर है वो थोड़ा पीछे रह गया है, जिसके बारे में जानकारी जो है वो अब बनी है। सिर्फ फूलों की खेती जो है वो सिर्फ फूलों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है। हमारा जो फ्लोरिकल्चर का जो क्षेत्र है वो अब आय के कई नए, आय के यानी कि जो हमारा कमाने का बहुत अच्छा अवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ी से पैदा कर रहा है। और हमारे किसान और युवाओं इस चीज़ की थोड़ी उन्हें कम जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला है हमारा कट फ्लावर का इंडस्ट्री। कट फ्लावर यानी कि हमारा डंठल वाली जो फूल होते हैं, उस फूलों की आवश्यकता महानगरों में, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा ही रहती है, काफ़ी ज़्यादा मांग है उनकी। अब महानगरों के अलावा भी अब छोटे छोटे शहरों में भी धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलों की तरफ आकर्षण हो रहा है। किसी भी फंक्शन में, कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, शादी हो, गाड़ियों को ही सजावट करना हो क्योंकि शादियों में, तो उस समय अब क्या है कि लोगों को देखने के लिए, लोगों की आंखों को वो अच्छा लगना चाहिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा कट फूलों की आवश्यकता जो है वो बढ़ते जा रही है। दूसरा जो हमारा लूज़ फ्लावर होता है, किसान भाई, लूज़ फ्लावर मतलब कि जो खुले फूल होते हैं, जैसे कि हमारी ये गेंदे की, तो गेंदे का माला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिक्री होता है, तो गेंदे का माला या फिर गुलाब के माले शादियों के लिए, भगवान पे चढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी त्यौहार, किसी भी समाव, किसी भी पूजे वाले कार्यक्रम में सजावट के लिए हमारा इन खुले फूलों का काफ़ी डिमांड है। तो ये दो चीज़ों की तो सब लोगों को आइडिया है कि हाँ, कट फ्लावर भी होता है, क्लूज भी होता है, पर तीसरा हमारा आता है वैल्यू एडिशन, जो हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ही इसमें ये सबसे अच्छा आय का स्रोत है, और विशेष करके हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाएं जब खेत से फूल कट जाते हैं उसके बाद, उसमें वैल्यू एडिशन का यही मतलब हो गया, जब हमने तुराई कर लिया उसके बाद हम उस फूल में क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे गुलाब है तो गुलाब जल, इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में आप उसे भेज सकते हैं। उसके अलावा आप उसको चाहे तो ड्राई करके ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप देख सकते होंगे कि मेहंदी में, शादियों में मेहंदी में, या फिर संगीत में, या फिर हल्दियों में, हल्दी के कार्यक्रम में आजकल फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ों, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती हैं। फिर चौथा जो हमारा सेक्टर है, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी पार्क हो गया, या फिर होटल हो गया, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री भी होते हैं, या फिर सरकारी या फिर बहुत सारी जैसे हमारी परियोजनाएं हैं CPWD की, NTPC की, या फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उन सबको अब सजावट चाहिए, सबको ग्रीनरी चाहिए। तो ये ग्रीनरी कैसे आएगा? ये ग्रीनरी आएगा आपका लैंडस्केपिंग करने से। तो लैंडस्केपिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, जिसमें हम सजावट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है इनकम का। इसमें आप छोटे से एरिया को भी अगर आप सजावट करते हैं, उसका लॉन बिछाते हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा आप इनकम कमा सकते हैं। फिर एक आता है ऑनलाइन डिलीवरी का प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन डिलीवरी में फर्न्स एंड पेटल्स बोल करके भी एक है जो कि पौधों को भेजता है, लोग गिफ्ट ऑर्डर करते हैं, लोग पौधे, अभी फ्लिपकार्ट में हो गया, सब जगह अभी जितने भी हमारे ऑनलाइन डिलीवरीज है, तो आप चाहें तो आप अपना एक अलग से भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग से भी पौधे सप्लाई कर रहे हैं, सीड सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, तो एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी हमारा बहुत अच्छा आय का स्रोत है। और सबसे लास्ट में जो है वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं अगर हमारी अच्छी क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता आ रही है तो हम एक्सपोर्ट करके और हम उससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम मतलब ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है जिनके पास खास तौर से छोटे ज़मीन है, छोटा छोटी जगह है, वो फूलों की खेती से बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जिनके पास भी छोटा जगह हो, कम भूमि हो, आप छोटे मोटे फूल, आपको बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें नहीं लेनी है, हमारा गेंदा हो गया, आप गेंदे से शुरुआत कर सकते हैं, आप रजनीगंधा से शुरुआत कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि स्थानीय मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की हो रही है, तो आप ऐसे छोटे छोटे कम कम जिसके जिसमें लागत भी आपकी ज़्यादा ना लगे वैसे फूल लेकर के आप ये व्यवसाय जो है वो शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
1: तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी ये वार्ता आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है, बस ज़रूरत है कि आप अच्छी तरीके से डिमांड को समझें, बाजार को समझें और खेती शुरू करें। मैम बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें बताई।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का भी।
1: तो दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है, इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडा क्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर
मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करे जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाए। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: prší. हेलो नमस्कार, तो लीजिए फिर से हाजिर हैं हम और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे अनु, लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम। जी हां, वैसे समय की बात करें, सीजन की बात करें तो सब्जियों की रोपाई का वक्त आ चुका है और उसमें भी बहुत सारे सब्जियां हैं जो आप अपने बागान में लगा सकते हैं। तो सब्जियों को लगाने से पहले ज़रूरी होता है कि हम सावधानियां बरतें। सावधानियां यानी कि जो कीट पतंगे हैं जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, उन कीट पतंगों से हम कैसे आज़ादी दिलाएं अपने बागानों को, यानी कि खास तौर पर सब्जियों के बागानों को। तो आज हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं एक खास विषय पर जो है सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन। जी हाँ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर टी साहा जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और जहाँ तक देखा जा रहा है तो मौसम के अनुसार भी हमारे किसान भाइयों को अभी ये सलाह दिया जा रहा है कि वो अपने नए बागान सब्जियों के लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन की ओर जाएंगे और ये जानना चाहेंगे कि बैंगन के अगर हम बागान लगाते हैं तो उनमें कौन कौन से कीट पतंगे जो हैं वो आ सकते हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे हम।
1: धन्यवाद। मैं पहले बताना चाहूँगा, बैंगन में हमारे बिहार में जो है मुख्यतर तीन चार कीड़े जो है सबसे ज़्यादातर डैमेज करते हैं। उसमें जो है बैंगन के तना और फली छेदक है, जो जब हमारे बैंगन ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं उसके 20 से 25 दिन के बाद से ये कीड़े का आक्रमण शुरू होता है। ये पहले तना में अटैक कर डैमेज करता है, तना के अंदर वो जो है छेद करके उसके अंदर घुसता है, जब एक से जब उसका पिल्लू निकलता है उसके बाद फिर वो होल पहले शुरू में जो है बहुत छोटा रहता है, बट जब मैच्योर होता है लार्वा जो पिल्लू जो है वो निकल के फिर फ्रूट में डैमेज करता है। जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है, फल का अवस्था होता है तो फल में वो डैमेज करता है। ये पिल्लू जो है देखने में थोड़ा सा हल्का सा

0: डैमेज करता है, तो रबी फसल में थोड़ा सा कम करता है कंपेयर अगर किया जाए हम लोग खरीफ बैगन और रबी में अगर बैगन लगाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे सबसे मुख्य कीट है जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डा बीटल, ये शुरू के टाइम में ज़्यादा डैमेज करता है। जब बैगन का 2 से 3 पत्ती के समय आता है इसमें ये क्या, ये बैगन का पत्ती को जो है नोच के इसको पूरा उसका जो हरा वाला पोर्शन, पीला हरा वाला पोर्शन है उसको ज़्यादा डैमेज करके ये कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है और उसमें जो पत्ती में जो वेंट्स वगैरह रहता है वही से बच जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा, जब बैगन का 2 से 3 लीफ का स्टेज रहे उसी समय हमको इनको अच्छा से कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद तीसरा जो कीड़ा है ये है बैगन का जैसिड बोल सकते हैं हम लोग, ये पूरा पीला का हरा कलर का होता है, बहुत छोटा होता है और बैगन के पत्ती के निचले भाग में ये ज़्यादातर देखा जाता है। ये अंडा भी उसी के अंदर ही देता है, अंदर जो बैगन के नीचे वाला पत्ती में, और ये बैगन को बैगन से जो है पत्ती से रस चूस के इसको कंप्लीट जो है एकदम ड्राई कर देता है, जो पत्ता जो आहिस्ता आहिस्ता इसका अंदर जो क्लोरोफिल रहता है बैगन के पत्ती में ये पूरा ख़त्म करके इसको भूरा कलर का आकार कलर में आ जाता है। पहले पीला करते हैं फिर भूरा कलर होके फिर पत्ती गिर जाता है और ये वायरस नामक एक बीमारी भी फैलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ बेंजर। ये कैसे होते हैं देखने में, जब भी ये वायरस बीमारी आपके खेत में आएगा तो बैगन का जो नॉर्मल जो हाइट होता है उससे वो छोटा हो जाएगा, उसमें ना फल लगेगा ना फूल लगेगा और बैगन का जो जितना भी ब्रांचेस आता है उसमें छोटा छोटा जो है जो पत्ती है छोटा छोटा हो जाएगा और वो ऊपर की तरह थोड़ा सा मुड़ जाएगा और उसमें कोई फूल भी नहीं लगता है कोई फल भी नहीं लगता और उसका पत्ती का जो कलर है जो नॉर्मल हमारा बैगन का पत्ती का कलर है उससे ज़्यादा डार्क हरा कलर का पत्ती आता है। तो ये जो है बहुत भयंकर बीमारी है, ये अगर आपके खेत में आ जाता है तो आपको तुरंत जो है आपको खेत को वो बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। और उसके बाद भी कुछ और छोटे छोटे कीड़ा है जिसे हम लोग बोल सकते हैं सादा मक्खी बोल सकते हैं बैगन का, ये भी डैमेज करता है, ये भी निचले वाले पोर्शन के बैगन के पत्ती के नीचे वाले पोर्शन पे रहता है, ये भी शुरू के टाइम में ही डैमेज करता है मैक्सिमम। ये जब डैमेज करता है जो पत्ती का फिर वही कलर चेंज हो जाता है और बैगन का पत्ती का कलर जो है ये पीला कलर का हो जाता है फिर भूरा कलर का हो जाता है, तो इससे भी हमको सावधानियाँ बरतना पड़ेगा। यही सब जो है बैगन का मुख्य कीट जो है हमारे इधर लगता है।
1: अच्छा, यहाँ पर आपने बताया डॉक्टर साहब कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं इन कीट पतंगों से, तो अब जो समेकित अगर हम इसके समाधान के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए खासतौर पर बैंगन के लिए?
0: हम लोग अगर समाधान करने के जाए बेचा हम शुरू से बताना चाहेंगे हम कैसे बैगन का समाधान करेंगे। जैसे शुरू में हम आपका आप लोगों को बताए जो बैगन का जो जैसीड है और सादा मक्खी है ये शुरू के समय में ज़्यादा लगता है और जो 2 से 3 पत्ती में हड्डा बीटल लगता है। अच्छा। जो अगर हम बीज शोधन करके अगर हम लगाए तो ये हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है जैसे जैसीड हो गया सादा मक्खी हो गया ये जो है 20 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और नर्सरी में भी हम जब इसको बुआई करेंगे तब भी कोई दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। इससे हमारा जो है कीट जो फसल में जो कीटनाशी का प्रभाव भी कम होगा और हमारा फसल में जो फार्मर फ्रेंडली जो बंधु कीट है इसका भी नंबर बढ़ेगा और डिजीज भी हमारा कम है, मतलब रोग भी जो है हमारा कम आएगा। तो ये हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा, शुरू से हम लोग बीज शोधन करें, बस सीडलिंग डिप मतलब जो सीडलिंग जो नर्सरी से आप मेन फील्ड में जब रोपाई करेंगे तो सीडलिंग को अगर इमिडाक्लोपिड बा थायोमिथाक्साम नामक जो दवा है इमिडाक्लोपिड का गौचो और थायोमिथाक्साम नामक एक तरह का दवा है, ये दवा अगर 3 ml और 3 ग्राम 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप इसको डिप कर सकते हैं। अगर कम मात्रा में बनाना है तो इसका मात्रा है 1 ग्राम/1 ml प्रति 3 लीटर पानी, अगर स्प्रेयर में लेना है तो 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर में 5 ग्राम 15 लीटर स्प्रेयर में आप घोल कर सकते हो। तो हम इसको बीज शोधन जो है हम उसको नर्सरी से मेन फील्ड में लगाने के बाद हम इसको सीडलिंग डिप करके भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो चूसने वाले कीड़ा से हम 25 से 30 दिन तक कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा।

0: इसके बाद जो हमारा हड्डा बीटल के बारे में आप बताएं, जब आप 2 से 3 लीफ्स की स्टेज में हैं वो मैक्सिमम डैमेज करता है। अगर वो एक बार डैमेज मैक्सिमम कर देंगे तो फिर उसमें फल भी नहीं बनेगा, फूल भी नहीं आएगा और वो ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, तो इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम अगर समेकित प्रणाली में जाए तो हम जानते हैं हमारे गाँव में जो है राख मिलता है, राख मतलब जो जलावन करने के बाद जो रेसिड्यू रहता है उसको अगर हम कलेक्ट करके उसको अगर हम भुरकाव करें पत्ते के ऊपर, भुरकाव करने के बाद हल्का सा मिट्टी का तेल डाल दे, इसलिए डाल दे जो वो उसके ऊपर बना रहे, नहीं तो कभी कभी ये होता है बारिश के समय पे हल्का जो ठंडी के समय पे जो ड्यू जो पानी गिरता है उससे जो है वो फिर पत्ती में सट के नहीं रह सकता है, तो इसी के लिए हम थोड़ा सा मिट्टी का तेल उसमें अगर डाल देंगे तो ये जो है हमको कोई भी कीटनाशी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और हमारा जो पत्ती जो है और हमारा बैंगन का जो फसल है कीटनाशी मुक्त रहेगा। और इस तरह से हम समेकित प्रणाली से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके गाँव में नीम का पेड़ है, नीम का पत्ती आपको मिलेगा, अगर नीम आधारित कोई दवा अगर आप इस्तेमाल करना चाहे अगर बाजार में उपलब्ध है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना मिले तो नीम का पत्ती जो है आप पेड़ से तोड़ के 400 से 500 ग्राम पत्ती मिक्सचर ग्राइंडर में उसको क्रश करके उससे जो निष्कास निकलेगा उसको एक उजला कपड़ा में पोटली बनाकर 1 लीटर पानी एक मिट्टी के घर में घड़ा में व कोई भी बर्तन में आप रख के उसको ओवरनाइट जो 1 रात तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अगले दिन देखिएगा जो पानी का पूरा कलर चेंज हो जाता है, निष्कास से जो पानी में जो मिल गया उससे जो जो आपको जो जो बना जो नीम का सॉल्यूशन बना वो आप एक लीटर का पानी का जो बॉटल मिलता है उसमें आप उसको आप स्टोर कर गए, स्टोर करके उसी से 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप छिड़काव करें। अगर 15 लीटर का नैपसैक स्प्रेयर है तो 75 ml 75 ml का जो है आप लेके उसको छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको कोई कीटनाशी का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और हम जो है समेकित कीट प्रबंधन के और भी बढ़ सकते हैं, तो इससे बहुत हद तक हमारा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप केमिकल में भी जाना चाहते हैं तो केमिकल के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक केमिकल है बहुत ही सस्ता है जिसको हम लोग बाजार में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन जो नाक के नाम से मिलता है इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है 1 ml 1 लीटर पानी में आप घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। ये हो गया जो चूसने वाले कीड़ा और जो चाटने जो चूसने और चाटने वाले। अब जो सबसे खतरनाक जो कीड़ा है बैगन का तना और फली छेदक, तना और फली छेदक के लिए हमको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। इसलिए बैगन जो है हम डायरेक्टली इसको खाते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कीटनाशी का छिड़का जितना हद तक कम करें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो शुरू में हम लोग क्या कर सकते हैं, शुरू में हम आपको जैसे नीम आधारित दवा के बारे में बताएं, आप नीम आधारित दवा अगर बाजार में मिला आप उनका छिड़काव कर सकते हैं। नीम के पत्ती से बना जो जो सॉल्यूशन बनाए हम उसको 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके 7 दिन के अंतराल में 25 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप उसके अंदर छिड़काव करने से ये जो है रिपेलेंट का काम करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारे कीड़े का आक्रमण कम होगा। और हम फेरोमोन ट्रैप जो है बाजार में उपलब्ध है, फेरोमोन ट्रैप जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं आपके खेत पे। इससे क्या होगा, जो मेल जो मक्खी होता है वो मक्खी सोचेगा उसका फीमेल उस ट्रैप के अंदर है, वो उससे मेटिंग करने जाएगा और उसके अंदर वो फंस के मर जाएगा। इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारा जो बैगन का तना और फली छेदक का पॉपुलेशन है ये भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और इससे हमारा कंट्रोल भी बहुत हद तक हो जाएगा। ये तो हुआ समेकित कीट प्रणाली। अगर हम केमिक बायोपेस्टिसाइड भी इसके अंदर हम बताना चाहेंगे, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस नामक एक बायोपेस्टिसाइड है जो बैक्टीरियासाइड बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग 1 ml 1 लीटर पानी में बाजार में BT करके नाम से मिलता है, बैसिलस थुरिंजिनेंसिस भारत कुर्सटाकी के नाम से मिलता है, इसको हम लोग बाजार से खरीद के इसको भी 1 ml 1 लीटर के दर से पानी के दर से हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ये भी समेकित कीट प्रणाली में कर सकते हैं। और 2 बायो इंसेक्टिसाइड्स है, अगर आपको लगे जो नहीं मात्रा 10% to 15% डैमेज से ज़्यादा हो जा रहा है हमारे विल में, इस समय जो है आप 2 बायो इंसेक्टिसाइड है, एक है स्पाइनोसेट जो बाजार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, इसका मात्रा जो है 2 लीटर पानी में 1 ml, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाजार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है जिसका मात्रा है 5 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो तो ये दोनों में से कोई भी मिल जाए, थोड़ा सा ये दो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है, किंतु ये दवा तभी आपको स्प्रे करना पड़ेगा जब आपका खेत में कीड़े के आक्रमण 20-30% से ऊपर डैमेज कर रहा है तब। नहीं तो हम जो आपको समेकित कीट प्रणाली बताए जिसमें आपको नीम का नीम लीव्स कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेसिस का स्प्रे कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हैं तभी आप कर सकते हैं। और ये भी दोनों बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहते हैं इसके लिए बहुत ही अच्छा दो केमिकल पेस्टिसाइड है। इस एक जो नाम है फ्लूबेंडियामाइट जो फेम करके दवा के नाम से आता है, ये जो है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में आप घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा जो है लैम्डा साइहैलोथ्रिन जो कैराटे के नाम से आता है, लैम्डा साइहैलोथ्रिन नामक दवा, ये भी बहुत अच्छा है। ये बैगन के तना फली या तनाछेदक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसका भी यूज़ करते हैं। इसका दाम थोड़ा सा कम होगा। फेम नामक जो दवा थोड़ा सा कॉस्टली है, किंतु ये ही दवा आपको कब करना पड़ेगा जब आपका आक्रमण ज़्यादा होगा तभी आपका छिड़काव करना पड़ेगा।
1: तो इस तरीके से आप बैंगन के कीट से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप राख का छिड़काव कर सकते हैं उस पर क्रासन तेल डालकर। और इसके अलावे जो है अगर सावधानियों की बात करें तो आप नर्सरी से जैसे ही उसे पौधे रोपाई के लिए ले जाते हैं तो बीज शोध करके ही ले जाएँ, अन्यथा नहीं ले जाएँ क्योंकि डर रहता है कि उसमें कीट पतंगे भी लग सकते हैं। इसके अलावे अभी बात आ रही है डॉक्टर साहब कि हम टमाटर की जो है रोपाई वो कैसे करें। अभी फ़िलहाल टमाटर की रोपाई का सीज़न भी है, सलाह दिया जा रहा है किसान भाइयों को कि आप टमाटर की आराम से रोपाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सावधानी भी बरतना है और उसमें सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि कीट पतंगों से कैसे बचा जाए। तो हम जानना चाहेंगे टमाटर खासतौर पर इस पौधे में जो कीट पतंग लगते हैं उनके बारे में और वो किस तरीके से इन्हें नुकसान पहुँचाते हैं।
0: टमाटर में हमारे बिहार में मुख्यतर 3-4 तरह के कीड़े हैं जिसमें ज़्यादा समस्या दिखाई देता है। शुरू के टाइम में जो सादा मक्खी जिससे एक वायरस डिजीज जो हम लोग बताते हैं टोमेटो लीप कर्ल वायरस, मतलब पत्ता ऊपर की तरह कुकड़ी हो जाता है टोमेटो लीप कर्ल वायरस, ये जो वायरस बीमारी है ये सादा मक्खी नामक कीड़े से फैलता है। ये सब शुरू में सबसे प्रॉब्लम होता है। इसके छोड़ के टमाटर के सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है टमाटर फसल को वो है फली छेदक। वो जो है अंतिम अवस्था में आता है जब फल आना शुरू होता है उस समय जो है फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत ही समस्या। तो फली छेदक को अगर हम लोग कैसे पहचाने, तो हम जब भी देखेंगे टमाटर के फल में छोटा सा छेद किया हुआ रहता है, जब भी उसका आक्रमण होता है उसको अगर हम तोड़े फल को तो उसके अंदर से एक पिल्लू, तो हरा कलर का पिल्लू जो है निकल के आएगा। तो वो सबसे ज़्यादा बैगन में जो है 20-30% तक डैमेज करता है अगर हम बैगन लेट में लगाए। अगर हम बैगन अक्टूबर से नवंबर के महीने लगा देते हैं और हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च तक हो जाता है हमारे, उस केस में हम लोग देखते हैं जो बैगन में फली छेदक का आक्रमण कम है। अगर बैगन हम लोग लेट लगाते हैं लगभग नवंबर के एंड दिसंबर में लगाते हैं और हार्वेस्टिंग हम लोग मार्च के मिडिल से अप्रैल तक करते हैं, तो उस फसल में हम फली छेदक का आक्रमण सबसे ज़्यादातर देखते हैं। ये फली छेदक छोड़ के जो तीसरा जो हमारा कीड़ा है जो हम लोग टमाटर का लीफ माइनर कहते हैं, जो पत्ता में जो है सांप जैसा जो है अपना दाग छोड़ के जाते हैं, और ये भी जो है बहुत ही हद तक डैमेज करता है किंतु हमारा फल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, किंतु टमाटर का पत्ती के ऊपर मैक्स बहुत हद तक ये डैमेज पहुँचाता है। तो ये तीन जो है मुख्य कीड़ा है, टमाटर का सादा मक्खी, टमाटर का फली छेदक और टमाटर का लीफ माइनर। और माइनर अगर जो उससे भी अगर हम डैमेज अगर कम करें इसके बारे में अगर हम बताना चाहेंगे तो टमाटर में माइट का भी, मकड़ी जिसको बोलते हैं, माइट का भी समस्या है। और इसमें जो है पत्ता जो है टमाटर का नीचे की तरह मुड़ने लगेगा। जब हम बताएं सादा मक्खी जब आक्रमण होगा तो ऊपर की तरह मुड़ेगा, किंतु जब मकड़ी व माइट का आक्रमण होता है तो नीचे की तरह मुड़ता है। तो ये भी जो है बहुत हद तक डैमेज करता है टमाटर के पत्ते के शुरू के समय में।
1: अच्छा, तो ये हो गई बातें कीट की, और अब इसका समाधान कैसे करें हमारे किसान भाई, उनके बारे में जानना चाहेंगे।
0: समाधान के लिए पहले ही हम बताना चाहेंगे आपको शुरू से ही आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आप बीज शोधन से शुरू करते हैं तो तो आपको जो बैगन टमाटर में जो वायरस बीमारी है, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जिसको हम कहना चाहेंगे, इससे आप बहुत हद तक जो है आप निष्कास पा सकते हैं। इसमें जो है आपको जो है इमिडाक्लोपिड नामक दवा जो गौचो करके नाम से आता है 5 ग्राम प्रति केजी सीट, थायमिथक्सम बा एक तरह नामक दवा जो आता है वो भी 5 ग्राम प्रति केजी सीट के दर से आप इसको बीज शोधन कीजिए। बीज शोधन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम आपको ये थोड़ा सा बता दें, एक पॉलीथीन जो है आप मिट्टी में बिछा दीजिए और सीट को फैला दीजिए पॉलीथीन के ऊपर, और पॉलीथीन में थोड़ा सा हल्का सा जो है बीज के ऊपर नमी के लिए थोड़ा सा पानी का हल्का सा छिड़काव करें, और जो इमिडाक्लोपिड नामक दवा और थायमिथक्सन का जो पाउडर हम बताए वो पाउडर पूरा बीज में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करके आप हाथ में पॉलीथीन पहन के, खाली हाथ में नहीं, हाथ में कुछ पहन के, पॉलीथीन पहन के या कुछ भी ग्लव्स पहन के आप उसको अच्छा से मिला दीजिए। मिला के एक पूरा रात छोड़ दीजिए, अगले दिन बा अगले से एक दिन और छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन जाके आप इसको जो है सोइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपको शुरू के समय में जो आपका वायरस नामक बीमारी का जो समस्या है ये समस्या आपके खेत पे नहीं आएगा, ये बहुत हद तक जो है आपको खेत में कंट्रोल भी कर देगा और कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव भी नहीं करना पड़ेगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद जो है शुरू के 20 से 25 दिन के बाद अगर बीज शोधन करते तो 30 दिन और 40 दिन के अंतराल में, मतलब 10 दिन के इंटरवल में, 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और 40 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग के बाद आप दो छिड़काव, कीड़ा खेत में थोड़ा भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड नामक दवा है वो एडमायर बा कन्फिडर के नाम से मिलता है, 1 ml 3 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। बा आप जो है थायमिथक्सम जो एक तरह नामक दवा है इसका भी जो है आप 1 ग्राम 3 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। और अगर समेकित कीट प्रबंधन के तरफ आप जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो ये सादा मक्खी जो है, जो वेक्टर है जो बीमारी का, जो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, इसके लिए हम लोग योलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। योलो स्टिकी ट्रैप ये है, आप कोई भी पीला कलर का कागज व पॉलीथीन जो है, आप एक पिच बोर्ड जो है, बच्चे लोग जो पढ़ता है वो पिच बोर्ड को, उसको उखाड़ के पिच बोर्ड के दोनों तरफ जो पीला कलर का कागज साट दीजिए, साट के उसके अंदर जो है ग्रीस और गोंद का मिक्स करके, ट्रांसपेरेंट गोंद होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट गोंद और ग्रीस का जो है प्रोलेप मिक्स करके उसको ब्रश से बाकी इससे दोनों साइड में आप उसका प्रोलेप लगा दीजिए। लगा के जो है आप एक जो बांस का ये मिलता है, स्टिक मिलता है, उसको जो है आप गाड़ के जो फसल का जो हाइट होता है, जो हमारा पौधा का जो हाइट है, उसी हाइट के अनुसार आप अपना जो ट्रैप जो बनाए उस ट्रैप को आप जो फील्ड खेत में लगाइए। ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना, जो उसका हाइट है फसल का वही सिमिलर हाइट में आपको लगाना है। इसलिए लगाना है, जो हमारा चूसने वाले जो कीड़ा है वो ज़्यादातर ऊपर उड़ नहीं पाते हैं, वो बहुत ही वीक है, उड़ नहीं पाते, तो इसीलिए वो सिर्फ हवा के माध्यम से ही दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो हम येलो स्टिकी ट्रैप बताए, जो पीला कलर का ट्रैप बताए, इससे क्या होगा, जो हमारा सादा मक्खी उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा होगा और उसमें जाके वो फंस जाएगा। एक बार जब उसमें फंस जाएगा उसके गोंद और ग्रीस के वजह से वो उधर से निकल नहीं पाएगा, उसी में वो मर जाएगा। तो इससे जो है बहुत हद तक हम पॉपुलेशन जो है हमारा सादा मक्खी का कंट्रोल कर सकते हैं। और शुरू में जो है आप नीम आधारित, आपको हम बताए थे नीम आधारित कोई भी दवा, निम्बिसिडिन हो, निमाजोल हो, एचूक हो, कोई भी दवा अगर आपको बाजार में मिले वो कर सकते हैं। बा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम लोग नीम का बीज को मिक्सचर ग्राइंडर में क्रश करके उसका 5% सॉल्यूशन बना के 5 ml 1 लीटर पानी में घोल करके भी हम छिड़काव कर सकते हैं, पर नीम का पत्ती से भी हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो है हम कीट बताए, कीड़े के बारे में बताए, जो टमाटर का फली छेदक है, फली छेदक के लिए हम लोग शुरू से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जब भी हम लोग जिस फील्ड में लगाना है उस फील्ड को अच्छा से जुताई करना चाहिए, इसलिए जो कीड़ा है, कीड़े का जो इमैच्योर जो अवस्था है वो एक इमैच्योर स्टेज जो है वो सॉयल जो मिट्टी के अंदर भी रहता है, अगर हम उसको अच्छा से प्लाउइंग करेंगे तो वो जो है सूर्य के सामने जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, उससे क्या होगा उसका पॉपुलेशन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो प्लाउइंग करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हम टमाटर में हम ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप क्या मतलब जो है, जो जो कीड़ा टमाटर छोड़ के दूसरे क्रॉप में भी अट्रैक्ट हो, उससे क्या होता है जो हमारा जो मेन क्रॉप टमाटर है वो बच जाएगा। जो ट्रैप क्रॉप है, ट्रैप क्रॉप के ऊपर ही हम दवा का छिड़काव करेंगे तो मेन क्रॉप में कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं होगा। तो ये ट्रैप क्रॉप का नाम है मेरीगोल्ड, गेंदा जिसको हम लोग बोलते हैं। गेंदा का जो है 25:2 रो, मतलब 25 रो टमाटर, 2 रो गेंदा, 25 रो टमाटर, 2 रो गेंदा, ये लगा के हम जो है अपना पेस्ट जो है जो हम बोले पिल्लू हेलिकोबर्पा, वो हम गेंदा पे शिफ्ट हो जाएगा। बिकॉज गेंदा का जो फूल है वो जो पीला कलर का होता है, इसमें वो अट्रैक्ट होता है और उसमें वो शिफ्ट हो जाए, तब हम गेंदा में स्प्रे कर से जो हमारा टमाटर जो मेन फसल है इसको पेस्टिसाइड के लोड से बचा सकते हैं। ये एक तकनीक है समेकित कीट प्रबंधन का। दूसरा जो समेकित कीट प्रबंधन का तकनीक है, हम बताए थे फेरोमोन ट्रैप के बारे में। फेरोमोन ट्रैप भी आप लगा सकते हो। फेरोमोन ट्रैप का नाम है हेलिलियो। हम लोग अगर मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटरिंग मतलब कब हमारे खेत में कीड़ा आए, इसके अगर हम लोगों को जानना है तो इसके लिए हम लोगों को 1 हेक्टर में 12 ट्रैप लगाना पड़ेगा 200-200 मीटर के दूरी में। उससे क्या होगा, जो उसका एडल्ट का जो एडल्ट है, पिल्लू का जो एडल्ट है वो उसमें फंस जाएगा। उससे हमको पता चलेगा जब हमारे खेत में जो है हेलिकोबर्पा का इन्फेस्टेशन शुरू हो चुका है, तो हम लोगों को सचेत रहना होगा। और उसके बाद हम लोगों को अगर इन्फेस्टेशन लेवल जो है 5%, 5% या 10% फ्रूट डैमेज से ज़्यादा हो, तो हमको समेकित कीट प्रणाली में से एक दवा आता है HANPV, उसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये नामक दवा का जो है हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से बहुत 70-80-90% तक हमारा कीड़े का जो है कंट्रोल हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। तो हमको कोई रासायनिक दवा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसान बंधु रासायनिक दवा में भी जाना चाहता है तो रासायनिक दवा के लिए हम बता देते हैं, जो एक दवा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्साकार्प, जो बाजार में एवांट करके नाम से मिलता है, उसका मात्रा है 2 लीटर पानी में 1 ml इंडोक्साकार्प एवांट, ये की दवा है। दूसरा जो दवा है ये है लैम्डासाइलोथ्रिन, जो बाजार में कराटे के नाम से मिलता है। ये शुरू में आप दे सकते हैं, इसका महंगा भी नहीं है ज़्यादा। आप इस अगर आपका कीड़े का आक्रमण ज़्यादा हो गया, अगर लगता है जो नहीं किट जो है कीटनाशी, अच्छा कोई कीटनाशी देना पड़ेगा जिससे कंट्रोल और कम हो जाए, इसके लिए हम बताना चाहेंगे थोड़ा कॉस्टली दवा है, जैसे स्पाइनोसेट जो हम बताना चाहेंगे, स्पाइनोसेट जो बाज़ार में ट्रेसर करके नाम से मिलता है, 2 लीटर पानी में 1 ml के दर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बस फ्लूबेंडियामाइड जो फेम है, फेम भी 1 ग्राम प्रति 3 लीटर के दर से 15 लीटर पानी में 5 ग्राम के दर से आप छिड़काव कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा दवा है जो कोराजेन के नाम से मिलता है, ये भी जो है 3 लीटर पानी में 1 ml के गुना के दर से घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दो जो लास्ट दवा बताए, फ्लूबेंडेमाइड फेम और कोराजेन, ये थोड़ा सा महंगा दवा है। जब आपका खेत में आक्रमण जो है 20-30% के ऊपर चला जाएगा तभी इस दवा का छिड़काव करें, अन्यथा आपको जो पहले जो हम इंडोक्सोकार्प के बारे में बताए, लैम्डासाइलोथ्रिन के बारे में बताए, इसी दवा का आप छिड़काव करें। और अंतिम जो मैं कीड़े के बारे में बताया था, टोमेटो का लीफ माइनर जिसको हम लोग बोलते जो पत्ते में जो सांप के जैसा दाग छोड़ देता है, इसके लिए जो है आप समेकित कीट प्रबंधन में नीम आधारित दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक में क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा है, क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो है आप प्रोफेनोफॉस नामक दवा है जो कुराक्रॉन के नाम से मिलता है, ये भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो किसान भाइयों, आपने जाना कि लगभग सभी सब्जियों में कीट और समाधान एक समान है, लगभग, तो इसलिए आप इस तरीके से इन दवाइयों का छिड़काव जो डॉक्टर साहब ने बताया, उन दवाइयों का छिड़काव करके या फिर कुछ सावधानियों को अपनाकर अपनी सब्जियों को स्वस्थ रख सकते हैं, यानी कि इन कीटों से दूर रख सकते हैं। तो आज डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे आगे मुलाकातें होंगी अगले विषय के साथ, अगली जानकारी के साथ हम हाजिर होंगे 90.8 FM ग्रीन पर। तब तक सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। कृषि

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम के इस एपिसोड में हम बातें करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान आने वाले काले खून के बारे में। क्यों आता है काला खून, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो सीधी बात कि हर बार जो काला खून आता है वो बीमारी की पहचान नहीं होती है। ये अक्सर इस वजह से होता है ना कि खून हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा समय तक रुका रहा और वो ऑक्सीडाइज हो गया यानी कि पुराना हो गया। ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगती है वैसे ही खून का रंग गहरा हो जाता है यानी कि डार्क ब्राउन हो जाता है या तो फिर ब्लैक हो जाता है। और अगर हम पुराने खून की बात करें यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो पुराने खून आते हैं, जो काला खून आता है उसकी बात करें, उसके कारण की बात करें, तो जब हमारा पीरियड से धीरे धीरे शुरू होता है या फिर बहुत धीरे खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में भी काला खून आता है। और कई बार खून यूट्रस में बहुत ज्यादा देर तक रहता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो काला या तो फिर डार्क ब्राउन कलर का खून आता है। और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आकर भी खून काला हो जाता है और ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल रीजन है। और कई बार जो फ्लो बहुत धीमा होता है पीरियड्स का होता है ना, कई बार बहुत धीमा फ्लो होता है, कई बार बहुत हेवी फ्लो होता है, तो जो धीमा फ्लो होता है तो ऐसी स्थिति में भी जो खून आता है वो काला आ सकता है। क्या होता है कि धीमा फ्लो है तो खून जल्दी बाहर नहीं आ पा रहा है तो ऐसे में रुक रुक कर अंदर डार्क हो जाता है और अक्सर ये लास्ट डेज में दिखता है कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है। और कई बार हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से भी होता है। हार्मोन्स यानी कि जो एस्ट्रोजन होते हैं, प्रोस्टेस्टेरोन होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके जो साइकिल है ना तो वो भी इरेगुलर हो गए हैं और खून का रंग भी बदल सकता है। और अगर PCOS जैसी कंडीशन है तो भी आपके पीरियड्स के दौरान के जो खून है वो काले हो सकते हैं। और अगर ये सारी परेशानियां हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स के दौरान काला खून इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है यानी कि संक्रमण की वजह से आ रहा है तो परेशानी की बात हो सकती है। और अगर इन्फेक्शन की वजह से काला खून आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बहुत ही बुरी बदबू आती है और साथ ही खुजली भी होती है और दर्द भी होता है काले खून के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला भी हो सकता है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का एक सिम्टम हो या फिर उसका ये एक साइन हो यानी कि मिसकैरेज का एक साइन हो। ऐसी स्थिति में भी डार्क या तो फिर ब्लैक डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी डार्क हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बात करें तो गर्भावस्था की जो शुरुआती सिम्टम्स दिखते हैं ना उनमें से एक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, तो ये भी हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो और वो डार्क हो। अगर मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में बता दूं आपको तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से काफी अलग होता है। ये उतना लंबा नहीं चलता है और बहुत हेवी फ्लो भी नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज से जुड़ा मामला तो नहीं है। इसके अलावा यूट्रस से भी जुड़े कुछ परेशानी हो सकती है जैसे कि फिब्रॉइड्स हो सकता है या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। फिब्रॉइड्स की बात करें तो गर्भाशय में गांठ बन जाते हैं, तो इसमें आमतौर पर लक्षण दिखते हैं कि पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक पीरियड्स चलते हैं। ऐसे में पेल्विक पेन हो सकता है या तो फिर पेल्विक में आपको दबाव महसूस हो सकता है और साथ ही आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत भी पड़ती है। और इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में सूजन या तो फिर भारीपन भी आपको महसूस होता है और कभी कभी इसमें खून गहरा यानी कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक भी दिख सकता है और ख़ास तौर से तब जब फ्लो रुक रुक कर आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में तो ये कंडीशन थोड़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक तो काला खून आता ही है, इसके अलावा बहुत ही इरेगुलर ब्लीडिंग होती है और जिसमें कि डार्क ब्लड भी हो सकता है, और कभी कभी आपको कमजोरी लगती है या फिर नौजिया लगता है। इसके अलावा आप पेशाब जाते हैं या स्टूल पास करते हैं तब भी आपको दर्द होता है। इसके अलावा आप पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ पेट दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो भी ये हो सकता है कि लक्षण हो एंडोमेट्रियोसिस का। और अगर आपको ऐसे सारे लक्षण दिख रहे हैं और बार बार दिख रहा है, हर बार बहुत दर्द हो रहा है, बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न आपको नोटिस कर रहे हैं, कभी बहुत स्लो है फ्लो और कभी बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रहा है, इसके अलावा डेली लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है कि इतनी ज़्यादा परेशानी आपको हो रही है, इतना आपको दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप सीधे आप डॉक्टर से मिलिए। आपको वेट करने की ऐसी स्थिति में ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि सिंपल आपको मैं समझाऊं तो सिर्फ ब्लैक ब्लड है, गहरा खून है, डार्क ब्राउन खून है, तो इसे नॉर्मल आप ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक ब्लड के साथ आपको पेन हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि आप किसी और भी परेशानी से जूझ रही हो, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से मिलना ही बहुत समझदारी का काम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना यूट्रस से जुड़ी प्रॉब्लम की, तो हमने बात कर ली। कई बार डिलीवरी के बाद भी जो डिस्चार्ज होता है उसका भी जो रंग होता है वो धीरे धीरे लाल से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो तनाव से भरी हुई है, आपकी डाइट ख़राब है, आप भरपूर नींद नहीं ले पा रही हैं, तो भी हो सकता है कि आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, और फिर आपके कलर यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड है उसका रंग चेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि चिंता कब करनी चाहिए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत तब होती है जब आपका जो साइकिल है लगातार हर साइकिल में काला खून आ रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा या तो फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आ रहे हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये सीरियस कंडीशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ऐसे कोई भी परेशानी, आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखे काले खून के साथ, तो आप डॉक्टर से मिलिए। और कब ये नॉर्मल होता है, तो पीरियड्स के शुरुआत में या फिर पीरियड्स के अंत में काला खून आना नॉर्मल है। अगर आपका फ्लो कम है तो भी ये नॉर्मल होता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये कभी कभार होता है, लगातार हो रहा है तब टेंशन की बात है। तो आप समझ गए होंगे अब तक कि काला पीरियड ज़्यादातर पुराना खून होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये हेल्थ इश्यूज के भी संकेत हो सकते हैं। तो अगर आपको पुराना खून बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। आप हेल्दी डाइट लीजिए, कम स्ट्रेस लीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने साइकिल को ट्रैक कीजिए, ताकि आप अगर आप अपने साइकिल को ट्रैक करेंगे तो अगर कोई हेल्थ इश्यूज के वजह से आपको पीरियड्स के दौरान काला खून आ रहा है या डार्क ब्राउन खून आ रहा है, तो आप उसे ट्रैक कर पाएंगे, उसका आप पता लगा पाएंगे और डॉक्टर से मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप हाइजीन मेंटेन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेस कम लेंगे तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो भी आपके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं और आपको काला खून आने की परेशानी नहीं होती है। तो आज के कार्यक्रम में, आज के लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। और जाने से पहले एक खास बात की, अपना और अपने अपनों का रखे बिल्कुल विशेष ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार, और सुनते रहे 90.8 FM ग्रीन, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
3: Ladies first.

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दें, आगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीट 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले या फिर डाइमेथोएट 30 cc की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 cc की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रीन की 2 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रीन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करे। ध्यान दे, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करे जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दे, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा ले और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाए। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: prší. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए विषय लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में फल वर्गीय सब्जियों में नर्सरी प्रबंधन। इस विषय के साथ हमारे बीच हैं आज डॉक्टर प्रीति सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम स्वागत है आपका।
1: सबसे पहले मैं अपने किसान भाई को बताना चाहूँगी कि नर्सरी की उपयोगिता क्यों क्या है और हमें ये करना ही क्यों चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फल है, फलों की नर्सरी है, वहाँ ग्राफ्ट, शायन के मात्र पौधे, रूटस्टॉक और पपीता जैसी बीज प्रवर्धित फसल की पौध के उत्पादन के लिए आवश्यक है। युवा पौधों को चाहे बीज से या वनस्पतिक प्रजनन द्वारा प्रवर्धित किया गया हो, विशेष रूप से विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रतिकूल तापमान, भारी वर्षा, सूखा हवा, विभिन्न प्रकार के कीट और बीमारियों से बचाना होता है। यदि बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं तो अंकुरण अक्सर खराब होता है और युवा पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और परिपक्व होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए फल की फसलों को खेत में रोपने से पहले नर्सरी में प्रचारित और किया जाना चाहिए और उगाया जाना चाहिए। तो जो हमारी नर्सरी है, उस जो ये फलों की नर्सरी है, इसको हम तीन भाग में इस टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो सकता है कि नर्सरी की साइट का चयन कैसे करें, दूसरा नर्सरी की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और तीसरा कि नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं कि नर्सरी प्रबंधन के लिए साइट सिलेक्शन कैसे करें। तो नर्सरी के लिए साइट का चयन काफ़ी सावधानी और सोच विचार के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि नर्सरी के स्थान का उसकी समग्र सफलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्सरी के लिए स्थान और स्थान के चयन के लिए विचार किए जाने वाले 5 महत्वपूर्ण कारक हैं: जलवायु, स्थान पर मध्यम जलवायु और लंबे समय तक बढ़ने वाला मौसम होना चाहिए, विशेष रूप से तेज़ जलवायु, उतार चढ़ाव या तेज़ हवा का वेग या ओलावृष्टि की घटनाओं के साथ अत्यधिक तापमान का अनुभव करने वाले स्थानों से बचना चाहिए। दूसरा है स्थलाकृति, जिसे हम टॉपोग्राफी भी कह सकते हैं। अगर जो सबसे कुशल उपयोग के लिए नर्सरी के लिए भूमि को समतल किया जाना चाहिए, बाढ़ या पाले की आशंका वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए, नर्सरी के लिए निचले इलाकों का चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मिट्टी। मिट्टी जो हो, हमारी गहरी बलुई दोमट से चिकनी दोमट बनावट वाली और पर्याप्त जल धारण क्षमता करने वाली होनी चाहिए, और ये कंकरीला या पथरीला नहीं होना चाहिए। अधिकांश फल पौधों के लिए इष्टतम जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5 से 7.2 के आसपास है। 7.5 से अधिक अगर पीएच मान है तो इस साइट को चुनने से बचना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पानी। एक आदर्श नर्सरी साइट में रोपण और बढ़ते मौसम के दौरान वर्षा का वितरण अच्छा होना चाहिए। नर्सरी के निकट या भीतर एक स्थायी जल का स्रोत होना चाहिए, जिससे हम सिंचाई सफलतापूर्वक कर सकें, और नई पौधे के लिए सिंचाई का पानी लवण रहित होना चाहिए। जो पांचवा और इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कीट पतंगों और रोग पैदा करने वाले जीवों की व्यापकता। गंभीर कीटों या बीमारियों, निमटोड या खरपतवारों की उपस्थिति को पहले ही जांच लेना चाहिए, और अगर किसी मिट्टी में इन सब की बहुत व्यापकता है तो हमें इस साइट को नहीं चुनना चाहिए। अब हम आते हैं कि फल नर्सरी की स्थापना के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी नर्सरी साइट को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके चारों बगल फेंसिंग या बाड़ लगा लेना चाहिए। फेंसिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पोल बना के उसके ऊपर वायर या तार चढ़ा सकते हैं, या फिर आजकल एक नेचुरल फेंसिंग वाला भी पॉइंट है जहाँ पर आप करौंदा जैसे फलों को नेचुरल फेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। सड़क और रास्ते होने चाहिए आपके नर्सरी में, ताकि जो आपके जो भी प्रवर्धित पौधे हैं उनको जल्दी से मार्केट तक लेके जाया जा सके। और तीसरा, कार्यालय या फिर सह भंडार, जहाँ से आप सारे चीज़ों को मैनेज कर सकें। उसके बाद आता है मदर प्लांट ब्लॉक। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो फल का प्रवर्धन होता है वो या तो ग्राफ्ट से होता है, या तो लेयरिंग से होता है, या बडिंग या कटिंग से होता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा मदर प्लांट का ब्लॉक हो या शायन बैंक का ब्लॉक हो। इस और ये जो मदर प्लांट है हमारा, ये डिपेंड करता है कि हमारे बाज़ार में किस वैरायटी की मांग ज़्यादा है। जिस वैरायटी की भी मांग ज़्यादा हो, उसी वैरायटी का मदर ब्लॉक एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें नर्सरी में। किसी भी नर्सरी की सफलता काफ़ी हद तक आगे के गुणन के लिए मात्र पौधों के प्रारंभिक चयन पर निर्भर करती है, और इसे अनुसंधान संस्थान या प्रतिष्ठित नर्सरी से ही खरीदा जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सिंचाई प्रणाली की। फल नर्सरी में पौधों को सिंचाई के लिए पानी की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में पॉटिंग मिक्सचर के साथ पॉली बैग में उगाया जाता है। अतः ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का होना पानी की बर्बादी को कम करता है, और साथ ही साथ पौधे को आवश्यक मात्रा में जल भी प्रदान करता है। छठी जो बात है वो है सीड बेड तैयार करना। जो बीज की क्यारियां तैयार करते हैं नर्सरी में, यह घटक पौध और रूट स्टॉक बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें जल स्रोत के पास बिछाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक लंबाई के साथ इनकी जो चौड़ाई हो है वो 1 से 1.5 मीटर के आसपास होनी चाहिए, और दो बेड के बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये जो 60 सेंटीमीटर का जो स्पेस है, इसे बीज बोने, निराई करने, पानी देने, छिड़काव करने और पौधे उठाने में आसानी होती है। अगर दूसरा जो तरीका है नर्सरी में पौधे तैयार करने का, एक तो सीड बेड हो गया और दूसरा है पॉली बैग। पॉली बैग में पौध और रूटस्टॉक उगाने के लिए नर्सरी बेड की तुलना में अधिक जगह की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों की वृद्धि में एकरूपता के साथ साथ मृत्यु दर भी काफ़ी कम हो जाती है। प्रत्येक बेड 500 के आसपास ग्राफ्ट या गूटी रखा जा सकता है, और इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है पॉटिंग मिश्रण या पॉटिंग यार्ड। तो जो भी हमारा नर्सरी का एरिया है, वहाँ पे हमारा एक पॉटिंग यार्ड होना चाहिए, जहाँ पे टाइम टू टाइम जो हमारा पॉटिंग मिक्सर है वो तैयार होते रहना चाहिए। पॉटिंग एक अच्छा पॉटिंग मिश्रण में एक भाग मिट्टी, एक भाग नदी के किनारे का रेत और एक भाग FYM होना चाहिए। इसका अनुपात 2:1:1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो भाग मिट्टी, एक भाग रेत और एक भाग FYM, इनको मिला के या इनको जो आपका पॉटिंग यार्ड है वहाँ पे मिला करके आप पॉली बैग में भर सकते हैं, और इसमें बाद में आप जो भी बीज डालना चाहें वो आप डाल के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि जो ये पौधे हैं नर्सरी के, ये कभी कभी हम पॉली हाउस में भी तैयार कर सकते हैं। तो जो पॉली हाउस में तैयार हुए पौधे होते हैं वो थोड़े से नाजुक होते हैं, तो उनको डायरेक्ट फील्ड में ले जाने से पहले अगर आपके पास शेड नेट की फैसिलिटी है तो आप उसको शेड नेट में लेके जाइए, क्योंकि शेड नेट में क्या होता है कि जो आपके पौधे होते हैं उनको थोड़ा सख्त होने का टाइम मिलता है, वरना पॉली हाउस से तुरंत बाहर ले जाने पे, फील्ड में लेके जाने पे उनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ सकती है। इसीलिए अगर पॉली हाउस में आप पौधे उगा रहे हैं तो उसको पहले आप शेड नेट में लेके जाइए, वहाँ पे 1-1.5 महीना रखिए, और फिर 1-1.5 महीने के बाद आप उसको फील्ड कंडीशन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब नर्सरी की तैयारी करें कैसे। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें करनी है क्यारी की तैयारी। जहाँ पे भी हम क्यारी की तैयारी करेंगे वहाँ पे खरपतवार का उन्मूलन, मिट्टी को समतल करना और खेत को जोतना शामिल है। खेत की 2 बार गहरी जुताई करने से मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार तथा अन्य वनस्पतियों को नष्ट करने में मदद मिलती है। जुताई करते समय मिट्टी में पाए जाने वाले पत्थरों और जड़ों को हटा देना चाहिए, क्योंकि वे पौधे के विकास में बाधा डालते हैं। सूखी घास और झाड़ी सामग्री को जलाने से कीड़े और खरपतवार की समस्या को कम करने में मदद मिलती है, और बची हुई खनिज समृद्ध राख बीज बिस्तरों की उर्वरता को की में सुधार करती है। अब जब हमने खेत की तैयारी कर ली है तो हम जो हमारा बेड है, सीड बेड है, उसको उसका लेआउट करना और समतलीकरण करना हम कर सकते हैं। अन्य आकारों की तुलना में आयतकार बेड्स को प्राथमिकता दी जाती है। बीज शैया की चौड़ाई इतनी रखनी चाहिए कि बीज शैया में प्रवेश करने किए बिना निराई गुराई का कार्य किया जा सके। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो इसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो 1 से 1.5 मीटर ही होनी चाहिए, और आप इसकी लंबाई 12.5 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन 12.5 मीटर से ज़्यादा करना उचित नहीं होगा। नर्सरी में उपयोग की जाने वाली बीज क्यारियों के 3 प्रकार होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे वर्षा कितनी होती है। अगर बहुत अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पे ऊंचे बिस्तर बनाने चाहिए, मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची सीड बेड बनाइए। जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर नीचे सीड बेड बना सकते हैं, और जहाँ पे ठीक ठाक बारिश होती है वहाँ पे समतल क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। देन फिर अब क्यारियों में बुआई कैसे करें? तो क्यारियों में बुआई करने के लिए जो आपका सीड बेड तैयार हुआ है, जो जिसके लिए आपका सीड बेड के लिए आपका जो भी फार्मयार्ड मैन्योर या पॉटिंग मिक्सर का जो तैयार मिश्रण था उसको डाल के आपने क्यारियाँ जो तैयार की हैं उसमें आपने बीज को बोना है। बीज को बहुत गहरा नहीं बोना है, जब बहुत छोटे बीज होते हैं तो उनको 1 या 1.5 सेंटीमीटर की ही गहराई में बोना चाहिए, और अगर थोड़े बड़े सीड्स हैं, बड़े बीज हैं, तो उनको थोड़ा गहरा रोपा जा सकता है। पॉली बैग अगर आप क्यारियों में नहीं कर रहे हैं तो इसको आप पॉली बैग में करेंगे। तो पॉली बैग में करने के फ़ायदा यही है कि जब भी आप इसमें से पौधे को निकाल के फील्ड में लेके जाते हैं या फिर आपसे कोई खरीद के लेके जाता है तो क्या होता है कि जो इसकी जड़ होती है उसको बहुत कम डैमेज होता है, जिसकी वजह से इसका जो हेल्थ रहता है वो बढ़िया बना रहता है, और जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में तब भी इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो काफ़ी बेहतर होता है। फिर हम करते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जनरली जो होता है वो 3 समय हम बुआई कर सकते हैं। एक तो फरवरी मार्च का महीना हो जाता है, एक जुलाई अगस्त का महीना हो जाता है, और एक सितंबर अक्टूबर का महीना हो जाता है। तो सबसे बढ़िया समय जो हमारे हमारे रीजन के लिए है वो अगस्त जुलाई अगस्त का महीना है, जब वर्षा ऋतु होती है। और अगर हम नर्सरी में बडिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग या लेयरिंग की भी बात करें तो इन सबको वर्षा ऋतु के समय ही करना चाहिए। एक जो प्रैक्टिस है जो नर्सरी में की जाती है वो प्रिकिंग होती है। इससे क्या होता है कि बेहतर जड़ और अंकुर के विकास के लिए पौधे को एक नर्सरी बेड से दूसरे नर्सरी बेड या पॉली बैग या गमले में स्थानांतरित किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रिकिंग से जड़ की वृद्धि बढ़ती है और कई प्रजातियों में बेहतर और कुशल जड़ प्रणाली तैयार हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो बुआई के तुरंत बाद बीज क्यारियों में पानी देना चाहिए। पॉली बैग गमलों को गुलाब के सिर के डिब्बे से सिंचित किया जा सकता है, या पॉली बैग या गमलों में लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरे धंसे हुए बिस्तरों में रखा जाना चाहिए ताकि बाढ़ सिंचाई को अपनाया जा सके। और जहाँ पे आपके पास स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे आप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी को यूज़ करके पानी के बर्बादी को बचा सकते हैं। फिर बात आती है निराई गुड़ाई। नियमित रूप से निराई गुड़ाई करनी चाहिए इससे पहले कि वो पानी और मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू करें और उनके बढ़ने से निराई गुड़ाई करना मुश्किल हो जाए। इससे पहले ही खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, फूल आने से पहले खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि उनके पुनर्जनन को नियंत्रित किया जा सके। अब हम बात करते हैं खाद और उर्वरक की। नर्सरी की मिट्टी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की पोषक तत्व स्थिति और उगाई जा रही प्रजातियों की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों और सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नर्सरी से पौधे उठाना कैसे है। नर्सरी से पौधे हटाने के लिए सबसे पहले जो पौधे की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उसको ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको आप किसी को बेच सके या फिर आप इसको मार्केट तक भेज सके। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे अच्छे से थोड़ा सिंचाई देना होगा, पानी देना होगा। इससे क्या होगा, पौधे के जड़ों विशेषकर बारीक जड़ों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सावधानी से इन पौधों को उठाया जा सकता है। मिट्टी की गेंद को विभाजित होने से बचाने के लिए जड़ों को मिट्टी की गेंद के साथ घास या अन्य सामग्री में लपेटना चाहिए। पौधों को नर्सरी से उठाने के बाद और खेत में रोपने से पहले छाया में रखना चाहिए और परिवहन के दौरान उन पर पानी छिड़कते रहना चाहिए।
2: उन्नत कृषि

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
3: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
2: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
3: आपकी सेहत की बातें,
2: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
3: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
2: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
3: वो कहाँ पर?
2: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
3: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश। नमस्कार श्रोताओ।
1: अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। जोहार। प्रस्तुत है सबसे पहले आज का सुंदर विचार।
3: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: इस विचार को हमें भेजा था डुमराव बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। धन्यवाद बहुत बहुत आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
3: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और असमानाज अंसारी।
1: और जेल रोड जालंधर से रोशन जहां और मन्नत जहां।
3: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे नंदा बोड़खे हनुमान बोड़खे।
1: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से

0: नामक स्थान पर हुआ था।
1: लोक मान्यता है कि जन्म के पश्चात उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था और यूं ही किसी स्थान पर छोड़ दिया था। जब वो मरणासन्न अवस्था में थे तब किसी ने उन्हें अपनाया और पिता के समान उनका पालन पोषण किया
0: और इसीलिए उनका नाम जीवक रखा गया, जिसका अर्थ होता है जीवित या बचा हुआ।
1: जी।
0: बड़े होने पर उन्होंने तक्षशिला महाविद्यालय से भारतीय चिकित्सा यानी आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया
1: और चिकित्सा की विधा में अत्यंत कुशल हो गए। मधुमेह जैसी बीमारियों का भी उन्होंने सफल इलाज करके लोगों के जीवन की अवधि बढ़ाई। मधुमेह या डायबिटीज जैसी बीमारियों के बारे में उनका मानना था कि स्वस्थ प्राकृतिक जीवन शैली और समुचित आहार द्वारा इसे रोका जा सकता है।
0: कहा जाता है कि वे सामान्य चिकित्सा के साथ साथ शल्य चिकित्सा में भी निपुण थे। बाद में वे राजा बिंबिसार और अजात शत्रु जैसे सम्राटों के भी राजवैद्य बने।
1: जी।
0: महात्मा बुद्ध से उनका बड़ा गहरा और आत्मीय संबंध था और वे बौद्ध भिक्षुओं का निःशुल्क इलाज करते थे।
1: धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई और लोग कठिन से कठिन बीमारियों के उपचार के लिए उनके पास आते थे। बौद्ध साहित्य विनय पिटक में उनकी चिकित्सा विधा, बुद्ध की सेवा और शल्य कौशल का वर्णन मिलता है।
0: श्रोताओ, आयुर्वेद के क्षेत्र में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है,
1: वैद्यराज जीवक के बारे में किस ग्रंथ में विस्तार से जानकारी मिलती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: वैद्यराज जीवक के बारे में किस ग्रंथ में विस्तार से जानकारी मिलती है? श्रोताओ, आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर 8800-44-0559 पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, इंसुलिन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में जीवन रक्षक द्रव इंसुलिन की खोज के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कितने शोधों और प्रयोगों के बाद इंसुलिन की खोज हुई। ये मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ।
0: इंसुलिन की कहानी भाग एक।
2: सन 1918 की शरद ऋतु, सितंबर 28, प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी वर्ष। संयुक्त सेना के ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के जर्मनी पर प्रहार जारी थे। अपनी चिकित्सा स्नातक की डिग्री को हासिल कर एक 25 वर्षीय नौजवान लेफ्टिनेंट कनाडा सेना की मेडिकल कोर में दाखिल हुआ था। फ्रांस के युद्ध स्थल पर कार्यपरायण डॉक्टर को हाल ही में पदोन्नति के साथ कैप्टन बनाया गया था। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे बॉक्सटन के विशेष अस्पताल में लाया गया था।
3: थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ। हाँ, थोड़ा और बस। मुझे खेद है कैप्टन। लगता है कि हाथ काटना पड़ेगा।
4: नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं
3: कैप्टन,
4: बिल्कुल नहीं।
3: मुझे इस बात का एहसास है कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है।
4: लेकिन नहीं नहीं डॉक्टर।
3: ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ देते हैं।
4: शुक्रिया।
3: मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे।
4: शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया।

मरीज के जीवन का जोखिम लेते हुए उनकी बांह को बचाने की खातिर डॉक्टर पाल्मर ने उनके हाथ को नहीं काटा। वो बहादुर जख्मी थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। एक साल बाद उन्हें वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस के पदक से सम्मानित किया गया। सन 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो कनाडा लौट आए और थोड़े समय के लिए उन्होंने ओंटारियो प्रांत के लंदन शहर में डॉक्टरी की। डॉक्टरी का काम निभाने के साथ साथ पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय के हड्डी चिकित्सा विभाग में अल्पकालिक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। एक दोपहर डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय में सर्जरी

0: गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स नामक पत्रिका पढ़ रहे थे। इस नवंबर अंक के पहले लेख का लंबा शीर्षक था, The Relation of the Islets of Langerhans to Diabetes with Special Reference to Causes of Pancreatic Lithiasis। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट को डॉक्टर मोजेस बैरन ने लिखा था। इस लेख के सार की तीन मुख्य पंक्तियों को बेंटिंग ने अपनी पॉकेट नोटबुक में लिख कर रख लिया। लिगेट द पैनक्रियाटिक डक्ट्स ऑफ डॉग्स, कीप डॉग्स अलाइव टिल एसीडी डीजनेट, रिमूव द रेसिड्यू एंड देन आइसोलेट इंटरनल सेक्रेशन। ये साधारण सी पंक्तियां थी, पर इनमें चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को रचने के बीज थे।
1: डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर एफ आर मिलर के दफ्तर गए। प्रोफेसर मिलर स्नायु क्रिया तंत्र के विशेषज्ञ और शरीर क्रिया शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। डॉक्टर बेंटिंग ने उन्हें बताया,
2: प्रोफेसर मिलर, ये देखिए, इस लेख में ये दावा किया गया है कि जब पैनक्रियाटिक नली को सर्जरी से बांधकर बंद कर दिया जाता है, तो अग्नाशय की वो कोशिकाएं जहां एंजाइम ट्रिप्सिन बनते हैं, वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पर आइलैंड ऑफ लैंगरहेंस की कोशिकाएं बची रह जाती हैं।
3: वाकई ये एक बहुत सरल विचार है।
2: हाँ, और ये तर्क संगत भी लगता है।
3: डॉक्टर बेंटिंग, मेरे अध्ययन और शोध का क्षेत्र स्नायु तंत्र की कार्य प्रणाली है। आपने जो शोध समस्या सुझाई है वो वास्तव में एंडोक्रिनोलॉजी का विषय है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय की छोटी सी प्रयोगशाला ठीक नहीं रहेगी। आपको ज्यादा बेहतर सुविधाओं और उपकरणों की जरूरत होगी।
2: तो प्रोफेसर मिलर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
3: डॉक्टर बेंटिंग
2: जी,
3: आपको टोरंटो विश्वविद्यालय जाना चाहिए।
2: टोरंटो?
3: वहां शरीर क्रिया प्रणाली के प्रोफेसर हैं जॉन जेम्स रिकर्ड मैकलियोट
2: जी,
3: जो कनाडा के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञानी हैं। स्कॉटलैंड से आए ये मेहनती इंसान चिकित्सा विज्ञान विभाग के एसोसिएट डीन भी हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में विशेष महारत हासिल है। इनकी प्रयोगशाला आपके लिए सही जगह रहेगी।
2: ठीक है प्रोफेसर मिलर, मैं वहीं जाऊंगा उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: वेलकम।
0: अगले सप्ताह नवंबर 8 सन 1921 की सुबह डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर जॉन मैकलियोट से उनके दफ्तर में मिले।
2: प्रोफेसर?
4: हाँ,
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
4: हाँ, कृपया यहाँ बैठिए।
2: जी धन्यवाद। श्रीमान, मुझे प्रोफेसर मिलर ने आपके पास भेजा है।
4: किस लिए?
2: जी ये मेरे पास मधुमेह रोग के इलाज के लिए एक शोध का प्रस्ताव है। मेरी सोच का आधार है कि
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर ये सब आप करेंगे कैसे?
2: सर, पाचन प्रणाली में अग्नाशय क्या क्या और कैसे कैसे अपना कार्य करता है, इसका पता लगाकर।
4: हाँ जी हाँ, ये मेरा अपना भी विशेष शोध क्षेत्र है।
2: अच्छा। सर, मैं सोचता हूँ कि अग्नाशय में कुछ ऐसे रस का रिसाव होता है जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है।
4: पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई रिसाव इसके लिए जरूरी है?
2: ये बिल्कुल स्पष्ट है, और कम से कम मैं ये कोशिश करके साबित करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ।
4: क्या आपके पास पहले प्रयोग और शोध करने का कोई अनुभव है डॉक्टर बेंटिंग? क्या आपको रक्त में शक्कर की मात्रा मापना आता है?
2: जी जी नहीं, मैं रसायन शास्त्री नहीं हूँ।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका शोध में कोई प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए अन्वेषण की प्रयोजना तैयार करने में मैं आपकी सहायता करूंगा।
2: जी।
4: आप चूंकि रसायन शास्त्र के जानकार नहीं हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक रसायन शास्त्र प्रशिक्षित सहायक भी दूंगा।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
4: डॉक्टर बेंटिंग।
2: जी,
4: लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तरीका आप सुझा रहे हैं, यूरोप के अग्रणी नामी गिरामी शोधकर्ता पहले ही उसकी कोशिश करके देख चुके हैं और उनमें से कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ।
2: जी सर।
4: उनके अलावा आप क्या हल करना चाहते हैं?
2: मुझे उनके प्रयासों और परिणामों के बारे में पता नहीं है, फिर भी मैं खुद एक बार अपने तरीके से करके आजमाना चाहता हूँ सर।
4: डॉक्टर बेंटिंग, कम से कम आपको तर्क संगत तो बनना ही पड़ेगा।
2: जी जी सर।
4: विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको अपनी मर्जी के प्रयोग अपनी ही प्रयोगशाला में करने की इजाजत भला कैसे दे सकता हूँ? आपसे बेहतर और काबिल लोग ऐसे प्रयोग करने के लिए मौजूद हैं।
2: जी।
4: आपकी थ्योरी मुझे लगता है बेकार है।
2: सर, एक बार के लिए आप मान लीजिए कि डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाला कोई आंतरिक रसायन है।
4: ओके।
2: कोई अनजाना एक्स हार्मोन है। मैं उसे धागे से बंधे हुए अग्नाशय से अर्क बनाकर निकाल लेता हूँ और एक डायबिटीज रोग से पीड़ित कुत्ते में इंजेक्ट कर देता हूँ और कुत्ते के रक्त में शक्कर की मात्रा घट जाती है। क्या ये सबूत काफी नहीं? मैं तो सिर्फ आपसे इस शोध को करने की अनुमति मांग रहा हूँ।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मेरी सलाह है कि आप अगली गर्मियों के मौसम तक इंतजार करें। हाँ। और उसके बाद एक या दो महीने के लिए आप टोरंटो आ सकते हैं।
2: शुक्रिया, धन्यवाद सर। प्रोफेसर मैकलियट, अगर शोध के लिए मुझे सभी सुविधाओं को देने का आपका वादा बरकरार है तो मैं आशा करता हूं कि अपने शोध प्रोजेक्ट पर गर्मियां शुरू होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा।
4: अपने शोध को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं तो मैं आपके लिए प्रयोग करने की सुविधाएं और जानवरों का इंतजाम करता हूं। मैं चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट से आपके साथ काम करने का अनुरोध करूंगा। वो शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातक हैं। अभी वो किशोर उम्र में ही हैं, पर इस काम के लिए वो बेहतरीन हैं।
2: जी सर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा।
4: बेस्ट में रसायन विश्लेषण का जुनून है और आप एक अच्छे सर्जन हैं। आप दोनों मिलकर कुत्तों पर बखूबी प्रयोग कर सकते हैं।
2: और प्रयोगशाला की बाकी सुविधाएं?
4: अभी के लिए आप एक छोटी प्रयोगशाला से काम चला सकते हैं, जहां ऑपरेशन के बाद जानवरों को पिंजरे में रखने की व्यवस्था हो और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ऑपरेशन करने के लिए एक अलग विशेष कमरा भी हो, जिसे आप ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।
1: यह साधारण सी घटना बाद में एक महान खोज में तब्दील हुई। 1920 के दशक में डायबिटीज यानी मधुमेह एक खतरनाक रोग था जिसमें मौत शर्तिया ही होती थी। डॉक्टर भी उतना ही इस रोग से डरते थे जितना कि इस रोग के मरीज। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही पता था कि बचने का एक ही तरीका है कि मरीज को एक साधारण पर संतुलित आहार पर रखा जाए, ऐसे भोजन पर जिसमें शक्कर की मात्रा कम से कम हो। इन सब उपचारों से मरीज कुछ ही बरस तक जी तो जरूर लेते थे पर वो बचते नहीं थे। कई बार तो खुराक इतनी घटा दी जाती थी कि मरीज भूख से ही मर जाता था।
0: बेंटिंग और बेस्ट की जोड़ी कमर कसकर दिन रात एक करते हुए गर्मियों के मौसम में प्रयोगशाला की छोटी सी कोठरी में पसीने से तरबतर अपने प्रयोगों में जुट गईं।
2: चार्ल्स, हमारे पास 10 कुत्ते हैं और हमें इनमें से 5 को डायबिटीज से ग्रसित रोगी बनाना है।
5: क्या?
2: हाँ, हमें बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी।
5: अब डॉक्टर बेंटिंग, तुम्हारा मतलब है कि इन 5 कुत्तों में एंटी डायबिटिक गुण उत्पन्न होंगे?
2: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो चार्ल्स। अच्छा चार्ल्स, ये क्या यंत्र है?
5: ये कैलोरी मीटर है, रक्त में शक्कर की मात्रा मापने के लिए।
2: अच्छा अच्छा अच्छा चार्ल्स, इस शोध परियोजना में शामिल होने की तुम्हारी कोई खास वजह?
5: डॉक्टर बेंटिंग, बचपन में मेरी एक नन्ही सी दोस्त थी, मेरा मतलब मेरी बचपन की साथी, डायबिटीज की वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी।
2: ओह,
5: हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हो सकता है कि हमारे काम से कोई राह निकले और जो तुम कर रहे हो उससे एक दिन लाखों लोगों की जान बचाना मुमकिन हो सके।
2: बिल्कुल बिल्कुल होगा। तुम्हें पता है कि इस काम का तुम्हें कोई मेहनताना नहीं मिलेगा?
5: हाँ डॉक्टर, प्रोफेसर मैकलियोट ने मुझे पहले ही बता दिया था।
2: अरे वाह, तब तो कोई समस्या नहीं है।
5: अच्छा डॉक्टर, कब शुरू करेंगे हम अपना काम?
2: बस अभी।
0: मैकलियोट ने पहले अपनी प्रयोगशाला के लिए 8 सप्ताह का ही वादा किया था और उनका समय समाप्त हो चुका था। 10 में से 7 कुत्ते वो पहले ही खो चुके थे, वो भी बिल्कुल टूट चुके थे। इसलिए बेंटिंग ने और कुत्ते खरीदने के लिए अपनी कार बेच दी। अब बेस्ट शहर की गलियों में क्या दिन क्या रात कुत्तों की तलाश में निकल जाते थे। उनके मालिकों से मोल भाव करते उन्हें खरीद कर प्रयोगशाला में ले आते थे। लेबोरेटरी में सैकड़ों कुत्तों पर उन्होंने प्रयोग किए। हर कुत्ते को एक नंबर दिया जाता था। कभी ये नंबर पिंजरे का नंबर होता था तो कभी ऑपरेशन की तारीख के मुताबिक उन्हें नंबर दे दिया जाता था। ज्यादातर ऑपरेशन के बाद कुत्ते अपनी सामान्य स्वास्थ्य की हालत में वापस आ जाते थे, पर उनके अग्नाशय से पाचन रस बनना लगभग बंद हो जाता था और अग्नाशय अवयव की बाहरी कोशिकाएं या तो सिकुड़ जाती थीं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती थीं। एक दिन डॉक्टर बेंटिंग, चार्ल्स और डॉक्टर मैकलियोट प्रयोगशाला में थे।
2: ये तो मैंने कर दिया। चार्ल्स, इस सिकुड़े हुए अग्नाशय को काट कर निकालो और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको नमक और पानी के घोल में डाल दो।
5: जी डॉक्टर।
2: और हाँ, परख नली के चारों तरफ बर्फ के टुकड़े रख दो ताकि घोल सुरक्षित रहे।
5: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग।
2: और हाँ, जब अग्नाशय तंतु बर्फ की ठंड से जमने लगे तो छान कर उससे तरल को सफाई के साथ अलग कर लो। समझ गए?
5: जी। ये मैंने छान लिया और इसको अलग कर लिया। वाह, ये रहस्यमयी तरल कई बार निथारने के बाद बना है।
2: अरे वाह चार्ल्स, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक काम करते हैं चार्ल्स, क्यों ना हम इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें?
4: अच्छा, तो काम आप लोगों का यहाँ पर।
5: डॉक्टर मैकलियोट,
2: मैकलियोट सर आइए ना।
5: आइए आइए सर।
2: इस अज्ञात हार्मोन का नाम आइलेटिन रखें?
5: क्योंकि ये लैंगरहैंस के आइलेट से आया है।
4: हाँ, वैसे सोचना आपका अच्छा है, पर आइलेटिन को मेरा ख्याल है कि इंसुलिन कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लैटिन भाषा में आइलैंड को कहते हैं इंसुला। इंसुला, इंसुलिन, राइट?
2: हाँ सर,
5: राइट सर,
2: बिल्कुल सही कहा आपने मैकलियोट सर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
5: जी मैं भी।
2: हाँ, सही फरमा रहे हैं।
4: थैंक यू।
0: प्रयोग के दूसरे कुत्तों के समूह का सारा ही अग्नाशय बाहर निकाल दिया गया। बिना अग्नाशय के ये कुत्ते डायबिटीज के मरीज बन जाते थे और लगभग एक सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके साथ ही उन कुत्तों का जिनके अग्नाशय की नली को बांध दिया गया था दोबारा ऑपरेशन किया जाता था। डायबिटीज रोग से ग्रस्त दो कुत्तों में से एक का इलाज अर्क से किया गया और दूसरा कुत्ता बिना इंजेक्शन के रखा गया।
5: डॉक्टर बेंटिंग,
6: हाँ,
5: वो कुत्ता जिसे हमने इंजेक्शन नहीं दिया था वो मर गया।
6: हाँ, लेकिन चार्ल्स फिर भी वो चार दिन तक जिंदा रहा।
5: हाँ।
6: अच्छा, उस पीले रंग के कूली कुत्ते का क्या हुआ?
5: तुम्हारा मतलब कुत्ता नंबर 92?
6: हाँ हाँ, वही नन्ना सा प्यारा सा कुत्ता। मैंने 8 cc एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन उसे लगा दिया है।
5: मैं कैलोरी मीटर से उसके रक्त में शक्कर की मात्रा लगातार माप रहा हूँ।
6: चार्ल्स, आधी रात को रक्त में शक्कर की क्या मात्रा थी?
5: 12 बजे के करीब ये 43 थी।
6: 43। चार्ल्स, हर घंटे रक्त में शक्कर की मात्रा का रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में लिखते रहो।
5: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग। डॉक्टर बेंटिंग, इस कुत्ते की हालत में सुधार होता नजर आ रहा है। ये देखिए, रात के 2 बजे अभी ये 33 अंक पर है।
6: हाँ।
5: 3 बजे 29 अंक पर।
6: अच्छा।
5: और 4 बजे 21 अंक पर।
6: अरे वाह।
5: और 5 बजे ये 15 अंक पर है।
6: बहुत खूब।
5: यानी 6 घंटे में ये 43 अंक से गिरकर मात्र 15 अंक पर आ गया।
6: अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि उसके रक्त में शक्कर की मात्रा घट गई है।
5: हाँ डॉक्टर बेंटिंग, वाकई ये तो कमाल हो गया।
6: अरे वाह चार्ल्स, वाह कमाल कर दिया। सच में अब ये कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और रोग के लक्षणों से मुक्त है। ओ चार्ल्स, हमने कर दिखाया। हाँ।
5: लेकिन डॉक्टर बेंटिंग,
6: हाँ,
5: हमें अपना प्रयोग कई बार दोहराना पड़ेगा। हमें वो चीज मिल गई है जिसकी डायबिटीज के रोगी बरसों से प्रार्थना कर रहे थे।
6: हाँ, हाँ, हाँ, चार्ल्स, देखो देखो ये कुत्ता भी कितना खुश है ना। हाँ, और खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा है। हाँ, हाँ, सचमुच चार्ल्स, हमने कर दिखाया।
5: हाँ डॉक्टर,
6: सच में। हाँ, आखिरकार हमने कर लिया,
5: कर दिखाया,
6: अपने मकसद में कामयाब हुए।
5: हाँ डॉक्टर।
0: शोधकर्ताओं को लगा कि वे मधुमेह के इलाज के करीब पहुंच चुके हैं। ये कुत्ता जो उनका दोस्त बन चुका था 92 इंजेक्शनों की वजह से भला चंगा हो रहा था, पर उनके पास जरूरत के मुताबिक अर्क द्रव्य नहीं था। आखिर कुत्ता बीमार पड़ गया, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगी और वो पेशाब भी बार बार करने लगा और वो कमजोर से कमजोर होता गया। इसके बावजूद वो रोग के साथ और इंजेक्शनों की मदद से पूरे 20 दिन तक जिंदा रहा। डायबिटीज से पीड़ित कुत्ते की मौत पर बेंटिंग के आंसू निकल पड़े, पर इस प्रयोग से इन दोनों शोधकर्ताओं को उम्मीद की किरण भी नजर आई।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम इंसुलिन की कहानी, और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है जलाते चलो।
8: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है। हिंदी साहित्य के महान कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इस कविता में आह्वान किया गया है कि मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, हमें आत्मबल से निरंतर आगे बढ़ना है और सबको अपने जीवन से प्रोत्साहित करना है।

0: अभी आपने सुना ये प्रेरणादायक गीत जलाते चलो। अब हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो मुझे यानी अजीत
1: और मुझे यानी विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे मुझे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से और आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। और आज फिर आप सभी के पास, आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ मैं उन्नत कृषि कार्यक्रम। दोस्तों, अगर बात करें हम खेती की, तो उसमें हर फसलों की बात करते हैं, हम साग सब्जियों की बात करते हैं, लेकिन उसमें एक अलग चीज़ उसमें उससे जुड़ता है, यूँ कहें कि खेती और किसानों से जुड़ता है, वो है पंचगव्य। अगर इसकी बात करूँ मैं, तो खेती और हमारे जो किसान बंधु हैं वो तो पंचगव्य के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा बहुत कम लोगों को इनके बारे में जानकारी होता है कि ये पंचगव्य क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, इसे कैसे बनाया जा सकता है, इसे किस तरीके से रखा जा सकता है, ये खेती में किस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो आज यही विषय लेकर हम आए हैं, यानी कि पंचगव्य की पूरी जानकारी देने हम आपको आए हैं। तो आज का हमारा विषय है पंचगव्य बनाने का विधि एवं उपयोग, और इस विषय पर विशेष चर्चा के साथ आए हैं हमारे बीच डॉक्टर शंभु प्रसाद जी। और मैं आपको बता दूं कि ये हैं सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पंचगव्य है क्या?
2: मैडम, ये पंचगव्य खास करके मैं किसानों को विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा, पंचगव्य जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट हो जा रहा है, पंच मीन्स पांच और गव्य मीन्स गाय।
1: जी।
2: गाय से प्राप्त पांच उत्पादों यथा गाय का गोबर, गाय का दूध, घी, दही और मूत्र को मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक तरल जैविक खाद है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से जैविक खेती में की जाती है।
1: अच्छा।
2: और इसके प्रयोग से बहुत सारे फायदे हैं, और किसान अगर चाहेंगे कि अपनी खेती को समृद्ध बनाए, तो निश्चित रूप से उन्हें पंचगव्य को अपनी खेती में शामिल करने की जरूरत है।
1: जी, तो यहाँ पर आपने जाना कि पंचगव्य क्या है और इसके प्रयोग से, यानी कि खेती को और समृद्ध अगर बनाना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो इसकी बहुत ज़रूरत है, वो ऐसे बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी सामग्री की ओर जाते हैं, अगर इसे बनाना है तो सबसे पहले हम सामग्री को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या क्या सामग्री इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं?
2: जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि पंचगव्य बनाने के लिए गाय से प्राप्त पांच उत्पादों की आवश्यकता होती है। उसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर है, गाय का दूध है, गाय का घी है, गाय का दही है और गौमूत्र है।
1: अच्छा।
2: इसके अलावे अगर हम पंचगव्य को और समृद्ध करना चाहते हैं, तो इन सारे पांच उत्पादों के अतिरिक्त हमें कच्चे नारियल का पानी भी मिलाने की जरूरत पड़ती है, और उसमें चूंकि ये जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाने वाला उत्पाद है पंचगव्य, तो इसके लिए हमें जीवाणुओं के भोजन की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उसके लिए लगभग 250 से आधा किलोग्राम शक्कर की आवश्यकता होती है।
1: अच्छा।
2: जिसको आम भाषा में लोग गुड़ भी बोलते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है।
1: जी।
2: और फर्मेंटेशन की क्रिया को और बढ़ावा देने के लिए उसमें ईस्ट कल्चर की भी जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा।
2: तो ईस्ट कल्चर को भी मिलाना हम लोग उचित समझते हैं और सजेशन भी देते हैं किसानों को कि ईस्ट कल्चर को भी उसमें मिलाया जाए, उससे फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन की क्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है और पंचगव्य सही मायने में अच्छे तरह से तैयार हो पाते हैं।
1: ठीक। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल पंचगव्य बनाने में किया जाता है इसके सामग्री के रूप में, तो हम जानना चाहेंगे कि क्यों किया जाता है कच्चे नारियल के पानी का इस्तेमाल?
2: ये जो कच्चे नारियल का पानी, जिसको देहात में लोग डाब भी बोलते हैं,
1: जी जी,
2: और ख़ास करके जिन लोगों को पीलिया या जॉन्डिस की शिकायत होती है,
1: जी,
2: तो उसमें इस नारियल के पानी का प्रयोग भी लोग करते हैं, और इसमें एक खासियत है कि इसमें काइनेटिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी काफ़ी उपयोगिता है क्लोरोफिल सिंथेसिस में। तो अगर नारियल के पानी का प्रयोग हम पंचगव बनाने में करेंगे
1: जी,
2: तो इस काइनेटिन पदार्थ के कारण जिस पौधे पर पंचगव का स्प्रे होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से होगी और फोटोसिंथेट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बनेंगे। इसके साथ ही साथ पौधों का विकास भी सही होगा और दाने भी पुष्ट होंगे और उपज की अच्छी प्राप्ति होगी।
1: तो ये तो बात हो गई सामग्रियों की, और अब विधि जाना चाहेंगे इसे कैसे बनाया जाता है।
2: जी हाँ, इसको बनाने का तो बहुत ही सरल तरीका है, हालांकि इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, विधियाँ हैं, लेकिन मैं काफ़ी सुगम विधि को किसानों के बीच लाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा उन्हें। और ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले वो जो आवश्यक सामग्री है पंचगव बनाने के लिए, किसानों से अनुरोध होगा कि पहले उसको इकट्ठा कर लिया करें, और उसमें खास करके 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर है, गाय का गोबर, 2 किलोग्राम गाय का दूध, 2 किलोग्राम दही, 1 किलोग्राम घी और 3 लीटर गौमूत्र। इसके अलावे उन्हें 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी चाहिए, 250 से 500 ग्राम शक्कर चाहिए और 1 दर्जन पके हुए केले का पल्प या गुदा चाहिए।
1: जी,
2: मैं क्रम से इसको बताना चाहूँगा ताकि किसानों को, हमारे किसान बंधुओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो।
1: जी,
2: तो सबसे पहले क्या करें कि एक प्लास्टिक के टब में 5 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर लें और उसमें 1 किलोग्राम गाय का घी को दोनों हाथों से अच्छी तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं उस तरह से मिला दें, और जब वो अच्छे तरह से मिल जाए तो उसको छाया में रख दें और उसको किसी सूती वाले कपड़े से या जूट की बोरी से ढक दें। दूसरी तरफ 20 से 25 लीटर क्षमता वाली एक प्लास्टिक का गैलन लें और उस गैलन में 3 लीटर गौमूत्र, 2 लीटर गाय का ताज़ा दूध, 2 किलोग्राम दही, उसको मिलाएं और उसी में 3 लीटर कच्चे नारियल का पानी भी डाल दें और साथ में 250 से 500 ग्राम शक्कर को भी मिलाएं।
1: जी।
2: और ये इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद जो 1 दर्जन केला है उसके पल्प को अच्छी तरह से मसल कर इस मिश्रण में मिला दें और उस मिश्रण को छड़ी से या डंडा से इस तरह से मिलाएं कि सारा मिश्रण अच्छी तरह से मिश्रित हो जाए।
1: जी।
2: अब इस गैलन को भी छाया में रखना है अलग 4 दिनों तक, दोनों ये पहले जो हमने पात्र में गोबर और घी का मिश्रण मिलाया है उसका वो टब जो है उसको भी अलग रखेंगे और उसी जगह इसको भी रख देंगे और इसके मुंह को भी सूती के कपड़े से या जूट वाले कपड़े से ढक के रखेंगे।
1: जी।
2: 4 दिनों तक दोनों जो मिश्रण है दोनों को अलग अलग रखा जाएगा और प्रत्येक दिन दोनों मिश्रण को दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार अच्छी तरह से मिलाना है। गोबर और गोबर और घी का जो मिश्रण हमने प्लास्टिक के टब में रखा है उसको भी मसल के मिलाना है और इधर जो तरल पदार्थ का मिश्रण है उसको भी छड़ी या डंडे से दिन में 3 बार घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में मिलाते हुए मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाकर मिला देना है।
1: जी।
2: और फिर 5वें दिन ये दोनों जो अलग अलग मिश्रण हैं दोनों को एक साथ कर देना है। गोबर और घी का जो मिश्रण है उसको चौड़े मुंह वाले गैलन, जो प्लास्टिक के गैलन है उसमें डाल देना है और फिर छड़ी या डंडे से उसको अच्छी तरह से मिला देना है। अब ये जो मिश्रण है इसको लगभग 15 दिनों तक छोड़ देना है छाया में ही और फिर इसको प्रत्येक दिन दिन में 3 बार फिर छड़ी से मिलाना है घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में।
1: जी।
2: तो इस प्रकार से 4 और 15 दिन 19 दिन के बाद ये हमारा जो है जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से और उसके बाद फिर पतले सूती के कपड़े से इसको हमें छान लेना है और छानने के बाद जो तरल पदार्थ हमें मिलेगा वो पदार्थ हमारा पंचगव के रूप में माना जाएगा और ये तरल पदार्थ हमारे खेती के लिए काफ़ी उपयोगी है। किसान इस तरल पदार्थ को, इस छने हुए तरल पदार्थ को पंचगव्य के रूप में अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों आपने जाना कि कैसे इसे बनाया जाता है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हम इसे कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।
2: एक्चुअली ये सारे जीवाणुओं के द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं और इसमें जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त होती है।
1: जी,
2: तो बेहतर इस्तेमाल के लिए इसको, इस तरल पदार्थ को, पंच जो तैयार पंचगव्य है उसको लगभग 2 महीने तक स्टोर किया जा सकता है।
1: 2 महीने तक?
2: जी। तो उसमें उसकी क्रियाशीलता में कोई ज़्यादा कमी नहीं आती है। फिर ज़्यादा दिनों तक अगर रखेंगे तो उसकी क्रियाशीलता में कमी आती जाती है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि उसको 2 महीने के अंदर ही उसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर लें।
1: ठीक, तो सर अब इसमें जो है खेतों की बात करते हैं, तो इनका जो प्रयोग है वो खेतों में कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
2: किसान बंधु इसको विभिन्न रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। इसको बीज के साथ उपचारित भी कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इसको सिंचाई जल के साथ खेतों में डाल भी सकते हैं और फसल, खरी फसल में इसका छिड़काव विधि के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: जी।
2: और खास करके मैं तो कहूँगा कि इसकी शुरुआत किसान बंधु अपने बीजों को उपचारित करने में, चाहे वो राइजोम हो या कटिंग हो या सीड्स हो, उसको लगभग 20 मिनट तक पंचगव्य के 3% घोल में डुबा करके रखें और उसके बाद उसको छाया में थोड़ी देर के लिए सुखा दें। फिर उसका इस्तेमाल खेतों में बोने के रूप में या लगाने के रूप में या कटिंग को प्लांट करने के रूप में करें। तो इस तरह से सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसान बंधु चाहते हैं कि मैं इसको मिट्टी में इस्तेमाल करूं, तो उसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि पंचगव्य का 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ अपने खेतों में व्यवहार कर सकते हैं। किसी भी फसल में, चाहे वो गेहूं हो, मक्का हो या दलहनी फसल हो, किसी भी फसल में इसका प्रयोग सिंचाई, जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल करते हैं उसमें करें, जिसमें सिंचाई जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें वो कंपोस्ट के साथ या बर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर खेत में छींट सकते हैं अंतिम जुताई के समय में। लेकिन खेत में थोड़ी नमी रहनी चाहिए उस समय, ताकि जो जीवाणु हैं उसको जीवित रहने का भी अवसर मिले, मौका मिले, और उतना जो आवश्यक तापमान है उस तापमान पर वो जीवित रह सके। तीसरी बात है कि छिड़काव के रूप में, छिड़काव के रूप में भी किसान बंधु इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और छिड़काव के रूप में इसके 3% घोल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 1 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर पंचगव्य को मिलाकर किसी भी फसल में इसका छिड़काव, किसी भी फसल में पंचगव्य का छिड़काव कर सकते हैं। और ये छिड़काव मुख्य रूप से 2 बार करनी चाहिए। पहला छिड़काव करना चाहिए जब कली वाली अवस्था आती है, यह कली लगना शुरू होता है पौधे में, उस समय करना चाहिए। और दूसरा छिड़काव करना चाहिए जब उसमें फल आ जाते हैं या पौधे में फल जब पकड़ लेता है, तो उस समय उसका छिड़काव करना चाहिए। अगर एक ही छिड़काव करना है उनको, तो फल लगने के बाद इसका छिड़काव करें और इससे उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। और हम लोगों ने अपने यहाँ प्रयोग करके भी देखा है, देख भी रहे हैं। तो इसके छिड़काव से एक फायदा ये समझ में आता है कि इसमें कुछ एक विशेष प्रकार का गंध होता है।
1: अच्छा।
2: जिसके वजह से पौधे में कीड़े और रोग का प्रकोप कम हो जाता है।
1: अच्छा।
2: जिस फसल में इसका छिड़काव करते हैं उसके आसपास कीड़े नजर नहीं आते हैं। तो ये काफी उपयोगी है और ना सिर्फ ये रिपेलेंट का काम करता है बल्कि पौधों में ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, उसके विकास में सहायक होता है। और इसमें बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे फंगस, बहुत सारे एक्टिनोमाइसिटीज लाखों की संख्या में पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मिट्टी में जो पोषक तत्व तो ऐसे रूप में विद्यमान हैं, वर्तमान ये मौजूद हैं जो पौधों को मिल नहीं पा रहे हैं, उनको भी घुलाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और पौधों के जड़ के आसपास एक ऐसा आवरण बनाते हैं, एक ऐसा परिधि बनाते हैं जिसमें हानिकारक रोग का अटैक नहीं हो पाता है, जिसके वजह से पौधे स्वस्थ रह पाते हैं। अगर हम फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी पौधों के पत्तियों पर भी एक आवरण बनाता है, जिसके वजह से बाहरी कीटों का या रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर हो पाता है।
1: तो आपने जाना किसान बंधुओं की क्या क्या फ़ायदे हैं पंचगव्य के, और आपने जाना कि कैसे इसे बना सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं खेतों में, इसकी विधि को जाना आपने, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें से जुड़ी जो हैं डॉक्टर साहब ने बताया। तो फिलहाल तो चाहेंगे कि आप भी अगर नहीं जानते हैं इसे बनाना, तो यहाँ पर जो भी आप सभी को बताया गया, तो अगर आप उसे अपनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो ज़रूर आप इसे सीख जाएंगे बनाना और आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन, सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। देखो क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नहीं जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 30 मई से 3 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है और आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही इस दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की भी संभावना है और इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों, आपके लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार मक्का फसल की कटनी, दौनी और दानों को सुखाने के काम में सावधानी जरूर बरतें और ध्यान दें कि कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सब एक, राजश्री, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता, स्वर्णा BPT 5204 यानी कि BPT 5204 और राजेंद्र कस्तूरी की नर्सरी लगा ले और ध्यान दें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार करें और ध्यान दें कि बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। किसान भाई बहनों, अच्छी उपज के लिए बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र, संकर मक्का 3, गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग और उड़द है उन्हें बता दे, अगात मूंग उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और पिछात बोई गई मूंग और उड़द की फसल में पीला मोजेक रोग की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है। पीला मोजेक रोग के उपचार के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और इमिडाक्लोप्रीड 17.8 SL की 0.3 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जिनके खेत में सब्जियां लगी है उन्हें बता दें, भिंडी में माइट और फल एवं तना छेदक कीट और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। अगर माइट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में एथियान की 1.5 से 2 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 cc की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर डायमेथो 8 30 cc की 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डायमेथो 8 30 cc की 2 ml मात्रा को 10 ग्राम चीनी के साथ 1 लीटर पानी में मिला लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बगानों में कीट का प्रकोप हो सकता है। ऐसे में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है और अगर रेड बैंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें या फिर लैम्डा साहिलेथ्रिन की 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लें और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि बगानों में पर्याप्त और लगातार नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर ही करें। आपको बता दें, शाही किस्म की लीची की तुड़ाई जल्दी ही होने वाली है, इसलिए शाही किस्म की लीची में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है। चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लैम्डा साहिलेथ्रिन की 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल ले और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें, किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवा लें और सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले इस भूसा को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर जरूर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वॉच कार्यक्रम में। आज हम बातें करने वाले हैं किसी एग्जाम के बारे में नहीं, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि फलाना एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी कैसे करनी है या कुछ भी। आज हम पूरी तरीके से स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, छात्र जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। दोस्तों ये जो हमारी लाइफ होती है ना, स्टूडेंट लाइफ, खास तौर से छात्र का जो जीवन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। इस दौरान जो आदतें हम अपनाते हैं वही आगे चलकर हमारी सफलता या असफलता तय करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की, यानी कि गोल सेटिंग की। दोस्तों अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जाहिर सी बात है ना कि आपने तय ही नहीं किया है कि आपको क्या करना है, तो कल आप किसी और चीज के लिए तैयारी करेंगे, कल आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जब हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है तो हम उसी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं ना। इसलिए सबसे पहले तो ये तय करना जरूरी होता है कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या फिर कुछ और भी। जब आपका लक्ष्य साफ हो जाता है तब आपकी मेहनत भी सही दिशा में जाती है। इसलिए सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में ही ये तय कर लें कि आपको बनना क्या है, अपने जीवन से आप क्या चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं समय प्रबंधन की। समय जो होता है ना बहुत कीमती होता है। पैसा खो देंगे, कुछ भी खो देंगे तो आपको वो मिल जाएगा, पर समय अगर एक बार चला गया ना तो वो नहीं मिलता। इसलिए हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने दिन की एक योजना बना ले, पढ़ाई के लिए समय तय करें, खेलने के लिए समय तय करें और आराम के लिए भी समय निकालें, क्योंकि आराम भी जरूरी है ना, सेहत भी तो जरूरी होती है ना। और अगर आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब पढ़ाई में बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आज पढ़ाई की, 3 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर चौथे दिन पांचवें दिन पढ़ाई की, उसके बाद फिर 3 दिन गायब। तो ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन और ये क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई करते हैं बहुत जोश से पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और पढ़ाई खत्म। लेकिन आपको पता है ना कछुआ और खरगोश वाली कहानी। खरगोश बहुत तेज था दौड़ने में और कछुआ बहुत स्लो, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहा और खरगोश ने क्या किया, वो रुक गया। चलता रुक जाता, चलता रुक जाता। और ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि कंसिस्टेंसी कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से बहुत बेहतर होता है। रोज पढ़िए, पर लगातार पढ़िए, हर रोज पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा 2 दिन बंद हो गया, फिर 2 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन बंद हो गया। ध्यान रखना है कि नियमित अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। और अब बात करते हैं एकाग्रता की, ध्यान और एकाग्रता की। आज के समय में जब हमारे पास मोबाइल फोन है, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटकाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते समय इन सारी चीजों से आप दूरी बनाकर रखें, एक शांत जगह पर बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि आपको फोन की आदत है या फिर सोशल मीडिया की आदत है, तो आपको लगेगा अगर उसने मैसेज कर दिया तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, फिर आगे क्या होगा, अरे किसी का फोन तो नहीं बज रहा होगा, गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगा या फिर गेम्स में मैं पीछे रह जाऊंगी, अरे ये मेरे रेपुटेशन का सवाल है। बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई नया गेम आएगा या फिर सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट, नई कॉन्ट्रोवर्सी या फिर फोन पर किसी दोस्त से गपशप, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको इन सारी चीजों से दूरी बनानी है, धीरे धीरे दूरी बनानी है। पहले दिन आप 5 मिनट फोकस कर पाएंगे, अगर आपका फोकस बहुत खराब हो चुका है तो आप पहले दिन 5 मिनट फोकस करेंगे, अगले दिन 10 मिनट, इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, धीरे धीरे आपकी आदत और आपका फोकस बेहतर होता जाएगा और एक दिन आप देखेंगे कि लगातार आपने 40-45 मिनट पढ़ाई कर ली है। लगातार 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई करनी होती भी नहीं है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया और फिर 45 मिनट या 40 मिनट पढ़ाई की, ये होता है एक हेल्दी तरीका पढ़ाई करने का। लेकिन आज के टाइम पे फोकस बहुत मुश्किल से होता है, तो ध्यान रखिए मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेम्स, इन सारी चीज़ों से एक टाइम बना ले कि 2 से 3, या फिर आपका अपने हिसाब से कोई भी टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि 2 से 3 मुझे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कुछ भी करना है लेकिन इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो धीरे धीरे आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ इस दौरान मुझे पढ़ाई ही करनी है। और जब आप
कंसिस्टेंट रहकर पढ़ाई करते हैं, फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खुद ही आने लगता है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको खुद की मदद करनी होगी, आपको कहना होगा खुद से, खुद को समझाना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। और ये छोटा सा जो सेंटेंस होता है ना, ये आपके अंदर बहुत ताकत पैदा कर

0: और सोचते हैं कि शायद मैं ही किसी काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता है, जीवन में हर किसी को कभी ना कभी असफलता का सामना करना ही पड़ता है लेकिन असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि असफलता से सीख लेनी चाहिए कि कहीं कुछ तो छूट गया होगा ना, या फिर कहीं हमसे कोई कमी नहीं रही है, तो फिर शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमारे लिए कोई और रास्ता चुना गया है जिस पर हमें चलना होगा। तो थोड़ा ठहरिए और अपने नए रास्ते की तलाश कीजिए, या फिर अगर आप एक बार और कोशिश करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, पर घबराइए मत, हारिए मत। असफलता हमें सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, और हर असफलता कहते हैं कि आपको सफलता के और करीब और बेहतर तरीके से करीब लेके जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले हम स्वास्थ्य के बारे में भी बातें कर रहे थे, तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो फिर पढ़ाई पर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए हर रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज और सही खान पान और पूरी नींद। जी हाँ, सोशल मीडिया और मोबाइल्स ने और गेम ने भी हमारे नींद को भी बहुत बुरे ढंग से प्रभावित किया है। हम रात रात भर जाग कर इन सारी चीज़ों के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं, और फिर हमारी नींद पूरी नहीं होती है, फिर हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। अभी फिलहाल उन सारी परेशानियों के बारे में बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बात की अपनी नींद पूरी ज़रूर करें। 7 से 9 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए एक्सरसाइज करें, सही खान पान लें और पूरी नींद लें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आपके स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सके। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी होता है कि आप गुड कंपनी में रहें, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत से गुण है और संगत से गुण जात है। इसलिए आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं, ये भी बहुत प्रभाव डालता है आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच के ऊपर। अगर आप फोकस्ड लोगों के साथ रह रहे हैं, पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अगर आप रास्ता भटकेंगे भी ना तो वो आपको रास्ते पर ले आएंगे, वो बातें करेंगे पढ़ाई की, तो आपको भी लगेगा कहीं कुछ तो छूट रहा है ना, मेरी पढ़ाई में तो छूट रही है ना, वो अच्छी बातें करेंगे तो आपके ऊपर भी असर अच्छा होगा। इसलिए हमेशा ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, ना कि वो अपने साथ आपको पीछे खींच कर लेकर जाए। और अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। जी हाँ, हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं, ऐसे समय में खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट कर पाने में नहीं सक्षम हो पा रहे हैं तो डायरी लिखना शुरू कीजिए और उसमें एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिएगा धीरे धीरे आपको खुद के अंदर विश्वास आने लगेगा, एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, पर हफ्ते भर में तो पक्का आएगा। और आप जब डायरी में लिखेंगे कि ये चीज़ें हुई और मैं अभी बहुत लो फील कर रही हूँ, मैं क्या करूँ इस वजह से मैं लो फील कर रही हूँ, तो लिखते लिखते आपको आधे जवाब मिल जाएंगे। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा आपको कोई कहने के लिए नहीं होगा कि टाइम हो चुका है, पढ़ाई करने बैठो टाइम हो चुका है, खाना खाने जाओ टाइम हो चुका है, फ़ोन नीचे रख दो सो जाओ, नहीं होगा। ये आपको खुद के अंदर खुद ही ये चीज़ लानी होगी, यानी कि आत्म अनुशासन लाना होगा। अनुशासन ही सफलता की कुंजी होती है, और अगर आप खुद को नियंत्रित करना सीख गए तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। इसलिए आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लें, आत्म अनुशासित रहें और अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़ें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके जीवन का वो फेज चल रहा है जब आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा ये, मैं हार चुकी हूँ, थोड़ा रुकिए, डायरी लिखिए, आईने में देखकर खुद से बातें कीजिए और थोड़ा सा वक्त खुद को दीजिए, थोड़ा शांत होकर सोचिए और फिर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन किसी ना किसी सही दिशा में पहुंच ही जाएगा। और अब मैं अंत की ओर आगे बढ़ती हूं और आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूं कि अपने सपनों को कभी भी छोटा मत समझिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और कभी हार मत मानिए। याद रखिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहे। नमस्कार।
1: नमस्ते क्लास, टीवी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप

0: समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। हेलो नमस्कार, हाजिर है आरजी अनु आप सभी के बीच उन्नत कृषि कार्यक्रम लेकर। जी हाँ, यहाँ पर किसानों की बात हो रही है, लेकिन साथ ही पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनकी भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि पशुपालन जो है वो कृषि का रीढ़ है। बात करते हैं पशुओं के गर्भधारण के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो गर्भधारण के आ चुके हैं, यानी कि अगर नेचुरल तरीके से नहीं हो पा रहा है तो कृत्रिम उपाय भी जो है वैज्ञानिक जो लेकर आए हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये हैं पशुपालन विभाग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले बताएं कि कृत्रिम गर्भधारण ये क्या होता है?
2: जी, ये कृत्रिम गर्भाधान जो है ये एक गर्भाधान की एक प्रक्रिया है जो नेचुरल या जो हम लोग जो नैसर्गिक तरीके से जो कराते हैं, जो कि सांड से द्वारा या भैंसा के द्वारा जो कराया जाता है, तो वो उसमें हम लोग AMPM रूल का पालन करते हैं। अर्थात जब भी कोई भी गाय या भैंस गर्म होती है तो सवेरे अगर हम देखते हैं तो शाम में उसको गर्भाधान कराते हैं, और शाम में देखते हैं तो सवेरे गर्भाधान कराते हैं। लेकिन इसमें कई कठिनाइयां हैं। आजकल जो पशुपालन के तौर तरीके हैं, जो श्रमिकों की कमी है, या जो उन्नत नस्ल के सांड की कमी है, और उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पशुओं को जो ले जाने की समस्या है, क्योंकि आपको जैसा पता होना चाहिए हमारे पशुपालकों को कि जब गाय गर्मी की अवस्था में रहती है, हीट में रहती है, उस समय वो इधर उधर भागती है, और उसको हैंडल करना, पकड़ के ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम गर्भाधान जो काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, ये आज हमारे लिए एक टूल बन गया है, जिससे कि हम मादा पशुओं में जब वो गर्मी की अवस्था में रहती हैं तो उसके पश्चात हम जो सांड के से कृत्रिम तरीके से उसके स्पर्म को निकाल के, और फिर जब वो उसके जनन इंद्रिय में डाल दिया जाता है, समय इसके लिए निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि समय पर डालने से वो उसमें फर्टिलाइजेशन होने का और गर्भधारण करने की क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ क्वालिटी उन्नत नस्ल के सांड का जो बीर डालने से वो काफ़ी उन्नत नस्ल के बछड़े बाछा या बाछियाँ उनको प्राप्त होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो हमने जाना कि ये क्या होता है, और अब ज़रूरी होता है कि हम जाने कि इससे लाभ क्या मिलता है और साथ ही इससे हानि क्या मिलता है।
2: जी, जैसा कि आपको हमने बताया पहले कि इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पशुपालकों को कि गाय को एक जगह से दूसरे जगह गर्मी की अवस्था में ले के जाना, तो आजकल जो डोर स्टेप लेवल पे कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, प्राइवेट तौर पर भी, NGO के द्वारा भी, और कम्फर्ट के द्वारा भी जो कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा या किसानों को डोर स्टेप लेवल पर मिलती है। तो एक और वो अपने पशुओं को इधर उधर ले जाने से बचते हैं, जिसमें कि श्रम के साथ साथ पैसा जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, लेबर कॉस्ट, वो भी बचता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इससे फायदे होते हैं कि उन्नत नस्ल के जो जिस प्रकार का वो चाहेंगे उस प्रकार का सीमेन उनको डोर स्टेप लेवल पे मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी आपकी गाय मादा जब गर्भावस्था के लिए जब हीट में आती हैं, उस समय जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के समय उसका थॉरो चेकअप हो जाता है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की उनको इन्फेक्शन है या कोई अन्य संक्रमण है तो उसका भी चिकित्सा ढंग से की जा सकती है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी है कि समय का निर्धारण, अर्थात आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भाधान कब कराएं। तो जैसा कि नेचुरल इंसेमिनेशन में पता है कि सवेरे का शाम और शाम का सवेरे, AMPM रूल, लेकिन जब कृत्रिम गर्भाधान की बात होती है तो जो बेस्ट टाइम होता है वो 18 से 20 घंटे के बाद ही होता है, क्योंकि मादा पशु जब गर्म होती है तो गाय भैंस के केस में 30 आवर, जब गर्मी के जब वो हीट का लक्षण प्राप्त होता है उसके समय से 30 घंटे के बाद जनरली वो ओवुलेशन होता है। तो उसके पहले 18 घंटा से लेकर 24 घंटा के बीच में अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कर देते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन कुछ पशुओं में गर्मी की अवस्था काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो उस समय हम लोग जो सलाह दी जाती है वैज्ञानिक ढंग से कि 18 से 20 घंटे के समय में पहली बार उसको कृत्रिम गर्भाधान कराएं और 6 से 8 घंटे के बाद रिपीट करवा दें। अगर दो बार इंसिमिनेशन कराते हैं तो कंसेप्शन होने का चांस, गर्भधारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि गर्भ जो कृत्रिम गर्भाधान है इसमें 40-50% ही गर्भधारण की क्षमता रहती है, अर्थात दो बार कराएंगे, एक बार रख भी सकता है एक बार नहीं भी रख सकता है। तो इसलिए सारा चीज़ नॉर्मल रहने के पश्चात भी कभी कभी फेल करता है। तो अगर दो बार सीमेन डलवाते हैं, एक 18 घंटा के बाद, दूसरा 24-26 घंटा के लगभग में, तो गर्भधारण होने की क्षमता बढ़ती है। तो एक और जहाँ कि आपका इकोनॉमिकल है, डोर स्टेप लेवल पर आपको उपलब्ध है, तीसरी चीज़ है पूरी तरह से गायनको क्लिनिकल जांच हो जाती है गाय की, और फिर आपके मनपसंद आप अगर चाहते हैं कि आपके पास जो देसी गाय है उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराएं हम होस्टिन फ्रीजियन से, जर्सी से या किसी अन्य नस्ल से, अगर आपके पास देसी ब्रीड है उसमें आप साहिवाल से चाहें, तो जिस नस्ल का आप चाहेंगे उस नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के तरीका से उसमें आर्टिफिशियली सीमेन डाला जा सकता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जा सकता है। जहाँ तक नेचुरल इंसिमिनेशन में गाय का, कुछ कुछ गाय छोटी होती हैं और जो आर्टिफिशियली हम लोग जो नस्ल जो चयन करते हैं क्रॉस ब्रीड होस्टिन फ्रीजियन या जर्सी, उसके बुल बहुत बड़े होते हैं, तो डिस्पैरिटी अगर होने से चांसेस ऑफ इंजुरी रहती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और उस समय कभी कभी कि देखा जाता है, ये पाया जाता है कि कुछ न कुछ डैमेज होता है, कभी पैर में चोट लग जाता है कभी, तो उस इन सब चीज़ों से कंप्लीट कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा आप पशुओं को स्वस्थ रखते हुए और गर्भाधान करा सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने जाना कि लाभ क्या है, हानि क्या है, और आपने ये भी बताया कि टाइम जो ड्यूरेशन है उसका खास ख्याल रखना पड़ता है। क्या इसके अलावे भी कुछ सावधानियाँ हैं जो जो भी हमारे जो पशुपालक भाई जो कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं पशुओं को, तो क्या सावधानी बरतना चाहिए?
2: देखिए, सावधानी जहाँ तक बरतने की बात है, तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप सिलेक्शन करते हैं जिनसे आपको कृत्रिम गर्भाधान कराना है उनके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति है।
1: अच्छा।
2: और दूसरी चीज़ है कि समय, इसमें जो सावधानी सबसे ज़रूरी है समय, और तीसरी चीज़ है कृत्रिम गर्भाधान का तरीका। जब एक बार हम सीमेन को आर्टिफिशियल जो कैन में रहता है नाइट्रोजन सिलेंडर में, जिसमें कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन में क्रायो कैन में रखा जाता है सुरक्षित, वहाँ से निकालने के बाद जितना जल्द हो हम लोग उसको पहले थॉइंग करते हैं, थॉइंग में उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाके और उसको हम करते हैं। तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब थॉइंग करने के बाद जितना जल्द से जल्द हम कृत्रिम गर्भाधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने गाय को समुचित ढंग से बांध के रखें। कभी कभी देखा जाता है कि आपने इधर हम जो भी कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा कैथेटर में सीमेन को लोड कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो जाते हैं उस प्रक्रिया में तो गाय ढंग से बांधी हुई नहीं है और गाय खुल के इधर उधर भागने लगती है, तो काफ़ी समय लग जाता है कृत्रिम गर्भाधान करने में, तो वो सीमेन बर्बाद हो जाता है। तो तरीका है कि जब आप प्रॉपर तरीका से बांध लें और 5-7 मिनट के अंदर पूरी प्रक्रिया को ख़त्म कर लें, ताकि कंसेप्शन होने का चांसेस बढ़ा रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी जब जिस स्टेज से बन के आया और जहाँ से आपको आपके दरवाजे तक पहुँचा, उस दौरान उसका लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि पूरे बनने की प्रक्रिया से जब भी उसको हम बनाने से लेके और ट्रांसपोर्टेशन से लेके आपके दरवाजे तक आने में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो आपका प्रिजर्व सीमेन है वो ख़राब हो जाएगा, फिर आपका कंसेप्शन कम जाएगा। तो ये कुछ अतिरिक्त सावधानियां हैं जो बरतनी हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि आप अपने देशी नस्ल की गायों का अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो किसी ऐसे नस्ल छोटी गाय है तो आप अगर होस्टिन फ्रीजियन का सीमेन डालेंगे तो कभी कभी डिस्ट्रोकिया होने का भी चांस रहता है। तो ये आपको अर्थात उसमें बच्चा का साइज बड़ा हो जाता है और जब डैम का साइज